नमस्कार श्रोताओं, मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। आज शुक्रवार है, शक संवत 1948 के श्रावण मास की दूसरी तिथि है। तदनुसार 24 जुलाई सन 2026 सुबह के 5:56 और 42 सेकंड हुए हैं।

0: मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। प्रातः के 6 बजने को हैं। थोड़ी ही देर में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पेपर लीक की घटना के बाद पिछले 2.5 महीने से कई कदम उठाए गए हैं। दोषियों को गिरफ्तार कर और जेल भेजा गया है। कल रात एक वीडियो संदेश में श्री मोदी ने कहा कि सरकार की मुख्य जिम्मेदारी ये सुनिश्चित करना थी कि विद्यार्थियों का शैक्षणिक वर्ष व्यर्थ न जाए और तत्काल परीक्षाएं आयोजित करना जरूरी था। उन्होंने कहा कि पेपर लीक एक छोटा मुद्दा नहीं है और ये लाखों विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों के लिए अत्यंत पीड़ादायक है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने संबंधित विभागों से फास्ट ट्रैक अदालतों के लिए प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए हैं।
2: फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे। विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का यह मुसद्दा कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा।
1: सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने कल रात गुरुग्राम के एक निजी अस्पताल में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह की उपस्थिति में 26 दिनों से जारी अपना अनशन समाप्त किया। वांगचुक के पंथी गीतांजलि आंगमू और लेह लद्दाख के शीर्ष निकाय के वरिष्ठ नेता भी अस्पताल में मौजूद थे। इससे पहले विभिन्न राजनीतिक दलों के 65 सांसद भी वहां पहुंचे थे और पत्र लिखकर अनशन समाप्त करने का आग्रह किया था। श्री वांगचुक 28 जून से शिक्षा स्वास्थ्य में सुधार और पेपर लीक मामले में जवाबदेही तय करने की मांग को लेकर अनशन कर रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सामाजिक कार्यकर्ता श्री वांगचुक से अपील की है कि वे डॉक्टरों की सलाह के अनुसार अपनी दिनचर्या का पालन करें और जल्द से जल्द अपने सामान्य वजन को वापस प्राप्त करें। एक सोशल मीडिया संदेश में प्रधानमंत्री ने ईश्वर से श्री वांगचुक के स्वस्थ बने रहने की प्रार्थना की है। दिल्ली मेट्रो रेल निगम डीएमआरसी ने सुरक्षा कारणों से आज सुबह 7:30 बजे से अगले आदेश तक 17 मेट्रो स्टेशनों को बंद रखने की घोषणा की है। इन स्टेशनों में लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, पटेल चौक, रामकृष्ण आश्रम मार्ग, बाराखंबा रोड, सुप्रीम कोर्ट, सेवा तीर्थ, जनपद, झंडेवालान और मंडी हाउस, केंद्रीय सचिवालय, आईटीओ, दिल्ली गेट, इंद्रप्रस्थ, खान मार्केट, जोरबाग और शिवाजी स्टेडियम शामिल हैं। हालांकि राजीव चौक, मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय स्टेशनों पर इंटरचेंज की सुविधा जारी रहेगी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 के अंतर्गत मामलों की सुनवाई के लिए तत्काल प्रभाव से एक फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया है। दिल्ली पुलिस ने बताया है कि पाकिस्तान से संचालित 480 सोशल मीडिया हैंडल की पहचान कर उन्हें ब्लॉक किया गया है। पुलिस के अनुसार ये हैंडल छात्रों और युवाओं को गुमराह करने के लिए अफवाहें और झूठी जानकारी फैला रहे थे। भारत और रोमानिया ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी, शिक्षा तथा खेलों के क्षेत्र में सहयोग के लिए 3 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। इन समझौतों पर कल बुखारेस्ट में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और रोमानिया के राष्ट्रपति निकोसो डैन के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद हस्ताक्षर किए गए। अपनी प्रेस विज्ञप्ति में राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत और रोमानिया 7 दशकों से अधिक समय से घनिष्ठ और स्थायी मित्रता साझा करते आ रहे हैं, जो आपसी विश्वास, सम्मान और मजबूत जनसंबंधों पर आधारित हैं। उन्होंने कहा कि भारत रोमानिया साझेदारी समय के साथ लगातार मजबूत हुई है। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि उन्होंने और राष्ट्रपति निकोसो डैन ने सार्थक और उपयोगी चर्चा की और हाल के वर्षों में हुई प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि भारत और रोमानिया विनिर्माण, औषधि, स्वास्थ्य सेवा, नवीकरणीय ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन, कृषि उत्पादन, उर्वरक, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, डिजिटल सार्वजनिक सुविधा और एआई जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए। भारत ने मानवाधिकारों का सम्मान करने और सभी के लिए अवसर सृजित करने वाली सुरक्षित, समावेशी और न्याय संगत खेल प्रणालियों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की है। स्कॉटलैंड के ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेल मंत्रियों की बैठक को संबोधित करते हुए युवा मामले और खेल मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने राष्ट्रमंडल में खेल प्रशासन, खिलाड़ी कल्याण और संस्थागत क्षमता के विस्तार के लिए भारत के दृष्टिकोण को रेखांकित किया। स्कॉटलैंड के ग्लासगो में 23वें राष्ट्रमंडल खेलों का रंगारंग आगाज हो गया है। उद्घाटन समारोह में भारतीय दल का नेतृत्व मीराबाई चानू और लवलीना बोरगोहन ने किया। वहीं पुरुष क्रिकेट में भारत ने कल शाम हरारे में 3 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला के पहले मैच में जिम्बाब्वे को 7 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

श्रोताओं, हमारा भारतवर्ष परंपरा, संस्कृति और गौरवशाली सभ्यता का पावन आलोक है। इसकी अखंड एकता, समरसता और राष्ट्रनिष्ठा ही हमारी वास्तविक शक्ति है। कर्तव्य परायण बनकर मातृभूमि के यश, वैभव और उत्कर्ष में अपना अमूल्य योगदान देना हर देशवासी का मूल कर्तव्य है।

श्रोताओ कहते हैं जब श्रद्धा अडिग हो, भक्ति निष्कलुष हो और अंतःकरण निर्मल हो, तब प्रभु प्रत्येक श्वास, प्रत्येक शुभ कर्म और प्रत्येक करुण भाव में साक्षात विद्यमान होते हैं। आइए विश्वास, सेवा और सदाचार से ईश कृपा की प्रार्थना करें।

कलियुग के करुणामय आराध्य, अटूट श्रद्धा, विश्वास और समर्पण के दिव्य प्रतीक बाबा खाटू श्याम के चरणों में सादर नमन। उनकी कृपा भक्तों के जीवन में आशा, साहस और मंगल का आलोक भरती है।

श्रोताओं, करुणा, प्रज्ञा, अहिंसा और सम्यक जीवन दर्शन के विश्व वंदनीय प्रवर्तक भगवान गौतम बुद्ध के श्री चरणों में सादर प्रणाम। उनका अमृतमय संदेश मानवता को शांति, मैत्री और आत्मबोध का पावन मार्ग प्रशस्त करता है। आइए भगवान बुद्ध की पावन वंदना से अनुप्रमाणित इस भक्ति रचना का भावपूर्ण श्रवण करें।

0: अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।
1: सुनते रहिए मालवा किसान आकाशवाणी इंदौर।
0: प्रस्तुत है आज का चिंतन।
2: दोस्ती निस्वार्थ भाव का सबसे उज्जवल रूप। दोस्ती एक ऐसा रिश्ता जो न खून से जुड़ा होता है न किसी सामाजिक बंधन से, फिर भी जीवन के सबसे गहरे और सच्चे संबंधों में गिना जाता है। ये वो बंधन है जो दिल से बनता है, विश्वास से चलता है और समय के साथ और भी मजबूत होता जाता है। दोस्ती केवल साथ हंसने और समय बिताने का नाम नहीं है, बल्कि ये वो सहारा है जो कठिनतम परिस्थितियों में भी हमें संभालता है। ये वो रिश्ता है जिसमें अपेक्षाएं कम और अपनापन अधिक होता है। भारतीय परंपरा में दोस्ती के कई उदाहरण मिलते हैं, लेकिन सबसे प्रसिद्ध और प्रेरणादायक कथा है कृष्ण और सुदामा की मित्रता। ये कहानी केवल दो मित्रों की नहीं बल्कि निस्वार्थ प्रेम, सम्मान और सच्चे संबंधों की परिभाषा है। हो सकता है आप सभी ने ये कहानी कभी न कभी सुनी होगी, फिर भी मैं चाहूंगा कि आप ये सुंदर कथा एक बार फिर मुझसे सुने। ये कहानी है द्वापर युग की, जब कृष्ण और सुदामा दोनों एक ही गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करते थे। वहां वे केवल सहपाठी ही नहीं बल्कि घनिष्ठ मित्र भी थे। दोनों साथ पढ़ते, साथ खेलते और जीवन के हर छोटे बड़े अनुभव को साझा करते थे। समय बीतता गया, शिक्षा पूरी हुई और जीवन में दोनों को अलग अलग राहों पर भेज दिया। कृष्ण आगे चलकर द्वारका के राजा बने, विभव, शक्ति और सम्मान के प्रतीक। वहीं सुदामा एक साधारण ब्राह्मण के रूप में जीवन व्यतीत करने लगे, जो अत्यंत गरीबी में अपना जीवन काट रहे थे। सुदामा के घर की स्थिति इतनी दयनीय थी कि कई बार भोजन तक उपलब्ध नहीं होता था। उनके बच्चों को भूख के पेट सोना पड़ता था। एक दिन उनकी पत्नी ने उनसे कहा, आपके मित्र कृष्ण द्वारका के राजा हैं, क्यों ना आप उनसे मिलकर सहायता मांगे। सुदामा पहले तो संकोच में थे, उन्हें लगा कि इतने बड़े राजा के सामने जाना और अपनी गरीबी का उल्लेख करना क्या ये उचित होगा, लेकिन अंततः पत्नी के आग्रह पर वे मान गए। सुदामा खाली हाथ जाना नहीं चाहते थे, इसलिए उनकी पत्नी पड़ोसियों से थोड़े से चावल मांगकर एक पोटली में बांधकर सुदामा को दे देती है। जब सुदामा द्वारिका पहुंचे तो भव्य महलों को देखकर वे स्वयं को बहुत छोटा महसूस करने लगे, लेकिन जैसे ही कृष्ण को अपने मित्र के आगमन का समाचार मिला, वे तुरंत सिंहासन से उठकर दौड़ पड़े। राजा कृष्ण ने सुदामा को गले लगाया। ना कोई औपचारिकता, ना कोई दूरी, उनकी आंखों में प्रेम और हृदय में वही पुराना अपनापन था। कृष्ण ने स्वयं अपने मित्र के चरण धोए, उन्हें आसन पर बैठाया और अत्यंत स्नेह से उनका स्वागत किया। उस क्षण यह स्पष्ट हो गया कि सच्ची दोस्ती पद, प्रतिष्ठा और धन की सीमाओं से परे होती है। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए पूछा, मित्र मेरे लिए क्या लाए हो। सुदामा संकोच में थे। कृष्ण ने स्वयं वह छोटी सी चावल की पोटली ले ली और बड़े प्रेम से उसे खाने लगे। उनके लिए यह साधारण उपहार नहीं बल्कि मित्र के प्रेम का प्रतीक था। सुदामा कुछ भी मांग नहीं पाए, वे केवल अपने मित्र के स्नेह से ही संतुष्ट हो गए और बिना कुछ कहे लौट आए। लेकिन जब वे अपने गांव पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनकी झोपड़ी एक सुंदर महल में बदल चुकी थी। उनके परिवार के चेहरे पर खुशियां थी। ये सब कृष्ण की मित्रता का ही परिणाम था, बिना मांगे सब कुछ दे देना। मित्रों, ये कथा हमें सिखाती है कि सच्ची दोस्ती में लेन देन नहीं होता बल्कि भावनाओं का आदान प्रदान होता है। इसमें अहंकार के लिए कोई स्थान नहीं होता। आज के समय में जब रिश्ते अक्सर स्वार्थ और लाभ पर आधारित होते जा रहे हैं, कृष्ण और सुदामा की मित्रता हमें याद दिलाती है कि सच्चे संबंध दिल से बनाए जाते हैं, न कि परिस्थितियों से। दोस्ती का अर्थ है किसी की खुशी में खुश होना, किसी के दुख में उसके साथ खड़ा होना और बिना कहे एक दूसरे को समझ लेना। जीवन में ऐसे मित्र बहुत कम मिलते हैं, लेकिन यदि मिल जाए तो उन्हें संभाल कर रखना चाहिए, क्योंकि जब जीवन कठिन होता है तब यही दोस्त हमारी सबसे बड़ी ताकत बनते हैं। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अक्सर अपने मित्रों को समय देना भूल जाते हैं। हम सोचते हैं कि बाद में बात कर लेंगे, फिर कभी मिल लेंगे, लेकिन सच्चाई ये है समय निकल जाने के बाद केवल बचती है यादें। इसलिए यदि आपके जीवन में कोई ऐसा मित्र है जो हर परिस्थिति में आपके साथ खड़ा रहा है, तो आज ही उसे याद कीजिए, उससे बात कीजिए, उसे धन्यवाद कहिए क्योंकि दोस्ती केवल एक रिश्ता नहीं बल्कि जीवन की सबसे अनमोल पूंजी है। अंत में बस इतना कहना चाहूंगा, धन पद और यश सब समय के साथ बदल जाते हैं, पर सच्ची दोस्ती वो धरोहर है जो जीवन भर हमारे साथ रहती है, जीवन भर हमारे साथ रहती है।
0: दोस्ती, यही था आज का चिंतन, आलेख चंद्रशेखर का और वाचन राजेश जैन का। आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है, प्रस्तुत है खेती की बातें।
3: खेती की बातें कार्यक्रम सुनने वाला किसान भाई बहनों के मनीषा शर्मा की राम राम। भाई बहनों, बरसात को मौसम आ गयो है, अने यो बरसात को मौसम अपना पशु होने का लिए थोड़ो सो देखियो जावे तो थोड़ो कठिन रहे है। बरसात का मौसम में पशु होने के संक्रमक रोग जैसे खुरपका, मुंह पका, गलघोटू जैसा होने की संभावना रहे, और नमी से बचाने का लिए हमें पशु का लिए वे कुछ अलग व्यवस्था होन करनी पड़े। अपन कुछ बात उनको ध्यान रखांगा तो अपना पशु बरसात का मौसम में भी स्वस्थ रहेगा और अच्छो दूध उत्पादन अपन कर सकांगा। भाई बहनों, सबसे पहला तो अपने पशु का आवास को ध्यान देना पड़ेगो। पशु के हमेशा जहाँ बांधा या पशुशाला जो पशु की हो वहाँ पे बिल्कुल सूखो रहे यो ध्यान रखा, कहीं से पानी नहीं टपके, और जो नीचे की फर्श है वो पक्को और ढलान वालों होएगो तो उनको जो मल मूत्र है और बारिश को पानी यदि एरियो अंदर तो वो आसानी से बाहर निकल सकेगो। यो भी ध्यान दा कि जहाँ पे अपन ने पशु के बांधिया है वहाँ पानी के इकट्ठो नहीं होने दा, यदि पानी इकट्ठो होएगो

0: तुम्हें कीड़ा मक्खी मच्छर होएगा और अपना पशु होके बीमारी करेगा। अने बाड़ा में जो पशु बांधिया है वहां पे अपन नियमित रूप से चूना को छिड़काव करा। अने पशु उनका बैठने की जो जगह है उके सूखी रखा और समय समय पे वहां पे सफाई करता रहा। बरसात का मौसम में पशु का आहार और पोषण पे भी ध्यान देने की जरूरत है। अपन हरा चारा का साथ सूखा चारों में लेके दा लगभग 60-40 का अनुपात में हरा चारा और सूखा चारा के अपन पशु के दा। हरा चारा में नमी ज्यादा रहे इसलिए उके सूखे के खिलानो उपयुक्त रहेगो। चारा के नमी से बचावा क्योंकि कई बार चारा में फफूंद लगी जावे और वो चारों यदि अपनो पशु खाई लेगो तो उका स्वास्थ्य के लिए वो जानलेवा हो सकतो है। आहार में पर्याप्त मात्रा में नमक और खनिज मिश्रण शामिल करा ताकि पशु की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ी जावे। अने पशु के रोग से बचाने के लिए बीमारी से बचाने के लिए आपने टीकाकरण तो कराई लियो होगो। अने टीकाकरण का बाद भी यदि पशु में कुछ बीमारियां हुई जावे तो पशु चिकित्सक की सलाह जरूर ला। बारिश में पेट में कीड़ा होने की समस्या बढ़ी जावे डॉक्टर की सलाह का बाद कीड़ा मारने की दवा जरूर दा। शरीर पे किलनी या जू हुई जाने पर परजीवी नाशक को इस्तेमाल करा। अने अपना पशु के थनेला रोग से बचाने का लिए दूध दुहने से पहला और बाद में थन होन के एंटीसेप्टिक घोल से साफ करा। अने भाई बहनों अपन देखा है कि यहाँ वहाँ पानी का डबरा भरिया रहे अने पशु कई बार ऊंच पानी पी ले तो उना पानी के पीने से भी पशु बीमार हो सकतो है। तो पशु के पानी पिलाने का लिए अच्छो स्वच्छ पानी की व्यवस्था करा। तालाब या गड्ढा में से पानी पीने से अपन उनके बचावा। हमेशा उनके साफ और ताजो पानी ही पीने के दा। जो पानी अपन ने भरियो है जिना बर्तन में उके समय समय पे साफ करता रहा क्योंकि साफ स्वच्छ पानी यदि पशु पिएगा तो स्वस्थ रहेगा। देखियो जावे है कि कई सारा रोग होने को कारण जो रहे वो दूषित जलिज रहे तो अपन पशु उनके दूषित जल से बचावा। यदि ज्यादा पानी की झड़ी पड़े तो ऐसा में पशुशाला में सावधानी पूर्वक थोड़ी सी आग जलाई दा जिससे कि पशु उनके गर्मी भी लगेगी और जो आसपास की जगह है वह भी थोड़ी गर्मी गर्म हुई के नमी से मुक्त हो जाएगी। तो बरसात का मौसम में यदि अपना पशुपालक भयोन छोटी मोटी बात उनको ध्यान रखेगा तो निश्चित तौर पे पूरी बरसात का मौसम में अपनो जो पशुधन है वो स्वस्थ रहेगो और अच्छा चारा अच्छा भोजन और अच्छा पानी का जब इस्तेमाल होवेगो तो पशु अच्छी मात्रा में दूध उत्पादन भी करेगो। तो अच्छा दूध उत्पादन के लिए अच्छा भोजन और अच्छा आवास की व्यवस्था अपना पशु के लिए बहुत जरूरी है। तो भाई बहनों आज अपन इतनी ज बात करांगा। दोविदा राम राम।
1: ये थी खेती की बातें। आज आपने जाना बरसात में पशुओं की देखभाल कैसे करें। वाचन मनीषा शर्मा का था। आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस गान का आज का प्रसंग।

कपटी मुनि एक तनु ने राजा प्रताप भानु को ब्राह्मणों को प्रसन्न करने का ये उपाय बताया कि वो एक वर्ष तक नित्य प्रति 100,000 ब्राह्मणों को उनके कुटुंब सहित भोजन कराए। उसी समय वहां कालकेतु नामक राक्षस आया। वो तपस्वी राजा अर्थात कपटी मुनि का गहरा मित्र था और खूब छल प्रपंच जानता था। उसके 100 पुत्र तथा 10 भाई थे जो अजेय तथा देवताओं को दुख देने वाले थे। ब्राह्मणों, संतों तथा देवताओं को निर्भय करने के लिए राजा प्रताप भानु ने उन सब की हत्या कर दी थी और इसी कारण बदला लेने के लिए कालकेतु ने कपटी मुनि से मित्रता करके प्रताप भानु का सर्वनाश करने का कुचक्र रचा।

0: ये था श्री रामचरितमानस गान का आज का प्रसंग। आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बढ़ा सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
0: आइए श्रोताओं, अब हम आपको आज प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों का विवरण दे दें। सुबह 7:20 पर कार्यक्रम होगा इंदौर परिक्रमा, प्रस्तुति मुकाम सिंह चौहान की होगी। श्रोताओं, सदाबहार फिल्मी गीतों का आनंद लीजिएगा सुनहरे पल कार्यक्रम में सुबह 7:35 पर। सुबह 8:30 पर हम आपके लिए लेकर आएंगे कवि गोष्ठी। प्रतिभागी कवि होंगे विजय जोशी, राधेश्याम पांचाल, आरती गोस्वामी और दिलीप मांडलिक।

0: गया राग अहिल्या बिलवाल सुनिएगा सुबह 9:30 पर। जिले की चिट्ठी आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से प्रसारित होगी सुबह 10:00। सजीव फोन इन कार्यक्रम एमएच हॉटलाइन का प्रसारण होगा सुबह 10:05 से। अब विवरण हमारे मध्य प्रदेश केंद्र से अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का। फिल्म संगीत का आनंद लीजिएगा दोपहर 12:00। 11:00 का समय होगा फोन इन कार्यक्रम फोन करे गीत सुनेगा। संग्रहालय से यह कार्यक्रम अनुप्रसारित होगा दिन में 12:30 पर। महिला कार्यक्रम का अनुप्रसारण होगा दिन में 1:00। आरंभिक चर्चा होगी विश्व डूबने से बचाव दिवस पर। योजना में जानेंगे प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना पर। साथ ही मी टाइम में जानेंगे मुलाकात के साथ अदा से अलविदा कहना भी जरूरी है और अपने क्षेत्र के जल भराव नाले की शिकायत कहां करें ये जानेंगे। प्रस्तुति होगी संयोगिता जोशी की। लोक संगीत का अनुप्रसारण होगा दिन में 1:30 पर और सुगम संगीत हम अनुप्रसारित करेंगे 1:45 पर। सांध्यकालीन सभा का आरंभ होगा युवा श्रोताओं कार्यक्रम युवाणी से। आज के क्रम में जानेंगे साप्ताहिक विज्ञान और खेल की विधियां। फिल्म संगीत का आनंद लीजिएगा शाम 5:45 पर। एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम होगा संध्या 6:00। किसान श्रोता कार्यक्रम खेती गृहस्थी होगा संध्या 7:20 पर। आज की बात होगी अटल पेंशन पर। सुर्खियों में यह कार्यक्रम अनुप्रसारित होगा 8:15 पर भोपाल केंद्र से। फिल्म संगीत का आनंद लीजिएगा 8:30 पर। फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम मनभावन होगा रात 9:30 पर और शास्त्रीय संगीत में पंडित राम नारायण का सारंगी पर बजाया राग केदार और धुन हम सुनवाएंगे रात्रि 10:30 पर। यह था विवरण आज प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों का। आकाशवाणी का यह इंदौर केंद्र है। थोड़ी ही देर में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित होंगे।
1: इयम आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अवदत् यत् प्रश्नपत्रस्य अनधिकृत प्रकाशन प्रकरणस्य अनन्तरं गत अर्धत्रिमासे अनेके महत्वपूर्णाः उपायाः कृताः। दोषिणः गृहीत्वा कारागारे स्थापिताः सन्ति। गतरात्रौ प्रसारिते एकस्मिन् दृश्य श्रव्य सन्देशे श्रीमोदी अवदत् यत् प्रशासनस्य प्रथमं उत्तरदायित्वं विद्यार्थिनां शैक्षणिक वर्षस्य संरक्षणम् आसीत्। अत एव परीक्षाणाम् अविलम्बेन आयोजनम् अत्यावश्यकम् आसीत्। असौ एतदपि उक्तवान् यत् प्रश्नपत्रस्य अनधिकृत प्रकाशनम् न लघु विषयः अपि तु एतेन लक्षशः विद्यार्थिना तेषाम् अभिभावकाश्च अत्यन्तं पीडिताः अभवन्। रोमानिया देशस्य आधिकारिक यात्रारता राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मुः अद्य बुखारेस्ट नगरस्य विक्टोरिया पैलेस इत्यत्र रोमानिया देशस्य प्रधानमन्त्रिणा इली बोलोजान इत्यनेन सह वार्तालापं करिष्यति। सा रोमानिया देशस्य राष्ट्रपतिना निकुसोर दारी इत्यनेन सह भारत रोमानिया बिजनेस फोरम सम्मेलनम् अपि सम्बोधयिष्यति। तदनन्तरं राष्ट्रपतिः मुर्मुः रोमानिया देशस्य संसदि गमिष्यति यत्र सा सिनेट इत्यस्य अध्यक्षा मर्सिया अब्रुडीन तथा चेम्बर ऑफ डेप्यूटीज इत्यस्य अध्यक्षा सोरिन ग्रिंडेनु इत्यनया च सह वार्तालापं करिष्यति। दिल्ली उच्च न्यायालयेन सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 इत्यस्य अन्तर्गतम् प्रकरणानां श्रवणार्थं तक्षण प्रभावेण नूतनः फास्ट ट्रैक इति शीघ्र न्यायालयः स्थापितः। उच्च न्यायालयस्य अधिसूचनानुसारं राउज एवेन्यू न्यायालये न्यायाधिकारिणः अनु ग्रोवर बलीगा इत्यस्याः न्यायपीठं विशेषरूपेण नाम निर्दिष्टः शीघ्र न्यायालयः भविष्यति। अत्र सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम संबद्ध प्रकरणानां तथा तैः

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पेपर लीक की घटना के बाद पिछले ढाई महीने में कई कदम उठाए गए हैं। दोषियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। कल रात एक वीडियो संदेश में श्री मोदी ने कहा कि सरकार की मुख्य जिम्मेदारी ये सुनिश्चित करना था कि विद्यार्थियों का शैक्षणिक वर्ष व्यर्थ न जाए और तत्काल परीक्षाएं आयोजित करना आवश्यक था। उन्होंने कहा कि पेपर लीक एक छोटा मुद्दा नहीं है और ये लाखों विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों के लिए अत्यंत पीड़ादायक है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने संबंधित विभागों से फास्ट ट्रैक अदालतों के लिए प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए हैं।
1: फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे। विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का यह मुसद्दा कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा।
0: वहीं दिल्ली उच्च न्यायालय ने सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 के अंतर्गत मामलों की सुनवाई के लिए तत्काल प्रभाव से एक फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया है। सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने कल रात गुरुग्राम के एक निजी अस्पताल में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह की उपस्थिति में 26 दिनों से जारी अपना अनशन समाप्त कर दिया। वांगचुक की पत्नी गीतांजलि आंगमो और लेह लद्दाख के शीर्ष निकाय के वरिष्ठ नेता भी अस्पताल में मौजूद थे। इससे पहले विभिन्न राजनीतिक दलों के 65 सांसद भी वहां पहुंचे थे और पत्र लिखकर अनशन समाप्त करने का आग्रह किया था। श्री वांगचुक 28 जून से शिक्षा व्यवस्था में सुधार और पेपर लीक मामले में जवाबदेही तय करने की मांग को लेकर अनशन कर रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सामाजिक कार्यकर्ता श्री वांगचुक से अपील की है कि वे डॉक्टरों की सलाह के अनुसार अपनी दिनचर्या का पालन करें और जल्द से जल्द अपने सामान्य वजन को वापस प्राप्त करें। एक सोशल मीडिया संदेश में प्रधानमंत्री ने ईश्वर से श्री वांगचुक के स्वस्थ बने रहने की प्रार्थना की। दिल्ली मेट्रो रेल निगम डीएमआरसी ने सुरक्षा कारणों से आज सुबह 7:30 बजे से अगले आदेश तक 17 मेट्रो स्टेशनों को बंद रखने की घोषणा की है। इन स्टेशनों में लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, पटेल चौक, रामकृष्ण आश्रम मार्ग, बाराखंबा रोड, सुप्रीम कोर्ट, सेवा तीर्थ, जनपथ, झंडेवालान, मंडी हाउस, केंद्रीय सचिवालय, आईटीओ, दिल्ली गेट, इंद्रप्रस्थ, खान मार्केट, जोरबाग और शिवाजी स्टेडियम शामिल हैं। हालांकि राजीव चौक, मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय स्टेशनों पर इंटरचेंज की सुविधा जारी रहेगी। भारत और रोमानिया ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी, शिक्षा तथा खेलों के क्षेत्र में सहयोग के लिए 3 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। इन समझौतों पर कल बुखारेस्ट में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और रोमानिया के राष्ट्रपति निकोसोर डान के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद हस्ताक्षर किए गए। अपनी प्रेस विज्ञप्ति में राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत और रोमानिया 7 दशकों से अधिक समय से घनिष्ठ और स्थायी मित्रता साझा करते आ रहे हैं, जो आपसी विश्वास, सम्मान और मजबूत जनसंबंधों पर आधारित है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज बुखारेस्ट के विक्टोरिया पैलेस में रोमानिया के प्रधानमंत्री इली बोलोजान के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। वे रोमानिया के राष्ट्रपति के साथ भारत रोमानिया व्यापार मंच को भी संबोधित करेंगी। केंद्र सरकार ने विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में सचिवों की नियुक्ति की है। वर्तमान में शिक्षा मंत्रालय में उच्च शिक्षा सचिव विनीत जोशी को पंचायती राज मंत्रालय का सचिव नियुक्त किया गया है। नरेश पाल गंगवार नए उच्च शिक्षा सचिव होंगे। टी के अनिल कुमार स्कूली शिक्षा और साक्षरता सचिव बनाए गए हैं। भारत ने विश्व व्यापार संगठन WTO में खुले, समावेशी, पारदर्शी और नियम आधारित बहुपक्षीय व्यापार व्यवस्था के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। जिनेवा में भारत की 8वीं व्यापार नीति समीक्षा के अंतिम सत्र में वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने कहा कि WTO में सुधार विकासशील देशों के हितों को ध्यान में रखते हुए किए जाने चाहिए। स्कॉटलैंड के ग्लासगो में 23वें राष्ट्रमंडल खेलों का रंगारंग शुभारंभ हो गया है। उद्घाटन समारोह में भारतीय दल का नेतृत्व मीराबाई चानू और लवलीना बोरगोहेन ने किया। भारत ने कल शाम हरारे में 3 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में जिम्बाब्वे को 7 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: कितनी सुहानी है आज की ये सुबह।
1: सच कहा। इसे और सुहाना बना रही है मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर।
0: तो सुनते रहिए आकाशवाणी इंदौर।
2: श्रोताओ, आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। एक सूचना सुनिए। साइबर क्राइम के बढ़ते खतरे और जन जागरूकता के लिए विविध भारती इंदौर FM 101.6 MHz आपके लिए लेकर आ रहा है आज सुबह 11:32 से 12 बजे तक सजीव फोन-इन कार्यक्रम साइबर क्राइम रहें सावधान। श्रोता साइबर अपराधों से जुड़ी अपनी जिज्ञासाओं का समाधान सीधे प्राप्त कर सकेंगे। हमारा फोन नंबर है 2710223 और 2710224। फोन नंबर एक बार पुनः सुन लीजिए 2710223 और 2710224। इंदौर का STD कोड है 0731। प्रश्न पूछने के लिए दिन और समय नोट करें। आज शुक्रवार दिनांक 24 जुलाई 2026, समय सुबह 11:32 से 12 बजे तक विविध भारती चैनल पर। आप भी फोन करके साइबर क्राइम रोकने हेतु विशेष सावधानियां विशेषज्ञ नरेंद्र सिंह रघुवंशी स्टेट साइबर सेल इंदौर से जान सकते हैं। आप हमारे इस कार्यक्रम को विविध भारती 101.6 MHz पर सुन सकते हैं। साथ ही मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी यह कार्यक्रम सुना जा सकता है। सूचना समाप्त हुई है।

0: सवेरा बनारस का,
1: शाम अवध की,
0: वादियां हिमालय की,
1: क्या बात है।
0: और इन सब के साथ शान हो मालवा की,
1: तो यहाँ की सुबह और रातें किसी से कम नहीं।
0: तो सुनते रहिए मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।
2: युवाओं के जोश, उमंग और ज्ञान से भरे कार्यक्रम युववाणी का प्रसारण होता है प्रतिदिन शाम 5 बजे,
3: जिसमें होती है नित नई जानकारियाँ, मनोरंजन और ज्ञान की बातें।
2: तो सुनते रहिए मालवा की शान,
4: आकाशवाणी इंदौर।
3: आकाशवाणी इंदौर अब मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध है।
5: NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।
6: अरे आप लोगों को मालूम पड़ा कि नहीं?
7: क्या?
6: अब आकाशवाणी इंदौर पूरी दुनिया में सुना जा सकता है।
7: वो कैसे?
6: वो ऐसे कि अब आकाशवाणी इंदौर न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है।
7: पर सुनेंगे कैसे?
6: इसके लिए अपने मोबाइल फोन पर जाकर डाउनलोड कीजिए न्यूज ऑन AIR ऐप और लाइव रेडियो पर जाकर सुनिए आकाशवाणी इंदौर के कार्यक्रम।
8: तो सुनते रहिए मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।
9: मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से प्रसारित होंगे।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। नीट पेपर लीक मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन के मसौदे पर आज कैबिनेट में होगी चर्चा। प्रधानमंत्री ने जारी किया वीडियो संदेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात का 136वां एपिसोड 26 जुलाई को प्रसारित होगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज पन्ना में 204 करोड़ 26 लाख रुपए लागत के 22 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन करेंगे और प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बारिश का दौर जारी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पेपर लीक की घटना के बाद पिछले ढाई महीने से कई कदम उठाए गए हैं। दोषियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। कल रात एक वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने संबंधित विभागों से फास्ट ट्रैक अदालतों के लिए प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए हैं। इस मसौदे पर आज मंत्रिमंडल में बैठक कर चर्चा की जाएगी।
1: मैं जानता हूं कि पेपर लीक एक कोई मामूली विषय नहीं है। लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है और इसलिए पेपर लीक घटना से अब तक पिछले ढाई महीनों में अनेक विविध कदम उठाए गए। गुनहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में पड़े हैं। हमारा सबसे महत्वपूर्ण जिम्मा था कि विद्यार्थियों का एक वर्ष बर्बाद ना हो। सरकार ने अभी कम से कम समय में 22 लाख जितने विद्यार्थियों के एग्जाम हो जाए इसका प्रबंध किया।
0: वहीं सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने कल रात गुरुग्राम के एक निजी अस्पताल में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह की उपस्थिति में 26 दिनों की भूख हड़ताल समाप्त कर दी। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने ईश्वर से सोनम वांगचुक के स्वस्थ बने रहने की प्रार्थना करते हुए अपील की है कि वे डॉक्टरों की सलाह के अनुसार अपनी दिनचर्या का पालन करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात का 136वां एपिसोड 26 जुलाई को प्रसारित होगा। यह कार्यक्रम हमेशा की तरह सुबह 11 बजे आकाशवाणी, दूरदर्शन और अन्य डिजिटल नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री आमतौर पर राष्ट्र निर्माण, युवा शक्ति, नवाचार, खेल और पर्यावरण जैसे विषयों पर बात करते हैं। विदेश के कोने कोने में समाज सेवा कर रहे गुमनाम नायकों के प्रेरणादायक विचारों को भी देश के सामने रखते हैं। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव आज पन्ना में 204 करोड़ 26 लाख रुपए की लागत के 22 विकास कार्यों की सौगात देंगे। इसमें 94 करोड़ 63 लाख रुपए के 6 विकास कार्यों का लोकार्पण तथा 109 करोड़ 63 लाख रुपए के 16 विकास कार्यों का भूमि पूजन शामिल है। मुख्यमंत्री शासकीय सांदीपनि उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गुनौर एवं पवई तथा शासकीय महाविद्यालय पवई के नवीन भवन का लोकार्पण करेंगे। इसके अतिरिक्त ब्रजपुर एवं सुहावा बैराज योजना सहित बृहस्पति कुंड के सौंदर्यीकरण एवं ग्लास फ्लोर तथा व्यू प्वाइंट सहित अन्य विकास कार्यों का लोकार्पण करेंगे। समान नागरिक संहिता को लेकर समाज के विभिन्न धर्म और वर्गों में व्यापक समर्थन देखने को मिल रहा है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के इंदौर आगमन पर विभिन्न धर्मों के प्रतिनिधियों तथा अनेक सामाजिक संगठनों के पदाधिकारी व सदस्य कल एयरपोर्ट पहुंचे। उन्होंने समान नागरिक संहिता का समर्थन करते हुए मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव का स्वागत किया तथा इस महत्वपूर्ण निर्णय के लिए उनका आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉ यादव ने कहा कि समान नागरिक संहिता का उद्देश्य सभी नागरिकों को समान अधिकार और समान न्याय उपलब्ध कराना है। ये व्यवस्था संविधान की मूल भावना के अनुरूप सामाजिक समरसता, समानता और न्याय को सुदृढ़ करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: शिक्षा मंत्रालय में उच्च शिक्षा विभाग के वर्तमान सचिव विनीत जोशी को पंचायती राज मंत्रालय का सचिव नियुक्त किया गया है। वहीं नरेश पाल गंगवार अब नए उच्च शिक्षा सचिव होंगे। टीके अनिल कुमार को स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग का सचिव बनाया गया है। इन सभी नियुक्तियों को केंद्रीय कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने मंजूरी दी है। स्वतंत्रता दिवस समारोह 2026 के अवसर पर 15 अगस्त को लाल परेड मैदान भोपाल में आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय समारोह की तैयारियां प्रारंभ हो गई हैं। समारोह के सफल गरिमामय एवं सुव्यवस्थित आयोजन के लिए सभी संबंधित विभागों को आवश्यक निर्देश जारी कर दिए गए हैं तथा विभिन्न विभागों के मध्य समन्वय स्थापित करते हुए निर्धारित समय सीमा में सभी तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। 24 जुलाई से लाल परेड मैदान भोपाल में परेड का नियमित पूर्वाभ्यास प्रतिदिन निर्धारित समय पर प्रारंभ होगा। समारोह की अंतिम तैयारियों के अंतर्गत 13 अगस्त को फुल ड्रेस रिहर्सल आयोजित की जाएगी। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए NCTE पाठ्यक्रमों में प्रवेश से वंचित विद्यार्थियों को एक अंतिम अवसर प्रदान किया गया है। इच्छुक अभ्यर्थी आज से 27 जुलाई तक ऑनलाइन पंजीयन कर सकेंगे। 31 जुलाई से 3 अगस्त तक शुल्क जमा कर प्रवेश सुनिश्चित किया जा सकेगा। स्नातक एवं स्नातकोत्तर सहित अन्य पाठ्यक्रमों में प्रवेश की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। अब तक एनसीडीई पाठ्यक्रमों में 46,652, स्नातक कक्षाओं में 3,33,221 तथा स्नातकोत्तर कक्षाओं में 1,02,610 विद्यार्थियों सहित कुल 4,82,483 विद्यार्थियों ने प्रवेश प्राप्त कर लिया है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने स्वच्छ शौचालय चित्र चुनौती को 30 जून 2027 तक बढ़ा दिया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कहा कि इसका उद्देश्य स्वच्छ शौचालय चित्र योजना में जनता की निरंतर भागीदारी और प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करना है। साथ ही इससे जुड़े फास्टैग रिचार्ज पुरस्कार का समय पर भुगतान सुनिश्चित करना है। मंत्रालय ने बताया कि इस पहल को राष्ट्रीय राजमार्ग उपयोगकर्ताओं से उत्साहजनक प्रतिक्रिया मिली है। 2026 में अब तक अस्वच्छ शौचालयों की सूचना देने वाले 429 यात्रियों को ₹1,000 के फास्टैग रिचार्ज से पुरस्कृत किया गया है। प्रदेश के खेल एवं युवा कल्याण मंत्री विश्वास सारंग ने कल नाथू बरखेड़ा स्थित निर्माणाधीन अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निरीक्षण किया। उन्होंने निर्माण कार्यों और महिला एशियन चैंपियनशिप की तैयारियों का जायजा लिया। मंत्री ने कहा कि कॉम्प्लेक्स के फेज 1 का लोकार्पण जल्द ही किया जाएगा। इसके बाद यहां एथलेटिक्स, हॉकी और फुटबॉल की गतिविधियां शुरू होंगी। भारत ने 350 किलोग्राम के थ्रस्ट श्रेणी का अपना पहला स्वदेशी डिस्पोजेबल टर्बोजेट इंजन विकसित किया है, जिससे रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के गैस टर्बाइन अनुसंधान प्रतिष्ठान जीटीआरई ने विकसित किया है। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि डीआरडीओ के डिजाइन पर आधारित इस जटिल प्रणाली की डिलीवरी भारतीय रक्षा उद्योग की बढ़ती तकनीकी क्षमताओं को दर्शाती है। ये वर्षों की सटीक इंजीनियरिंग, उन्नत विनिर्माण और भारत के वैज्ञानिक और औद्योगिक समुदायों के बीच घनिष्ठ साझेदारी की परिणति भी है। इस इंजन को बुधवार को आजाद इंजीनियरिंग द्वारा सफलतापूर्वक विकसित किया गया और जीटीआरई को सौंपा गया। अब बात करते हैं मौसम की। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में 3 मजबूत मौसमी सिस्टम एक्टिव है, जिससे लगातार तीसरे दिन भी बारिश हो रही है। पिछले 24 घंटों में 40 से ज्यादा जिलों में बारिश दर्ज की गई है। इस बारे में मौसम वैज्ञानिक अरुण शर्मा ने जानकारी दी।
3: लगभग पिछले 72 घंटों से वेस्ट और ईस्ट मध्य प्रदेश के भागों में व्यापक वर्षा का दौर जो है वो देखा जा रहा है। और इसका मेन कारण यही है, एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन हमारे सेंट्रल पार्ट्स के ऊपर मध्य प्रदेश के जो है वो बना हुआ था। सबसे अधिक रेनफॉल 153.4 mm जो है वो सीहोर जिले के अंदर दर्ज की गई। आने वाले 3 दिनों के अंदर भारी वर्षा का दौर ईस्ट और वेस्ट मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों के अंदर जो है वो जारी रहेगा।
0: अब रुक करते हैं क्रिकेट की खबर का। पुरुष क्रिकेट में भारत ने कल शाम हरारे में 3 मैचों की टी20 अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला के पहले मैच में जिम्बाब्वे को 7 विकेट से हरा दिया। वैभव सूर्यवंशी की 19 गेंदों पर खेली गई शानदार 50 रनों की पारी की बदौलत भारत ने महज 13.2 ओवरों में 126 रनों का लक्ष्य आसानी से हासिल कर लिया। इससे पहले बल्लेबाजी करते हुए जिम्बाब्वे ने निर्धारित 20 ओवरों में 7 विकेट के नुकसान पर 125 रन बनाए थे। श्रृंखला का दूसरा मैच कल इसी मैदान पर खेला जाएगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल ने ओरल कैंसर की शुरुआती पहचान के लिए एआई पर आधारित एक नई तकनीक विकसित की है, जिसे भारत सरकार से पेटेंट मिला है। खंडवा जिले में 2 से 4 अगस्त तक आयोजित होने वाले गौरव दिवस समारोह के सभी कार्यक्रमों में सिंगल यूज प्लास्टिक और थर्माकोल के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। मंदसौर जिले में मिशन वात्सल्य के अंतर्गत आयोजित समीक्षा बैठक में जरूरतमंद व कुपोषित बच्चों के उपचार व आंगनबाड़ी केंद्रों के सुचारू संचालन तथा पोषण आहार वितरण के निर्देश दिए गए। आगरमालवा के पीएम श्री विद्यालय में नालसा की मैत्रीपूर्ण विधिक सेवा योजना के तहत विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। नर्मदापुरम जिले के एमपी एग्रो फार्म में मखाना हार्वेस्टिंग पर जिला स्तरीय सेमिनार एवं प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। इंदौर जिले में प्रशासन द्वारा सुपोषण संकल्प अभियान के तहत कलेक्टर शिवम वर्मा ने गंभीर कुपोषित बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार के लिए 1000 न्यूट्रिशन किट का वितरण किया। नीमच में जिला पंचायत सीईओ अमन वैष्णव की अध्यक्षता में जिले के ऐतिहासिक धार्मिक और सांस्कृतिक स्थलों के संरक्षण तथा पर्यटन विकास को गति देने पर विचार विमर्श किया गया। और गुना में पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण वर्ग द्वारा संचालित बालक एवं बालिका पोस्ट मैट्रिक छात्रावासों में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए प्रवेश पात्र विद्यार्थियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए 2:10 पर। नमस्कार।

0: मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम इंदौर परिक्रमा, प्रस्तुति मुकाम सिंह चौहान की है।
1: इंदौर परिक्रमा इंदौर परिक्रमा इंदौर परिक्रमा।
2: नमस्कार श्रोताओं, इंदौर परिक्रमा कार्यक्रम के साथ आपका मित्र मुकाम सिंह चौहान। श्रोताओं, आज का हमारा ये कार्यक्रम केंद्रित है इंदौर में चलाए जा रहे नशे से दूरी है जरूरी 2.0 अभियान पर केंद्रित। इंदौर पुलिस कमिश्नरेट द्वारा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की पहल पर और पुलिस कमिश्नर संतोष कुमार सिंह के मार्गदर्शन में नशे से दूरी है जरूरी 2.0 15 जुलाई से 30 जुलाई तक राज्यव्यापी जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य इंदौर को नशा मुक्त बनाना और युवाओं व विद्यार्थियों को नशे के दुष्प्रभावों से बचाना है। स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थानों के छात्रों को नशे के शारीरिक, मानसिक व सामाजिक नुकसान के प्रति सचेत करना है। समाज के हर वर्ग, नागरिकों, सामाजिक संगठनों, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को इस मुहिम से जोड़ना। इसके साथ ही अवैध नशे के कारोबार पर सख्त पुलिस कार्रवाई के साथ

0: साथ जागरूकता फैलाना है। ये पूरा अभियान इंदौर कमिश्नरेट और इंदौर पुलिस कमिश्नर संतोष कुमार सिंह के नेतृत्व में चल रहा है।
1: मध्य प्रदेश में नशे से दूरी है जरूरी 2.0 अभियान का शुभारंभ 14 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा भोपाल में किया गया और इसी तारतम्य में पूरे इंदौर शहर में इंदौर कमिश्नरेट द्वारा इस जागरूकता अभियान को चलाया जा रहा है। इसमें किस तरह से ड्रग्स, नारकोटिक्स और इस तरह के जो सब्सटेंस हैं उसका नेगेटिव प्रभाव ना केवल जो प्रयोग करते हैं उनके ऊपर होता है बल्कि उनके परिवार, उनके समाज में भी इसका विपरीत प्रभाव पड़ता है। कई बार दोस्तों के कहने पर, कई बार किसी पीयर प्रेशर के उसमें, कई बार जो है गलत संगति के कारण, कई बार कुछ नया ट्राई करने के कारण हमारे खासतौर से युवा वर्ग के लोग इसके प्रभाव में आ जाते हैं और फिर वो स्वयं के लिए बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं और बहुत ही नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इस तारतम्य में इंदौर पुलिस द्वारा अभियान चलाया जा रहा है और हमारा सभी से अनुरोध है कि कृपया इस तरह की किसी गलत आदत में ना पड़े। इसका एंड जो है वो नेगेटिव और नकारात्मक ही होगा। एक सकारात्मक तरीके से जीवन की चुनौतियों का सामना करते हुए आगे बढ़िए और अपने परिवार, अपने समाज, अपने देश के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ दीजिए। और अगर आपको इस तरह के उसमें कहीं किसी हेल्प की ज़रूरत है तो हम लोगों ने जो हेल्पलाइन नंबर जारी किया है कृपया उस पर संपर्क कीजिए, हम आपकी पूरी मदद करेंगे।
0: इस अभियान के प्रमुख आकर्षण और गतिविधियों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। इस अभियान के तहत नेहरू स्टेडियम में 8,534 प्रतिभागियों ने नशे के खिलाफ एकजुट होकर मानव श्रृंखला बनाई जिसने वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नया विश्व रिकॉर्ड दर्ज किया।
2: और मैं आपको जा रहे हैं और आज 20th को लार्जेस्ट ह्यूमन सभी लोगों के द्वारा जो पिछली बार 71 बार पानी में जाइए
0: पुलिस कमिश्नर ने डिजिटल माध्यमों और इन्फ्लुएंसर्स के जरिए युवाओं तक सही संदेश पहुंचाने के लिए विशेष सेमिनार और जागरूकता रथ रवाना किए।
1: आज जो पूरे प्रदेश में नशे से दूरी है जरूरी 2.0 से नो टू ड्रग्स एंड नारकोटिक्स, इस अभियान के तहत आज दूसरे दिन यहां पे हम लोगों ने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, कंटेंट क्रिएटर्स और ऐसे लोग जो सोशल मीडिया पे किसी भी तरह का कंटेंट क्रिएट करके या किसी भी तरह के मैसेज स्प्रेड करते हैं उन लोगों को यहाँ बुलाया था, उनसे बातचीत हुई है और सबके बीच ये मैसेज दिया गया है कि वो ये जो हमारा मैसेज है पूरे ये ड्रग्स नारकोटिक्स के नेगेटिव प्रभाव के, इसके नकारात्मक प्रभाव का मैसेज समाज के प्रत्येक वर्ग के रूप में एक्सटेंसिवली और सभी वर्गों तक लेके जाएं और इसके बारे में उनको अवगत कराएं और कैसे ये जो नारकोटिक्स और ड्रग्स का नशा है कैसे उनके पूरे जीवन में नकारात्मक प्रभाव लाता है उसके बारे में अवगत कराएं और साथ ही साथ उनको ये भी अवगत कराएं कि किसी भी व्यक्ति के कहने में आकर, किसी भी संगति के प्रभाव में आकर, कभी लाइफ की चुनौतियों का सामना करते हुए, उसके चैलेंजेस के सामने आने पर अपने आप को कभी इस दिशा में ना ले जाते हुए उन चुनौतियों का सामना करें और अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए, अपने प्रदेश के लिए अपना बेहतर और सर्वश्रेष्ठ योगदान दें। यही जो बातें हम लोगों ने की, इसी बातों के संबंध में उनको शपथ भी दिलाई गई है और इन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और कंटेंट क्रिएटर्स से ये रिक्वेस्ट किया गया है कि आने वाले समय में इसी मैसेज के संबंध में वो अपने सोशल मीडिया, अपने जो कंटेंट क्रिएट करते हैं उसको पोस्ट करें, इंदौर पुलिस के साथ इसमें कोऑर्डिनेट और कोलैब करें और इस तरह का मैसेज हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसमें पहुँचाएँ। अभी ये बात आई है और अगर कोई भी किसी अवैधानिक या आपराधिक गतिविधि का प्रचार प्रसार सोशल मीडिया पर करेगा, ये इसके संबंध में प्रोहिबिटरी ऑर्डर पहले से ही है, ऐसे में उन व्यक्तियों के विरुद्ध जो है प्रभावी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। आज हमने इन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और कंटेंट क्रिएटर से भी रिक्वेस्ट किया कि ऐसी कोई भी जानकारी आपके समक्ष आती है तो आप इसको गोपनीय तरीके से पुलिस तक पहुंचाइए, उन पर कार्रवाई भी की जाएगी और मैं उसे अनुरोध भी करना चाहूँगा कि कहीं जाने अनजाने में इस तरह के वो कोई कृत्य ना करें, किसी अपराध को ग्लोरीफाई करते हुए, किसी तरह के आपराधिक कृत्य को ग्लोरीफाई करते हुए अपने सोशल मीडिया अकाउंट और पोस्ट में नहीं डालें, क्योंकि सोशल मीडिया सेल जो इंदौर कमिश्नरेट की है वो लगातार इस तरह उसको मॉनिटर करती रहती है।
0: विभिन्न शैक्षणिक संस्थाओं में

0: विद्यार्थियों ने सामूहिक रूप से हस्ताक्षर अभियान और नशा मुक्त समाज के निर्माण की शपथ ली। इस अभियान के तहत शहर की विभिन्न बस्तियों, क्षेत्रों, परिसरों में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत छात्रों के लिए पोस्टर, चित्रकला, निबंध लेखन और शॉर्ट रील मूवी मेकिंग प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही है। इसके साथ ही विभिन्न चौराहों से लेकर प्रमुख थाना क्षेत्रों में जनसंवाद, नुक्कड़ नाटक और जागरूकता रैलियां निकाली जा रही है।
1: ये नशे से दूरी है जरूरी 2.0 अभियान का दूसरा भाग, जो कि पहला भाग पिछले वर्ष हम लोगों ने इसी समय में किया था और इसके काफ़ी सकारात्मक परिणाम आए थे। इसके दृष्टिगत रखते हुए ये पूरा अभियान नशे से दूरी है ज़रूरी 2.0 से नो टू ड्रग्स पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है। इसमें मध्य प्रदेश शासन और मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा पूरे मध्य प्रदेश में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है और इसके दृष्टिगत ये अभियान इंदौर शहर में भी चलाया जा रहा है। लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए खासतौर से हमारे युवा वर्ग में, नौकरी पेशा, व्यवसायी वर्ग में इस तरह की जागरूकता के लिए हम लोग ये अभियान चला रहे हैं और इसमें हम स्कूल्स, कॉलेजेस, व्यवसायिक संगठन और बहुत सारे ग्रुपों के बीच हम पहुंचेंगे आने वाले दिनों में, जो 30 तारीख तक। और मूल उद्देश्य यह है कि लोग इसके दुष्प्रभावों के प्रति अवगत हों, इस तरह का कोई सेवन ना करें, अपने घर परिवार समाज में भी इसके दुष्प्रभावों के मैसेज को लेके आएं और एक जीवन की चुनौतियों का सामना करते हुए एक सशक्त समाज परिवार के निर्माण में अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दें और अपने प्रदेश के बेहतर से बेहतर तरीके से आगे बढ़ाने में अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दें और साथ ही साथ अपने देश को आगे बढ़ाने में भी अपना बेहतर योगदान दें।
0: इंदौर के विजयनगर थाना प्रभारी चंद्रकांत पटेल के नेतृत्व में नशे से है दूरी है जरूरी 2.0 जन जागरूकता अभियान के तहत कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। थाना प्रभारी चंद्रकांत पटेल ने विशेष रूप से युवाओं से अपील की है कि वे नशे जैसी सामाजिक बुराई से दूर रहें और अपने आसपास के लोगों को भी इसके प्रति जागरूक करें।
2: जी, मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा
3: 15 जुलाई से 15 दिवसीय एक नशे से दूरी है जरूरी 2.0 अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें मध्य प्रदेश पुलिस, खासकर इंदौर पुलिस कमिश्नरेट से विजयनगर पुलिस बढ़ चढ़ के इसमें आम जन तक ये मैसेज पहुंचाने की कोशिश कर रही है कि जो नशा है ये एक सामाजिक बुराई है और इससे हमें बचना है और दूसरों को बचाना है और अपने समाज को, देश को स्वस्थ और सजग बनाना है।
0: इस अभियान में वे प्रबुद्ध हस्तियां जुड़ रही हैं जो समाज में युवाओं को नशे से दूर रखना चाहती है। प्रियांशु पांडे।
4: नशे से दूरी है जरूरी 2.0 ये जंग इंदौर पुलिस कमिश्नरेट ने नशे के खिलाफ शुरू की है, तो आइए हम सब मिलकर इस जंग में उनका साथ दें, क्योंकि ये जंग सिर्फ पुलिस की नहीं है, ये हमारे बच्चों के भविष्य की जंग है। तो आइए हम सब अपना भविष्य और अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित करें और उससे सुरक्षित रहें।
0: इस मुहिम में इंदौर पुलिस के सभी अधिकारी लगातार कोशिश कर रहे हैं और लोगों को जागरूक कर रहे हैं। आप हैं DCP के राठौड़।
5: जैसा कि आप सबको पता है कि मध्य प्रदेश में 15 जुलाई से 30 जुलाई तक नशे से दूरी है जरूरी अभियान का द्वितीय संस्करण चल रहा है। ड्रग्स समाज, व्यक्ति, परिवार और साथ ही देश के लिए बहुत घातक होता है। ड्रग्स की हैबिट पड़ जाने पर उसको छुड़ाना एक बहुत ही कठिन कार्य होता है, इसलिए बेहतर है कि ड्रग्स की ओर शुरू से ही देखा ना जाए, उसकी ओर जाया ना जाए और साथ ही इसके बारे में दुनिया में आपके जितने भी परिचित हैं, जितने भी लोग हैं, जितने मित्र हैं, उन सबको सचेत किया जाए ताकि उस ओर दृष्टि ही ना जाए। ड्रग्स जो है वो, जैसा कि मैंने बताया, कि व्यक्ति को ही नहीं, समाज को, राष्ट्र को ही खोखला बनाता है, तो इसलिए जो है ये बहुत गंभीर मसला है। हम सबको बहुत गंभीरता से देखने की आवश्यकता है, गंभीरता से इस अभियान में जुड़ने की आवश्यकता है और सबके साथ अपने को इस नारे को बुलंद करना है कि नशे से दूरी है जरूरी। थैंक यू। जैसा कि आप सबको पता है कि मध्य प्रदेश में
0: कई समाज सेवी संस्थाएं इस अभियान से जुड़कर अपना योगदान दे रही है।
6: नशे की तरफ आकर्षित हो रही है, जो कि लॉन्ग टर्म में अपनी स्वास्थ्य के लिए और सोसाइटी के लिए नुकसानदायक है। सो SCG हॉस्पिटल एक कैंसर हॉस्पिटल है और हमारा मुख्य उद्देश्य कैंसर को दूर करना है और उसके लिए जागरूकता ही सबसे जरूरी है। तो हमारा कोशिश मध्य प्रदेश पुलिस और कमिश्नर के साथ मिलके इंदौर की जनता में जागरूकता फैलाना है कि नशे से दूरी बनाए। नशा ड्रग्स से नहीं, सिगरेट से, तंबाकू से, अच्छी बुरी आदतों से अच्छी आदतें अपने अंदर लाएं, ताकि हम अपने शरीर को स्वस्थ रखें और अपनी आने वाली जनरेशन को भी स्वस्थ समाज में स्वस्थ समाज का आईना दिखा सके। सो इस मुहिम में हम टीम ने एक व्हीकल का अरेंजमेंट किया है। हमारी टीम हर नुक्कड़, हर सोसाइटी, हर चौराहे पे जाके एक स्क्रीनिंग करेगी, ओरल स्क्रीनिंग होगी, जहाँ पे अगर कुछ डायग्नोस्टिक हमको सिम्टम्स दिखते हैं तो हम उनके ट्रीटमेंट के लिए और डेफिनेटली उनको ट्रीटमेंट करेंगे। बस कुछ साथ में ही हम समाज को भी करेंगे कि अगर ड्रग से दूरी बनाए रखेंगे तो ये कंडीशन आपकी नहीं होगी। तो ये एक मैसेज हम सारे समाज को, इंदौर को, सोसाइटी को देना चाहते हैं।
0: इस संदर्भ में जानकारी दे रहे हैं अतिरिक्त पुलिस आयुक्त RK सिंह।
7: 16 दिवस का अभियान है जो मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा पूरे राज्य में चलाया जा रहा है और इसी अनुक्रम में इंदौर में भी चलाया जा रहा है। और इस 16 दिवस के कार्यक्रम में बहुत सारे इवेंट्स किए जाने हैं। जो साइबर फ्रॉड्स रहते हैं या फिर नारकोटिक्स के खिलाफ मुहिम रहती है, उसमें दो भाग रहते हैं। एक होता है एनफोर्समेंट एक्शन, आपने देखा होगा पुलिस बीच बीच में ड्रग्स पकड़ती है, उसमें बहुत सारे एक्शन होते हैं। और एक पार्ट होता है अवेयरनेस कैंपेन, कि लोगों को जागरूक करके सामाजिक बुराई पे इससे विजय पान। तो इसी अनुक्रम में ये जागरूकता का अभियान है, क्योंकि एनफोर्समेंट एक्शन तो लगातार पूरे साल चलता है। तो इस जागरूकता के कार्यक्रम में बहुत सारे इवेंट्स किए जाने हैं, जैसे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की भीड़ थी, जिनके अच्छे फॉलोअर्स हैं, उनको एंगेज करके उनके प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से जागरूकता को फैलाना। स्कूल्स कॉलेजेस में हमारे थाने की टीम्स जाएगी, हमारे जोन की पूरे कमिश्नरेट की टीम्स जाएगी। इसके अतिरिक्त बहुत सारी साइक्लोथॉन का आयोजन होना है, मैराथन का आयोजन होना है, मॉल्स हैं हमारे यहाँ पे, तो बीच बीच में वहाँ पे जाना, सडनली वहाँ पे कार्यक्रम करना। तो और हमारे यहाँ बहुत सारे आप देखते होंगे टेली मार्केटिंग के लोग भी हैं, उनको एंगेज करना, वहाँ पे जाना। तो पूरे 16 दिवस तक अलग अलग दिनों पे अलग अलग इवेंट्स प्लान किए गए और उसमें बस आशय यही है कि जितना हम एनफोर्समेंट करते हैं उतना ही महत्वपूर्ण एजुकेशन पार्ट भी है, कि लोगों में स्वयं में इस चीज़ को लेकर एक अवेयरनेस आए कि ड्रग्स जो है, खासतौर पर नारकोटिक ड्रग्स, वो कितनी खतरनाक है और उससे बचाव के लिए अपने समाज को, अपने परिवार को बचाने के लिए हम जो भी अपना भूमिका निभा सकते हैं, सब लोग सहभागी।
0: DCP क्राइम ब्रांच राजेश कुमार त्रिपाठी द्वारा गाए गए गीत भैया नशे से है दूरी है जरूरी इस अभियान के तहत लोकार्पण भी हुआ। आइए इस गीत को सुनें।

इस अभियान में महती भूमिका अदा कर रहे इंदौर क्राइम ब्रांच के एडिशनल डीसीपी राजेश दंडोतिया अपने अनूठे कम्युनिटी पुलिसिंग मॉडल्स के लिए जाने जाते हैं। साइबर सुरक्षा जागरूकता के साथ साथ उन्होंने नशा उन्मूलन और ड्रग्स के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाया हुआ है और उनके द्वारा बेहद महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक कार्य किए जा रहे हैं। वे नशे की लत से सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले वर्ग यानी युवाओं, कॉलेज छात्रों और स्कूल के बच्चों को जागरूक करने के लिए लगातार इंटरेक्टिव सेशंस आयोजित कर रहे हैं। किताबी ज्ञान देने के बजाय वे वास्तविक जीवन के मामलों और ड्रग्स एडिक्शन से बर्बाद हुए परिवारों की केस स्टडीज साझा कर रहे हैं, युवाओं के बीच नशे से दूर रहने की शपथ दिला रहे हैं। राजेश दंडोतिया का नशा मुक्ति मॉडल केवल भाषणों तक सीमित नहीं है, बल्कि वह तीन स्तरों पर काम कर रहे हैं। जागरूकता, समाज के सबसे संवेदनशील समूहों को नशे के जाल में फंसने से बचाना, कानूनी कार्रवाई, क्राइम ब्रांच के जरिए अवैध ड्रग्स के रैकेट को ध्वस्त करना और सप्लायर्स पर नकेल कसना, और पुनर्वास, जो लोग पहले से नशे की गिरफ्त में हैं, उन्हें मुख्य धारा में वापस लाने के लिए पुनर्वास केंद्रों और सामाजिक कार्यकर्ताओं की मदद से काउंसलिंग मुहैया कराना। इसके साथ ही सामूहिक जिम्मेदारी की भावना से वे काम कर रहे हैं। वे अपने भाषणों में हमेशा इस बात पर जोर देते हैं कि पुलिस अकेले नशा खत्म नहीं कर सकती। उन्होंने इंदौर में एक ऐसा नेटवर्क तैयार किया है जिसमें शिक्षक, माता पिता, डॉक्टर्स, एनजीओ और पेशेवर लोग मिलकर ड्रग फ्री सोसाइटी बनाने में पुलिस के सहभागी बन रहे हैं।

0: तो श्रोताओं, अंत में आकाशवाणी इंदौर भी आपसे यही अपील करता है कि आप सभी नशे से दूर रहें और नशे के खिलाफ आवाज उठाएं और इंदौर पुलिस की मदद करें। इसी के साथ आज का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। आपके मित्र मुकाम सिंह चौहान को अनुमति दीजिए, नमस्कार।
1: इंदौर परिक्रमा। इंदौर परिक्रमा।
2: क्या बात है, क्या बात है, इंदौर की क्या बात है।
1: इंदौर परिक्रमा।
3: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम इंदौर परिक्रमा। आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। प्रस्तुत है सदाबहार फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सुनहरे पल।

कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को नीले जोशी का नमस्कार। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं इस प्यारे से गीत से। जिसे हमने लिया है हैसियत फिल्म से। इंदिवर के शब्द

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: मिस सीमा
3: जी,
2: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए वरना घर आ जाएंगे।
3: क्यों, लेकिन मैं
2: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
3: डिजिटल अरेस्ट?
2: 1,00,000 दो, बच जाओगे।
3: इतने पैसे?
2: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
3: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, आरबीआई इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
4: हेलो मम्मा,
5: आरबीआई कहता है
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।

0: महेंद्र दहलवी की गीत रचना, सपन जगमोहन का संगीत, आशा भोसले को अभी आपने सुना फिल्म पहरेदार में।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें। चलो
3: मध्य प्रदेश की सभी शासकीय आईटीआई में प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। आईटीआई में उपलब्ध हैं रोजगार परक एवं कौशल आधारित विभिन्न ट्रेड्स, जो आपको रोजगार और स्वरोजगार के बेहतर अवसर प्रदान करते हैं। रजिस्ट्रेशन एवं प्रवेश संबंधी सहायता के लिए आज ही अपनी नजदीकी शासकीय आईटीआई में संपर्क कीजिए।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
0: तपस्या फिल्म का गीत सुनिए, किशोर कुमार और आरती मुखर्जी के युगल फिल्म।

श्रोताओ, किशोर कुमार और आरती मुखर्जी के गाए तपस्या फिल्म के इस गीत के साथ ही सुनहरे पल कार्यक्रम समाप्त करने की नीलेश जोशी को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

0: पल।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुनहरे पल आकाशवाणी का। ये इंदौर केंद्र है, मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलो हर्ट्स पर। थोड़ी देर में समाचार प्रभात आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित होंगे।
2: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
3: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
2: और लाइट बिल के
3: अब 0 रुपए कैसे दूं?
2: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
3: पक्का।
4: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
5: हर घर सूर्य घर।
6: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
7: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक की घटनाएं रोकने के लिए नया कानून लाने का वादा किया। आज मंत्रिमंडल की बैठक में कड़े प्रावधान लाए जा सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की घोषणा के बाद दिल्ली उच्च न्यायालय ने पेपर लीक मामलों के लिए विशेष फास्ट ट्रैक कोड बनाया। सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह की उपस्थिति में अनशन समाप्त किया। भारत ने 350 किलोग्राम थ्रस्ट क्षमता वाला अपना पहला एक्सपेंडेबल टर्बोजेट इंजन विकसित किया। भारत और रोमानिया ने विज्ञान और टेक्नोलॉजी, शिक्षा तथा खेल के क्षेत्रों में 3 समझौतों पर हस्ताक्षर किए और 23वें राष्ट्रमंडल खेलों का स्कॉटलैंड के ग्लासगो में रंगारंग उद्घाटन समारोह के साथ शुभारंभ। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पेपर लीक की घटना के बाद पिछले 2.5 महीने में कई कदम उठाए गए हैं। दोषियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। कल रात एक वीडियो संदेश में श्री मोदी ने कहा कि सरकार की मुख्य जिम्मेदारी ये सुनिश्चित करना था कि विद्यार्थियों का शैक्षणिक वर्ष व्यर्थ न जाए।
8: पेपर लीक ये कोई मामूली विषय नहीं है, लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है और इसलिए पेपर लीक घटना से अब तक पिछले 2.5 महीनों में अनेक विविध कदम उठाए गए, गुनहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में पड़े हैं। हमारा सबसे महत्वपूर्ण जिम्मा था कि विद्यार्थियों का एक वर्ष बर्बाद न हो। सरकार ने अभी कम से कम समय में 22 लाख जितने विद्यार्थियों के एग्जाम हो जाए इसका प्रबंध किया।
7: प्रधानमंत्री ने कहा कि संबंधित विभागों को फास्ट ट्रैक अदालतों के लिए प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश दिए गए हैं।
8: फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे, विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कैबिनेट में चर्चा होगी, कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा।
7: वहीं दिल्ली उच्च न्यायालय ने सार्वजनिक परीक्षाओं अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 के अंतर्गत मामलों की सुनवाई के लिए एक त्वरित न्यायालय का गठन किया है। हमारे संवाददाता ने बताया कि इस कदम का उद्देश्य सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित तरीकों से संबंधित मामलों का शीघ्र निपटारा सुनिश्चित करना है।
9: दिल्ली की राउस एवेन्यू अदालत में लोक परीक्षाओं में नकल और पेपर लीक से जुड़े मामलों की जल्दी सुनवाई के लिए एक विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया गया है। दिल्ली उच्च न्यायालय की अधिसूचना के अनुसार यह अदालत लोक परीक्षाएं, अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 और उससे जुड़े अन्य मामलों की सुनवाई करेगी। यह अधिसूचना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा परीक्षा में पेपर लीक के मामलों में शामिल लोगों को शीघ्र और कड़ी सजा सुनिश्चित करने के लिए देशभर में फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित करने की घोषणा के कुछ घंटों बाद जारी की गई। रोहन, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
7: सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने कल रात गुरुग्राम के एक निजी अस्पताल में केंद्रीय मंत्रियों जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह की उपस्थिति में 26 दिनों से जारी अनशन समाप्त कर दिया। एक रिपोर्ट।
0: इस दौरान सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि आंगमो और लेह लद्दाख के शीर्ष निकाय के वरिष्ठ नेता भी अस्पताल में मौजूद थे। इससे पहले विभिन्न राजनीतिक दलों के 65 सांसद भी वहां पहुंचे और पत्र लिखकर अनशन समाप्त करने का आग्रह किया था। श्री वांगचुक ने कहा कि उन्होंने विभिन्न शर्तों पर लंबी बातचीत के बाद अनशन समाप्त किया है। उन्होंने सभी से किसी भी प्रकार की हिंसा न होने देने के लिए सतर्क रहने का आग्रह किया। श्री वांगचुक 28 जून से शिक्षा प्रणाली में सुधार और पेपर लीक मामले में जवाबदेही की मांग को लेकर अनशन पर थे। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मृगनयनी पांडे।
7: प्रधानमंत्री मोदी ने श्री वांगचुक से अपील की है कि वे डॉक्टरों की सलाह के अनुसार अपनी दिनचर्या का पालन करें और जल्द से जल्द अपने सामान्य वजन को वापस प्राप्त करें। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा कारणों से आज सुबह 7:30 बजे से अगले आदेश तक 17 मेट्रो स्टेशनों को बंद करने की घोषणा की है। इन स्टेशनों में लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, पटेल चौक, रामकृष्ण आश्रम मार्ग, बाराखंबा रोड, सुप्रीम कोर्ट, सेवा तीर्थ, जनपथ, झंडेवालान, मंडी हाउस, केंद्रीय सचिवालय, आईटीओ, दिल्ली गेट, इंद्रप्रस्थ, खान मार्केट, जोरबाग और शिवाजी स्टेडियम शामिल हैं। हालांकि राजीव चौक, मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय स्टेशनों पर इंटरचेंज की सुविधा जारी रहेगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
10: भारतीय वायु सेना में अग्निवीर वायु और एयरमैन मेडिकल असिस्टेंट बनने के लिए जल्दी रजिस्टर करें। रजिस्ट्रेशन 26 जुलाई 2026 को बंद हो जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए www.iefrecruitment.edcil.co.in पर जाएं।
11: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत और रोमानिया ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी, शिक्षा और खेलों के क्षेत्र में सहयोग के लिए 3 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। इन समझौतों पर कल बुखारेस्ट में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और रोमानिया के राष्ट्रपति निकुशोर डांड के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद हस्ताक्षर किए गए। एक रिपोर्ट।
2: प्रेस वक्तव्य में राष्ट्रपति ने कहा कि भारत और रोमानिया के बीच 7 दशकों से ज्यादा से गहरा और मजबूत संबंध रहा है, जो आपसी भरोसे, सम्मान और लोगों के बीच मजबूत रिश्तों पर टिकी है। उन्होंने कहा कि भारत और रोमानिया विनिर्माण, फार्मास्यूटिकल, स्वास्थ्य सेवा, नवीकरणीय ऊर्जा, ग्रीन हाइड्रोजन, कृषि उत्पादन, उर्वरक, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। बुखारेस्ट रोमानिया से शुभाश्री महापात्रा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से चाहत सिंह।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज बुखारेस्ट के विक्टोरिया पैलेस में रोमानिया के प्रधानमंत्री इली बोलोजान के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। वे रोमानिया के राष्ट्रपति के साथ भारत रोमानिया व्यापार मंच को भी संबोधित करेंगी। केंद्र सरकार ने विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में सचिवों की नियुक्ति की है। वर्तमान में शिक्षा मंत्रालय में उच्च शिक्षा सचिव विनीत जोशी को पंचायती राज मंत्रालय का सचिव नियुक्त किया गया है। नरेश पाल गंगवार नए उच्च शिक्षा सचिव होंगे। टीके अनिल कुमार स्कूली शिक्षा और साक्षरता सचिव होंगे। भारत ने 350 किलोग्राम के थ्रस्ट श्रेणी का अपना पहला स्वदेशी डिस्पोजेबल टर्बोजेट इंजन विकसित किया है। इसे रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के गैस टर्बाइन अनुसंधान प्रतिष्ठान GTRE ने विकसित किया है। एक रिपोर्ट।
3: रक्षा मंत्रालय ने कहा कि DRDO के डिजाइन पर आधारित इस जटिल प्रणाली की डिलीवरी भारतीय रक्षा उद्योग की बढ़ती तकनीकी क्षमताओं को दर्शाती है। ये वर्षों की सटीक इंजीनियरिंग, उन्नत विनिर्माण और भारत के वैज्ञानिक और औद्योगिक समुदाय के बीच घनिष्ठ साझेदारी का परिणाम है। मंत्रालय ने इस बात पर जोर दिया कि जेट इंजन प्रौद्योगिकी को विश्व के सबसे परिष्कृत इंजीनियरिंग विषयों में से एक माना जाता है। इस इंजन को बुधवार को आजाद इंजीनियरिंग द्वारा सफलतापूर्वक विकसित किया गया और GTRI को सौंपा गया। भानु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: DRDO ने आज ओडिशा तट के निकट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली कुशा मिसाइल का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस उपलब्धि के लिए DRDO और संबंधित पक्षों को बधाई दी है। ओडिशा के पवित्र तटीय शहर पुरी में आज विश्व प्रसिद्ध बहुधा यात्रा का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र, देवी सुभद्रा और भगवान सुदर्शन की श्री गुंडिचा मंदिर से श्री जगन्नाथ मंदिर तक की वापसी यात्रा कराई जाएगी।
4: पुरी के पवित्र शहर गहरी भक्ति और आध्यात्मिक उत्साह से भर गया है। लाखों भक्त भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा की घर वापसी की बाहुड़ा यात्रा को देखने के लिए इकट्ठा हुए हैं। पारंपरिक वाद्य यंत्र की ताल के बीच देवताओं की पहंडी जुलूस से समारोह पूर्वक ले जाया जाएगा और उनके शानदार रथों पर विराजमान किया जाएगा। यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ का रथ मौसीमा मंदिर में रुकेगा, जहां भगवान को ओड़ो पीठा का भोग लगाया जाएगा। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार।
1: और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने आज पूर्वी राजस्थान, गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिन में हिमाचल प्रदेश, कोंकण, गोवा, मध्य प्रदेश, ओडिशा, पंजाब, सौराष्ट्र, कच्छ और उत्तराखंड में भी मूसलाधार वर्षा होने की संभावना है। इस बीच गुजरात में पिछले 48 घंटों से लगातार हो रही वर्षा से जनजीवन अस्त व्यस्त है। 23वें राष्ट्रमंडल खेलों का शुभारंभ स्कॉटलैंड के ग्लासगो में एक भव्य और रंगारंग उद्घाटन समारोह के साथ हुआ। 10 दिवसीय इस आयोजन में 74 देशों की टीमें भाग ले रही हैं। ध्वजवाहक मीराबाई चानू और औपचारिक मशालवाहक लवलीना बोरगोहेन के नेतृत्व में भारतीय दल ने तिरंगे लहराते हुए स्पोर्ट्स एरेना में प्रवेश किया। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
4: धन्यवाद विशाल। पेपर लीक की गंभीर समस्या से निपटने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा आज के अधिकांश अखबारों के मुख पृष्ठ पर है। हिंदुस्तान ने प्रधानमंत्री के शब्दों को दिया है पेपर लीक पर कड़ा कानून बनेगा, आज कैबिनेट की बैठक में रखा जाएगा मसौदा। सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के अनशन समाप्त करने को भी अखबारों ने सुर्खी बनाया है। राजस्थान पत्रिका ने लिखा है वांगचुक ने आधी रात तोड़ा अनशन, केंद्रीय मंत्रियों ने जूस पिलाकर तोड़वाया अनशन। वहीं आंदोलनकारी छात्रों और सरकार के बीच बातचीत पर नवभारत टाइम्स का कहना है वेन्यू पर अटकी सरकार से वार्ता। अमर उजाला की सुर्खी है यूपीएससी की तरह एनटीए परीक्षाएं होंगी फुल प्रूफ, शुरू हुए बड़े बदलाव, गड़बड़ी पर नपेंगे अधिकारी, ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम की भी होगी समीक्षा। परीक्षा सुधार जरूरी शीर्षक से हिंदुस्तान ने संपादकीय में लिखा है प्रश्न पत्र लीक के खिलाफ छात्रों का आंदोलन अपनी जगह है, लेकिन परीक्षा सुधार के लिए जो कदम उठाए गए हैं उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। प्रधानमंत्री मोदी की घोषणा को साकार करने की जिम्मेदारी सरकार के साथ साथ परीक्षा तंत्र से जुड़े लोगों की भी होनी चाहिए। 2 साल के अंतर की शर्त लगाकर नहीं रोक सकते मातृत्व अवकाश, सरकारी कर्मियों के मातृत्व अवकाश पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय की टिप्पणी दैनिक जागरण में है। न्यायालय ने कहा पहले और दूसरे बच्चे के बीच 2 वर्ष का अंतर होने की शर्त लगाकर मातृत्व अवकाश देने से नहीं किया जा सकता इनकार। आतंकवादी कृत्यों को अंजाम देने वालों को नतीजे भुगतने होंगे, विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर का ये बयान जनसत्ता में है। फिलीपींस के मनीला में 33वीं आसियान क्षेत्रीय मंच की बैठक में विदेश मंत्री ने कहा अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्ग सुरक्षित और निर्बाध से खुले रहने चाहिए।
3: धन्यवाद फरहत। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक की घटनाएं रोकने के लिए नया कानून लाने का वादा किया, आज मंत्रिमंडल की बैठक में कड़े प्रावधान लाए जा सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की घोषणा के बाद दिल्ली उच्च न्यायालय ने पेपर लीक मामलों के लिए विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया। सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह की उपस्थिति में अनशन समाप्त किया। भारत ने 350 किलोग्राम थ्रस्ट क्षमता वाला अपना पहला एक्सपेंडेबल टर्बोजेट इंजन विकसित किया। भारत और रोमानिया ने विज्ञान और टेक्नोलॉजी, शिक्षा तथा खेल के क्षेत्रों में 3 समझौतों पर हस्ताक्षर किए और 23वें राष्ट्रमंडल खेलों का स्कॉटलैंड के ग्लासगो में रंगारंग उद्घाटन समारोह के साथ शुभारंभ। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम वीसी प्रमोद। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी प्रॉमिसेज न्यू लॉ टू टैकल पेपर लीक्स। टुडेज कैबिनेट मीटिंग टू कम आउट विद स्ट्रिक्टर मेजर्स टू डील विद द इश्यू। Delhi High Court sets up special fast-track court for paper leak cases after PM Modi's announcement. Activist Sonam Wangchuk ends his hunger strike in presence of Union Ministers JP Nadda and Jitendra Singh. India develops its first expendable turbojet engine of 350 kilograms thrust class. India and Romania sign 3 agreements in the fields of science and technology, education and sports. And 23rd Commonwealth Games begin in Glasgow, Scotland with spectacular and colourful opening ceremony. Prime Minister Narendra Modi has said that he directed the departments to prepare a proposal for fast-track courts to tackle paper leaks, and they worked continuously and submitted the draft to him late last night. In a video message last night, Mr. Modi said, "This draft includes provisions for fast-track courts and stringent punishment will be discussed by the cabinet today." He said after incorporating the suggestions of cabinet colleagues, it will be given its final shape. The Prime Minister said, as the second week of Parliament begins on Monday, the government will make every effort to get this bill passed by the House at the earliest.
6: मैंने फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे. विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया. फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का यह मुसद्दा कैबिनेट में चर्चा होगी. कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से संसद का दूसरा सप्ताह शुरू हो रहा है, तब जल्द से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा.
5: The Prime Minister said that over the past 2.5 months since the paper leak incident, several steps have been taken. The culprits have been arrested and are in jail. Mr. Modi said government's foremost responsibility was to ensure that students did not lose an academic year, and it was essential to conduct the examinations immediately.
6: मैं जानता हूं कि पेपर लीक एक कोई मामूली विषय नहीं है. लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है. और इसलिए पेपर लीक घटना से अब तक पिछले 2.5 महीनों में अनेक विविध कदम उठाए गए. गुनहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में पड़े हैं. हमारा सबसे महत्वपूर्ण जिम्मा था कि विद्यार्थियों का एक वर्ष बर्बाद न हो. सरकार ने अभी कम से कम समय में 22 लाख जितने विद्यार्थियों के एग्जाम हो जाएं, इसका प्रबंध किया.
5: The Delhi High Court has constituted a fast-track court to hear cases under the Public Examinations Prevention of Unfair Means Act 2024. The move is aimed at ensuring speedy disposal of cases related to unfair practices in public examinations. More from our correspondent.
7: The newly designated fast-track court will function at the Ross Avenue Courts under the charge of Judicial Officer Anu Grover Baliga. According to a notification issued by the Delhi High Court, the court will hear cases registered under the Public Examinations Prevention of Unfair Means Act 2024, along with the connected offences. Ms. Baliga, who was serving as the judge in charge of the mediation centre at Tees Hazari Courts, has been transferred to the Ross Avenue Courts to head the specially designated court. The initiative is aimed at ensuring expeditious adjudication of cases involving the use of unfair means in public examinations. The notification was issued hours after Prime Minister Narendra Modi announced the centre's decision to establish fast-track courts to ensure swift and stringent punishment for those involved in examination paper leaks. Rohan for Akashwani News, Delhi.
5: Activist Sonam Wangchuk has ended his hunger strike after 26 days at a private hospital in Gurugram last night in the presence of Union Ministers J.P. Nadda and Jitendra Singh. We have a report.
8: Sonam Wangchuk's wife, Gitanjali Angmo, and senior leaders of apex body of Leh Ladakh were also present at the hospital when he ended his fast. Earlier, 65 members of parliament from different political parties had visited or signed letters urging him to break the fast. Mr. Wangchuk said this was done after long negotiations on various conditions. He urged everyone to stay very vigilant about not allowing violence of any kind anywhere. Mr. Wangchuk went on a hunger strike from 28th of last month demanding reforms in the education system and accountability over paper leaks. Meanwhile, Prime Minister Narendra Modi has urged Mr. Wangchuk to follow his daily routine as advised by the doctors and regain his previous weight as soon as possible. The Prime Minister also prayed to the Almighty that Mr. Wangchuk remains healthy. With Anupam Mishra, Chirag Jha, Akashwani News, Delhi.
5: Delhi Metro Rail Corporation, DMRC, has announced the closure of 17 metro stations with effect from 7:30 a.m. today until further notice due to security reasons in the national capital. These stations include Lok Kalyan Marg, Rajiv Chowk, Patel Chowk, RK Ashram Marg, Barakhamba Road, Mandi House, Central Secretariat, ITO and others. However, the interchange facilities will continue to be available at Rajiv Chowk, Mandi House and Central Secretariat. The Delhi police has informed that 480 Pakistan-based social media handlers involved in coordinated misinformation campaigns have been identified and blocked. Delhi police DCP Sumit Jha said that these social media handles were involved in spreading rumours and false claims to mislead the students and the youth. He urged people to always verify information before trusting and sharing them. The centre has appointed secretaries in different ministries and departments. Vineet Joshi, who is presently Secretary Higher Education and Ministry of Education, has been appointed as Secretary Ministry of Panchayati Raj. Naresh Pal Gangwar will be the new Secretary Higher Education. T.K. Anil Kumar will be Secretary School Education and Literacy. India has developed its first indigenous expendable turbojet engine of 350 kilograms thrust class. It has been developed by DRDO's Gas Turbine Research Establishment. Ministry of Defence said that delivery of such a complex system based on the design of DRDO reflects the growing technological capabilities of the Indian defence industry. This is Akashwani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle @AIRNewsAlerts. And for details of these stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. India and Romania have signed three agreements for cooperation in the fields of science and technology, education and sports. The agreements were signed after delegation-level talks between President Draupadi Murmu and her Romanian counterpart Nicușor Dan in Bucharest yesterday. We have more details on this from our correspondent covering the President's visit.
9: In her press statement, President Murmu said, India and Romania have shared a close and enduring friendship for over 7 decades based on mutual trust, respect and strong people-to-people ties. The President said the partnership is entering a new

0: phase with more ambitious goals, strong cooperation, and a shared vision for the future. She said she and her counterpart had a meaningful and productive discussion, and the progress made in recent years was reviewed. The president said the India-EU Free Trade Agreement will open unprecedented opportunities for the industries and skilled professionals.
1: हम व्यापार और निवेश को बढ़ावा देंगे, सप्लाई चेन को मजबूत बनाने तथा दोनों देशों के उद्योग जगत के बीच घनिष्ठ सहयोग को प्रोत्साहित करने पर सहमति व्यक्त की। हमने अगले 3 वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार को दुगुना करने का भी लक्ष्य निर्धारित किया है। इस वर्ष जनवरी में इंडिया ईयू फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का संपन्न होने से हमारी इंडस्ट्रीज तथा स्किल्ड प्रोफेशनल्स के लिए अभूतपूर्व अवसरों का द्वार खोलेंगे।
0: She said India and Romania have agreed to expand cooperation in areas such as manufacturing, pharmaceuticals, healthcare, renewable energy, green hydrogen, agricultural production, fertilizers, science and technology, digital public infrastructure and artificial intelligence. This is Subhashree Mahapatra from Bucharest, Romania.
2: The sacred city of Puri in Odisha is witnessing the Bahuda Yatra today, marking the ceremonial return journey of Lord Jagannath, Lord Balabhadra and Devi Subhadra from the Gundicha temple to the Sri Jagannath temple. More from our correspondent.
3: The sacred city of Puri has come alive with an atmosphere of profound devotion and spiritual fervor as millions of devotees gather to witness the Bahuda Yatra, the auspicious homeward journey of Lord Jagannath, Lord Balabhadra and Devi Subhadra. The return journey symbolizes the divine reunion of the sibling deities with their eternal abode after their annual sojourn at the Sri Gundicha temple. Amid the resonant chants of devotees and the rhythmic beating of traditional percussions, the deities will ceremonially escorted in the Pahandi procession and seated on their magnificent chariots. During the journey, Lord Jagannath's chariot will halt at the Mausima temple, where the Lord will be offered Pudo Pitha, a traditional baked cake prepared from rice, lentils and jaggery. The Bahuda Yatra embodies Odisha's timeless spiritual legacy and the enduring values of faith, compassion, inclusiveness and universal brotherhood. Prakash Das for Akashvani News.
2: Torrential rains have continuously battered Gujarat over the last 48 hours, affecting multiple districts in the central and southern regions, including Ahmedabad, Surat, Navsari and Valsad. Chief Minister Bhupendra Patel chaired a high-level review meeting in Gandhinagar late last night to assess the flood situation and direct relief operations. More from our correspondent.
4: Heavy rainfall in South Gujarat region has triggered a flood-like situation in Navsari, Valsad and Surat as local rivers and dams including Zui and Kelia are overflowing. Extensive relief and rescue operations are underway across the rain-affected districts with teams of Army, NDRF, SDRF and Fire Brigade deployed on the ground. Over the past 24 hours, thousands of stranded residents have been shifted to safer locations and relief shelters. In view of the student safety, all the schools and colleges will remain closed today in majority of the districts in the state. Meanwhile, rail traffic between Ghulwad and Umargam road station has been suspended as a precautionary measure after water levels touched the danger mark at a railway bridge, which led to the cancellation and diversion of several trains including Vande Bharat and Shatabdi. The state administration has urged citizens to avoid unnecessary travel and rely strictly on official advisories. Aparna Khund, Akashvani News, Ahmedabad.
2: The death toll in Assam due to floods has risen to 47 with 6 more deaths reported yesterday. Over 7.21 lakh people are affected by the floods in 11 districts across the state. Meanwhile, the India Meteorological Department IMD has issued a red colour warning for very heavy to extremely heavy rainfall over East Rajasthan, Gujarat and Madhya Maharashtra today. On to sports. The 23rd Commonwealth Games, CWG, began in Glasgow, Scotland with a spectacular and colourful opening ceremony. teams from 74 nations will participate in the 10-day event. The Indian contingent, led by flag bearer Mirabai Chanu and ceremonial baton bearer Lovlina Borgohain, marched with athletes waving miniature tricolors. The contingent received a warm welcome from the Glasgow crowd as India's athletes celebrated the start of their campaign. India opened their medal tally at the Commonwealth Games before the opening ceremony as the Olympic medalist boxer Lovlina moved straight into the women's 75kg semi-finals after receiving a bye. And now, for a look at today's newspapers, it's over to Tanvi Khurana.
5: Thank you, Pramod. PM promises new law to tackle paper leaks. Cabinet meeting today, headlines the Hindustan Times. The Pioneer headlines, PM announces fast-track courts in paper leak cases. While the Hindu headlines, PM reaches out to students. Sonam Wangchuk ends fast. The Indian Express headlines, PM steps in. Fast-track court to punish exam paper leak guilty. Tough new law on the way. All papers have on their front page that amid the ongoing protests over NEET UGP paper leak issue, the government names new secretaries for higher and school education departments. And finally, justice was served in a murder case in Mohali thanks to a pet dog. The Times of India in a story says the dog would reportedly go to a spot and sit down, alerting the cops who dug up and found the victim's body. And with that, it's back to you, Pramod.
2: Thank you, Tanvi. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi promises new law to tackle paper leaks. Today's cabinet meeting to come out with stricter measures to deal with the issue. Delhi High Court sets up special fast-track court for paper leak cases after PM Modi's announcement. Activist Sonam Wangchuk ends his hunger strike in presence of Union Ministers JP Nadda and Jitendra Singh. India develops its first expendable turbojet engine of 350kg thrust class. India and Romania sign 3 agreements in the fields of science and technology, education and sports. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
6: मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। प्रस्तुत है कवि गोष्ठी। प्रतिभागी कवि हैं विजय जोशी, राधेश्याम पांचाल, आरती गोस्वामी और दिलीप मांडलिक।
7: कवि संगोष्ठी में कविता पाठ का शानदार आयोजन रखा गया है। आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से मैं विजय जोशी आकाशवाणी के प्रबुद्ध श्रोताओं को प्यार भला नमस्कार और कवि संगोष्ठी में पधारे हुए कविगण का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। आज की संगोष्ठी में प्रतिभागी कवि श्री दिलीप जी मांडलिक इंदौर, श्री राधेश्याम पांचाल जी देवास, श्रीमती आरती गोस्वामी देवास और मैं विजय जोशी देवास। सर्वप्रथम काव्य पाठ के लिए मैं श्री राधेश्याम पांचाल जी को आमंत्रित करता हूँ श्याम सुंदर अग्रवाल जी की इन दो पंक्तियों के साथ। हरा भरा रखो इस जग को, हरा भरा रखो इस जग को, वृक्ष तुम खूब लगाओ, पानी है अनमोल रत, तुम एक एक बूंद बचाओ, तुम एक एक बूंद बचाओ। आदरणीय राधेश्याम पांचाल जी,
8: देखा है मैंने वर्तमान में हर व्यक्ति अपने अपने में व्यस्त है, संवाद के अवसरों में कमी आ रही है, संवेदनाएं तो जैसे खो सी गई है। ऐसे में मनुष्य को नूतन विचारों से अवगत कराने के लिए कविता, गीतों और संगीत का बड़ा योगदान है और ये हमारा सौभाग्य है कि अभी हमने गीत और कविताओं को जीवित रखा है। सभी मित्रों को पावस ऋतु की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए मैं अपना काव्य पाठ प्रस्तुत करना चाहता हूँ। जब नन्ही नन्ही जल बूंदे अवतरित धरा पर होती है, प्रकृति में माँ के जैसी हलचल सी होने लगती है। जब नन्ही नन्ही जल बूंदे अवतरित धरा पर होती है, जैसे कोई माँ प्रसव समय बेचैनी अनुभव करती है, वैसे ही प्रकृति व्याकुल हो कुछ ऐसा करने लगती है, वैसे ही प्रकृति व्याकुल हो कुछ ऐसा करने लगती है। अंबर के ऊपर ठहर ठहर दामिनियां शोर मचाती है, धरती की छाती हिल जाती, जीवन के प्राण कपाती है। घन घनन घनन बादल गरजे, बिजली अंबर में चमकती है, अंधड़ आंधी हो दिशाहीन अज्ञात दिशा में चलती है, अंधड़ आंधी हो दिशाहीन अज्ञात दिशा में चलती है। काली काली सी घटाओं में पल पल में उजाले होते हैं, काली काली सी घटाओं में पल पल में उजाले होते हैं, वायु रथ पर होकर सवार बदलियां दौड़ने लगती है, जब मेघ गर्जना करते हैं, जब मेघ गर्जना करते हैं जैसे सो सिंह दहाड़े हो, सुनसान हृदय में जंगल की पाते पाते कप जाती है, सुनसान हृदय में जंगल की पाते पाते कप जाती है, शीतल समीर हो प्रतिकूल पल भर में बवंडर हो जाता, शीतल शमीर हो प्रतिकूल पल भर में बवंडर हो जाता, जो भी उसके आगे आता अपने साथ उड़ा ले जाता, इस दिशा हवा उस दिशा हवा वो दिशाहीन हो जाती है, इस दिशा हवा उस दिशा हवा वो दिशाहीन हो जाती है, फिर जैसे अचानक प्रकृति में वो चमत्कार कर जाती है, फिर जैसे अचानक प्रकृति में वो चमत्कार कर जाती है, पल भर में सारी धरती का वातास बदल सा जाता है, बदली से बूंदे बनकर जब पानी वसुधा पर आता है, एक पल में सारी धरती का वातास बदल सा जाता है, बदली में बूंदे बन भर कर जब पानी वसुधा पर आता है, अकुलाती घटाएं सब अपना धरती पे निशावर कर देती, अकुलाती घटाएं सब अपना धरती पे निशावर कर देती, तपते पतझड़ की प्यास प्यास निर्मल जल पी हर्षाती है, जब नन्ही नन्ही जल बूंदे अवतरित धवरा पर होती है, शीतल समीर बह चलती है जीवन को रसमय करती है, शांत हो जाती वसुंधरा शांत हो जाती घटाएं, शांत हो जाती है सारी गर्जनाएं, शांत हो जाती चमकती चंचलाएं, शांत हो जाती वसुंधरा शांत हो जाती घटाएं, शांत हो जाती है सारी गर्जनाएं, शांत हो जाती चमकती चंचलाएं, शांत हो जाता बवंडर का उठा अभिमान पल में, शांत हो जाता बवंडर का उठा अभिमान पल में, शांत हो जाता हवाओं में उठा व्यवधान पल में, परखोल मोर इतराते हैं, परखोल मोर इतराते हैं, कोयल पिहू पिहू पुकारती है, पपुहे की प्यासी चोंच खुली आकाश उन्मुख हो जाती है, पपीहे की प्यासी चोंच खुली आकाश उन्मुख हो जाती है, इंसान के तपते जीवन को पावस आशीतल करती है, पृथ्वी के सारे ताप को हर नदियां नालों को भरती है, पृथ्वी के सारे ताप को हर नदियां नालों को भरती है, जैसे कोई माँ दे के जन्म बच्चे को हर्षित होती है, जैसे कोई माँ दे के जन्म बच्चे को हर्षित होती है, वैसे ही प्रकृति का रोम रोम सांस सांस खुश हो जाती है, जब नन्ही नन्ही जल बूंदे अवतरित धरा पर होती है, जब नन्ही नन्ही जल बूंदे अवतरित धरा पर होती है। मित्रों बहुत बहुत धन्यवाद, एक छोटा सा गीत प्रस्तुत कर रहा हूं। बरखा फिर डोल गई कलियों को खोल गई, अधसोए फूलों के उर में रस घोल गई, बरखा फिर डोल गई
7: क्या बात है,
8: कलियों को खोल गई, अवनी के आंगन में मन का मयूर खिला, अवनी के आंगन में मन का मयूर खिला, तापते तरुवरों को शीतल सा नीर मिला, मौसम की तरुणाई पातों को खोल गई, बरखा फिर डोल गई,
9: कलियों को खोल गई,
8: अध सोए फूलों के उर में रस घोल गई, पक्षियों के कलरव ने नभ में संगीत भरा, पक्षियों के कलरव ने नभ में संगीत भरा, धरती की चूनर पर लहराया रंग रंग हरा, धरती की चूनर पर लहराया रंग हरा, प्रकृति की परछाई कृतियां संवार गई, अध सोए फूलों के उर में रस घोल गई, बरखा फिर डोल गई, भौर की अंगड़ाइयों से पात की अलसाई गई, भौर की अंगड़ाइयों से पात की अलसाई गई, भौरों की गुंजन से कलिया हर्षाई गई, रजनी संवेदना में ओस बिंदु ढोल गई, बरखा फिर डोल गई, कलियों को खोल गई, अध सोए फूलों के उर में रस घोल गई, काली घटाओं की बिजली ने मांग भरी, काली घटाओं की बिजली ने मांग भरी, तपते हुए जीवन पर प्रीत की फुहार झरी, कोपले फिर फूट आई पतझड़ गई, बरखा फिर डोल गई, कलियों को खोल गई, अधसोए फूलों के उर में रस घोल गई,
7: बहुत बढ़िया
9: आवाज है, क्या
8: बरगद के झूलों पर बिरहनियां झूल रही, बरगद के झूलों पर बिरहनिया झूल रही, बिरहा के गीतों में बिरहा को भूल रही, यौवन के प्यालों में कामुकता घोल गई, बरखा फिर डोल गई, कलियों को खोल गई। अंकुरों के फूटने से जननी का भास हुआ, अंकुरों के फूटने से जननी का भास हुआ, सृष्टि में सृष्टा का नूतन आभास हुआ, मौत की हथेली पर जिंदगी उंडेल गई, बरखा फिर डोल गई, कलियों को खोल गई, अध सोए फूलों के उर्मे रस घोल गई, बरखा फिर डोल गई।
7: बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद,
8: बहुत बहुत धन्यवाद
7: आदरणीय राधेश्याम जी पांचाल का, बहुत बढ़िया बरखा फिर डोल गई काव्य पाठ हुआ। अब मैं अगली कवित्री के रूप में हमारे बीच में उपस्थित है श्री आरती अक्षय गोस्वामी, उनको मैं काव्य पाठ के लिए रहीम जी की दो लाइन के साथ आमंत्रित करता हूँ। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, और पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। काव्य पाठ के लिए आरती गोस्वामी जी।
10: बहुत बहुत आभार दादा। माँ भारती को प्रणाम करती हूँ, माँ वीणा पाणी को प्रणाम करती हूँ, जो आप सभी श्रोताओं को बहुत बहुत प्रणाम करते हुए मैं अपनी काव्य यात्रा का प्रारंभ माँ भारती को समर्पित करते हुए एक मुक्तक से करती हूँ। सुनिएगा कि लिया जन्म जिस वसुधा पर उसका सम्मान होना चाहिए, बलिदानी परिपाटी पर युवा पीढ़ी को अभिमान होना चाहिए, और हो कोई भी भाषा भाषी धर्म जाति पंथ के तुम, दिल में तुम्हारे केवल और केवल हिंदुस्तान होना चाहिए, दिल में तुम्हारे केवल और केवल हिंदुस्तान होना चाहिए। चूंकि आज हम सब यहाँ उपस्थित हुए हैं बरखा रानी के स्वागत के लिए, मैं चार पंक्तियाँ रखती हूँ और बरखा रानी का स्वागत अपने शब्दों में करती हूँ। सुनिएगा, जब वसुधा का श्रृंगार लगता मन भावन है, महादेव की आराधना का माह ये पावन है, मोर पपीहा कोयल गान कर रहे खुशियों का, प्रकृति ने हमें दिया उपहार ये सावन है। एक रचना के माध्यम से मैं बताना चाहती हूँ, बरखा रानी का स्वागत करना चाहती हूँ। सुनिएगा कि अपनी नजरों से दिखलाऊं तुमको बारिश का ये रूप नया, बरखा रानी की सुंदरता करती हूँ मैं आज बयां, कि गिरी बूंद बारिश की देखो आज ये मिट्टी महक उठी, धानी चूनर ओढ़ के देखो भारत माता चहक उठी, बारिश की इन बूंदों ने श्रृंगार किया है आज नया, धरती पर गिरती बूंदों ने छेड़ दिया है साज नया, कि गर्मी से तपती धरती ने मानो ली हो अंगड़ाई, इन गिरती बूंदों से महकी धरती की ये अंगनाई, सजने लगी सरिताएं सारी, सजी हुई नग श्रृंखला, झरने सारे सज रहे बनकर धरती की मेखला, अपनी नजरों से दिखलाऊं तुमको बारिश का ये रूप नया, बरखा रानी की सुंदरता करती हूँ मैं आज बयां, कि अब तो काले बादल का भी प्यारा लगता अंधकार है, चमचम करती इस चपला की प्यारी ये झनकार है, धरती की इस सुंदरता पर षष्ठी है मनवारती, षष्ठी सारी कर रही है वसुंधरा की आरती, कि अपनी नजरों से दिखलाऊं तुमको बारिश का ये रूप नया, बरखा रानी की सुंदरता करती हूँ मैं आज बयां। चूंकि हम मध्य प्रदेश की धरती पर बैठे हैं, मैं बात करना चाह रही हूँ मध्य प्रदेश के एक सपूत की, भाभड़ा के लाल चंद्रशेखर आजाद की, जिनका जन्म दिवस होता है जुलाई माह में, और चूंकि हम जुलाई माह में ही इस काव्य गोष्ठी में उपस्थित हैं, मैं एक रचना अपने शब्दों के माध्यम से उनको शब्द सुमन अर्पित कर रही हूँ। सुनिएगा कि जिसके रहते धरणी धरा का वैभव सदा आबाद रहा, जिसके रहते धरनी धरा का वैभव सदा आबाद रहा, आजाद ही था आजाद जिया जो मरते दम आजाद रहा, आजाद ही था आजाद जिया जो मरते दम आजाद रहा। कि स्वर्णिम पृष्ठ इतिहास के गौरव जिसका गाते हैं, स्वर्णिम पृष्ठ इतिहास के गौरव जिसका गाते हैं, यह वो सपूत जो भारती को निज रक्त चढ़ाते हैं, यह वो सपूत जो भारती को निज रक्त चढ़ाते हैं, जिनके देशभक्ति के गीत युगो दोहराए जाते हैं, जिनके देशभक्ति के गीत युगो दोहराए जाते हैं, जिनके चरित्र को युवा निज आचरणों में लाते हैं, जिनके चरित्र को युवा निज आचरणों में लाते हैं, जिनका राष्ट्र प्रेम ही

0: स्वतंत्र भारत की बुनियाद रहा, आजाद ही था आजाद जिया जो मरते दम आजाद रहा, कि जो स्वतंत्रता की बलिवेदी पर आहूत हो गए, जो स्वतंत्रता की बलिवेदी पर आहूत हो गए, जो भारती के हवन कुंड में भस्मीभूत हो गए, स्वतंत्र समर में अंगद जैसे रामदूत हो गए, स्वतंत्र समर में अंगद जैसे रामदूत हो गए, लाल माँ भारती के वसुंधरा के सपूत हो गए, नाम अंकित अमर पृष्ठ पर अग्रण्य निर्विवाद रहा, कि नाम अंकित अमर पृष्ठ पर अग्रण्य निर्विवाद रहा, आजाद ही था आजाद जिया जो मरते दम आजाद रहा, आजाद ही था आजाद जिया जो मरते दम आजाद रहा, कि निज धरती पर साम्राज्य गौरव का कभी न गवारा था, निज धरती पर साम्राज्य गौरव का कभी न गवारा था, माँ भारती ने जिसको स्वयं की रक्षा हेतु पुकारा था, वसुधा ने जिसको निजाचल में लेकर दुलारा था, गोली खुद पर मारी किंतु उसे भेदियों ने ही मारा था, जिसका चले जाना स्वतंत्र समर का शंखनाद रहा, जिसका चले जाना स्वतंत्र समर का शंखनाद रहा, आजाद ही था आजाद जिया जो मरते दम आजाद रहा, आजाद ही था आजाद जिया जो मरते दम आजाद रहा। और अंतिम दृश्य देखिएगा उस पार्क का क्या रहा होगा, कि अल्फ्रेड पार्क में रण रचा जी बलिदानी थाती थी, अल्फ्रेड पार्क में रण रचा जी बलिदानी थाती थी, स्वयं रण भवानी उस समय गीत शौर्यता के गाती थी, और हव्य बनाया बंदूकों का भूमि बनी रण की घाटी थी, हव्य बनाया बंदूकों का भूमि बनी रण की घाटी थी, स्वयं ने गोली मारी स्वयं को और माथे मलीमा माटी थी, कि स्वयं ने गोली मारी स्वयं को और माथे मलीमा माटी थी, छिन्न मस्ता ने रक्त तिलक किया और महाकाल का आशीर्वाद रहा, कि छिन्न मस्ता ने रक्त तिलक किया महाकाल का आशीर्वाद रहा, आजाद ही था आजाद जिया और मरते दम आजाद रहा, आजाद ही था आजाद जिया जो मरते दम आजाद रहा। अंत में चार पंक्तियों के साथ अपनी काव्य यात्रा को यहीं विराम देती हूँ, सुनिएगा। कि शश्यश्यामला भारत भूमि का वंदन सदा विजय बोलो, शश्यश्यामला भारत भूमि का वंदन सदा विजय बोलो, शौरित ने सींचा जिस वसुधा को उसका अभिनंदन अजय बोलो, और सबको पोषित करने वाली स्वर्ग से सुंदर अपनी ये वसुधा, सबको पोषित करने वाली स्वर्ग से सुंदर अपनी ये वसुधा, आ जाओ सब मिल करके भारत माता की जय बोलो, आ जाओ सब मिल करके भारत माता की जय बोलो। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, भारत माता की जय।
1: आरती अक्षय गोस्वामी जी ने बहुत शानदार काव्य पाठ किया। इसके बाद में अगले कवि के रूप में श्री दिलीप मानलिक जी को काव्य पाठ के लिए सादर आमंत्रित करता हूँ। हरी हरी जहाँ होती धरती, हरी हरी जहाँ होती धरती, वहीं आते बादल उपकारी, और खूब गरजते खूब चमकते वर्षा करते भारी, खूब चमकते खूब गरजते वर्षा करते भारी। आदरणीय दिलीप मानलिक साहब,
2: सभी साथीगण को सादर नमस्कार। आज पावस ऋतु के उपलक्ष में जो काव्य गोष्ठी हो रही है, मैं उसी को संदर्भित करते हुए अपनी दो कविताएं प्रस्तुत करूंगा, छोटी छोटी। पहली कविता का शीर्षक है सफर बूंदों का, कि पावस एक सुंदर सफर है बूंदों का आसमान से धरा की ओर, पावस एक सुंदर सफर है बूंदों का आसमान से धरा की ओर, सफर से पहले नील गगन में ये रहती हैं घनघोर, पावस एक सुंदर सफर है, पड़ाव नहीं है बीच में कोई, पड़ाव नहीं है बीच में कोई, अवनी की प्यास ठिकाना है, पड़ाव नहीं है बीच में कोई, अवनी की प्यास ठिकाना है, लक्ष्य अधीर सूखे कंठों को अमृत पान कराना है, पावस एक सुंदर सफर है बूंदों का। कि मोर पपी है स्नेही इसके, मोर पपी है स्नेही इसके, चातक पंछी गुण गाहक हैं, कि मेघ रूप में ये चीर काल से विरह संदेश वाहक हैं, कि चीर काल से विरह मेघ रूप में विरह संदेश वाहक हैं, कि जहां जहां घन रूप में ये बूंदे, जहां जहां घन रूप में ये बूंदे हवा के संग संग जाती हैं, वहां के कण कण कण समाकर बहुरंगी हो जाती हैं, पावस एक सुंदर सफर है बूंदों का। कि इन्हीं दिनों झूले पड़ते बागों में, इन्हीं दिनों झूले पड़ते बागों में, देव शयन को जाते हैं, तितली मोन निमंत्रण देती फूलों को, तितली मोन निमंत्रण देती फूलों को, भवरे शोर मचाते हैं, पावस एक सुंदर सफर है बूंदों का। कि कोयल कुकती मधुर स्वर में, कोयल कुकती मधुर स्वर में, मोर टेर पर टेर लगाते हैं, ये बुलावे कहीं टिस पहुंचाते, कहीं पर भाग जगाते हैं, पावस एक सुंदर सफर है बूंदों का, कि जब ये बूंदें मेहरबान होती नदी ताल भर जाते हैं, जब ये बूंदें मेहरबान होती नदी ताल भर जाते हैं, देख उफान नावें डोलने लगती कच्चे घाट डर जाते हैं, देख उफान नावें डोलने लगती कच्चे घाट डर जाते हैं, कि खेतों की हंसी रोके नहीं रुकती, खेतों की हंसी रोके नहीं रुकती, मेड़ों को सुकून मिलता है, पौधों की पंक्ति में जब फूल अदद एक खिलता है, पावस एक सुंदर सफर है बूंदों का, कि यह बूंद सफर जब आगे बढ़ता नदी संग राग मिलाता है, यह बूंद सफर जब आगे बढ़ता नदी संग राग मिलाता है, हर्षोल्लास से गिरता पड़ता सागर तक आ जाता है, सूरज प्रेम तपन से मन में इनके फिर आवर्त भाव जगाता है, सूरज प्रेम तपन से मन में इनके फिर आवर्त भाव जगाता है, कि भाव समझ फिर ये बूंदे बादल रूप घन जाती है, कि गिरे धरा पर या रहे गगन में ऋतु पावस कहलाती है, ऋतु पावस कहलाती है, ऋतु पावस कहलाती है, पावस एक सुंदर सफर है बूंदों का। दूसरा एक छोटा सा गीत है, वर्षा एक महायज्ञ है। इस धरती पर हमेशा एक सनातनी परंपरा रही है यज्ञ की, और प्रकृति अपना एक महायज्ञ करती है वर्षा के रूप में, तो मैंने उसी को दर्शाने की कोशिश की। वर्षा एक महायज्ञ है धरती पर गगन का, वर्षा एक महायज्ञ है धरती पर गगन का, चीरकाल से अट्टू बंधन है सागर सूरज तपन का, वर्षा एक महायज्ञ है धरती पर गगन का, कि साकल्य समीधा है जल बूंदे इसमें, साकल्य समीधा है जल बूंदे इसमें, अब्र नब्र के मेहमान है, अब्र नब्र के मेहमान है, कि मोर पपी है श्रोती इनके, मोर पपी है श्रोती इनके, नदी ताल यजमान है, वर्षा एक महायज्ञ है धरती पर गगन का।
1: बहुत बढ़िया।
2: कि खेत खलियान की आशा है वर्षा, खेत खलियान की आशा है वर्षा, प्यासे कूप निवान की अभिलाषा है वर्षा, सुख दुख की इस दुनिया में संयम की पहचान है वर्षा, संयम की पहचान है वर्षा, कि विप्लव भय दर किनार कर रखें तो, विप्लव भय दर किनार रखें तो, जब बरसे वरदान है वर्षा, जब बरसे वरदान है वर्षा, कि वर्षा एक महायज्ञ है, तरस बरस की युति है वर्षा, वियोग संयोग की अनुभूति है वर्षा, सागर संपदा मृदा है देहांतर तक सुप्रदा है वर्षा, वर्षा एक महायज्ञ है, नदी का कल कल कल है वर्षा, सकल जगत का बल है वर्षा, रिमझिम हो या जमकर बरसे, रिमझिम हो या जमकर बरसे, हर प्रारूप में मंगल है वर्षा, वर्षा एक महायज्ञ है, वर्षा एक महायज्ञ है, हम भी इसी इसके यजमान बने अब, वर्षा एक महायज्ञ है तो हम भी इसके यजमान बने अब, स्वच्छता का अभियान बने अब, पेड़ लगाएं जल बचाएं, पावस को प्रणाम करें जब भी इसमें बिघ्न जाएं, इसको ही प्रणाम करें, वर्षा एक महायज्ञ है धरती पर गगन का, चीरकाल से अटू बंधन है सागर सूरज तपन का, सागर सूरज तपन का। धन्यवाद।
3: हम तीनों का काव्य पाठ हो चुका है, अब उनको काव्य पाठ के लिए आना है, मैं उनको आमंत्रित करता हूँ। मैं हूँ एक आवारा बादल, बूंदे भरकर चलता हूँ, धरती जब मुझको पुकारती तभी बरस में जाता हूँ, अपनी बूंदों से तप्त धरा के प्राणों को शीतल करता हूँ, पतझड़ के तपते पेड़ों को नई कोंपलों से भरता हूँ, पतझड़ से तपते पेड़ों को नई कोंपलों से पढ़ता हूँ। आदरणीय विजय जोशी जी, आइए, आपका स्वागत है।
1: आज वर्षा ऋतु पर काव्य संगोष्ठी का आयोजन किया गया है, उसमें मैं अपना काव्य पाठ। हमारे देश की अर्थव्यवस्था का 80% हिस्सा कृषि पर निर्भर है,
2: क्या
1: और कृषि वर्षा पर निर्भर है, और वर्षा प्रकृति और पर्यावरण पर निर्भर है। मनुष्य ने आधुनिकता की अंधी दौड़ में प्रकृति और पर्यावरण को बहुत नुकसान पहुंचाया है। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि कि मनुष्य प्रकृति और पर्यावरण का मित्र नहीं शत्रु बनकर रह गया।

बरखा रानी तुमसे मिलता दाना पानी, रिमझिम रिमझिम बरखा रानी तुमसे मिलता दाना पानी, तुम धरती की गोदी भरती चिड़िया चुगती दाना पानी, रिमझिम रिमझिम बरखा रानी तुमसे मिलता दाना पानी। गड़गड़ गड़गड़ बादल गाजे अंबर में जैसे बैंड बाजे बाजे, चम चम चम चम बिजली चमके उछल कूद कर नन्ने मुन्ने नाचे, रिमझिम रिमझिम बरखा रानी तुमसे मिलता दाना पानी। हरी हरी चुनर धरनी ने ओढ़ी जैसे नहीं दुल्हन चढ़ी डोली, मोर मोरनी कोयल बने बराती, हलधर हल कांधे पर रख बना घराती, रिमझिम रिमझिम बरखा रानी तुमसे मिलता दाना पानी। मोर नाचता कोयल गाती, मोर नाचता कोयल गाती, धरती पर हरियाली छाती, बागों में झूले लहराती, बागों में झूले लहराती, बहने मीठे गीत सुनाती, रिमझिम रिमझिम बरखा रानी तुमसे मिलता दाना पानी। तुमसे सबका जीवन चलता, तुमसे सबका जीवन चलता, तुमसे सबका जीवन पलता, तुम अंबर की महारानी, तुम अंबर की महारानी, धरती मांगे तुमसे पानी, रिमझिम रिमझिम बरखा रानी तुमसे मिलता दाना पानी। झूमे गाए बच्चों की टोली, झूमे गाए बच्चों की टोली, उनकी लगती मीठी बोली, तुमसे मनती घर घर दिवाली, और मनती रंग रंगारंग होली, रिमझिम रिमझिम बरखा रानी तुमसे मिलता दाना पानी। तुम करती पानी की बोछार, तुम करती पानी की बोछार, तुमसे मनते तीज त्योहार, अंबर अवनी एक हो जाते जब गिरती पानी की धार, रिमझिम रिमझिम बरखा रानी तुमसे मिलता दाना पानी। तुम अंबर से अमृत बरसाती, तुम अंबर से अमृत बरसाती, मृत को जीवन तुम दे जाती, तुम अंबर से अमृत बरसाती, मृत को जीवन तुम दे जाती, मैं हूं ना कानों में धीरे से कह जाती, रिमझिम रिमझिम बरखा रानी तुमसे मिलता दाना पानी। खेतों में फसल उगाती, खेतों में फसल उगाती, उनमें मीठे फल लगाती, चुन्नू मुन्नू चाव से खाते, अपने भाग्य पर हिठलाते, रिमझिम रिमझिम बरखा रानी तुमसे मिलता दाना पानी, रिमझिम रिमझिम बरखा रानी। तुम बिन प्यासी सारी दुनिया, तुम बिन प्यासी सारी दुनिया, तुमसे खिलती बागों में कलियां, कल कल छल छल बहती नदियां, रिमझिम रिमझिम बरखा रानी तुमसे मिलता दाना पानी। चीटी को कण तुमसे मिलता, हाथी को मण तुमसे मिलता, तुम हो सबकी रोजी रोटी, कोई नहीं जग में भूखा सोता, सबको मिलती किस्मत की रोटी, रिमझिम रिमझिम बरखा रानी तुमसे मिलता दाना पानी। तुम धरती की गोदी भरती, तुम धरती की गोदी भरती, चिड़िया चुगती दाना पानी, रिमझिम रिमझिम बरखा रानी तुमसे मिलता दाना पानी। एक और रचना, एक और रचना वर्षा ऋतु के ऊपर निवेदन है दादा। छोटी छोटी जल की बूंदे, छोटी छोटी जल की बूंदे, अंबर से अवनि तक रास रचाती है, बंजर तपती वसुंधरा को दुल्हन की तरह सजाती है, छोटी छोटी जल की बूंदे। वर्षा ऋतु का मौसम न्यारा, वर्षा ऋतु का मौसम न्यारा, लगता सबको प्यारा प्यारा, उमड़ घुमड़ जब बादल आते, वसुंधरा पर रस बरसाते, वसुंधरा पर रस बरसाते, घनन घनन जब बादल गरजे, घनन घनन जब बादल गरजे, सब बच्चों की टोली हर्षे, घनन घनन जब बादल गरजे, सब बच्चों की टोली हर्षे, भर जाते सब ताल तले या उपनाते सब नाले नदियाँ, छोटी छोटी जल की बूंदे अंबर से अवनि तक रास रचाती है, पंख खोल कर मोर नाचे, पंख खोल कर मोर नाचे, कोयल मीठे गीत सुनाए, बागों में झूले लहराए, प्री प्रीतम के मन हर्षाए, सूरज की किरणों के संग, सूरज की किरणों के संग जल की बूंदे रास रचाए, सूरज की किरणों के संग जल की बूंदे रास रचाए, लीला यह देखो कुदरत की इंद्रधनुष की छटा दिखाए, लीला यह देखो कुदरत की इंद्रधनुष की छटा दिखाए, छोटी छोटी जल की बूंदे। कड़कड़ाती बिजलियां, कड़कड़ाती बिजलियां, उन्हीं से अंबर तक चकाचौंध कर जाती है, क्या जीव जंतु क्या बच्चे बूढ़े सबके प्राण कपाती है, छोटी छोटी जल की बूंदे अंबर से अवनि तक रास रचाती है। स्वाति नक्षत्र की आस लगाए चातक गगन निहारता, स्वाति नक्षत्र की आस लगाए चातक गगन निहारता, और बेड़ भागों में प्यासा पीहू पीहू पुकारता, छोटी छोटी जल की बूंदे अंबर से अवनि तक रास रचाती है, बंजर तपती वसुंधरा को दुल्हन की तरह सजाती है, चारों तरफ हरियाली छाए, चारों तरफ हरियाली छाए, सब मस्ती में झूमे गाए, काकड़ी भुट्टा फूट डोचरा भरवर फेट सभी खाए, चारों तरफ हरियाली छाए, सब मस्ती में झूमे गाए, कांकड़ी भुट्टा फूट डोचरा भर भर पेट सभी खाए, झरझर झरझर झरते झरने,

0: झरझर झरझर झरते झरने कल कल छल छल बहती नदियाँ, मधुरम गीत सुनाती है मिलकर सब जंगल की चिड़ियाँ। स्वाति की बूंद गिरे सीप में मोती बन जाती है, कदली तरु गिरे बूंद कपूर बन जाती है, सर्पमुख गिरे बूंद बने हलाहल, चातक की चोंच में गिरकर अमृत बन जाती है। वर्षा ऋतु के नौ नक्षत्र ऐसे नौ रत्नों का मिलन हो जैसे, इनके बरसने से जीवन चलता है और सारी दुनिया को इनसे ही दाना पानी मिलता है। छोटी छोटी जल की बूंदें अंबर से अवनि तक रास रचाती है, बंजर तपती वसुंधरा को दुल्हन की तरह सजाती है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। आज आकाशवाणी केंद्र इंदौर पर काव्य गोष्ठी का आयोजन हुआ, उसमें प्रतिभागी कवि श्री राधेश्याम पांचाल जी देवास, आध्यात्मिक कवि श्री दिलीप जी मांडलिक इंदौर, आरती अक्षय गोस्वामी देवास और मैं विजय जोशी सभी आकाशवाणी के श्रोताओं का बहुत बहुत नमस्कार करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।
1: अभी आप सुन रहे थे कवि गोष्ठी। प्रतिभागी कवि थे विजय जोशी, दिलीप मांडलिक, राधेश्याम पांचाल और आरती गोस्वामी। आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है, प्रस्तुत है लोक संगीत। लोक संगीत के कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं प्रहलाद सिंह टिपानिया की गाई लोक रचनाएं।
2: एज गुरु मूर्ति मुख

प्रयास जी टिप्पणियाँ और साथियों के युगल स्वर में अभी आपने सुनी ये मालवी लोक रचना। आकाशवाणी इंदौर से आप सुन रहे हैं लोक संगीत।

श्रोताओं, आकाशवाणी इंदौर से आप सुन रहे हैं लोक संगीत। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं प्रहलाद सिंह टिपानिया के गाए लोकगीतों को। लीजिए सुनिए इन्हीं के स्वर में अगली लोक रचना।

0: लोक संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे प्रहलाद सिंह टिपानिया के गाए मालवी लोकगीतों को। अब यह कार्यक्रम यहीं समाप्त तो होता है।
1: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
3: आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। सुगम संगीत में लीजिए सुनिए गोविंद प्रसाद जयपुर वाले की गाई चंद गजलें।

दिलबाग सिंह सोहल की रचना अभी आपने सुनी, जिसे गाया था गोविंद प्रसाद जयपुर वाले ने। सुगम संगीत में आप सुन रहे हैं गोविंद प्रसाद जयपुर वाले की गाई गजलें। लीजिए सुनिए इनकी गाई।

0: गोविंद प्रसाद जयपुर वाले की गाई इस गजल के साथ ही सुगम संगीत का कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है।
1: सुनते रहिए मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।
0: शास्त्रीय संगीत में लीजिए सुनिए पंडित राम नारायण का सारंगी वादन, राग है अलहिया बिलावल।

0: शास्त्रीय संगीत में अभी आप सुन रहे थे पंडित राम नारायण का सारंगी पर बजाया राग अलहिया बिलावल। अब यह कार्यक्रम यहीं समाप्त तो होता है। मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। थोड़ी देर में जिले की चिट्ठी आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से प्रसारित होगी।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है मंडला जिले की चिट्ठी। आलेख शशांक चौबे का है, वाचन स्वर है अभिषेक कटियार का। विश्व प्रसिद्ध कान्हा टाइगर रिजर्व बारिश के दौरान 3 माह के लिए पर्यटकों के लिए बंद कर दिया गया है। यह अवधि वन्य जीवों के प्रजनन काल के रूप में भी महत्वपूर्ण मानी जाती है। पार्क बंद होने के दौरान वन्य प्राणियों की सुरक्षा को लेकर वन विभाग द्वारा ऑपरेशन मानसून संचालित किया जा रहा है, जिसके तहत जंगल क्षेत्रों में लगातार निगरानी रखी जा रही है। वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए हाथी गश्ती के साथ साथ पैदल गश्ती भी नियमित रूप से की जा रही है। इस वर्ष मानसून के देर से आगमन और लंबे समय तक बारिश का दौर थमने से जिले में खेती किसानी का कार्य प्रभावित हुआ था। खेतों में नमी की कमी के कारण खरीफ की फसलों की बोवनी और रोपाई में देरी हो रही थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों से जिले में लगातार हो रही बारिश से सूखे खेतों को राहत मिली है। खेतों में पानी पहुंचने के बाद जिले में धान की मुख्य फसल की रोपाई का कार्य तेजी से शुरू हो गया है। मंडला जिले में इस वर्ष अब तक 1 जून से 23 जुलाई तक कुल 426.9 मिलीमीटर औसत बारिश रिकॉर्ड की गई है। इसी अवधि में बीते वर्ष जिले में 986 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देश के 103 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास का वर्चुअली लोकार्पण बीते दिनों किया था। इसी क्रम में मंडला जिले के नैनपुर रेलवे स्टेशन के नए स्वरूप का भी उद्घाटन हुआ। इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण स्टेशन परिसर में किया गया। प्रभारी मंत्री दिलीप जायसवाल ने इस मौके पर कहा कि स्टेशन पर आधुनिक प्रतीक्षालय, शौचालय, डिजिटल सूचना प्रणाली, बेहतर प्रकाश व्यवस्था और CCTV जैसी सुविधाएं विकसित की गई हैं। इस मौके पर सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते ने कहा कि इससे यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। लोकार्पण कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री संपतिया विके, नगरपालिका अध्यक्ष नैनपुर कृष्णा पंजवानी, मंडल रेलवे प्रबंधक दीपक गुप्ता, प्रधान वाणिज्य प्रबंधक विजय कुमार सहित अन्य रेल अधिकारी तथा नागरिक उपस्थित रहे। जिले के शासकीय विद्यालयों के विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं की निःशुल्क तैयारी उपलब्ध कराने के लिए प्रोजेक्ट संकल्प का शुभारंभ बीते दिनों जिले में किया गया, जिसके प्रथम चरण में जिले के 80 शासकीय विद्यालयों में JEE नीट, CUET और CLAT जैसी परीक्षाओं की निःशुल्क कोचिंग, रिकॉर्डेड लेक्चर, मॉक टेस्ट और करियर मार्गदर्शन उपलब्ध कराया जाएगा। इस अवसर पर करियर मार्गदर्शन पुस्तिका और करियर पाथ पोस्टर का विमोचन भी किया गया। मंडला कलेक्टर राहुल नामदेव धोटे और पुलिस अधीक्षक राजेश रघुवंशी ने बीते दिनों पुलिस लाइन में नशे से दूरी है जरूरी 2.2 अभियान का शुभारंभ किया। कलेक्टर ने नागरिकों से नशे के दुष्परिणामों के प्रति अधिक से अधिक लोगों को जागरूक करने की अपील की। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि नशे के खिलाफ जन भागीदारी ही सबसे बड़ा हथियार है और अवैध कारोबार के विरुद्ध लगातार कार्रवाई भी की जा रही है। कार्यक्रम के बाद पुलिस लाइन से बैगा बैगी चौराहे तक छात्र छात्राओं ने जन जागरूकता रैली निकाली। प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना के तहत बीते दिनों जनपद पंचायत बीजा डांडी में विकास खंड स्तरीय कुक कम हेल्पर्स कुकिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसके प्रथम पुरस्कार के रूप में धनवाही की संतोषी बाई विके को 5,000 रूपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान की गई। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर DJ मोहंती ने बताया है कि बच्चों के स्वास्थ्य एवं पोषण सुधार के लिए संचालित दस्तक अभियान के दौरान 5,005 बच्चों की जाँच की गई है, 3 कुपोषित बच्चों की पहचान हुई है तथा 4,480 बच्चों को विटामिन ए की खुराक इस अभियान के तहत दी गई है। जिला न्यायालय मंडला तथा तहसील न्यायालय नैनपुर, निवास और बिछिया में बीते दिनों विशेष लोक अदालत का आयोजन किया गया। जिला न्यायालय मंडला लोक अदालत में 22 प्रकरणों का आपसी सहमति से समझौता कराया गया। इन मामलों में 52,03,048 रूपए की समझौता राशि पर आदेश पारित किए गए। सांदीपनी विद्यालय ग्राम सागर में गुरु पूर्णिमा पखवाड़े के तहत आयोजित कार्यक्रम में बीते दिनों बोर्ड परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले शिक्षकों एवं मेधावी विद्यार्थियों का सम्मान किया गया। इस कार्यक्रम में प्रभारी मंत्री दिलीप जायसवाल, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री संपतिया के और सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते शामिल हुए। वर्ष 2025-26 के राज्यस्तरीय कायाकल्प अवार्ड में मंडला जिले की स्वास्थ्य संस्थाओं ने उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। सिविल अस्पताल नैनपुर ने 95.23% अंक प्राप्त कर प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण योजना VBG राम जी के राष्ट्रीय शुभारंभ का आंध्र प्रदेश से सीधा प्रसारण बीते दिनों मंडला के रानी दुर्गावती महाविद्यालय में किया गया। इस जिला स्तरीय कार्यक्रम में मुख्य अतिथि लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री संपतिया विके ने कहा कि ये योजना वर्ष 2047 तक आत्मनिर्भर ग्रामीण भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इस कार्यक्रम में ग्राम पंचायत आमानाला में पौधरोपण कार्य का भूमि पूजन भी किया गया। मंडला जिले की चिट्ठी में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी और जिले की समसामयिक गतिविधियों के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे मंडला जिले की चिट्ठी, ये आकाशवाणी भोपाल है।
0: मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। प्रस्तुत है सजीव फोन इन कार्यक्रम MH हॉटलाइन।
3: हेलो MH हॉटलाइन।
0: कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को नीलेश जोशी का नमस्कार। श्रोताओं, हमें कॉल करने के लिए नंबर नोट करें। हमारे फोन नंबर से हैं 2710223 और 2710224। इंदौर के बाहर के श्रोता STD कोड 0731 लगाकर हमसे बात कर सकते हैं। हमारा विनम्र अनुरोध है कि जिन श्रोताओं के कॉल लगातार लग रहे हैं वे कम से कम 3 महीने का इंतज़ार करें और बात करें हमसे। बात करते हैं हमारे पहले श्रोता से। हेलो।
4: हेलो,
0: नमस्कार। कार्यक्रम MH हॉटलाइन में बहुत बहुत स्वागत है।
4: नमस्कार, धन्यवाद। मैं राजा राम नगर देवास से राजू अग्रवाल बोल रहा हूँ सर।
0: जी अग्रवाल जी, बहुत बहुत स्वागत।
4: धन्यवाद।
0: कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
4: गीत साहब, आज मनोज कुमार जो महान अभिनेता, गीतकार और अपने निर्माता, उनका जन्मदिन है
0: जी।
4: और रफी साहब की पुण्यतिथि है 31 जुलाई की, तो उनका ही गीत है अपने दो बदन पिक्चर का, नसीब में जिसके जो लिखा था,
0: बिल्कुल
4: जो तेरी महफिल में काम आया, ऐसा गीत है साहब। और मैं श्रोता उनसे कहना चाहता हूँ कि रोज रोज फोन नहीं करें, नहीं तो यह कार्यक्रम बंद होने में देर नहीं लगेगी।
0: बिल्कुल, मैंने आपके कॉल से पहले ही ये निवेदन किया ही सही जी।
4: हाँ, एक दिन में बंद हो जाएगा ये 1 मिनट में, और फालतू बातें, लंबी बातें ना करें।
0: बिल्कुल है ना। आज आपने पसंद आपकी बताई दोनों ही महान कलाकारों के विषय में, मनोज कुमार है ना, भारतीय सिनेमा जगत की महान हस्ती,
4: महान उनके वॉइस तले दबे हुए
0: जी। बिल्कुल है ना, अद्भुत बहुमुखी प्रतिभा के धनी रहे हर क्षेत्र में, और उन्हें काम किया है ना, आपने पसंद किया जी।
4: ऐसे गीत दिए हैं कि जो हम बुला नहीं सकते।
0: बिल्कुल, तो लीजिए सुनिए अपनी पसंद का गीत। हमें कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
4: धन्यवाद।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: श्रोताओं, आकाशवाणी इंदौर से आप सुन रहे हैं सजीव फोन इन कार्यक्रम एमएच हॉटलाइन। बात करते हैं हमारे अगले कॉलर से। हेलो,
3: नीलेश जी नमस्ते।
2: नमस्कार, कार्यक्रम एमएच हॉटलाइन में बहुत बहुत स्वागत है आपका।
3: जी थैंक यू सो मच। मैं प्रेम सिंह सिसोदिया बोल रहा हूँ, ग्राम बछोड़ा, तहसील नागदा, जिला उज्जैन से।
2: जी सिसोदिया जी, बहुत बहुत स्वागत। बताएं कौन सा गीत सुनना चाहेंगे आज?
3: आरजू फिल्म का सुनवा दीजिएगा, साजन साजन तेरी दुल्हन।
2: बिल्कुल, आरजू फिल्म का गीत सुनाएंगे। मुझे आपके कॉल के साथ में बड़ी मधुर पक्षियों की चहचहाट आ रही है। कहाँ बैठे हैं आप?
3: जी, जी मैं घर पे हूँ, लेकिन घर के पास में हमारा खुला मैदान है, वहाँ पर मैंने बगीचा लगा रखा है। उसमें अमरूद के पेड़ है, पौधे हैं, पपीता है, वो सब्जियाँ भी काफी लगा रखी है हमने। मैं वहीं पे बैठा हूँ, आपका कार्यक्रम सुन रहा हूँ और अभी मतलब ये पक्षी वहीं पे चहचहा रहे हैं।
2: बिल्कुल, बड़ा ही सुमधुर वातावरण है ना, बारिश का मौसम।
3: बिल्कुल, हल्की सी बारिश भी हो रही है यहाँ पर और साथ में आकाशवाणी भी चल रही है।
2: क्या बात है। तो ऐसे सुहाने मौसम में आपने सुहाना गीत पसंद किया है ना?
3: बिल्कुल। और आकाशवाणी इंदौर से।
2: हेलो,
3: सोता हूँ आकाशवाणी इंदौर का।
2: जी जी
3: जी हाँ, और पहले रेडियो पर सुनता था, लेकिन अब मेरा रेडियो खराब हो गया ना, तो मैं 2019 तक रेडियो पर सुना, फिर मोबाइल ऐप पर सुनने लगा।
2: देखिए, परिवर्तन संसार का नियम है ना। रेडियो के साथ आपने अपने आप को अपडेट किया, आकाशवाणी ने भी अपने आप को अपडेट किया, तो अब हम मोबाइल ऐप पर आ गए हैं, न्यूज़ ऑन एयर ऐप पर। आप हमें कहीं भी कभी भी सुन सकते हैं।
3: जी, और उसमें ये भी हुआ नीलेश जी कि हमें हर राज्य के कार्यक्रम सुनने को मिलते हैं और मतलब हमारे आकाशवाणी का परिवार फिर से काफी बढ़ गया।
2: बिल्कुल बिल्कुल, सही बात है सब। लीजिए सुनिए आरजू फिल्म का गीत, अलका याग्निक और साथियों के युगल स्वर में, आनंद बख्शी की शब्द रचना, अनु मल्लिक का संगीत। कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

0: सुनते रहिए मालवा किसान आकाशवाणी इंदौर।
1: आकाशवाणी इंदौर से आप सुन रहे हैं सजीव फोन इन कार्यक्रम एमएच हॉटलाइन। हेलो हेलो
2: हेलो, गुड मॉर्निंग सर।
1: वेरी गुड मॉर्निंग, कार्यक्रम एमएच हॉटलाइन में बहुत बहुत स्वागत है।
2: थैंक यू, क्या हाल चाल आपके?
1: एकदम बढ़िया, आप कैसे हैं?
2: हम भी ठीक है, और मैं रानू गुप्ता बात कर रही हूँ देवास से।
1: जी बताइए, कौन सा गीत सुनना चाहेंगी?
2: मूवी का नाम है हम तुम पे मरते हैं, इसी का टाइटल ट्रैक सुनना है। डेडिकेट आपको रहेगा, मेरी सिस्टर नंदिनी, योगेश, केसरी सिंह जी, और जो कॉलर सुन लो सबको।
1: बिल्कुल, है ना, हम हमारे सारे श्रोताओं के स्वस्थ और स्वच्छ मनोरंजन के लिए बैठे हुए हैं। लीजिए सुनिए अपनी पसंद का गीत। कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

0: श्रोताओं, आकाशवाणी इंदौर से आप सुन रहे हैं सजीव फोन इन कार्यक्रम एमएच हॉटलाइन। बात करते हैं हमारे अगले श्रोता से। हेलो।
1: हेलो,
0: नमस्कार, कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत।
1: नमस्कार जी। जी,
0: जी।
1: मैं आप बोल रहा हूँ डॉक्टर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी डोंगरगांव मऊ से।
0: जी व्यास जी, बहुत बहुत स्वागत। बताएं आज क्या सुनना चाहेंगे।
1: आज मुझे आप सुनवाते फिल्म है शिकार, जिसका टाइटल सॉन्ग है वो है ना रफी साहब की आवाज में।
0: जी।
1: शिकार करने को आए, शिकार हो कि चले, ये वाला गीत सुना है।
0: बिल्कुल बिल्कुल साहब, 1968 में बनी मूवी है फिल्म शिकार, ये है ना, जिसका गीत आपने पसंद किया है मोहम्मद रफी के स्वर में।
1: मुझे आपकी ये बात सबसे अच्छी लगती है कि आप ये भी बताते हैं कि फिल्म कब बनी थी और कौन कौन इसमें कलाकार है और कौन कौन गीतकार है और संगीतकार है, ये बहुत अच्छी बात है, ये बताना चाहिए।
0: जी जरूर साहब, तो लीजिए सुनिए, है ना, आपने जैसा कहा तो मैं बता देता हूँ। इसके गीतकार हैं हसरत जयपुरी और संगीत दिया है शंकर जयकिशन ने। लीजिए सुनिए अपने पसंद का ये प्यारा सा गीत।

0: शिकार फिल्म का गीत अभी आपने सुना, जिसे गाया था मोहम्मद रफ़ी ने। श्रोताओं, आकाशवाणी इंदौर से आप सुन रहे हैं सजीव फोन इन कार्यक्रम MH हॉटलाइन। हेलो हेलो
1: हेलो सर,
0: हाँ MH हॉटलाइन कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
1: रिंकू सिंह बोल रहा हूँ।

0: रिंकू सिंह जी कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है, बताइए कौन सा गीत सुनना चाहेंगे? लावारिस फिल्म का कौन सा गीत? कब के बिछड़े
1: हुए हम आज कहाँ
0: आके मिले। चलिए, आप हमारे नियमित श्रोता हैं, आपके कॉल्स हमें नियमित लगते रहते हैं। निवेदन ये है कि एक बार यदि आपका कॉल लग जाए तो कम से कम एक महीने का इंतज़ार ज़रूर करें, अधिकतम तो जितनी देर करें, ताकि हम नए श्रोताओं से बात कर सकें, नए श्रोताओं से जुड़ने का हमें अवसर मिले। इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा। लीजिए सुनिए अपनी पसंद का प्यारा सगी, जिसे हमने लिया है लावारिस फिल्म से। किशोर कुमार और आशा भोसले के युगल स्वर हैं अनजान।

0: अनजान की शब्द रचना, कल्याण जी आनंद जी का संगीत, किशोर कुमार और आशा भोसले को अभी आपने सुना फिल्म लावारिस में। श्रोताओ, आकाशवाणी इंदौर से आप सुन रहे हैं सजीव फोन इन कार्यक्रम एमएच हॉटलाइन। बात करते हैं हमारे अगले श्रोता से। हेलो,
1: नमस्कार सर।
0: नमस्ते, कार्यक्रम एमएच हॉटलाइन में बहुत बहुत स्वागत है, अपना नाम बताएं।
1: सर, मैं सूर्य प्रताप यादव बात कर रहा हूँ, तहसील बहादुरपुर, जिला अशोकनगर, एमपी से।
0: जी सूर्य प्रताप जी, बहुत बहुत स्वागत।
1: जी सर,
0: बताइए आज कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
1: वो संग्राम फिल्म का एक गाना है, बेशक तुम मेरी मोहब्बत हो, वही सुना दीजिए।
0: बिल्कुल, आपकी पसंद का गीत हम आपको जरूर सुनवाएंगे। पहले ये बताएं, हाँ, सूर्य प्रताप जी।
1: हाँ, और मैं ये बताना चाहूंगा, ये गाना मैं पहले भी एक बार सुन चुका हूँ, पर ये गाना मेरा फेवरेट है, इसलिए मैं दोबारा सुनना चाहता हूँ।
0: जरूर जरूर, आपकी पसंद का गीत हम आपको जरूर सुनवाएंगे, है ना सूर्य प्रताप जी। अशोकनगर में सूर्य निकला है कि नहीं निकला अभी?
1: अरे सर, कैसी बात कर दी आपने, बिल्कुल निकल आया है।
0: मौसम कैसा है?
1: मौसम ठीक है, थोड़ी बूंदाबांदी हुई थी सुबह, लेकिन अभी थोड़ी धूप आ गई है।
0: चलिए धूप का आनंद लीजिए, सुहाना मौसम है। क्या करते हैं आप?
1: सर, हम खेती बाड़ी करते हैं।
0: अरे वाह, क्या बात है, प्रकृति के नजदीक रहते हैं, प्रकृति की सेवा करते हैं, क्या बो रखा है।
1: गांव में रहते हैं तो फिर खेती बाड़ी तो फिर मुख्य साधन होता है।
0: बिल्कुल सही बात है, शुद्ध हवामान, सब कुछ शुद्ध है साहब आपके पास।
1: जी
0: है ना, क्या लगाया अभी आपने?
1: सर, अभी धान लगी है।
0: चलिए कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया, करिए आपकी फसल की देखभाल अच्छे से, और लीजिए सुनिए आपकी पसंद का ये प्यारा सा गीत। कॉल करने के लिए बहुत बहुत

0: श्रोताओं, आकाशवाणी इंदौर से आप सुन रहे हैं सजीव फोन इन कार्यक्रम एमएच हॉटलाइन। बात करते हैं हमारे अगले श्रोता से। हेलो हेलो
1: हेलो सर जी, नमस्कार।
0: नमस्ते, कार्यक्रम एमएच हॉटलाइन में बहुत बहुत स्वागत।
1: धन्यवाद सर जी। मैं गिराम हीरापुर जिला सीहोर मध्य प्रदेश से भगवान सिंह परमार बोल रहा हूँ सर जी।
0: जी भगवान सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत। बताइए, आज आपकी कौन सी फरमाइश है जिसे हमें पूरा करना है?
1: सर, फिल्म का नाम है दिल का क्या कसूर और गाने के बोल है मेरा सनम सबसे प्यारा है। और हमारे मित्र केशव सिंह राजपूत जी आपको सुन रहे हैं, उनको डेलीकेट रहेगा सर।
0: बिल्कुल बिल्कुल, आपके मित्र के साथ हम आपकी पसंद का गीत जरूर सुनवाएंगे। आप क्या करते हैं?
1: खेती किसानी करते हैं सर जी।
0: चलिए बहुत बढ़िया
1: जी। और अभी बरसात बंद हो गई है, हमारे इधर बरसात नहीं हो रही है सर, हल्की फुल्की हो रही है मामूली सी।
0: तो कौन सी फसल बोई है आपने?
1: सोयाबीन और मक्का की बुआई कर दी सर, 1 महीने की फसल हो गई है हमारी।
0: चलिए बहुत बढ़िया, करते रहें आपकी फसल की सेवा, प्रकृति की सेवा। लीजिए सुनिए अपनी पसंद का ये प्यारा सा गीत। कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

0: श्रोताओं, कार्यक्रम एमएच हॉटलाइन में आपका स्वागत है। सजीव फोन इन कार्यक्रम, बात करते हैं हमारे अगले कॉलर से। हेलो।
1: हेलो,
0: नमस्कार, कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत।
1: नमस्कार, मैं वरिष्ठ सेवा वाला हूँ आकाशवाणी का
0: जी। भंडारे जी, बहुत बहुत स्वागत।
1: हम आज मनोज कुमार के जन्मदिन पे
0: जी
1: उनके पत्थर के सलाम के गीत सुनना चाहेंगे।
0: जरूर जरूर साहब,
1: बहुत बहुत मामारफी का गाया हुआ गीत है, लक्ष्मीकांत चौहान के संगीत है।
0: जरूर, आपकी फरमाइश।
1: हम बढ़िया, बहुत मीठा गाना, जरदबारा गाना है।
0: बिल्कुल, आपकी पसंद हमेशा से पुराने गानों पर ही रहती है और काफी यूनिक फरमाइश रहती है आपकी। मजरू सुल्तानपुरी की ये शब्द रचना है,
1: लक्ष्मीकांत प्यारे संगीत है
0: जी, लक्ष्मीकांत प्यारे।
1: तो गाना इतना सुंदर, बार बार सुनने की इच्छा होती है लेकिन मन नहीं भरता।
0: बिल्कुल, लीजिए सुनिए जी।
1: ये अच्छा गीत है, बता देना।
0: जरूर जरूर, मैं आपकी फरमाइश पूरी कर रहा हूँ। लीजिए सुनिए अपनी पसंद का प्यारा संगीत। कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

0: पत्थर के सनम फिल्म का टाइटल सॉन्ग अभी आपने सुना। श्रोताओ, आकाशवाणी इंदौर से आप सुन रहे हैं सजीव फोन इन कार्यक्रम MH हॉटलाइन। हेलो,
1: हेलो,
0: नमस्कार। कार्यक्रम MH हॉटलाइन में बहुत बहुत स्वागत।
1: थैंक यू।
0: अपना नाम बताएं, कहां से बात कर रहे हैं?
1: मैं नंदिनी तिवारी बोल रही हूँ, सागर से।
0: जी बताइए, कौन सा गीत सुनना चाहेंगे आज?
1: मूवी का नाम जुड़वा और सॉन्ग है टंटंटारा, जल्दी कहना शिवारा, ये वाला सॉन्ग।
0: जरूर, आपकी पसंद हम पूरी करेंगे। बताएं नंदिनी, आप क्या करती हैं?
1: मेरी बहन रानू दीदी को रहेगा और आपको रहेगा। मैं कुछ नहीं, मेरी फाइनल हो गई है बीएससी।
0: बीएससी फाइनल हो गई, किस सब्जेक्ट से किया?
1: बायो से की है मैंने।
0: चलिए, जरूर आगे पढ़ाई जारी रखें और सुनिए अपनी पसंद का ये प्यारा सा गीत। कॉल करने के लिए धन्यवाद। मैं नीलेश जोशी बात कर रहा हूँ।

0: अंतिम श्रोता से। हेलो,
1: डिब्बे के अंदर डिब्बा, डिब्बे के अंदर केक, मिले जोशी की प्रस्तुति लाखों में।
0: धन्यवाद बहुत बहुत। चलिए बताइए आज कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
1: सर फिल्म का नाम है काली घटा और गाने के बोल भी टाइटल होंगे सर, काली घटा आई रुत आई आई आई आई
0: सुना। जरूर आपकी पसंद का गीत हम सुनवाएंगे। अपना नाम हमारे श्रोताओं को जरूर बताएं।
1: जी मैं हसीना भी मंसूरी बोल रही सर, पालदाना का इंदौर से।
0: जरूर, चलिए कार्यक्रम में स्वागत। आप हमारे नियमित श्रोता हैं, आपके नियमित पत्र भी प्राप्त होते हैं, फरमाइश भी प्राप्त होती है।
1: आपका पूरा कार्यक्रम सुना था और बारिश को गाने अच्छे सुनाए सर आप, हमने लिख दिया ईमेल में आपके लिए।
0: चलिए धन्यवाद बहुत बहुत। आज की पसंद आनंद बख्शी की शब्द रचना, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। लीजिए सुनिए ये प्यारा सा गीत। कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

0: लता मंगेशकर के गए कालीघटा फिल्म के इस गीत के साथ ही एमएच हॉटलाइन कार्यक्रम समाप्त करने की नीलेश जोशी को अनुमति दीजिए। नमस्कार।
1: हेलो एमएच हॉटलाइन।
0: अभी आप सुन रहे थे सजीव फोन इन का।

0: कार्यक्रम MH हॉटलाइन मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। थोड़ी ही देर में अगला प्रसारण आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से रिले होगा।
1: 593 किलोहर्ट्ज़ DTH के ऑडियो चैनल, साथ ही न्यूज ऑन AIR और वेव्स OTT ऐप पर ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। हमारे स्टूडियोज की घड़ी में सुबह के 11 बजे हैं। प्रस्तुत है फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने।
2: कार्यक्रम फोन करें गीत सुने में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ जावेद खान। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। श्रोताओं, यदि आपने कॉल हफ्ते भर के अंदर किया है तो कृपया नए हमारे जो श्रोता हैं उनको मौका दीजिएगा और फोन लगाइए हफ्ते भर के बाद। और अगर आपका फोन हफ्ता या 10 दिन से पहले लगा है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर हम अपने श्रोताओं को बताना चाहेंगे कि 2660902 और भोपाल का STT कोड है 0755। आपके फोन का हमें इंतजार रहेगा। हेलो
3: हेलो,
2: कार्यक्रम फोन करें गीत सुने में आपका स्वागत है। कौन बोल रहे हैं?
3: पंडित शिवनारायण तिवारी जी बोल रहे हैं सागर से।
2: सागर से तिवारी जी, सागर क्या हाल चाल है तिवारी जी?
3: अच्छी, बारिश हो रही, मुझे मजा आ रहा है पानी का।
2: मजा आ रहा है?
3: हाँ बिल्कुल।
2: तो मतलब ये है कि कुदरत भी जो है, प्रकृति है, वो भी चाहती है कि मजे इंसानों को दिए जाए ताकि वो लोग भी खुश रहे।
3: ठंडक भी है?
2: हाँ आज ठंडक भी है, बिल्कुल सही कहा आपने
3: जावेद खान सर।
2: जी जी जी, तो
3: नमस्कार।
2: हाँ तो आपने जब कॉल किया है तो लाजमी है कि आपने पहले से गाना सोच लिया होगा कि कौन सा गाना।
3: सोच लिया है, फूल और कांटे का।
2: फूल और कांटे का। रुक

0: हेलो,
1: नमस्कार सर।
0: नमस्कार। कौन बोल रहे हैं?
1: मैं मालेगांव से बोल रहा हूँ, तुलसीराम व्यास।
0: आपकी आवाज डिस्टर्ब हो रही है, एक बार नाम दोबारा से बता दीजिए।
1: तुलसीराम व्यास बोली होगी ना, खेतों में सोयाबीन बोली होगी है,
0: हाँ
1: तो पानी की थोड़ी आवश्यकता है।
0: जी
1: महाराष्ट्र में क्या कि पानी कम गिरता है।
0: जी
1: हाँ, महाराष्ट्र में कम गिरता है, हमारे साइड में तो बहुत ही कम गिरता है। मालेगांव साइड में
0: हाँ
1: आपको ये इसका डिस्ट्रिक्ट वाशिम आता है,
0: जी
1: वाशिम डिस्ट्रिक्ट में मालेगांव कहते हैं।
0: हाँ। नहीं, मौसम पानी वानी नहीं गिर रहा अभी वहां पर।
1: हाँ, पानी की आवश्यकता तो कई कई जगह पर तो बाढ़ आ रही है।
0: अच्छा, ये बताइए, जब आपने कॉल किया पहले से गाना सोच लिया होगा कि कौन सा गाना सुनना है आपको?
1: आपका शुभ नाम।
0: जावेद खान बात कर रहा हूँ।
1: अच्छा, आप गाना लिख लीजिए CID का,
0: CID का कौन सा गाना सुनेंगे आप?
1: दीवान है दीवानों को एक नजर चाहिए।
0: अच्छा, दीवाने हैं दीवानों को, ना घर चाहिए ना दर चाहिए ना और पता नहीं कुछ भी नहीं
1: हाँ,
0: चाहिए,
1: वही
0: बस
1: वही
0: है
1: CID का
0: ना।
1: पुराना पिक्चर है ये। हाँ
0: हाँ, समझ गए। और ये जो है मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की
1: हाँ
0: आवाज़ है इसमें ना।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सत्य बोले।
0: ये गाना दरअसल CID का नहीं बल्कि जंजीर फिल्म का है, और इसको गाया है मोहम्मद रफ़ी साहब और लता जी ने गाया है। सुनते हैं ये गीत।

0: कार्यक्रम फोन करेंगे सुने में आप सभी का स्वागत है। और हमारे अगले कॉलर कौन है हम बात करते हैं। हेलो हेलो
1: हेलो सर, नमस्कार।
0: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं, कहां से बोल रहे हैं?
1: सर दुले सिंह यादव बोल रहा हूं, ग्राम बापचा, जिला आगर मालवा, मध्य प्रदेश से।
0: यादव जी क्या हाल चाल है?
1: सर बढ़िया है, सब बढ़िया, खेती भी अच्छी है सर, फसलें बढ़िया है इस साल।
0: हाँ, पानी भी अच्छा गिर गया।
1: हाँ पानी भी अच्छा गिर रहा सर, और यहीं से फोन लगाया मैंने, कहा देखें फोन लग जाए तो लग गया सर।
0: अरे देखिए, सच्चे मन से अगर हम कोई चीज चाहते हैं तो वो जरूर हो जाती है।
1: हाँ सर
0: है ना। तो यादव जी, अच्छा सबसे पहले तो आपने जब कॉल किया तो पहले से गाना सोच लिया होगा फोन करेंगे सुने में, आपको कौन सा गाना सुनना है?
1: सर गाना तो ये सुना दीजिए, नदिया के पार का, वो गुंजारे चंदन वाला।
0: नदिया के पार का, बिल्कुल हम आपको वो गाना सुनवा देते हैं। तो गुंजन रे, उसके बोल गुंजन रे के हमने आपके नोट भी कर लिया और गाना भी हमें हो गए।
1: बताता हूँ सर गाना, गुंजारे।
0: हाँ हाँ, हेमलता की आवाज है, हेमलता और सुरेश वाडकर की आवाज है, मुझे मालूम है,
1: वाडकर की आवाज में।
0: बस बस, तो लीजिए सुनिएगा ये गाना।
1: ठीक सर, ओके, धन्यवाद सर,
0: नमस्कार।

0: करिकम फोन
1: हेलो
0: करेगी सुने में आपका स्वागत है। कौन बोल रहे हैं?
1: जी, मैं ग्राम उलझान बोल रहा हूँ, गेंदा लाल परिहार।
0: गेंदा लाल जी, क्या हाल चाल है
1: बढ़िया सर।
0: और कैसा मौसम है आपके आसपास का? ठीक ठाक बेहतरीन।
1: नहीं, बढ़िया मौसम है, पानी गिरा था कल थोड़ा,
0: हाँ,
1: फसल भी अच्छी है यहाँ पे। जी
0: फसल अच्छी है। चलिए अच्छी, बहुत अच्छी बात है। तो आपने कॉल किया है तो पहला फर्ज है कि आप अपना गाना बता दीजिए।
1: जी फिल्म का नाम है गुलामी।
0: गुलामी फिल्म का गाना, बिल्कुल ठीक है। गुलामी का कौन सा गाना सुनेंगे आप?
1: वो जी हाल मस्ती में कुन बदन।
0: अच्छा, गुलामी फिल्म का, चलिए ठीक है, हम आपको सुनवाते हैं। और सुनाइए, बाकी मौसम अच्छा है?
1: मौसम अच्छा, बदल हो रहा है, ऐसा हल्की हल्की बारिश भी है।
0: हाँ, तो चलिए आप रेडियो सेट
1: देखो
0: पर।
1: सर जी, सर
0: हाँ
1: मैं हमारे कुलासी नदी, आप नाम सुना हो, कुलासी नदी किनारे गांव है यहाँ पे,
0: हाँ
1: उसी किनारे बसा हुआ गांव हमारा
0: तो कहाँ है ये, कौन सा गांव है?
1: उलझावन
0: उलझावन।
1: जी।
0: अच्छा, गांव लोग सुलझावन है और गांव उलझावन है।
1: पता नहीं कब से नाम है सर ये तो।
0: हाँ चलो, अच्छा है, जो भी है अच्छे नाम होते हैं। ये भी किस बात पे पड़ा ये तो नहीं मालूम होता, लेकिन नाम से कभी कभी इतिहास अगर निकल कर आता है तो बहुत अच्छा निकलता है।
1: जी सर जी, जी
0: चलिए सुनिएगा ये रेडियो सेट पर अपने गाना।
1: धन्यवाद।
0: धन्यवाद।

0: कार्यक्रम फोन करें गीत सुनो में आप सभी का स्वागत है। अगले कॉलर कौन है, हम उनसे बात करते हैं। हेलो,
1: नमस्कार सर,
0: नमस्कार।
1: मैं रानू गुप्ता बात कर रही हूँ देवास से। जी
0: अच्छा रानू जी, आप तो हमारे नियमित श्रोता हैं,
1: जी
0: तो
1: और आपके क्या हाल चाल है?
0: बस बिल्कुल ठीक ठाक हैं। आप बताइए, आपके यहाँ का मौसम कैसा है, कैसा?
1: हमारे यहाँ तो हल्की हल्की बारिश स्टार्ट हो गई है,
0: अच्छा
1: और वो
0: तेज,
1: भोपाल में भी वैसी ही हो रही है शायद।
0: अच्छा तो तेज क्यों नहीं हो रही आपके यहाँ, कुछ उसका आइडिया
1: होगी
0: है?
1: होगी, तेज भी होगी।
0: अच्छा फिर ठीक है। तो अच्छा देखिए, आपने कॉल किया है तो सबसे पहले तो मुझे गाना बता दीजिए।
1: हाँ, मूवी का नाम है अनजाने और गाने के बोले काले काले बादल जब भी छाएंगे, ये तो पक्का है। जी
0: हाँ, हम आपको गाना सुनवा देते हैं। और
1: और
0: जी तो
1: डेडिकेट आपको मेरी बहन नंदनी को रहेगा।

0: विजय पांडे
1: जी, विजय
0: थाना पछड़वा जनपद बलरामपुर से बोल रहा हूँ। दो लाइन पहले सुनाना चाहता हूँ।
1: जी बताइए।
0: जवानी चार दिन की मेहमान है, क्यों मगरूर होती है, अगर देश के काम आ जाए तो बड़ी मशहूर हो जाती है।
1: वाह क्या बात है।
0: काबिले सर एहतराम जनाब जावेद खान साहब को विजय पांडे का प्यार भरा नमस्कार आदाब।
1: नमस्कार आदाब।

0: क्या बात है, क्या बात है, इतना शानदार लिख लेते हैं आप।
1: जी मैं अपना परिचय बताऊं, मैं विजय कुमार पांडे
0: जी
1: थाना पछवाड़वा जनपद बलरामपुर से बोल रहा हूं। आपका तहे दिल से शुक्रिया, आपने मेरे काल को तस्लीम किए।
0: वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है, आप इतना शानदार लिखते हैं। अच्छा, आपसे बातें करने का तो मेरा बहुत सारा दिल चाह रहा है, लेकिन समय की पाबंदी होती है ना। सबसे पहले हम आपसे गाना पूछ लें कि कौन सा सुनेंगे आप, कौन सा गाना सुनेंगे?
1: गाना तो मैं बताऊंगा, लेकिन आज राष्ट्रीय प्रसारण दिवस है, इस पर हम कुछ कहना चाहते हैं।
0: जी बता दीजिए।
1: 23 जुलाई सन 1927 को, यानी आज के ही दिन रेडियो का प्रसारण हुआ था।
0: जी
1: इस ऐतिहासिक दिवस को कभी भुलाया नहीं जा सकता,
0: बिल्कुल,
1: क्योंकि रेडियो ही एक ऐसा माध्यम है जो सभी के दिलों की धड़कन बन चुकी है।
0: बिल्कुल
1: मैं
0: बिल्कुल।
1: सभी को बताना चाहता हूं कि देश की आजादी के पहले मात्र देश में 6 रेडियो स्टूडियो हुआ करते थे। आजादी के बाद से अब तक बहुत से स्टूडियो हो गए हैं, और देश की विश्वसनीयता को बनाए रखने का काम आकाशवाणी के लोगों का बड़ा योगदान रहा है।
0: बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब आप हम मुझे गाना बता दीजिए तो हम उसको देख लें।
1: गाना मैं बताना चाहता हूँ, बरसात का समय
0: जी।
1: चल रहा है तो ऐसे में एक गीत याद आ रहा है, बरसात फिल्म का, कि बरसात में हम तुम मिले सनम।

0: सुने में आपका स्वागत है। कौन बोल रहे हैं?
1: जी नमस्कार सर,
0: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
1: मैं चित्रकूट धाम के बहेरी ग्राम से दिनकर सिंह बात कर रहा हूँ सर जी।
0: दिनकर जी, क्या हाल चाल है?
1: बढ़िया मस्त है। और सर जी को यहाँ राम की तपोभूमि से सत सत राम राम भी भेज रहा हूँ।
0: अरे वो बहुत बहुत धन्यवाद, क्या बात है, क्या बात है। और सुनाइए, आप क्या का मौसम ठीक ठाक है, बेहतरीन है? पानी वानी ज्यादा गिर रहा है कि नहीं?
1: बहुत अच्छा मौसम है सर जी। आप जावेद सर जी से मेरी बात चल रही है?
0: जी जी बिल्कुल।
1: बहुत दिनों के बाद सर जी बात हो रही है
0: जी।
1: और इसी तर्ज में थोड़ा एक डायलॉग मार दूं।
0: अरे बिल्कुल इरशाद।
1: काली घटाओं का घेरा हो
0: जी
1: और सर्द हवाओं का झोंका हो,
0: वाह,
1: और जावेद सर जी से आकाशवाणी मध्य प्रदेश में बात करने का मौका हो,
0: वाह वाह,
1: मानो सौगातों की बौछार हो और यहाँ बरसातों की बरसार हो।
0: वाह वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या शानदार शेर।
1: चारों तरफ से यहाँ पर काली घटाएं छाई हुई है और मैं अकेला तनहा जंगल में बैठा हूँ, फंस गया हूँ एक जगह, और बाइक खड़ी है मेरी और झोपड़े में बैठा हुआ हूँ।
0: देखिए मगर हम आपके साथ है ना वहाँ पर?
1: जी बिल्कुल सर जी, आप हमारे साथ हैं और आपका प्रोग्राम भी हमारे साथ चल रहा है।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा ये बताइए कौन सा गाना सुनेंगे?
1: तेरे दो टकिए की नौकरी से मेरे लाखों का साथ जाए, हाय हाय रे मजबूरी।
0: अरे वाह वाह वाह वाह, क्या बात है, ये बहुत शानदार गाना है, हम आपको सुनवाते हैं।
1: प्रेम दास बाबा और मानकारी से फूलचंद पाल जी, इनके साथ ये गीत सुनूंगा।
0: अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है।

0: अगले कॉलर हमारे कौन है? हेलो
1: हेलो।
0: जी, कौन बोल रहे हैं?
1: हाँ सर जी नमस्कार,
0: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
1: हम भागचंद्र साहू जी बोल रहे हैं, राजेंद्र नगर गंज वासुदा से।
0: अरे वाह, क्या बात है।
1: बिल्कुल सर, आपकी तो हम नहीं मिस होता है वैसे। बिल्कुल
0: हाँ। तो अच्छा, ये
1: बिल्कुल।
0: आपने देखिए कॉल किया है, तो सबसे पहले हमें गाना बता दीजिए, बाकी बातें हम लगातार करते रहेंगे।
1: बिल्कुल, फिल्म का नाम है जीत।
0: जीत जी, कौन सी वाली
1: हाँ,
0: जीत?
1: धरती
0: तीन,
1: पे चाहे जहां भी रहे,
0: धरती पे चाहे कहीं भी रहे या जहां भी रहे, क्या है?
1: बिल्कुल सर बिल्कुल। और मौसम कैसा है भोपाल का सर?
0: बहुत अच्छा है। तो
1: हाँ, यहाँ गंजवासुदा में पानी गिर रहा है सर। बिल्कुल
0: बहुत
1: सर, वो जरूरी है, थी पानी तो
0: बिल्कुल,
1: जरूरी
0: ये
1: था।
0: पानी गिरता रहना चाहिए। तो
1: बिल्कुल बिल्कुल सर।
0: और आपने कॉल किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी तरह कॉल करते रहिएगा और सुनते रहिएगा आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण।

0: कार्यक्रम फोन करेगी सुने में आप सभी के स्वागत है, और हम अपने श्रोताओं से कहना चाहेंगे कि यदि आपका फोन हफ्ते भर के अंदर लगा है तो कृपया अगले नए श्रोताओं को हमारे मौका दीजिए ताकि वो इस कार्यक्रम को से जुड़ सके और वो भी हमारे नियमित श्रोता बन सके। देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। कार्यक्रम फोन करेगी सुने में आपका स्वागत है, कौन बोल रहे हैं?
1: जी नमस्कार
0: नमस्कार, नाम बता दीजिए।
1: जी मैं अरविंद अग्रवाल
0: अरविंद अग्रवाल जी। जी अरविंद जी, क्या
1: जी
0: हाल चाल है?
1: एकदम बढ़िया है। आप भी अच्छे होंगे जी।
0: बहुत अच्छे। तो अरविंद साहब कहाँ से बोल रहे हैं?
1: श्रीनगर जिला महोबा
0: महोबा,
1: से
0: मध्य प्रदेश,
1: उत्तर
0: यूपी,
1: प्रदेश
0: उत्तर प्रदेश। जी।
1: जी।
0: तो देखिए, आपने कॉल किया और लाजमी है कि आपने फोन करने से पहले सोच लिया होगा कि आपको कौन सा गाना सुनना है।
1: सबक फिल्म जी
0: सबक जी, इसका गाना कौन सा?
1: बरखा रानी जरा जम के बरखा
0: अच्छा, बरखा रानी जरा जम के बरखा। सो मुकेश जी की आवाज।
1: जी।
0: अच्छा, चलिए हम आपको ये गाना सुनवा रहे हैं।

0: अभी आप सुन रहे थे फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुनें। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक मामले में कहा है कि फास्ट ट्रैक अदालतों के गठन और कड़ी सजा के प्रावधानों संबंधी प्रस्ताव पर आज मंत्रिमंडल की बैठक में चर्चा के बाद इस विधेयक को अगले सप्ताह संसद में पारित करने के लिए रखा जाएगा। भारत ने 350 किलोग्राम के थ्रस्ट श्रेणी का अपना पहला स्वदेशी डिस्पोजेबल टर्बोजेट इंजन विकसित किया है। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि डीआरडीओ के डिजाइन पर आधारित इस जटिल प्रणाली की डिलीवरी भारतीय रक्षा उद्योग की बढ़ती तकनीकी क्षमताओं को दर्शाती है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव आज पन्ना जिले में 204 करोड़ 26 लाख रुपए लागत के 22 विकास कार्यों की सौगात देंगे। आईआरसीटीसी श्रद्धालुओं के लिए भारत गौरव पर्यटक ट्रेन का संचालन कर रहा है। इससे यात्री पुरी, गंगा सागर, गया, वाराणसी और अयोध्या सहित कई प्रमुख तीर्थस्थलों की यात्रा कर सकेंगे। इसके साथ ही ठहरने, भोजन, दर्शनीय स्थल भ्रमण और बीमा जैसी सुविधाएं भी इसमें शामिल हैं। विश्वविद्यालयों की परीक्षाओं के डिजिटल वैल्यूएशन की दिशा में तेजी से कार्य किया जा रहा है। वहीं विद्यार्थियों को उनकी उत्तर पुस्तिकाओं की डिजिटल कॉपी उपलब्ध कराने की कार्य योजना पर भी अमल किया जा रहा है। देश में घड़ियाल संरक्षण के सबसे महत्वपूर्ण केंद्र राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य में दुर्लभ जलीय वन्यजीवों की सुरक्षा को लेकर मध्य प्रदेश वन विभाग ने हाई अलर्ट घोषित किया है। और क्रिकेट में भारत ने हरारे में 3 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला के पहले मैच में जिम्बाब्वे को कल 7 विकेट से हराया। श्रृंखला का दूसरा मैच कल इसी मैदान पर खेला जाएगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी फरमाइश। कार्यक्रम आपकी फरमाइश में हम आपको आपकी पसंद के गीत सुनाते हैं। वो गीत आप हमें पत्रों के माध्यम से लिखकर बताते हैं। पहला गीत सुनेंगे फिल्म हिना से, स्वर लता मंगेशकर के, गीतकार रविंद्र जैन, संगीतकार रविंद्र जैन, फरमाइश छत्तीसगढ़ देवरी भाटापा।

धारा से है। श्रोता हैं गन्नूलाल रजक, के आर साहू, अश्विनी वर्मा और गणेश। अगले श्रोता आष्टा सीहोर से हैं। रामबाबू परमार, विक्रम मालवीय, अर्जुन, जितेंद्र, किरण परमार, रशिका मेवाड़ा, शीतल मेवाड़ा, राम सिंह और संतोष, सुनते हैं आपकी पसंद का गीत।

श्रेया घोषाल और उदय मजूमदार के स्वर में अगला गीत सुनेंगे फिल्म गुरु से। गीतकार गुलजार, संगीतकार ए आर रहमान। इस गीत के लिए फरमाइश हमें आई है अंबेडकर चौक खुरई से। श्रोता है राम सखी, परमानंद, सौरभ, गौरव, किशोरी बोस, एलपी, रोहित, ललू राम, पूरन, रोहित, छोटू, डुंडुन। सुनते हैं आपकी पसंद का गीत।

लता मंगेशकर के स्वर में अगला गीत सुनेंगे पाकिजा से। गीतकार कमल अमरोही, संगीतकार गुलाम मोहम्मद। इस गीत के लिए फरमाइश हमें आई है बक्सर बिहार से। श्रोता हैं शरफुद्दीन अंसारी, वलीउल्ला अंसारी, राज एसडी अंसारी और नरेंद्र कुमार यादव। इन्हीं के साथ दिल्ली से हैं डब्ल्यू अंसारी, डुमराव से हैं सुनील कुमार वर्मा और मुस्तफ़ाबाद दिल्ली से हैं लाल बाबू दीवाना। अगले श्रोता बक्सर से ही हैं श्रद्धानंद आर्य, अभयनंद आर्य, परमानंद, पंकज, प्रमोद, रोहित और मोहित। सुनते हैं आपकी पसंद का गीत।

अगला गीत सुनेंगे फिल्म करण अर्जुन से उदित नारायण और साथियों के स्वर में, गीतकार इंदीवर, संगीतकार राजेश रोशन, फरमाइश हमें आई है सपना संगीता।

इंदौर से श्रोता हैं लाल फतेह चंदानी, लीला फतेह चंदानी, संगीता सुनीता, पिंकेश, साक्षी, मनन, तानिया, इन्हीं के साथ हैं लोकेंद्र, विक्रम, अर्जुन। सुनते हैं आपकी पसंद का गीत।

सुनिधि चौहान के स्वर में अगला गीत सुनेंगे फिल्म द डर्टी पिक्चर से। गीतकार अजय अरोड़ा ने, संगीतकार विशाल शेखर। इस गीत के लिए फरमाइश हमें आई है कवर कॉलोनी बड़वा से। श्रोता हैं प्रवीण शिमाली, मीना शिमाली, आदित्य अदिति, शिवानी शिमाली और मीनूराज शिमाली। अगले श्रोता रिंगनी छत्तीसगढ़ से, दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, भागवत वर्मा, लेवई से गुलाबदास मणिकपुरी, लच्छनपुर से विश्वनाथ साहू, पिपरिया से दुर्गाराम साहू। सुनते हैं आपकी पसंद का गीत।

एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी से प्रसारण हेतु कार्यक्रम प्रस्ताव आमंत्रित करने की सूचना। प्रसार भारती आकाशवाणी पर प्रसारण के लिए रेडियो कार्यक्रमों की सोर्सिंग हेतु पात्र प्रोडक्शन हाउस, निर्माता, अधिकार स्वामी, एग्रीगेटर, कंटेंट क्रिएटर्स को आमंत्रित करता है। ये कार्यक्रम सोर्सिंग, राजस्व साझाकरण या रेवेन्यू शेयरिंग,

0: प्रायोजित अथवा स्पॉन्सर्ड एवं निःशुल्क या ग्रेटिस आधार पर किया जाएगा। ये सब प्रसार भारती कंटेंट सोर्सिंग नीति 2024 के प्रावधानों तथा समय समय पर जारी किए गए संशोधनों आदेशों के अनुरूप होगा।
1: इस समय आप हैं हमारे साथ।
2: जी हाँ, मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर के साथ।
3: हेलो
4: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
3: फिर से
4: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए, अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
5: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
3: सर इतने कहाँ से?
5: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
3: 2 लाख
6: क्या हुआ पापा?
3: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
4: अरे
3: काट दिया।
6: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
3: फ्रॉड?
6: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
3: तो पैसे गवाओगे।
7: RBI कहता है,
8: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
9: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
10: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी EMI गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान EMI के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बढ़ा सकते हैं और भी स्मार्ट।
9: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
11: बड़े अच्छे लगते हैं
12: क्या
11: ये धरती, ये नदिया, ये रैना
12: और
0: आकाशवाणी इंदौर। सुनते रहिए मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर।
9: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
10: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी EMI गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान EMI के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बढ़ा सकते हैं और भी स्मार्ट।
9: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
13: अरे आप लोगों को मालूम पड़ा कि नहीं?
14: क्या
13: अब आकाशवाणी इंदौर पूरी दुनिया में सुना जा सकता है?
14: वो कैसे?
13: वो ऐसे कि अब आकाशवाणी इंदौर न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है।
14: पर सुनेंगे कैसे?
13: इसके लिए अपने मोबाइल फोन पर जाकर डाउनलोड कीजिए न्यूज ऑन AIR ऐप और लाइव रेडियो पर जाकर सुनिए आकाशवाणी इंदौर के कार्यक्रम।
7: तो सुनते रहिए मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर।

0: क्या बात है सखी, बड़ी खुश नजर आ रही हो।
1: खुशी की तो बात है, हमारा पसंदीदा कार्यक्रम महिला सभा अब मंगलवार के साथ साथ गुरुवार और शुक्रवार को भी होगा।
0: अरे वाह, ये तो वाकई खुशी की बात है। समय क्या रहेगा?
1: वही दोपहर 1 बजे।
0: तो सुनना ना भूले कार्यक्रम महिला सभा।

0: आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है कार्यक्रम संग्रहालय के अंतर्गत रेडियो धारावाहिक कामिनी काय कंतारे का नौवा भाग।
1: प्रस्तुत है महेश कटारे के लिखे उपन्यास कामिनी काय कांतारे की रेडियो नाट्य प्रस्तुति। रूपांतरकार हैं प्रोफेसर प्रकाश दीक्षित और प्रस्तुतकर्ता चित्रेंद्र स्वरूप।

आज प्रस्तुत है कामिनी काय कांतारे की रेडियो नाट्य प्रस्तुति का नवा भाग। अब तक आपने सुना कि राजा भर्तृहरि महालय से निकल जाते हैं। वृक वन में एक अजनबी राजा को प्राण बचाने हेतु बबूल के वृक्ष पर चढ़ जाने की युक्ति सुझाता है और राजा के प्रिय अश्व नीलमणि को ले जाता है।

शची और राजा भर्तहरि का मिलन हो जाता है। भर्तहरि उसे कहते हैं कि वो एक रात अगर और रुक जाते हैं तो उससे क्या होगा, अंततः उन्हें जाना ही होगा। शची को अपनी भार्या मानकर वो अपनी पहचान उस पर प्रकट कर देते हैं। भर्तहरि के जाने की सूचना शची वृंदा को देती है।

0: वो जा रहा है भौजी।
1: क्या तुमने उसे रोका नहीं?
0: नहीं, वो लौटकर अवश्य आएगा,
1: ऐसा उसने कहा है।
0: नहीं, फिर मैं जानती हूँ।
1: मैं उसे रोकूं?
0: नहीं, मैं उसे गांव के सिवान तक छोड़ने जा रही हूँ। राह के लिए उसने एक लकुटी चाही है, वो अपना सब कुछ यही छोड़कर जा रहा है।
1: सब कुछ? अर्थात क्या?
0: अपनी खड़क, अपना राजसी वेश।
1: तुम्हें कुछ बताया कि वो कौन है, कहां से आया है?
0: कहता है कि अवंती नरेश था, अब केवल भरथरी है।
1: हे प्रभु, अवधूत और अवंती नरेश, राजा भरथरी। अनिरुद्ध के लिए दी गई खड़ग, रक्षा का दायित्व और अवंती राज्य की अमूल्य तेजस्वी खड़ग, और बदले में सिर्फ एक लकुट। देवी विधान को कोई नहीं जानता। शची, ये ले एक लकुट और उन्हें विदा करो जाकर।
0: जी भौजी।

0: चल पड़े थे भर्तहरि, कहाँ वो स्वयं नहीं समझ पा रहे थे। वो अवंती को छोड़ आए थे, लेकिन अवंती उन्हें छोड़ नहीं रही थी। क्या लौट जाएं? रानी पिंगला को क्षमा कर दें? धीरे धीरे सब सामान्य हो जाएगा। सामान्य क्या होगा? वो राजमहल, वही सिंहासन, स्वार्थी सभासद, भ्रष्ट राज सेवक, थोथे जय जयकार, कामिनी कंचन का प्रमत्त प्रवाह और उज्जैनी। राजा आगे बढ़ गए हैं, पैठार गांव पीछे रह गया है, लेकिन पैठार भर्तहरि का पीछा कर रहा है। उन्हें रह रहकर शची की स्मृति आ रही है।
1: शची,
2: मैं प्रतीक्षा कर रही हूं राजन।
1: शची, मैं ग्लानिग्रस्त हूं। मैंने तुम्हें वासना के पंख में खींच लिया, अपराधी हूं।
2: इसमें अपराध कैसा? एक स्त्री ने चाहा और एक पुरुष ने दिया,
1: किंतु मर्यादा
2: मर्यादा कहाँ टूटी है राजन?
1: मेरे वेश की?
2: वो तो उड़ा हुआ है, नाटकी। वेश व्यक्ति के अंदर का प्रमाण नहीं होता राजन। जो हो चुका है उसे लौटाया नहीं जा सकता। फिर अकेले तुम ही तो दोषी नहीं हो। नदी उमड़कर सागर की तरफ दौड़ती है और सागर उसे अंक में समेट लेता है। ये प्रकृति का स्वभाव है राजन।
1: किंतु मनुष्य नदी या समुद्र नहीं है, वो चेतना संपन्न है, विवेकवान है। वो समाज में रहता है, नीति और मर्यादा उसे निर्धारित करती है। शची, मैंने तुम्हें अपने अंग के रूप में स्वीकार कर लिया है, यही मेरी ग्लानि का निराकरण है। समय पर तो मेरा वश नहीं है, मैं नहीं जानता कि कब, किंतु मैं लौटूंगा अवश्य। शची, यही मेरा प्रायश्चित होगा।
0: पीछे मुड़कर देखते हैं भर्तहरि, कहीं कोई नहीं है, बस छितराया हुआ बियावान जंगल गुमसुम पसरा हुआ है। सूरज के ताप में अकेले धरती की गंध के साथ वो आगे बढ़े जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं भर्तहरि?
3: एक प्रश्न और है भर्तृहरि, तुम हो क्या? राजा हो, कवि हो, प्रेमी हो, या केवल पशु? पिंगला, चंपा, शची और अब चारुमित्रा का आकर्षण। नहीं नहीं, चारुमित्रा की प्रतिभा से प्रेरित हूं मैं, उसकी कंचन काया के प्रति नहीं। चारुमित्रा ने मेरे काव्य का मर्म समझा है। स्याद वो मेरे अनुत्तरित असमंजस का कोई उत्तर भी उसके पास हो। वो तो बसंत की प्रेयसी है।
0: तभी बादलों की तेज गड़गड़ाहट, दहाड़, पत्थर टकराने की भयावह आवाजें आने लगती हैं। भैरव का कड़कड़ाता हुआ स्वर गूंजता है।
4: पहचाना मुझे?
1: आप वही हैं ना जिन्होंने वृकवन में मेरी रक्षा की थी?
4: मैं कौन होता हूं रक्षा करने वाला? रक्षा तो आदिनाथ करते हैं, मैं उनका किंचन दास हूं। तुम अब कहां जा रहे हो?
1: पता नहीं।
4: उज्जैनी लौटोगे?
1: वहां तो वही सब है जिसे छोड़कर मैं भाग निकला था।
4: ग्रहण करना और पलायन, ये तो तुम्हारी नियति है भर्तहरि, जो अब तुम्हारा स्वभाव बन गई है।
1: आपने वहां भेड़ियों से मुझे बचाया था, इस समय भी आपका आगमन यूं ही नहीं हुआ होगा। आप ही बताएं, क्या मुझे उज्जैनी लौटना चाहिए?
4: लौटना ही पड़ेगा। तेरी पत्नी भैरव साधना कर रही है, वो तुझे बुला रही है।
1: किंतु
4: तू कहेगा कि पुंश्चली पत्नी के पास तू लौटना नहीं चाहता? प्रमाण क्या है तेरे पास? पिंगला के पतन का तेरे पास कोई प्रमाण नहीं, और तू उसकी दासी चंपा का उसके सामने उसी की शैया पर भोग करता है राजा भर्तरी। अभी अभी एक भोली सहृदय वन कन्या की देह गंध तुझसे आ रही है। छी, ये शारदोत्सव, मदनोत्सव, वसंतोत्सव क्या तेरी वासना की क्रीड़ा नहीं है? रानी पिंगला को दोष देता है।
3: फिर मुझे क्यों भेड़ियों का भोज्य नहीं बनने दिया? उफनती हुई नदी में डूब क्यों नहीं जाने दिया? क्यों क्यों मुझ जैसा पतित जीवित क्यों है?
4: इसलिए क्योंकि प्रजा को एक राजा चाहिए। अनेक बार समय को भी अनेक बुरों के बीच में से उसे चुनना पड़ता है जो कम बुरा हो। तू तो बहुत विद्वान है, जानता होगा कि राजा बिना प्रजा नष्ट हो जाती है। असावधानी से भूमि और स्त्री पर हस्तगता हो जाती है।
3: आप हैं कौन? काल पुरुष, त्रिकालदर्शी या फिर?
4: गुरु ने मुझे नाम दिया है काल भैरव। मैं आदिनाथ महाकाल का कुकुर हूं, उसके द्वारा निर्देशित संचालित। महाकाल कहता है भौंक तो मैं भौंकने लगता हूं, महाकाल कहता है भाग तो मैं भागने लगता हूं। ये मैं हूं भर्तरी, इतना सा।

0: विधाता जब किसी को कुछ अतिरिक्त देता है तो उससे कुछ छीन भी लेता है, उससे संतुलन स्थापित बना रहता है। उसने मुझे भूत और भविष्य तो दिया, किंतु वर्तमान मुझसे ले लिया। वर्तमान में रुककर भविष्य को रचने की क्षमता मेरे पास नहीं है पृथ्वी। आदिनाथ महाकाल ने तेरे पास आने की प्रेरणा मुझे इसलिए दी है कि तू कुछ ऐसा रच सके जैसा मुझ जैसा सिद्ध भी नहीं रच सके।
1: अगम्य और दुर्बोध है आपका व्यक्तित्व, रहस्यमय। मुझे आपका आदेश क्या है?
0: भर्थरी, करणीय के लिए ये कि उसी ओर बढ़ो जिधर के लिए तुम्हारा स्व तुम्हें कहे। केवल ये सुनो कि उसकी पुकार किस ओर से सर्वाधिक तीव्र है, उसे काल पुरुष की इच्छा समझो और उसी दिशा में चल पड़ो। ये सींग से बना हुआ कर्ण कुंडल है, इसे इसी समय धारण कर। श्रवण नक्षत्र है उपयुक्त समय, आ मैं तुझे पहना दूं। कान फटेगा, कुछ पीड़ा होगी, लेकिन पीड़ा साधना का पहला सोपान है। पीड़ा से भय तो नहीं लगता?
1: क्षत्रिय हूं, घाव सहने का अभ्यास है मुझे।
0: अभिमान क्षत्रिय होने का अभिमान कम नहीं हुआ तेरा अभिमान? इसी के कंधों पर राजत्व भी बैठा होगा, वासना भी होगी। तू विचलित है भर्थरी, जा पहले अपनी वासना से मुक्ति प्राप्त कर।
1: लेकिन जाना कहाँ है?
0: चंद्रपुर, इस दिशा से। वहां चारुमित्रा है। चारुमित्रा ही तेरी कामना का शरण करेगी। विलंब ना कर भर्थरी, वो तेरी प्रतीक्षा में है।
1: किंतु भैरव, शची के प्रति मुझसे जो अपराध हुआ है उस ग्लानी का बोझ मन पर है।
0: वो तेरी साधना में सहायक है। शची 32 लक्षणों से संपन्न पद्मिनी स्त्री है, तेरा यह लोक और परलोक वो सुधारेगी। चारुमित्रा पद्मिनी है, तेरी वासना को वो सोख लेगी। जब सांसारिकता से मन भर जाए तो काल भैरव के पथ पर आ जाना। अब मैं जाऊंगा।
1: भैरव, भैरव, मेरा नीलमणि कहाँ है?
0: तेरी अश्वशाला में, उसकी चिंता ना कर।
2: एक साथ सैकड़ों पक्षियों के पंख फड़फड़ाने की आवाजें आती हैं। भैरव जा चुका है, अट्टहास की प्रतिध्वनि पीछे छूट गई है।
1: भैरव, भैरव, भैरव, ओ चले गए भैरव। चंद्रपुर का मार्ग भी नहीं बता गए, ना तो मार्ग और ना यहां से दूरी ज्ञात। स्वयं ही खोजना पड़ेगा यात्रा पथ। चलो चलो भर्तृहरि।
2: भैरव से भेंट के बाद भर्तृहरि में जैसे ऊर्जा का नया संचार हो गया। इस ऊर्जा में समाविष्ट थी उत्सुकता, आग्रह और जिज्ञासा। अब उनके मन में ना तो मलिनता ही थी और ना देह में क्लांति। अभी संध्या नहीं हुई थी। चल पड़े भर्तृहरि ये सोचकर कि कोई पथ तो होगा जो उन्हें चंद्रपुर पहुंचा देगा। आदिनाथ महाकाल की यही इच्छा है, भैरव का निर्देश भी यही है। और चलते चले भर्थरी एक गांव के निकट पहुंचे। आम, अनार, अमरूद, जंबू वृक्ष से घिरी हुई पर्णकुटी, किंतु सर्वत्र निर्जन सुनसान, दृश्यावली से झांकता हुआ रहस्य, किंचित भयभीत करता हुआ कुछ कुछ अपने पास बुलाता हुआ। पर्ण कुटी के द्वार पर भर्तहरि ठिठकते हैं। उन्होंने देखा अलस भाव से कुंडली में बैठा एक सर्प पास ही से जाता हुआ मयूर कूदता हुआ। सर्प ने चौंक कर हन उठाया, कहीं से श्वान का एक जोड़ा भौंकता हुआ सामने आ गया। भर्तहरि ने कुटी का द्वार खटखटाया।
1: कोई है? मैं अतिथि हूं।
2: कुत्तों के भौंकने की और मोर के चीखने की आवाजें आने लगती हैं।
1: द्वार पर अतिथि उपस्थित है, रात भर के विश्राम के लिए आश्रय का आकांक्षी है।
3: अतिथि का स्वागत है, आइए पधारिए।
1: देवी आप कौन हैं? कहाँ हैं? कृपया प्रत्यक्ष आकर दर्शन दें। कुटी में मेरा प्रवेश संभव नहीं, द्वार पर नागराज रखवाली कर रहे हैं, बाहर श्वान है सचेत और सावधान, कोई मनुष्य दिखता नहीं।
3: क्यों? क्या तुम मनुष्य नहीं? शांत हो जाओ चंद्र चंडी।
2: कुत्तों का भौंकना रुक जाता है, रहस्यमय स्वर तेज होते हैं।
3: आ जाओ भीतर आ जाओ।
1: आप यहाँ अकेली रहती हैं? मेरा आशय है कि कोई पुरुष यहाँ नहीं रहता।
3: अकेली? अकेली नहीं हूँ मैं, अरे पूरे परिवार और समाज के साथ रहती हूँ। सूर्यास्त के बाद वो सब यही होंगे। झिझक क्यों रहे हैं आप? आइए भीतर आइए, दूर से आ रहे हैं ना, जलपान कीजिए विश्राम कीजिए। कुछ समय में सूरज डूब जाएगा और वो सब यहाँ होंगे। अतिथि का सत्कार हमारे लिए उत्सव समान होता है।
1: आता हूँ देवी, सूर्यास्त होने वाला है, पता नहीं आगे कोई ग्राम कितनी दूर हो, रात तो यहीं बिताना है। मैं अपनी पादुकाएं बाहर उतार आया हूँ, उन्हें ले आऊं?
3: वो आ जाएंगी, आप तो आइए। अरे अरे अरे कहाँ जा रहे हैं? ठहरी ठहरी, अब आगे मनोज, रुक जा रुक जा।
2: जान गए थे भर्तहरि ये मानव रहित ग्राम, सर्प श्वान और मयूर, कुटी गली चौबारे, आम और पीपल के पेड़ यथार्थ और वास्तविक नहीं है। पर्ण कुटी में सीमित स्त्री कोई छलावा है जिसके पास ऐंद्रजालिक सृष्टि रची गई है, जादू की नगरी और अतिथि के आगमन पर परिवार का उत्सव, प्रेत आत्माओं का विधान। भर्तहरि वहां से भागे। और उनके पीछे पीछे जीव लपलपाता, दांत चमकाता, रुधिर लोलुप विशाल श्वान समूह। सामने एक नदी थी, भर्तहरि नदी में कूद पड़े। श्वान दल भी उनके पीछे पानी में समा गया। भर्तहरि दूसरे किनारे पर पहुंचे और तीर पर निकले। श्वान दल नदी के बीच में था, किनारा चढ़ने की चेष्टा किए बिना भर्तहरि रुके नहीं, वो समझ गए

0: नदी भी जादू नगरी का सीमांत है। भर्थरी फिर भी भागती रहे जब तक कि कोई गांव सामने ना आ जाए, किसी मनुष्य को वो देख ना ले। गांव का वातावरण है, संध्या का समय है, घर लौटते हुए चौपायों के गले में बजती घंटियां बज रही हैं, घोंसलों में वापस आते पखेरुओं का कलरव हो रहा है, पंख फड़फड़ाने की आवाजें आ रही हैं, लोगों के बोलने का स्वर पास आता जा रहा है। भर्थरी सोचते हैं,
1: प्रतीत होता है निकट ही कोई ग्राम है।
2: बंधु सुने, क्या यहां रात्रि विश्राम मिल सकेगा?
3: अवश्य ही, तनिक ठहरे, आपका स्वागत है। कहें कहां से आ रहे हैं और इस मार्ग पर कैसे आए?
1: ये तो आप देख ही रहे हैं।
3: आप मनहुष ही है ना?
1: अब तक तो हूं।
3: इस मार्ग पर कैसे पहुंचे?
1: चलते चलते बिना किसी योजना के जा पहुंचा था। क्यों, कोई शंका है?
3: बहुत भाग्यवान है आप, देवताओं का आशीर्वाद है आपके साथ। आइए चलते हैं, जल ग्रहण करें।
1: जल भी आपके सौम्य भाव जितना ही मीठा है। धन्यवाद, आपके प्रश्नों ने मुझे असमंजस में डाल दिया। ऐसा क्या है उस मार्ग पर?
3: वस्तुतः आप जिस मार्ग से आए हैं उस पर कोई नहीं आता जाता। जहां तक मेरी स्मृति है, मैंने पहली बार किसी व्यक्ति को वहां से जीवित आते देखा है। सूर्यास्त के बाद तो सैनिक टुकड़ियां भी वहां से नहीं निकलती।
1: किंतु मार्ग स्पष्ट है, आवागमन के चिन्ह है। मुझे एक साफ सुथरा गांव भी राह में मिला था।
3: छल्ला थी वो, सब एक इंद्रजाल है।
1: इस प्रेतपुरी का रहस्य क्या है भद्र? आपका गांव तो बिल्कुल निकट है और सुरक्षित भी। मेरा अनुभव विचित्र है। मैंने वहां प्रेतनी के हाथ का कंकाल देखा है जो सांपों से भरी कुटिया में रहती है। वहां एक श्वान युगल है जो कभी दिखता है कभी छुपता है। श्वानों के एक बड़े दल ने नदी तक मेरा पीछा किया था और मेरे इस पार आते ही वो लौट गए।
3: अरे लगता है तुम कभी सैनिक रहे होगे। कोई और होता तो उसके प्राण ही निकल जाते। मैं अधिक कुछ नहीं जानता। एक योगी ने बताया था कि यह प्रेतपुर संध्या होते ही निर्मित होता है और सुबह विलुप्त हो जाता है। इस बीच वहां कोई नहीं जाता। प्रेत रात्रि में प्रकट होते हैं और वहां जो भी भटकता हुआ मिलता है उसे मारकर प्रेत ही बना लेते हैं। एक बार तो पूरा सार्थवाही इस प्रेत लीला के चंगुल में घिरकर नष्ट हो गया था। ईश्वर ने या कहो भाग्य ने तुम्हारी रक्षा की है अतिथि।
1: हाँ, कोई अज्ञात शक्ति बार बार सचेत कर रही थी, यहां से भागो, शीघ्र भागो। शायद वो प्राणों का भय था या महाकाल ने समय रहते सद्बुद्धि दे दी।
0: उत्सुक ग्रामीणों की भीड़ इकट्ठा हो गई है। ये भीड़ जानना चाहती है कि भर्थरी प्रेतपुर से कैसे बच निकले। उनकी इसी संदर्भ में बातचीत हो रही है। एक ग्रामीण पूछता है,
4: महानुभाव आप वहां कैसे जा पहुंचे? कहां से रहे थे आप?
1: प्रातःकाल पैठार से यात्रा प्रारंभ की थी।
4: वो तो हमारा कुलग्राम है, लेकिन आपको कभी वहां देखा नहीं।
1: सत्य कह रहे हैं आप, मैं पैठार का निवासी नहीं, गृह त्यागी हूं।

0: शची के विषय में तो कुछ बताया ही नहीं, मैंने 3 वर्षों से उसे देखा नहीं। बहुत नटखट है ना?
1: शची का नाम सुनते ही भर्तहरि के मन में घंटियां, पाजेब के नुपुर, सितार के तार बज उठते हैं।
2: शची, शची,
0: लगता है अभ्यागत विश्राम करना चाहते हैं आप।
2: कल जल्दी ही मैं चंद्रपुर की ओर निकलूंगा। कितनी दूर होगा यहां से चंद्रपुर?
0: मैंने सुना तो है पर कभी गया नहीं। कहने वालों का कहना है कि वहां की स्त्रियां बहुत सुंदर होती हैं, चंद्रवदिनी और मृगलोचनी। जोगी, संभल के जाना होगा।
1: भर्तहरि सोचते हैं कि इस गांव के लोग कितने निर्मल और कितने

0: अभी आप महेश कटारे के लिखे उपन्यास कामिनी काय कांतारे की रेडियो नाट्य प्रस्तुति का नवा भाग सुन रहे थे। रूपांतरकार थे प्रोफेसर प्रकाश दीक्षित। कलाकारों का भूमिका सहित परिचय इस प्रकार है। सूत्रधार सुभाष सक्सेना, शचि विभा श्रीवास्तव, वृंदा सरोज शर्मा, भर्तृहरि अरविंद बिलगैया, भैरव आलोक चटर्जी, प्रेत स्त्री कविता इसरानी, ग्रामणी रईस हसन, ग्रामीण पुरुष श्याम मुंशी, परिकल्पना पंडित रामस्वरूप रतौनिया, संयोजक राकेश ढौंडियाल और प्रस्तुतकर्ता चित्रेंद्र स्वरूप राजन। आपको याद होगा कि राजा भर्तृहरि महालय से निकलकर वृकवन, पैठार गांव और प्रेतपुरी से होते हुए चंद्रपुर की ओर चल रहे हैं। इन सब जगह से वे कैसे सुरक्षित निकले, ये रहस्य अगले भाग में खुलेंगे।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम संग्रहालय से। इसके अंतर्गत आपने सुना कामिनी काय कांतारी की नवी कड़ी। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है इस घंटे की खास खबरें।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक मामले में कहा है कि फास्ट ट्रैक अदालतों के गठन और कड़ी सजा के प्रावधानों के संबंधी प्रस्ताव पर आज मंत्रिमंडल की बैठक में चर्चा के बाद इस विधेयक को अगले सप्ताह संसद में पारित करने हेतु रखा जाएगा। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने आज स्कॉटलैंड के ग्लासगो में आयोजित राष्ट्रमंडल खेलों में भाग ले रहे भारतीय दल को शुभकामनाएं दी। श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया है कि भारतीय एथलीट जोश, दृढ़ संकल्प और उत्कृष्टता की भावना के साथ प्रतिस्पर्धा करेंगे। आज देश भर में आयकर दिवस मनाया जा रहा है। ये दिन विकसित भारत की कर प्रणाली में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि का प्रतीक है। इस अवसर पर भोपाल के नवीन आयकर भवन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। भारत ने 350 किलोग्राम के थल श्रेणी का पहला स्वदेशी डिस्पोजेबल टर्बोजेट इंजन विकसित किया है। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि डीआरडीओ के डिजाइन पर आधारित इस जटिल प्रणाली की डिलीवरी भारतीय रक्षा उद्योग की बढ़ती तकनीक क्षमताओं को दर्शाती है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज पन्ना जिले में 204 करोड़ 26 लाख रुपए लागत के 22 विकास कार्यों की सौगात देंगे। विश्वविद्यालयों की परीक्षाओं के डिजिटल वैल्यूएशन की दिशा में तेजी से कार्य किया जा रहा है। वह विद्यार्थियों को उनकी उत्तर पुस्तिकाओं की डिजिटल कॉपी उपलब्ध कराने की कार्ययोजना पर भी अमल किया जा रहा है। और पुरुष क्रिकेट में भारत ने हरारे में 3 मैचों की टी20 अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला के पहले मैच में जिम्बाब्वे को 7 विकेट से हराया। श्रृंखला का दूसरा मैच कल इसी मैदान पर खेला जाएगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। दिन का 1 बजा है। महिलाएं सुने अपना कार्यक्रम महिला सभा।

बदली हुई रुत में प्यारे से नमस्कार के साथ संयोगिता आपके साथ है। आज का महिला सभा खास इसलिए होगा सखियों, क्योंकि मौसम सुहाना हो चुका है। किसी ने बहुत सुंदर लिखा है कि बारिश की बूंदें जब नहीं गिरती तब भी बेचैन करती हैं, और जब गिरती हैं तब भी बेचैन कर जाती हैं। सोचिएगा और बताइएगा कि आपको ठंडी बरसात की ये बूंदें क्या एहसास करवा रही हैं सखियों। हम तो स्टूडियो में हैं, चर्चा इस बात पर भी कि विश्व को डूबने से किस तरह से बचाया जाए, चिंता वाली बात है और चर्चा गंभीरता की ओर इशारा भी कर रही है। देखिए, जहाँ कहीं भी हम पानी देखते हैं ना, फव्वारे में, झरने के रूप में, नदियों का शीतल जल, समुद्र के किनारे उठती हुई लहरों को, तो अपने आप को करीब जाने से, भीगने से बचा नहीं पाते हैं हम अपनी मचलती हुई भावनाओं को जल में भिगोकर बिना परवाह के होश हो लेना चाहते हैं और होते भी हैं। पर आप जानती हैं, कभी कभी ये बेपरवाही जान के लिए खतरा भी बन जाती है और ये हर उम्र पर भारी पड़ सकती है सखियों। तो जल से जुड़े खतरों से होने वाली मौतों को मद्देनजर रखते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ का ये फैसला कि जल में डूबकर होने वाली मौतों को रोकने और सुरक्षा के उपाय बताने के लिए शुरू किया गया अभियान विश्व डूबने से बचाव दिवस। जी हाँ, पिकनिक स्पॉट, नदियों, तालाबों, स्विमिंग पूल के पास अवरोधक या रेल फेंसिंग बैरियर लगवाना अनिवार्य किया गया। आप जानती हैं, निगरानी के साथ साथ सुरक्षा जैकेट या नाव या डोंगी भी जरूरी कर दिए गए हैं। और सखियों, केवल सुरक्षित स्थानों पर तैराकी करना, स्नान करना लाइफ गार्ड की मौजूदगी में निश्चित की गई है। साथ ही पर्यटकों को भी ये ध्यान रखने को कहा जाता है कि जब भी आप पानी की जगह पर जाएं तो संकेतों को ध्यान में रखें, गहरे पानी की जगह में ना जाएं, तेज बहाव का ध्यान रखें। सबसे ज़रूरी बात कि नशे में रहकर तैराकी करना या तालाबों में स्नान करना बिल्कुल भी गलत बात है। बिना प्रशिक्षण के गहरे पानी में तैराकी कभी ना करें। यदि आप सक्षम नहीं हैं तो डूबते हुए व्यक्ति को बचाने के लिए भी स्वयं पानी में कभी ना कूदें। बरसात के दिनों में पानी वाली जगहों पर पिकनिक जाने से बचे सखियो। इन सभी बातों का संकल्प लेते हुए कल यानी 25 जुलाई को शामिल हो जाइए विश्व डूबने से बचाओ इस दिवस में। जल जीवन भी है सखियों और खतरा भी है। मुस्कुराता जीवन जिए और मौसम का तो लुत्फ उठाते ही रहें, क्योंकि मौसम बहुत सुहावना है। सुनिए ये प्यारा सा गीत।

0: और आइए सखियो, अब आपको सुनवाते हैं ये भेंट वार्ता। विषय है प्राकृतिक चिकित्सा और महिलाओं का स्वास्थ्य। इस विषय पर आज जानकारी दे रही हैं प्राकृतिक विशेषज्ञ सुनीता जोशी, और इनसे बातचीत की है दुर्गेश नंदिनी ने। सुनिए।
1: सखियो, एक शांत तालाब पर एक गुलाबी कमल का फूल और दो लिली के पत्ते तैर रहे हैं। सुनकर अच्छा लग रहा है ना? मन मस्तिष्क में सुकून महसूस हो रहा है। जी हाँ सखियों, प्राकृतिक चिकित्सा भी एक ऐसी ही स्वास्थ्य प्रणाली है जो शरीर को स्वयं ठीक करने की प्राकृतिक क्षमता का समर्थन करती है। जी हाँ सखियों, महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए प्राकृतिक चिकित्सा एक समग्र दृष्टिकोण है जो सही पोषण, योग और जड़ी बूटियों के माध्यम से शरीर को प्राकृतिक रूप से ठीक करने में मदद करती है। सखियों, यदि आप अपनी प्राकृतिक चिकित्सा यात्रा शुरू करना चाहती हैं तो ध्यान से सुनिएगा हमारी आज की भेंट वार्ता को। जी हाँ, विषय है प्राकृतिक चिकित्सा और महिलाओं का स्वास्थ्य। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में उपस्थित हैं प्राकृतिक चिकित्सक, योगा एक्सपर्ट श्रीमती सुनीता जोशी जी। नमस्कार सुनीता जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में।
2: नमस्कार, धन्यवाद।
1: सुनीता जी, विषय से आप वाकिफ हैं, हम आपसे सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि प्राकृतिक चिकित्सा के मूल सिद्धांत क्या हैं?
2: प्राकृतिक चिकित्सा के मूल सिद्धांत हैं प्रकृति के द्वारा अपनी प्रकृति को स्वस्थ प्रदान करना, यानी अपने शरीर के अंदर जो भी विकार है उनको प्राकृतिक रूप से ठीक करना।
1: चलिए, ये तो बात हो गई कि प्राकृतिक चिकित्सा के मूल सिद्धांत क्या हैं। अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे, जैसा कि हमारा आज का विषय है, कि क्या महिलाओं के स्वास्थ्य में प्राकृतिक चिकित्सा मदद करती है?
2: जी हाँ, बिल्कुल। जैसे माँ अपने बच्चे की देखभाल करती है, वैसे ही प्राकृतिक चिकित्सा हर महिला की, हर पुरुष की, सभी के स्वास्थ्य की मदद करती है और स्वास्थ्य प्रदान करती है।
1: यानी कि हम कह सकते हैं कि जो प्राकृतिक चिकित्सा है वो महिलाओं के लिए वरदान है।
2: जी हाँ।
1: सुनीता जी, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, संतुलित जीवन शैली के माध्यम से महिलाएं कैसे स्वास्थ्य को बेहतर बना सकती हैं, ये भी आप हमारी सखियों को बताएं प्लीज।
2: योग के द्वारा, प्राकृतिक चिकित्सा के द्वारा और संतुलित जीवन शैली के द्वारा, यानी नियमित योगाभ्यास, प्राकृतिक चिकित्सा में बहुत सारे प्रयोग है जो प्राकृतिक रूप में हमारे शरीर में अप्लाई किए जाते हैं, जैसे मिट्टी का पैक, गर्म ठंडा सेक, सूर्य किरण चिकित्सा, और संतुलित जीवन शैली को व्यवस्थित करके, यानी आहार को सुव्यवस्थित करके महिलाएं अपने स्वास्थ्य को बेहतर बना सकती हैं।
1: क्या बात है सुनीता जी, मासिक धर्म से जुड़ी समस्याएं तो महिलाओं के साथ आए दिन सुनने में आती हैं, साथ ही पीसीओडी की जो समस्या है वो एक आम समस्या हो गई है, और खास करके जो हमारी युवतियां हैं, कॉलेज गोइंग गर्ल्स हैं, अक्सर सुनने में आता है पीसीओडी की समस्या जो है हमें हो गई है, तो क्या इसमें भी प्राकृतिक चिकित्सा की भूमिका सहायक हो सकती है?
2: जी हाँ, बिल्कुल। प्राकृतिक चिकित्सा और प्राकृतिक जीवन शैली से पीसीओडी की समस्या से निदान पाया जा सकता है। सबसे पहले अपने आहार को शुद्ध किया जाए, समय पर किया जाए, बाहर के भोजन के बजाय घर का शुद्ध, सात्विक और अच्छा भोजन किया जाए, और प्राकृतिक चिकित्सा के बहुत सारे प्रयोग हैं जो ऋतुओं के अनुसार किए जाते हैं, उससे आप स्वास्थ्य लाभ ले सकते।
1: क्या बात है, यानी कि यदि हम घर का शुद्ध भोजन करते हैं तो ये जो समस्याएं हैं पीसीओडी की, उससे हमें काफी कुछ राहत मिल सकती है। यानी आपका कहने का मतलब ये कि जो बाहर का भोजन है, जंक फूड है, फास्ट फूड है, उसको अवॉइड करना चाहिए।
2: हाँ जी बिल्कुल, बाहर का भोजन तो बहुत नुकसानदायक है, साथ ही मानसिक तनाव, और इसको दूर करने के लिए हमको ध्यान का अभ्यास, आज के समय में बच्चों को, बुजुर्गों को, बड़ों को, सभी को ध्यान का अभ्यास करना बहुत आवश्यक है, तभी हमारा मन शांत होगा और शरीर में होने वाले उपद्रवों से शांति मिलेगी और आरोग्य को आप प्राप्त होंगे।
1: यानी जो प्राकृतिक चिकित्सा है और जो मेडिटेशन हम करेंगे तो महिलाएं जो है उनके स्वास्थ्य से जो जुड़ी समस्याएं हैं उसका हमें समाधान मिल सकता है, हमारी जो बॉडी है वो डिटॉक्स होगी। सुनीता जी, ये तो बात हो गई मासिक धर्म की, पीसीओडी की, अब बात करते हैं मेनोपॉज की। मेनोपॉज के दौरान होने वाले जो हार्मोनल चेंजेस हैं, हार्मोन्स के जो परिवर्तन होते हैं, तो क्या वहाँ पर भी प्राकृतिक चिकित्सा काम करती है? योग की भी उसमें कोई विशेष भूमिका है तो आप बताएं प्लीज।
2: बिल्कुल, योग की तो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। योगाभ्यास के द्वारा मोनोपॉज के दौरान जो विचार होते हैं, चिड़चिड़ाहट होती है, बेचैनी होती है, उससे मुक्ति मिलती है। योग के साथ ध्यान का अभ्यास और प्राकृतिक चिकित्सा के छोटे छोटे प्रयोग, मिट्टी के, पानी के, इन प्रयोगों द्वारा उस दौरान होने वाली जो भी समस्या है उससे निजात पाई जा सकती है।
1: क्या बात है। और अक्सर महिलाओं में रक्त की कमी की शिकायत हमें सुनने को मिलती है, तो क्या यहाँ प्राकृतिक चिकित्सा काम कर सकती है?
2: हाँ जी बिल्कुल। आहार में सुधार, लोहे के बर्तन में भोजन बनाना और उसके जो कारण है महिलाओं में, जिस कारण आयरन की कमी हो रही है उसको दूर करने के प्राकृतिक चिकित्सा में बहुत सुंदर सुंदर प्रयोग है, उसको अपना कर आप इस रोग से निजात पा सकते हैं।
1: कुछ आप एग्जाम्पल देंगे कि प्राकृतिक चिकित्सा के ऐसे उदाहरण जिनका हम उपयोग करें तो रक्त की जो कमी है वो दूर हो सकती है?
2: हाँ, सर्वप्रथम तो लोहे के बर्तन में भोजन बनाना, अनार का सेवन पर्याप्त करना, बीटरूट का सेवन करना, पेट की लपेट करना और लिवर के फंक्शन को ठीक करना, इसके द्वारा इन रोगों से हम मुक्ति पा सकते हैं।
1: अभी आपने कहा कि बीटरूट का हम उपयोग करें यानी चुकंदर का, लेकिन अक्सर पढ़ने सुनने में आता है कि उसे डायरेक्ट जो है कच्चा सेवन नहीं करना चाहिए, स्वास्थ्य के लिए दुष्परिणाम होते हैं, तो क्या ये मिथ है, भ्रांति है?
2: हाँ जी, थोड़ा सा इसमें परिवर्तन हम कर सकते हैं। एक टमाटर के साथ उसको बॉईल करके और फिर उसमें आप सेंधा नमक लगाकर नींबू के साथ या टमाटर के साथ ले सकते हैं, तो वो पचने में हल्का रहेगा, अदरवाइज वो बहुत ज्यादा भारी होता है।
1: जी जी, तो सखियों आप सुन रही हैं कि कैसे हम जो है चुकंदर का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने स्वास्थ्य के लिए। अब बात करते हैं कि गर्भावस्था और प्रसव के बाद प्राकृतिक चिकित्सा और योग की क्या भूमिका है?
2: हाँ जी, गर्भावस्था के दौरान तो योगाभ्यास बहुत गुणकारी, लाभदायक और सर्वश्रेष्ठ है। साथ ही साथ प्राकृतिक चिकित्सा, ताकि गर्भावस्था के दौरान अगर किसी भी प्रकार की कोई उपद्रव होता है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है या लूज मोशन, जो भी ऐसी छोटी मोटी परेशानी होती है, वो प्राकृतिक चिकित्सा के प्रयोगों से दूर होती है और योग और ध्यान के द्वारा गर्भवती महिलाओं को बहुत लाभ मिलता है और ये करना ही चाहिए। और प्रसव के बाद भी नियमित रूप से कुछ आसन ऐसे करें जिससे शरीर वापस अपनी सामान्य आकृति में आ जाए और शरीर में चुस्ती और फुर्ती बनी रहे।
1: बहुत ही अच्छी हमारी बातचीत चल रही है। और सुनीता जी, जैसा कि हमारी जो बदलती जीवन शैली है उसके चलते हम देख रहे हैं कि तनाव बढ़ा है, डिप्रेशन, एंजाइटी सुनने में आ रहा है, एक आम समस्या हो गई है, तो इस समस्या से निजात पाने में प्राकृतिक चिकित्सा और योग सहायक हो सकते हैं?
2: बिल्कुल सहायक होते हैं, बिल्कुल 100%। और ये बहुत बार प्रैक्टिकल अप्लाई भी किया है। क्यों? क्योंकि जब तनाव ज्यादा होता है तो हमें योगाभ्यास, प्राणायाम, ध्यान करना है, साथ ही प्राकृतिक चिकित्सा के छोटे छोटे प्रयोग, जैसे सिर में साफा लपेट का प्रयोग बहुत चमत्कारिक लाभ देता है, पेट पे मिट्टी का पैक लगाने से, आंखों पर मिट्टी का पैक रखने से मानसिक तनाव दूर होता है और मन शांत और प्रफुल्लित हो जाता है।
1: सुनीता जी, अब एक और विशेष बात, अक्सर हम देखते हैं कि जो मोटापा है वो एक आम समस्या बनता जा रहा है और खास करके महिलाओं में जब ये मोटापा आता है तो बहुत सारी समस्याओं से घिर जाती हैं। तो ऐसे में प्राकृतिक चिकित्सा जो है उससे मोटापा कैसे दूर किया जा सकता है?
2: सबसे ज्यादा लाभ प्राकृतिक चिकित्सा के द्वारा मोटापे पर ही विजयी पाई जा सकती है।
1: क्या बात है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है।
2: बिल्कुल 100% रिजल्ट है प्राकृतिक चिकित्सा के द्वारा मोटापे को कम करना, अपने मन

0: को शांत और आनंदित करना। और प्राकृतिक चिकित्सा में इतने सुंदर सुंदर प्रयोग हैं ग्रीष्म ऋतु के, शीत ऋतु के, उसको अप्लाई करके वजन तेजी से कम किया जा सकता है और कमजोरी भी नहीं आती। तो मैं तो चाहूंगी कि जिनका भी वजन ज्यादा है वे माताएं बहनें प्राकृतिक चिकित्सा को अप्लाई करें और आनंद में रहें।
1: क्या बात है, ऐसा क्यों आप सुन रही है? स्लिम ट्रिम रहना चाहती है तो प्राकृतिक चिकित्सा का आप सहारा ले सकती है। हम तो यही कहेंगे कि प्राकृतिक चिकित्सा से आप अपनी गहरी दोस्ती कर लें। बहुत अच्छी हमारी बातचीत चल रही है और हमारी सखियों को बहुत अच्छी जानकारी मिल रही है इस भेंट वार्ता के माध्यम से। सुनीता जी, अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि प्राकृतिक चिकित्सा के अनुसार महिलाओं की जीवन शैली कैसी होनी चाहिए?
0: प्राकृतिक चिकित्सा, जैसे प्रकृति के द्वारा चिकित्सा, जैसे एक माँ अपने बच्चे को संभालती है वैसे ही प्रकृति माँ भी हमें संभालती है। तो उनके साथ तादात्म्य बनाए रखने के लिए जीवन शैली को वैसे ही करना, यानी नेचुरल डाइट को ज्यादा से ज्यादा अपने दैनिक जीवन में अप्लाई करना। प्रातः काल उठ के फलों का या नींबू पानी इस प्रकार का सेवन करना, दोपहर में अच्छा पौष्टिक आहार, घर का बना हुआ शुद्ध आहार, देर रात्रि को भोजन नहीं करना, समय पर भोजन करना, ऐसी जीवन शैली को व्यवस्थित करके हम अपने जीवन को स्वास्थ्य और आरोग्य प्रदान करते हैं। और प्राकृतिक चिकित्सा के छोटे छोटे प्रयोगों के द्वारा दैनिक जीवन में कार्य करते हुए भी महिलाएं माताएं अपने घर के काम करते हुए भी प्राकृतिक चिकित्सा के दो एक प्रयोग ऐसे हैं उसको करके दिन भर काम कर सकती हैं और स्वास्थ्य भी प्राप्त कर सकती हैं।
1: क्या बात है, तो ये तो बात होगी जीवन शैली की। अब आप ये भी बताएं कि ऐसी कौन सी 3 आदतें महिलाओं को अपनाना चाहिए ताकि वे हमेशा स्वस्थ और सुंदर रहें।
0: दैनिक जीवन में सबसे पहले प्रातः काल उठते से योगाभ्यास, ईश्वर को धन्यवाद देना कि हमें ईश्वर आपने इतना सुंदर जीवन दिया, माता बहने हम बनी हैं, तो हमें योगाभ्यास करना, ध्यान करना, आयुर्वेद का कुछ उपयोग भी कर सकते हैं छोटी मोटी औषधि के रूप में, साथ ही आंवला पानी, पके हुए फल, पौष्टिक आहार, अंकुरित अनाज, इस प्रकार का आहार लेकर हम स्वस्थ और सुंदर रह सकते हैं।
1: क्या बात है, तो सखियों आपको सुनीता जी ने ये मंत्र बता दिया है कि आप हमेशा कैसे स्वस्थ और सुंदर रह सकती हैं। सुनीता जी, आप हमारे स्टूडियो में आई और विषय से संबंधित इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
2: सखियों, ये भेंट वार्ता आपने सुनी महिलाओं का स्वास्थ्य और प्राकृतिक चिकित्सा। प्राकृतिक विशेषज्ञ सुनीता जोशी से बातचीत कर रही थी दुर्गेश नंदिनी। और आइए अब आपको एक बहुत प्यारा सा गीत सुनवाते हैं 60 के दशक का।

सगी जिंदगी भर नहीं भूलेगी वो बरसात की रात। बरसात की एक रात फिल्म का ये प्यारा सा गीत सखियों आपने सुना, और अब आपको सुनवाते हैं, बताते हैं प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के बारे में। जी हाँ, ये योजना भारत सरकार द्वारा हर नागरिक के कौशल विकास को बढ़ावा दे रही है, प्रोत्साहित कर रही है ये योजना, जिससे पारंपरिक कारीगरों को प्रशिक्षण 15,000 रुपये के साथ साथ टूल किट 5% की कम ब्याज दर पर 3,00,000 रुपए तक बिना गारंटी के ऋण देने वाली ये योजना है। योजना के तहत कारीगरों को पहचान पत्र भी मिलता है, आधुनिक उपकरणों हेतु 15,000 रुपए का ई वाउचर भी दिया जाता है, 5 से 7 दिनों का बुनियादी प्रशिक्षण हर फील्ड में ये योजना दे रही है, जिसमें 500 रुपए का वजीफा भी मिलता है कारीगरों को। तो लकड़ी का काम हो, खिलौने बनाने का काम हो, सिलाई या बहुत सारी गतिविधियां इसके अंतर्गत आती हैं। तो कारीगर भाई बहन इस योजना से जुड़कर स्वयं के कौशल विकास को बढ़ावा दे रहे हैं। आप भी आगे बढ़िए सखियों और प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना का लाभ लीजिए। और अब हम बात करते हैं मी टाइम की। आइए, आपका इंतज़ार था, कितना अच्छा लगता है ना सुनने में ये प्यारी सी लाइन। जब हम सुनते हैं तो हमें लगता है हम बहुत ख़ास हैं, और खासियत को हमें बरकरार रखना होता है सखियों स्वागत के साथ, अलविदा कहते हुए भी। यानी जब हम मिलते वक्त जिंदा दिली से मुस्कुराते हुए मिलते हैं ना, तो वक्त की नज़ाकत को ध्यान में रखते हुए हम अलविदा भी एक अदा के साथ कहें तो व्यक्तित्व में 4 चांद लगते हैं हमारे। सलीके से विदा लेने का हमारा जो काम होगा वो हमारे अच्छे स्वभाव और व्यक्तित्व को पहचान देगा। स्थिति के अनुसार स्वयं को अलविदा कहलवाएं, बेहतरीन तरीका है ये, है ना। सम्मानजनक शब्द, हमारी जो बॉडी लैंग्वेज होती है, हमारे जो हाव भाव होते हैं, वो बहुत ज़रूरी होते हैं अलविदा लेते समय। समय स्थिति का ध्यान यानी बातचीत को लंबा ना खींचें। कोई व्यस्त हो तो बिना शोर मचाए शालीनता से उस जगह से चुपचाप निकलें। किसको और किस मौके पर अलविदा कह रहे हैं ये ध्यान रखिएगा, दोस्त, कलीग या कोई बहुत ख़ास, यानी कुछ इस तरह से भी कहा जा सकता है कि आज की यादें हमेशा हमारे साथ रहेंगी। ये विदाई पल भर की है, पर आपकी बातें हमारे दिल में हमेशा रहेंगी। अलविदा नहीं, हम फिर मिलेंगे ना एक बार, और मिलने का वादा हम करते हैं आपसे। अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलते हैं और जल्दी ही मिलेंगे। ये कुछ अंदाज हैं आपके अलविदा कहने के, जो आपके व्यक्तित्व में 4 चांद लगाएंगे। जी हाँ सखियों, नज़ाकत से अलविदा कहेंगे तो व्यक्तित्व में निखार भी लाएंगे आप। ये था आज का मी टाइम।

नागिन फिल्म का ये गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में सखियों आपने सुना, और अब आपकी सुरक्षा आपके हाथ के अंतर्गत आज हम बात करेंगे कि आसपास यदि जल भराव की समस्या है, निकासी नहीं हो रही है, नाली चौक हो रही है, तो इसकी शिकायत कहाँ दर्ज करवाई जाए। ध्यान रखिए, आपके शहर के नगर निगम विभाग तक आप अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। जैसे अगर आप इंदौर के हैं तो इंदौर 311 ऐप डाउनलोड करें, समस्या की फ़ोटो खींचें और समस्या श्रेणी चुनकर अपने सबमिट कर दें समस्या को। नगर निगम की आधिकारिक वेबसाइट अपनी समस्या दर्ज करवाने के लिए हमेशा खुली है सखियों, और सीएम हेल्पलाइन नंबर 181 पर कॉल करके आप अपनी समस्या दर्ज करवा सकते हैं। ये सुविधाएं आपके लिए सरकार की तरफ से उपलब्ध हैं। मदद दूसरों की भी करें और अपनी समस्याओं को सुलझाइए। पानी का जमाव ना होने दें, बीमारियाँ नहीं फैलेंगी। और आपसे यही कहेंगे कि आज का कार्यक्रम बस यहीं तक। कार्यक्रम संयोजन डॉक्टर प्रीति छड़ीदार का, महिला सभा से अनुमति ले रही हूँ मैं संयोगिता जोशी। नमस्कार।

आप सुन रहे थे महिला सभा कार्यक्रम मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज़ पर। आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। अगला प्रसारण आकाशवाणी मध्य प्रदेश से, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लोक संगीत के कार्यक्रम में लीजिए प्रस्तुत है कमलेश कुशवाहा द्वारा गाए लोक भजन। ये कार्यक्रम आकाशवाणी छतरपुर की प्रस्तुति है।

0: राजू पटेल और साथियों द्वारा गाए राम भजन।
1: अरे सांवरी सूरत मोहिनी मूरत चित से टरे नटारी। अरे सांवरी सूरत मोहिनी मूरत

लोक संगीत के कार्यक्रम में अभी आपने सुना राजू पटेल और साथियों द्वारा गाया एक राम भजन। ये कार्यक्रम आकाशवाणी छतरपुर की प्रस्तुति था। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।

0: सुगम संगीत के कार्यक्रम में आप सुन रहे थे सुनील भट्ट द्वारा गाए गीत और भजन। ये कार्यक्रम आकाशवाणी छतरपुर की प्रस्तुति था। हमारा अगला कार्यक्रम कुछ ही पलों में होगा, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: भोर की चौखट पर भक्ति की धारा,
2: ऑफिस जाने की जल्दी मगर देश दुनिया की खबर भी जरूरी।
3: ये आकाशवाणी है, अब आप समाचार सुनिए।
1: ऑफिस या घर से निकलते ही उफ, ये ट्रैफिक।
2: आकाशवाणी है ना,
4: बातों ही बात।
3: इस समय आप हैं हमारे साथ।
5: जी हाँ, मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर के साथ।
6: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
7: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
6: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
4: एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।
8: अरे आप लोगों को मालूम पड़ा कि नहीं?
9: क्या?
8: अब आकाशवाणी इंदौर पूरी दुनिया में सुना जा सकता है।
9: वो कैसे?
8: वो ऐसे कि अब आकाशवाणी इंदौर न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है।
9: पर सुनेंगे कैसे?
8: इसके लिए अपने मोबाइल फोन पर जाकर डाउनलोड कीजिए न्यूज ऑन AIR ऐप और लाइव रेडियो पर जाकर सुनिए आकाशवाणी इंदौर के कार्यक्रम।
3: तो सुनते रहिए मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर।

0: युवाओं के जोश, उमंग और ज्ञान से भरे कार्यक्रम युववाणी का प्रसारण होता है प्रतिदिन शाम 5 बजे,
1: जिसमें होती है नित नई जानकारियाँ, मनोरंजन और ज्ञान की बातें।
0: तो सुनते रहिए मालवा की शान,
2: आकाशवाणी इंदौर।
1: आकाशवाणी इंदौर अब मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध है।
3: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत, जहां हम आपको सुनवाते हैं फिल्मी गीत। कार्यक्रम का पहला गीत आपके लिए प्रस्तुत है सोनू निगम, शान और शंकर महादेवन की आवाज में फिल्म हे बेबी से।

शंकर एहसान लॉय का संगीत समीर के लिखे बोल, सोनू निगम, शान और शंकर महादेवन की आवाज़ में गीत सुना आपने फिल्म हे बेबी से। कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं केके की आवाज़ में फिल्म बजरंगी भाईजान से।

0: प्रीतम का संगीत कौसर मुनीर के लिखे बोल केके की आवाज़ में गीत सुना आपने फिल्म बजरंगी भाईजान से और इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कुछ ही पलों में प्रादेशिक समाचार प्रसारित किए जाएंगे, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले के बाद पिछले ढाई महीने में कई कदम उठाए गए हैं और दोषियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। कल रात एक वीडियो संदेश में श्री मोदी ने कहा कि पेपर लीक कोई छोटा मुद्दा नहीं है, ये लाखों विद्यार्थियों और अभिभावकों के लिए बेहद पीड़ादायक है। प्रधानमंत्री ने कहा,
1: मैं जानता हूं कि पेपर लीक एक कोई मामूली विषय नहीं है, लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है और इसलिए पेपर लीक घटना से अब तक पिछले ढाई महीनों में अनेक विविध कदम उठाए गए, गुनहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में पड़े हैं। हमारा सबसे महत्वपूर्ण जिम्मा था कि विद्यार्थियों का एक वर्ष बर्बाद न हो। सरकार ने अभी कम से कम समय में 22 लाख जितने विद्यार्थियों के एग्जाम हो जाए इसका प्रबंध किया।
0: सोनम वांगचुक ने अपना अनशन समाप्त कर दिया है। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने गुरुग्राम

0: ने मेदांता अस्पताल में वांगचुक से मुलाकात की थी। इसके बाद वांगचुक ने छात्रों की चिंताओं पर सरकार के भरोसे के बाद अनशन खत्म करने का फैसला लिया। केंद्रीय मंत्रियों ने इसे केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता पर छात्रों के भरोसे का प्रतीक बताया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज पन्ना जिले के दौरे पर रहेंगे। वे यहां करीब 204 करोड़ रुपए लागत के 22 विकास कार्यों की सौगात देंगे। मुख्यमंत्री करीब 95 करोड़ रुपए के 6 विकास कार्यों का लोकार्पण भी करेंगे। साथ ही करीब 110 करोड़ रुपए के 16 विकास कार्यों का भूमि पूजन करेंगे। इनमें कई स्कूल और कॉलेज भवनों के निर्माण, बैराज योजना और सड़क निर्माण जैसे कार्य शामिल हैं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आज ग्वालियर और दतिया जिले के दौरे पर हैं। उन्होंने सुबह मां पीताम्बरा पीठ पहुंचकर मां बगलामुखी के दर्शन किए। इसके बाद वे दतिया उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी आशुतोष तिवारी के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे। ग्वालियर में श्री सिंधिया ने नीट पेपर लीक मामले पर प्रतिक्रिया भी दी। उन्होंने कहा कि दोषियों पर कठोरतम कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि पेपर लीक पर कठोरतम दंड का प्रस्ताव केंद्रीय कैबिनेट में लाया जाएगा, जिससे भविष्य के पेपर सुरक्षित रहेंगे। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे लगातार छठे दिन भी बंद है। लगातार बारिश के कारण कई जगहों पर भूस्खलन और पत्थर गिरने की घटनाएं हुई हैं। इसके चलते श्री अमरनाथ जी यात्रा, माता वैष्णो देवी यात्रा और शिव खोरी यात्रा सहित सभी प्रमुख धार्मिक यात्राएं स्थगित रही हैं। नॉर्दर्न रेलवे ने श्रीनगर और कटरा के बीच एक स्पेशल ट्रेन चलाकर 600 पर्यटकों को घाटी से बाहर निकाला। अधिकारियों ने यात्रियों को सलाह दी है कि वे यात्रा से पहले ट्रेन और सड़क की ताजा स्थिति की जानकारी जरूर ले लें। फंसे हुए श्रद्धालुओं के लिए बेस कैंपों में मुफ्त भोजन और रहने की व्यवस्था की गई है। प्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग ने एनसीटी पाठ्यक्रमों में प्रवेश से वंचित विद्यार्थियों को अंतिम अवसर दिया है। इच्छुक अभ्यर्थी 24 से 27 जुलाई तक ऑनलाइन पंजीयन करा सकेंगे। 30 जुलाई को मेरिट सूची जारी होगी और 31 जुलाई को सीट आवंटन किया जाएगा। अब तक प्रदेश में करीब 4,80,000 विद्यार्थियों ने प्रवेश प्राप्त कर लिया है। भोपाल के गांधी चिकित्सा महाविद्यालय ने मुख कैंसर के शुरुआती पहचान के लिए एआई आधारित नई तकनीक विकसित की है। भारत सरकार ने इस तकनीक के डिजाइन को पेमेंट प्रदान किया है। महाविद्यालय के डेंटल सर्जरी विभाग ने मुख आरोग्य नाम का एआई आधारित मोबाइल ऐप भी तैयार किया है। इस ऐप का उपयोग आशा कार्यकर्ता और स्वास्थ्यकर्मी कर सकेंगे, जिससे ग्रामीण इलाकों के लोगों को खास फायदा मिलेगा। प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने हर साल 26 दिसंबर को मनाए जाने वाले वीर बाल दिवस को भारत स्काउट्स और गाइड्स के कार्यक्रम में शामिल कर व्यापक स्तर पर मनाने के निर्देश दिए हैं। मंत्री परमार की अध्यक्षता में कल स्काउट्स और गाइड्स की राज्य स्तरीय राज्य परिषद की विशेष बैठक हुई। और अब बात मौसम की। प्रदेश में मानसून ने फिर रफ्तार पकड़ ली है। मौसम विभाग ने आज शिवपुर, मंदसौर, रतलाम, अलीराजपुर और पन्ना जिले के लिए भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। इन जिलों में अगले 24 घंटों में करीब 4 इंच तक बारिश हो सकती है। भोपाल, इंदौर, उज्जैन सहित 40 से ज्यादा जिलों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। आगर मालवा के नलखेड़ा स्थित संदीपनी विद्यालय में मनाए जा रहे गुरु पूर्णिमा पखवाड़े के तहत विभिन्न गतिविधियां हो रही हैं। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन शाम 7:10 पर। नमस्कार।
1: नमस्कार। आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पेपर लीक घटना के बाद 2.5 महीने में दोषियों की गिरफ्तारी सहित कई कदम उठाए गए। नीट पेपर लीक मामले पर सरकार और सीजेपी के बीच नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में दूसरे दौर की वार्ता जारी। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट पेपर लीक मामले में विपक्ष के विरोध के कारण सोमवार तक स्थगित। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी को नीट पेपर लीक के बाद लागू किए गए सुधारों की प्रगति पर विस्तृत हलफनामा दाखिल करने के निर्देश दिए। भारत ने पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में दमनकारी गतिविधियों को संयुक्त राष्ट्र द्वारा नजरअंदाज किए जाने पर निराशा व्यक्त की। मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान, गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया और भारत की अनाहत सिंह विश्व जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पेपर लीक की घटना के बाद पिछले ढाई महीने में कई कदम उठाए गए हैं। दोषियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। कल रात एक वीडियो संदेश में श्री मोदी ने कहा कि सरकार की मुख्य जिम्मेदारी ये सुनिश्चित करना था कि विद्यार्थियों का शैक्षणिक वर्ष व्यर्थ न जाए। प्रधानमंत्री ने कहा कि संबंधित विभागों को फास्ट ट्रैक अदालतों के लिए प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं।
2: फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे। विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा।
1: दिल्ली उच्च न्यायालय ने सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 के अंतर्गत मामलों की सुनवाई के लिए एक त्वरित न्यायालय का गठन किया है। इस कदम का उद्देश्य सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित तरीकों से संबंधित मामलों का शीघ्र निपटारा सुनिश्चित करना है। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पेपर लीक से संबंधित लंबित मामलों की सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन के निर्णय की सराहना की है। श्री मेघवाल ने मीडिया से कहा कि इन अदालतों में मामलों की सुनवाई प्रतिदिन होगी।
3: प्रधानमंत्री जी ने निर्णय लिया कि पेपर लीक से संबंधित जो मामले अदालतों में लंबित हैं, चल रहे हैं, उनकी सुनवाई हम स्पेशली डेजिग्नेटेड फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करके करवाएंगे, जिससे डे टू डे बेसिस पे सुनवाई होगी, स्पीडी ट्रायल होगा और टाइम बाउंड इन्वेस्टिगेशन होगा, तो युवाओं को न्याय मिलेगा।
1: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन की घोषणा को देश के शिक्षा प्रणाली के लिए मील का पत्थर बताया है। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह तथा कई अन्य भाजपा नेताओं तथा कांग्रेस जनता पार्टी सीजेपी के प्रतिनिधियों के बीच नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में दूसरे दौर की बातचीत जारी है। ये बैठक राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर युवाओं के नेतृत्व में चल रहे विरोध प्रदर्शनों में हुए महत्वपूर्ण घटनाक्रमों के बाद हो रही है। सीजेपी के प्रतिनिधियों सौरभ दास, आशुतोष रांका, अभिजीत दिपके और दीपक बलियान ने सरकार द्वारा उनकी दो शर्तों को स्वीकार करने के बाद वार्ता के लिए सहमति जताई है। ये शर्तें हैं, शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी और हाल में हुई परीक्षाओं में अनियमितताओं से प्रभावित विद्यार्थियों के परिवारों को पर्याप्त मुआवजा दिया जाएगा। संसद के दोनों सदनों में आज लगातार पांचवें दिन नीट पेपर लीक के मुद्दे पर हंगामा जारी रहा। कई बार के स्थगन के बाद लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। दोपहर 12 बजे पहले स्थगन के बाद सदन की कार्यवाही फिर शुरू होने पर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार पहले दिन से ही नीट पेपर लीक मामले पर चर्चा के लिए तैयार है।
4: पार्लियामेंट हम लोग चर्चा नहीं करेंगे तो बिल्कुल अच्छा संदेश नहीं जाएगा। मैं राहुल गांधी जी से अनुरोध करता हूं, आप अपने कांग्रेस पार्टी के साथियों को तरह समझा दीजिए और बाकी कई पार्टीज के एमपीज भी निजी तौर पर सबने अपना मत रखा है कि चर्चा होना चाहिए। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि आज पांचवा दिन है, हम इसमें एक अच्छा सार्थक बहस क्यों नहीं कर सकते हैं।
1: सभापति जगदम्बिका पाल ने कहा कि विपक्ष को सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने में सहयोग करना चाहिए। इससे पहले नीट पेपर लीक मामले में विपक्ष के विरोध के बाद संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई थी। दिन में 11 बजे लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला सहित सदन के सदस्यों ने करगिल युद्ध में सर्वोच्च बलिदान देने वाले भारतीय सशस्त्र बलों के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की।
5: दिनांक 26 जुलाई 2026 को कारगिल विजय दिवस की 27वीं वर्षगांठ है। ये सभा भारतीय सशस्त्र बलों के उन वीर जवानों को श्रद्धापूर्वक नमन करती है जिन्होंने अत्यधिक दुर्गम पर्वतीय क्षेत्रों, विषम परिस्थितियों और प्रतिकूल मौसम की परवाह न करते हुए अद्वितीय वीरता और अटूट संकल्प का परिचय दिया।
1: करगिल शहीदों की याद में सदन में मौन भी रखा गया। उधर राज्यसभा की कार्यवाही भी इसी मुद्दे पर शोर शराबे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। दोपहर 12 बजे पहले स्थगन के बाद सदन की कार्यवाही शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्ष ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर हंगामा जारी रखा। दिन में 11 बजे राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होने पर सदन में कारगिल युद्ध के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि कारगिल विजय दिवस 1999 के कारगिल युद्ध में भारत की विजय का स्मरणोत्सव है।
6: On this occasion, this house pays its

0: Respectable homage to the gallant martyrs who made the supreme sacrifice in service of the nation. We also express our profound gratitude to all the members of the armed forces.
1: राज्यसभा में भी शहीदों के सम्मान में मौन रखा गया। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा है कि जब तक शिक्षा मंत्री को पद से नहीं हटाया जाएगा, विपक्ष नीट परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले पर किसी भी चर्चा में हिस्सा नहीं लेगा। संसद परिसर में पत्रकारों से बातचीत में श्री गांधी ने कहा कि छात्रों की तीन प्रमुख मांगे हैं, जिनमें शिक्षा मंत्री का इस्तीफा भी शामिल है। समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने नीट परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में जवाबदेही तय करने की मांग की है। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा कारणों से आज नई दिल्ली सहित 18 मेट्रो स्टेशनों को बंद रखने की घोषणा की है। इन स्टेशनों में लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, पटेल चौक, रामकृष्ण आश्रम मार्ग, बाराखंबा रोड, सुप्रीम कोर्ट, सेवा तीर्थ, जनपद, झंडेवालान, मंडी हाउस, केंद्रीय सचिवालय, आईटीओ, दिल्ली गेट, इंद्रप्रस्थ, खान मार्केट, जोरबाग और शिवाजी स्टेडियम शामिल हैं। हालांकि राजीव चौक, मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय स्टेशनों पर इंटरचेंज की सुविधा जारी रहेगी, लेकिन नई दिल्ली स्टेशन पर इंटरचेंज की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र सरकार और राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी को नीट यूजी पेपर लीक मामले के बाद सुधारों को लागू करने में हुई प्रगति पर एक विस्तृत हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक आराधे की पीठ ने नीट पेपर लीक मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि हलफनामे में केवल अस्थायी उपायों पर निर्भर रहने के बजाय सुधारों को संस्थागत रूप देने के लिए उठाए गए कदमों का स्पष्ट विवरण होना चाहिए। सरकार ने सोशल मीडिया पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे छात्रों के बारे में धमकी भरे बयान देने के वीडियो का खंडन किया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया है कि वीडियो फर्जी है और एआई से बनाई गई है। इकाई ने बताया कि श्री गोयल ने प्रदर्शनों के संबंध में ऐसा कोई बयान नहीं दिया है। सोशल मीडिया पर वायरल लेफ्टिनेंट जनरल राजीव पुरी के एक वीडियो को लेकर बड़ा पर्दाफाश हुआ है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इस वीडियो को फर्जी और डीप फेक बताया है। वीडियो में दावा किया गया है, जो गलत है, कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अनुरोध पर जनरल पुरी ने नीट परीक्षा पेपर लीक मामले के विरोध प्रदर्शनों के बीच राजधानी में अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती का आदेश दिया है। प्रवर्तन निदेशालय ने आज दिल्ली, उत्तर प्रदेश और पंजाब में 8 स्थानों पर तलाश अभियान चलाया। ये कार्रवाई एक कथित बैंक धोखाधड़ी से धन शोधन मामले के संबंध में की गई है। चेन्नई के पास मधुरंथकम में आज एक सड़क दुर्घटना में 3 लोगों की मौत हो गई। पुडुचेरी से चेन्नई जा रही एक कार की लॉरी से टक्कर के कारण ये दुर्घटना हुई। हादसे के समय पिता और पुत्र सहित 3 लोग चेन्नई हवाई अड्डे जा रहे थे। ओडिशा के पवित्र शहर पुरी में भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा की विश्व प्रसिद्ध बहुड़ा यात्रा जारी है। पहंडी अनुष्ठान पूरा हो चुका है और तीनों देवी देवताओं को विधिपूर्वक उनके अपने अपने रथों पर विराजमान कर दिया गया है। अन्य पारंपरिक अनुष्ठानों के संपन्न होने के बाद रथों को खींचने की प्रक्रिया शुरू होगी। एक रिपोर्ट।
2: भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा की पहंडी रस्म सफलतापूर्वक पूरी हो गई है और इन भाई बहन देवताओं को बाहुड़ा यात्रा श्री जगन्नाथ मंदिर वापसी की शुभ यात्रा के लिए उनके रथों पर विधिवत विराजमान किया गया है। श्री गुंडीचा मंदिर से श्री जगन्नाथ मंदिर तक फैली पूरी ग्रांड रोड लाखों भक्तों से खचाखच भरी हुई है। वापसी की यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ का रथ मौसी माँ मंदिर पर पारंपरिक रूप से रुकेगा, जहां भगवान को पोड़ो पीठा का भोग लगाया जाएगा। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @EIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज भारत और रोमानिया के बीच आर्थिक और निवेश संबंधों को विस्तार देने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों में वाणिज्यिक सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। बुखारेस्ट में भारत रोमानिया व्यापार मंच को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि प्रस्तावित भारत

0: यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता व्यापार निवेश और मजबूत आपूर्ति श्रृंखलाओं को बढ़ावा देकर आर्थिक संबंधों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण सिद्ध होगा।
1: इंडिया EU फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इज एन इम्पोर्टेंट माइलस्टोन इन इंडिया EU स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। ट्रेड एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन आर सेंट्रल टू द कंटेंपरेरी पार्टनरशिप विद ए कंबाइंड मार्केट ऑफ नियरली 2 बिलियन पीपल एंड एन इकोनॉमिक जोन ऑफ अराउंड 25 ट्रिलियन डॉलर्स। द इंडिया EU FTA इज एमंग द मोस्ट सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक पार्टनरशिप इन द वर्ल्ड।
0: भारत ने पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में कथित दमन के मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र की प्रतिक्रिया को लेकर निराशा जताई है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हरीश पर्वतानेनी ने कहा कि कुछ मामलों में संयुक्त राष्ट्र की ओर से कड़ी प्रतिक्रिया दी जाती है, लेकिन पाकिस्तान में ऐसी घटनाओं पर अपेक्षित ध्यान नहीं दिया जाता है। ये टिप्पणी पाकिस्तान के संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक बार फिर कश्मीर का मुद्दा उठाने की कोशिश के बाद आई है। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और दुनिया भर में कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की आपूर्ति को लेकर चिंता बढ़ गई है। ब्रेंट क्रूड की कीमतें मई के बाद पहली बार 100 अमरीकी डॉलर प्रति बैरल से ऊपर पहुंच गईं। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में 0.5% से अधिक की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 403 अंक गिरकर 75,989 जबकि निफ्टी 116 अंक गिरकर 23,754 पर पहुंच गया। भारत की अनाहत सिंह विश्व जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। क्वार्टर फाइनल में अनाहत ने मिस्र की हबीबा रिस्क को हराया। अब सेमीफाइनल में अनाहत मिस्र की बार्ब समेह से खेलेंगी। मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। गुजरात में पिछले 3 दिन से मूसलाधार वर्षा के कारण राज्य में जनजीवन अस्त व्यस्त है। एक रिपोर्ट।
2: दक्षिण गुजरात में 2 दिन तक भारी बारिश के बाद आज उत्तर गुजरात में भी भारी बारिश हो रही है। पिछले 6 घंटों में उत्तर गुजरात के वावथरा और पाटन जिलों में 6 इंच से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है। सुबह से अब तक राज्य के 239 तहसील में बारिश हुई है। किसी भी इमरजेंसी से निपटने के लिए अहमदाबाद, नवसारी और वलसाड में NDRF SDRF की कुल 49 टीमें और भारतीय सेना की 6 टीमें तैनात की गई है। दूसरी ओर राज्य में भारी बारिश के बीच राहत और बचाव का काम भी जोरों पर चल रहा है। मयूर सोलंकी, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा पेपर लीक घटना के बाद 2.5 महीने में दोषियों की गिरफ्तारी सहित कई कदम उठाए गए। नीट पेपर लीक मामले पर सरकार और CJP के बीच नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में दूसरे दौर की वार्ता जारी। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट पेपर लीक मामले में विपक्ष के विरोध के कारण सोमवार तक स्थगित। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी को नीट पेपर लीक के बाद लागू किए गए सुधारों की प्रगति पर विस्तृत हलफनामा दाखिल करने के निर्देश दिए। और भारत की अनाहत सिंह विश्व जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंची। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी फरमाइश। कार्यक्रम आपकी फरमाइश लेकर हाजिर हूँ मैं आपकी रेडियो दोस्त रक्षा तंवर, जहाँ हम आपके पत्र को शामिल करते हैं और आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद के फरमाइशी गीत। कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे एक गीत के साथ जिसकी फरमाइश हमें आई है छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरेंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा और जावेंद्र कुमार वर्मा की तरफ से। इसके अलावा दौलतबाग मुरादाबाद से जाफर हुसैन, नईमा बेगम, कासिम अली और नदीम अली ने भी हमें पत्र लिखा है। सपना संगीता रोड इंदौर से लाल फतेह चंदानी, लीला फतेह चंदानी, संगीता, सुनीता, पिंकेश, साक्षी, मनन और तानिया ने भी इस गीत की फरमाइश की है। तो आप सभी श्रोताओं के लिए प्रस्तुत है ये गीत मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में फिल्म एन इवनिंग इन पैरिस से।

शंकर जयकिशन का संगीत हसरत जयपुरी के लिखे बोल, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में गीत सुना आपने फिल्म एन इवनिंग इन पेरिस से। कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवाएंगे लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। इस गीत की फरमाइश हमें मिली है जयराज प्लॉट राजकोट से, मधुसूदन भट्ट, आरती, पूजा, जैस्मिन और प्रयागराज भट्ट की ओर से। इसके अलावा पत्र मिला है हमें बिहार कॉलोनी लोनी से नसीमुल इस्लाम गुनोरी और प्रकाशवीर राजपूत का, डोंडी लोहारा बलोद से कमलेश जयपुरिया का, टाउनशिप भिलाई से अनुश्री प्रदीप, पिंकी और प्रमिला प्रदीप का, जेल रोड रायगढ़ से लालचंद मिश्रा और नरेंद्र कुमार राम का, ग्राम जसवाड़ी से दुर्गेश नागनपुरे, वंदना, भावना, बिंदु, गोलू और सूरज कुमार ढाकसी की ओर से भी इस गीत की फरमाइश मिली है। तो आप सभी श्रोताओं के लिए प्रस्तुत है ये अगला गीत।

शंकर जयकिशन का संगीत, शैलेंद्र के लिखे बोल, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में गीत सुना आपने फिल्म दिल तेरा दीवाना से। कार्यक्रम है आपकी फरमाइश का और अब सुनते हैं अगला गीत आप ही की फरमाइश पर। आवाज़ है शैलेंद्र सिंह की, फिल्म का नाम है खेल खेल में और इस गीत की फरमाइश मिली है औरंगाबाद से राजेश साबले पाटिल, शीतल राजेश, राजदीप राजेश और राशि राजेश की ओर से, गौतम नगर ज़िला नांदेड़ से प्रभाकर जोंधले, आरती जोंधले, रमेश कुमार जाजौरिया, गीता रानी जाजौरिया, गगनदीप जाजौरिया और बेबी आरजू जाजौरिया ने हमें लिखा है पटेल नगर मलौट पंजाब से। और इसके अलावा एक और पत्र हमें मिला है गोला बाज़ार बक्सर से, श्रद्धानंद आर्य, अभयनंद आर्य, परमानंद आर्य, पंकज, प्रमोद, रोहित और मोहित की ओर से। तो आप सभी श्रोताओं के लिए लीजिए प्रस्तुत है ये अगला गीत।

आर डी बर्मन का संगीत, गुलशन बावरा के लिखे बोल, शैलेंद्र सिंह की आवाज़ में गीत सुना आपने फिल्म खेल खेल में से। कार्यक्रम आपकी फरमाइश का हर अगला गीत आपके लिए प्रस्तुत है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में फिल्म एक नज़र से। और इस गीत की फरमाइश हमें मिली है नेपाल पैलेस सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका, नूपुर, रशिका और रॉबिन की तरफ से। लच्छनपुर छत्तीसगढ़ से विश्वनाथ साहू, पंकज साहू, तिरुपति साहू, थनश आरू साहू की ओर से। आदर्श नगर मलोट से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ शर्मा, साइना शर्मा और निवान शर्मा की ओर से। तो लीजिए, अब प्रस्तुत है आप सभी श्रोताओं के लिए ये अगला गीत।

लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत मजरूह सुल्तानपुरी के लिखे बोल मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ में गीत सुना आपने फिल्म एक नज़र से। कार्यक्रम है आपकी फरमाइश का और अगली फरमाइश हमें मिली है ग्राम महेशवाड़ी तहसील मलकापुर महाराष्ट्र से शत्रुघ्न धाड़े वाल्मीक धाड़े नीनाजी धाड़े स्वप्निल धाड़े और अजय खिरोड़कर की तरफ से। बक्सर बिहार से शरफुद्दीन अंसारी पुराना तालाब डुमराव से वलीउल्लाह अंसारी सारिमपुर बक्सर से राज एस डी अंसारी इंदिरा विहार दिल्ली से डब्ल्यू अंसारी जेल रोड बक्सर से नरेंद्र कुमार यादव छठिया पोखरा डुमराव से सुनील कुमार वर्मा मुस्तफ़ाबाद दिल्ली से लाल बाबू दीवाना। इसके अलावा ताज मोहम्मद अंसारी गुलाम साबिर राही और महराज जहाँ ने हमें लिखा है आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से। तो लीजिए प्रस्तुत है आप सभी श्रोताओं के लिए ये अगला गीत।

0: कल्याण जी आनंद जी का संगीत, अनजान के लिखे बोल, आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाज़ में ये गीत सुना आपने फिल्म लावारिस से। और इसी गीत के साथ अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। इसी तरह अपनी फरमाइशें हमें पत्रों के द्वारा भेजते रहें। हमारा पता नोट करें, कार्यक्रम आपकी फरमाइश द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी केंद्र श्यामला हिल्स भोपाल, पिन कोड है 462002। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आपकी फरमाइश, ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले के बाद पिछले 2.5 महीने में कई कदम उठाए गए हैं और दोषियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। कल रात एक वीडियो संदेश में श्री मोदी ने कहा कि पेपर लीक कोई छोटा मुद्दा नहीं है, ये लाखों विद्यार्थियों और अभिभावकों के लिए बेहद पीड़ादायक है। सोनम वांगचुक ने अपना अनशन समाप्त कर दिया है। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में वांगचुक से मुलाकात की थी। इसके बाद वांगचुक ने छात्रों की चिंताओं पर सरकार के भरोसे के बाद अनशन खत्म करने का फैसला लिया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज पन्ना जिले के दौरे पर रहेंगे। वे यहां करीब 204 करोड़ रुपए लागत के 22 विकास कार्यों की सौगात देंगे। मुख्यमंत्री करीब 95 करोड़ रुपए के 6 विकास कार्यों का लोकार्पण भी करेंगे, साथ ही करीब 110 करोड़ रुपए के 16 विकास कार्यों का भूमि पूजन करेंगे। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आज ग्वालियर और दतिया जिले के दौरे पर हैं। उन्होंने सुबह मां पीताम्बरा पीठ पहुंचकर मां बगलामुखी के दर्शन किए। इसके बाद वे दतिया उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी आशुतोष तिवारी के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे लगातार छठे दिन भी बंद है। लगातार बारिश के कारण कई जगहों पर भूस्खलन और पत्थर गिरने की घटनाएं हुई हैं। इसके चलते श्री अमरनाथ जी यात्रा, माता वैष्णो देवी यात्रा और शिव खोरी यात्रा सहित सभी प्रमुख धार्मिक यात्राएं स्थगित रहे हैं। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए अब हम आपको आज की सांध्यकालीन सभा के प्रमुख कार्यक्रमों का विवरण दे दें। शाम 5:02 पर सुनिएगा युवा साथियों का विशेष कार्यक्रम युववाणी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी छतरपुर की प्रस्तुति है। शाम 6 बजे सुनिए एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम। रात 7:21 पर सुनिएगा कार्यक्रम ग्राम सभा। संसद समीक्षा प्रसारित होगी रात 8 बजे। इसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। रात 8:15 पर सुनिएगा कार्यक्रम सुर्खियों में। कार्यक्रम खेल जगत सुनवाया जाएगा आज रात 9:30 पर। और रात 10 बजे सुनिएगा संसद में प्रश्नकाल के दौरान हुई कार्यवाही की रिकॉर्डिंग। इसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। ये थे आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रम। ये आकाशवाणी भोपाल है। अब हमारी ये सभा मीडियम वेव पर समाप्त होती है। शाम 5 बजे से मीडियम वेव पर सभा पुनः आरंभ होगी। इस दौरान डीटीएच के ऑडियो चैनल पर प्रसारण जारी रहेगा।

नमस्कार। मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5 बजने को है। अब हमारी सांध्यकालीन सभा आरंभ होती है। सभा की शुरुआत करेंगे श्रोताओं यूथ प्रोग्राम युववाणी से।

0: नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा रेडियो प्रोग्राम युववाणी में। मैं हूं आपके साथ श्रद्धा।
1: और मैं हूं अनुषा। तो दोस्तों, जैसा आप जानते हैं, आज है शुक्रवार और आज का दिन होता है हमारा खास सेगमेंट खेल और विज्ञान के लिए। तो खेल और विज्ञान जगत से जुड़ी हम ढेर सारी बातें आपके साथ साझा करेंगे, साथ ही आपको कुछ जरूरी जानकारियां भी देंगे।
0: और इसके साथ ही हम आपसे बातचीत करेंगे और आपको बताएंगे कि आज के दिन में क्या है खास। लेकिन उससे पहले हमारा रोजाना का जो क्रम है, आज के दो प्रश्न आपसे पूछ लेते हैं। तो दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है,
1: भारत ने किस वर्ष में पहली बार राष्ट्रमंडल यानी कॉमनवेल्थ गेम्स में भाग लिया था।
0: और दोस्तों, आज का दूसरा प्रश्न है कि आयकर विभाग द्वारा जारी किए जाने वाले 10 अंकीय अल्फा न्यूमेरिक नंबर यानी कि पैन नंबर का फुल फॉर्म क्या है।
1: तो दोस्तों, आप इन दोनों प्रश्नों के जवाब खोज कर रखिए। कार्यक्रम के अंत में हम आपको उसके जवाब बताएंगे, उसे आप मेल कीजिएगा।
0: उसी के साथ चलिए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं कार्यक्रम का पहला गीत।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455 पर कॉल करें।
1: दोस्तों, आज है 24 जुलाई और आज पूरे देश में आयकर दिवस यानी कि इनकम टैक्स डे मनाया जाता है। श्रद्धा, जब भी आयकर या इनकम टैक्स का नाम आता है तो अक्सर लोगों के मन में ये धारणा बनी रहती है कि ये विषय सिर्फ बड़े उद्योगपतियों, व्यापारियों या फिर अधिक आय वाले लोगों से जुड़ा है, लेकिन वास्तव में आयकर का संबंध देश के हर जिम्मेदार नागरिक से है।
2: बिल्कुल सही कहा तुमने। तुम्हें पता है, आयकर दिवस सिर्फ कर जमा करने का दिन नहीं है, बल्कि ये उन लाखों ईमानदार करदाताओं का सम्मान करने का दिन भी है जो देश के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और बहुत ही कम लोग जानते हैं कि भारत में आयकर की शुरुआत 24 जुलाई 1860 को हुई थी।
1: बिल्कुल, ब्रिटिश शासन के दौरान वित्तीय विशेषज्ञ सर जेम्स विल्सन ने इसे लागू किया था ताकि स्वतंत्रता संग्राम के बाद उत्पन्न आर्थिक संकट से निपटा जा सके। बाद में आयकर विभाग ने इस ऐतिहासिक दिन की स्मृति में 24 जुलाई को आयकर दिवस के रूप में मनाना शुरू किया।
2: भारत सरकार ने देश में आयकर प्रणाली की 150वीं वर्षगांठ के उपलब्ध में 2010 में आयकर दिवस की शुरुआत की थी। आयकर दिवस हर साल 24 जुलाई को करदाताओं के बीच

0: कर भुगतान के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करने और कर अनुपालन को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है।
1: और आपको बता दें कि वर्तमान में इसका प्रबंधन वित्त मंत्रालय के अधीन केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी CBDT द्वारा किया जाता है। भारत में आयकर प्रणाली प्रगतिशील कर संरचना पर आधारित है, जिसके तहत अधिक आय वाले व्यक्तियों और संस्थाओं पर उच्च दर से कर लगाया जाता है।
0: बिल्कुल सही कहा। और दोस्तों, अक्सर हम सभी के मन में एक प्रश्न आता है कि आखिर हम जो टैक्स देते हैं उसका उपयोग कहाँ होता है। असल में यही धन देश के विकास की सबसे मजबूत नींव है
1: और ये हमारे शहरों की सड़कें, राष्ट्रीय राजमार्ग, रेलवे, मेट्रो, सरकारी अस्पताल, सरकारी विद्यालय, रक्षा सेवाएं, पुलिस व्यवस्था, आपदा राहत, स्वच्छता अभियान और अनेक जन कल्याणकारी योजनाएं कहीं न कहीं करदाताओं के योगदान से ही संचालित होती है।
0: दोस्तों, आज का भारत तेजी से डिजिटल हो रहा है और इसी के साथ आयकर व्यवस्था भी पहले की तुलना में कहीं अधिक आसान और पारदर्शी हो गई है। अब अधिकांश सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध है।
1: आयकर रिटर्न दाखिल करना, उसकी ऑनलाइन पुष्टि करना, रिफंड लेना, अपने कर विवरण देखना, यहाँ तक कि कई जानकारियाँ पहले से ही पोर्टल पर उपलब्ध रहती है।
0: सरकार का उद्देश्य यही है कि टैक्स पेयर्स को सरल, पारदर्शी और भरोसेमंद सेवाएं मिल सके। हाल के वर्षों में ई फाइलिंग, फेसलेस असेसमेंट, प्री फील्ड रिटर्न और एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट जैसी सुविधाओं ने पूरी प्रक्रिया को अधिक सुविधाजनक बना दिया है।
1: बिल्कुल। तो दोस्तों, अभी हमने जाना आयकर और आयकर दिवस के विषय में, लेकिन आगे हम इससे जुड़ी और भी चर्चा करेंगे, जो खास तौर पर इसके महत्व और युवाओं के लिए इसका क्या महत्व है उस पर। फिलहाल सुनते हैं गीत।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: चलो
3: मध्य प्रदेश की सभी शासकीय आईटीआई में प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। आईटीआई में उपलब्ध हैं रोजगार परक एवं कौशल आधारित विभिन्न ट्रेड्स, जो आपको रोजगार और स्वरोजगार के बेहतर अवसर प्रदान करते हैं। रजिस्ट्रेशन एवं प्रवेश संबंधी सहायता के लिए आज ही अपनी नजदीकी शासकीय आईटीआई में संपर्क कीजिए।
4: अनुषा, गीत से पहले हम आयकर के बारे में बातचीत कर रहे थे।
5: बिल्कुल।
4: और ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिनके बारे में अक्सर युवा जानकारी नहीं रखते। पहली नौकरी लगते ही बहुत से लोग सोचते हैं कि यदि उनकी सैलरी से टैक्स कट गया है तो उनका काम खत्म। लेकिन यदि आपकी राय कर योग्य सीमा से कम है, फिर भी किसी कारण से टैक्स कट गया है, तो आयकर रिटर्न दाखिल करके आप उस राशि का रिफंड प्राप्त कर सकते हैं।
5: बिल्कुल सही। इसके अलावा यदि भविष्य में आप बैंक से लोन लेना चाहते हैं, एजुकेशन लोन या बिजनेस लोन लेना चाहते हैं, विदेश में पढ़ाई करना चाहते हैं या नौकरी के लिए आवेदन करना चाहते हैं, या फिर अपनी आय का आधिकारिक प्रमाण देना चाहते हैं, तो नियमित रूप से दाखिल किया गया आईटीआर आपके लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज बन जाता है।
4: बहुत से युवा यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फ्रीलांसिंग, ऑनलाइन टीचिंग, डिजिटल मार्केटिंग, कंटेंट क्रिएशन या अन्य ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आय अर्जित कर रहे हैं, लेकिन ये ना जानते नहीं है कि ऐसी आय भी आयकर नियमों के अंतर्गत आ सकती है। इसीलिए कमाई जितनी जरूरी है, उतनी ही जरूरी उसके वित्तीय नियमों को समझना भी है दोस्तों।
5: और तो और, कई लोग ये भी मान लेते हैं कि नगद लेन देन हो या कहीं और से ऑनलाइन कमाई की जानकारी सरकार तक नहीं पहुंचती है,

0: लेकिन आज बैंकिंग प्रणाली, TDS, वित्तीय लेनदेन और विभिन्न डिजिटल रिकॉर्ड के माध्यम से अनेक जानकारियां कर प्रणाली से जुड़ जाती है।
1: इसीलिए सही जानकारी देना और समय पर अपनी कर संबंधी जिम्मेदारियां पूरी करना ही सबसे सुरक्षित और जिम्मेदार तरीका है।
0: और दोस्तों, जरूरी बात यह है कि आयकर विभाग केवल कर वसूलने का काम नहीं करता है, बल्कि करदाताओं की सहायता के लिए भी अनेक सेवाएं उपलब्ध करता है। विभाग समय समय पर जागरूकता अभियान चलाता है और ऑनलाइन सहायता भी प्रदान करता है।
1: और दोस्तों, यही कारण है कि हर वर्ष आयकर दिवस के अवसर पर देश भर में जागरूकता कार्यक्रम, सेमिनार और करदाता सम्मान समारोह आयोजित किए जाते हैं। आज का दिन हमें सिर्फ टैक्स देने के लिए नहीं, बल्कि वित्तीय रूप से जागरूक बनाने के लिए भी प्रेरणा देता है।
0: अब चाहे आप छात्र हो, पहली नौकरी लगी हो, या अपना छोटा व्यवसाय शुरू कर रहे हो, या फिर डिजिटल प्लेटफॉर्म से कमाई कर रहे हो, आयकर से जुड़ी बुनियादी जानकारी आपके लिए उतनी ही जरूरी है जितनी की आपकी आय।
1: आइए इस आयकर दिवस पर हम ये संकल्प ले कि हम अपने अधिकारों के साथ साथ अपनी जिम्मेदारियों को भी समझेंगे, क्योंकि जब नागरिक जागरूक होते हैं तभी देश आर्थिक रूप से मजबूत बनता है।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: तो दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आज के यानी कि शुक्रवार विशेष खेल और विज्ञान में विज्ञान से जुड़ी जानकारियाँ। दोस्तों, देश के कई हिस्सों में एक बार फिर बारिश तेज हो गई है। दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यों में मॉनसून फिर सक्रिय हो गया है।
3: बिल्कुल, पिछले कुछ दिनों से कई इलाकों में कम वर्षा जो है चिंता का कारण बन गई थी और खास तौर पर किसान वर्ग जो अपनी फसलों के लिए काफी चिंतित थे।
2: 22 जुलाई को इसरो के इनसैट 3DR और इनसैट 3DS सैटेलाइट से मिली तस्वीरों में बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के ऊपर एक साथ 5 चक्रवाती सिस्टम यानी कि साइक्लोनिक सर्कुलेशन और सक्रिय मानसून ट्रफ दिखाई दिए हैं,
3: जिससे कि मानसून की तीव्रता का बिल्कुल अंदाजा लगाया जा सकता है। मौसम विभाग का कहना है कि पिछले कुछ दिनों में उत्तर भारत के कई इलाकों में बारिश कम हो गई थी, अब मौसम फिर बदल गया है। सैटेलाइट तस्वीरों में बंगाल की खाड़ी से लेकर अरब सागर तक बादलों की लंबी लाइन साफ दिखाई दे रही है,
2: यानी कि इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस वर्ष अच्छी बारिश होने की पूरी संभावनाएं हैं। दोस्तों, इसके साथ ही विज्ञान से जुड़ी एक और जानकारी ये है कि भारत के पहले प्राइवेट ऑर्बिट रॉकेट विक्रम 1 की सफल लॉन्चिंग के बाद देश के निजी स्पेस सेक्टर ने नया इतिहास रच दिया है। इस लॉन्चिंग को मिशन आगमन नाम दिया गया है
3: और इसे हैदराबाद की कंपनी स्काईरूट एरोस्पेस ने बनाया है। इसके तहत विक्रम 1 रॉकेट अपने साथ टेक्नोलॉजी से लेकर कला से जुड़े पेलोड्स अंतरिक्ष में लेकर जा रहा है।
2: दोस्तों, आपको ये बता दें कि साल 2020 में सरकार ने स्पेस सेक्टर में बड़े बदलाव किए थे। इसके बाद निजी कंपनियों को भी रॉकेट, सैटेलाइट और लॉन्च सर्विस पर काम करने की अनुमति मिली।
3: ये सफल मिशन भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र सुधारों के लिए भी एक बहुत बड़ी जीत का प्रतिनिधित्व करता है, जिसने निजी कंपनियों के लिए इसरो के साथ रॉकेट, उपग्रह और प्रक्षेपण सेवाएं बनाने के द्वार खोल दिए हैं।
2: विक्रम 1 पूरी तरह से कार्बन कंपोजिट और 3D प्रिंटेड तकनीक से बना है, जो इसे बेहद हल्का और छोटे सैटेलाइट्स के लिए किफायती और मांग आधारित यानी कि ऑन डिमांड लॉन्च वाहन बनाता है।
3: इस सफल परीक्षण से भारत वैश्विक वाणिज्यिक अंतरिक्ष बाजार में कम लागत वाले विकल्पों की पेशकश कर सकता है, जिससे भारत की हिस्सेदारी कई गुना बढ़ने की उम्मीद है।

0: दोस्तों अब बात करते हैं इस हफ्ते की खेल से जुड़ी जानकारियों के बारे में। दोस्तों 23 जुलाई 2026 यानी कि कल से कॉमनवेल्थ गेम्स की शुरुआत हो चुकी है, जिसके पहले दिन भारत ने शानदार शुरुआत की और अपने दोनों शुरुआती मुकाबले जीत लिए हैं।
1: वहीं आपको बता दें कि लॉन्स बॉल्स विमेन्स पेयर में भारत की रूपा रानी तिर्की और पिंकी सिंह की जोड़ी ने माल्टा की कोनी रिक्सन और रेबिका रिक्सन को टाई ब्रेकर में हरा दिया है।
0: लॉन्स बॉल मेन्स सिंगल में भारत के पुतुल सोनोवाल, विश्व रैंकिंग जिनकी 21 है, उन्होंने एक बड़ा उलटफेर करते हुए मौजूदा वर्ल्ड आउटडोर सिंगल चैंपियन रियान बेस्टर्स को टाई ब्रेकर में मात देकर ऐतिहासिक जीत दर्ज की।
1: इसी कड़ी में भारत की स्टार बॉक्सर लवलीना बोरगोहेन को 75 किलोग्राम वर्ग के ड्रॉ में सीधे सेमीफाइनल बाय मिल गया है। इसके चलते बिना रिंग में उतरे ही उनका ब्रोंज मेडल पक्का हो गया है और उनका सेमीफाइनल मैच 31 जुलाई को होगा।
0: और साथ ही आपको बता दें कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 ग्लासगो स्कॉटलैंड में हो रहे हैं। 2 अगस्त तक चलने वाले इस इवेंट में 74 देशों के 3000 से ज्यादा खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं दोस्तों।
1: और ये तो रही कॉमनवेल्थ गेम्स की बात, इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि फिलहाल भारत और जिम्बाब्वे के बीच T20 श्रृंखला खेली जा रही है
0: और दोस्तों जिसका पहला मुकाबला टीम इंडिया ने अपने नाम कर लिया है। अब इस श्रृंखला के शेष मुकाबले 25 और 26 जुलाई को खेले जाएंगे।

0: दोस्तों, अक्सर हम अपने परिवार, अपने काम, अपने रिश्तों और अपनी तमाम जिम्मेदारियों का इतना ख्याल रखते हैं कि खुद को भूल ही जाते हैं। हम दूसरों से पूछते हैं कि आप कैसे हैं, लेकिन शायद ही कभी खुद से पूछते हैं कि मैं कैसी हूँ।
1: दोस्तों, यही याद दिलाने के लिए हर वर्ष 24 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय स्व देखभाल दिवस मनाया जाता है। इस दिवस की शुरुआत वर्ष 2011 में इंटरनेशनल सेल्फ केयर फाउंडेशन द्वारा की गई। 24/7 यानी कि दिन के 24 घंटे और सप्ताह के 7 दिन ये संदेश देता है कि स्वयं की देखभाल कोई एक दिन का काम नहीं है, बल्कि जीवन भर अपनाई जाने वाली एक आदत है।
0: और स्व देखभाल का अर्थ केवल बीमारी में दवा लेना नहीं है, इसका अर्थ है अपने शरीर, मन और भावनाओं की जरूरतों को समझना और उनका सम्मान करना।
1: अच्छा, एक बार आप सोचिए, आखिरी बार आपने बिना किसी जल्दबाजी के खाना कब खाया था, या फिर बिना मोबाइल के परिवार के साथ कब बैठे थे, या फिर बिना किसी चिंता के खुलकर हंसे कब थे।
0: स्व देखभाल की शुरुआत इन्हीं सब छोटे छोटे कदमों से होती है। समय पर पौष्टिक भोजन करना, पर्याप्त पानी पीना, नियमित व्यायाम करना, 7 से 8 घंटे की नींद लेना, तनाव को कम करने के लिए योग या ध्यान करना।
1: लेकिन केवल शरीर ही नहीं दोस्तों, मन का स्वास्थ्य रहना भी उतना ही आवश्यक है। यदि मन उदास है, तनाव लगातार बना हुआ है या जीवन में निराशा महसूस हो रही है, तो अपनी भावनाओं को दबाने के बजाय किसी अपने से बात करें या आवश्यकता पड़ने पर विशेषज्ञ की सहायता भी लें। मानसिक स्वास्थ्य भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना शारीरिक स्वास्थ्य।
0: और भारतीय परंपरा भी हमें यही सिखाती है। आयुर्वेद, योग और ध्यान की हमारी प्राचीन परंपराएं सदियों से संतुलित जीवन शैली का संदेश देती रही है, और आज पूरी दुनिया इन भारतीय जीवन मूल्यों को अपनाने की ओर बढ़ रही है।
1: श्रोताओं, ये भी याद रखिए कि स्वयं की देखभाल स्वार्थ नहीं बल्कि जिम्मेदारी है, क्योंकि जब हम स्वस्थ और प्रसन्न होंगे तभी अपने परिवार, समाज और कार्यस्थल के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को बेहतर ढंग से निभा पाएंगे।

0: तो दोस्तों ये था हमारा आज का युवाणी कार्यक्रम और हमें पूरी उम्मीद है कि आप सभी को ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। दोस्तों कार्यक्रम में आपसे विदा लेने से पहले हम आज के दो प्रश्नों के उत्तर आपके साथ साझा कर देते हैं। आज का पहला प्रश्न था कि भारत ने किस वर्ष में पहली बार राष्ट्रमंडल यानी कि कॉमनवेल्थ गेम्स में भाग लिया था, जिसका उत्तर है 1934 में। और आज का दूसरा सवाल था कि आयकर विभाग द्वारा जारी किए जाने वाले 10 अंकीय अल्फा न्यूमरिक नंबर पैन का फुल फॉर्म क्या है, जिसका जवाब है परमानेंट अकाउंट नंबर यानी कि स्थायी खाता संख्या। दोस्तों इसी के साथ अब मैं श्रद्धा
1: और मैं अनुषा
0: आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।

यूथ प्रोग्राम युववाणी अभी आप सुन रहे थे श्रोताओं आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज पर और एंड्रॉइड ऐप न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी। और आइए अब सुनते हैं फिल्म संगीत। जावेद अली की आवाज में समीर के बोल और प्रीतम का संगीत, फिल्म नकाब।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बढ़ा सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।

कृष्ण कुमार यानी के की आवाज में सुनवाते हैं आपको ये गीत। प्रीतम का संगीत है और सैयद कादरी के लिखे बोल हैं। फिल्म जन्नत।

फिल्म संगीत श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज़ पर, और एंड्रॉयड मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर भी। और आइए अब आपको सुनवाते हैं प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: संबंध
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं विमलेश। आप सबका स्वागत है आज के उमंग कार्यक्रम में।
3: और मैं अजीत। नमस्कार श्रोताओं, धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: जीवन के दुख हमें सुधरने और आगे बढ़ने का अवसर देते हैं, जबकि जीवन में लगातार सुख कभी कभी हमारे आत्म विकास में बाधा बन सकता है।
3: आपने बहुत सुंदर विचार भेजा, हमारा आभार कीजिए स्वीकार। और आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों हमें संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम।
2: पुराना तालाब डुमराव से वलीउल्लाह अंसारी जी,
3: शेरी वडनेर महाराष्ट्र से बलदेव दामोदर और अरुणा दामोदर,
2: भिलाई छत्तीसगढ़ से भाई मुकेश शर्मा,
3: और गांव ढाणी कुतुबपुर तहसील हांसी जिला हिसार हरियाणा से रामधारी गुर्जर, गुरदीप गुर्जर, मीठी गुर्जर, अनाया गुर्जर, ओजस गुर्जर, अवनी गुर्जर और बेटी प्रियांशी।
2: अयोध्या धाम से राजबाबू शर्मा, रामबाबू शर्मा, राजबाबू शर्मा, सचिन शर्मा, शैलेंद्र शर्मा, सौरभ शर्मा, सोनल शर्मा, साक्षी शर्मा, सिमरन शर्मा और सोनाली शर्मा।
3: और ग्राम पुतकी कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे, वीना पांडे और विनय शंकर पांडे के साथ साथ नयन पांडे और सुमांशु पांडे।
2: धन्यवाद आप सबको और स्वागत है आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी में।
3: श्रोताओं, आज हम चर्चा करेंगे दक्षिण भारत के एक अनूठे उत्सव की।
2: अब तक हमने असम, नागालैंड और झारखंड के उत्सवों की चर्चा की। आज रुख करते हैं दक्षिण भारत की ओर, जहां का अनूठा उत्सव है कैल पोध। ये उत्सव कर्नाटक राज्य के कुर्ग क्षेत्र में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है।
3: तो श्रोताओं, आपको बता दें कि कुर्ग भारत के सबसे सुंदर और रमणीय स्थानों में से एक है। यहाँ की हरी भरी वादियाँ और पर्वतीय प्राकृतिक सुंदरता सबका मन मोह लेती है
2: जी।
3: यहाँ के खूबसूरत कॉफी के बाग दुनिया भर में जाने जाते हैं, इसीलिए कुर्ग को कर्नाटक का स्कॉटलैंड कहा जाता है।
2: इसी कुरुक्षेत्र में रहती है कोडावा जनजाति। कोडावा लोग प्राचीन भारत में योद्धा समुदाय माने जाते थे और इनकी वीरता की गाथाएं वहां की लोक कथाओं में भी मिलती हैं।
4: भारतीय सेना में भी इनका योगदान बहुत अहम रहा है।
2: तो हम बात कर रहे थे कैल पोध उत्सव की। सबसे पहले जानते हैं कि कैल पोध का क्या अर्थ है।
3: श्रोताओं, कैल का मतलब है हथियार या उपकरण और पोध का मतलब है उत्सव, यानी हथियारों और उपकरणों का उत्सव। यह हर साल 3 सितंबर को मनाया जाता है। तब तक धान की रोपाई हो चुकी होती है।
2: उस दिन कड़ावा जनजाति के लोग अपने घर से हथियार और कृषि के उपकरण निकालते हैं, उन्हें फूलों से सजाते हैं। फूलों में खासकर फ्लेम लिली फूल का इस्तेमाल किया जाता है, जो वहाँ प्रचुरता से पाया जाता है। अब थोड़ी सी जानकारी फ्लेम लिली फूल के बारे में।
3: श्रोताओं, ये भारत, अफ्रीका और एशिया के उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में पाया जाने वाला अत्यंत आकर्षक और दुर्लभ फूल है
2: जी।
3: इसकी पंखुड़ियां तेज लाल और पीले रंग की होती हैं, जो आग की लपट की तरह दिखाई देती हैं। इसी कारण इस फूल का नाम फ्लेम लिली पड़ा
2: जी।
3: कुर्ग की वादियों में जब ये फूल खिलते हैं तो बहुत ही मनमोहक दृश्य प्रस्तुत करते हैं। ये फूल तमिलनाडु का राजकीय फूल भी माना जाता है।
2: उत्सव के दिन मवेशियों को भी नहला धुलाकर फूलों से सजाया जाता है और उन्हें विशेष रूप से सम्मानित किया जाता है, क्योंकि वे खेती बाड़ी के कार्य में सबसे बड़े मददगार हैं।
3: बता दें श्रोताओं कि हथियारों की पूजा से संकेत हिंसा का नहीं है, लेकिन सुरक्षा का है
2: जी।
3: वे हथियारों के प्रति आभार प्रकट करते हैं, क्योंकि प्राचीन काल में किसी भी आक्रमण के समय उनके कारण ही, यानी हथियारों के कारण

0: ही सुरक्षा सुनिश्चित हो सकी थी।
1: जी।
0: साथ ही साथ पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण पुराने समय में उन्हें अपने परिवार, पशुओं और गांव की रक्षा खुद करनी होती थी। इसी कारण हथियार उनकी सुरक्षा और सम्मान का प्रतीक बन गए।
1: कैलपौद उत्सव में कृषि उपकरणों का भी सम्मान किया जाता है, क्योंकि वे भी खेतीबाड़ी का प्रमुख माध्यम है। पूजा के बाद कुरुक्षेत्र में जगह जगह पर समारोह होते हैं। जगह जगह पर विशेष साज सज्जा के साथ मेले लगते हैं। कोड़ावा समुदाय की वीरता की कथाओं की झांकी प्रस्तुत की जाती है।
0: श्रोताओं, कोड़ावा संस्कृति से संबंधित चित्रकला और नृत्यों का भी सामूहिक प्रदर्शन होता है। उस दिन कोड़ावा पुरुष अपनी पारंपरिक पोशाक पहनते हैं, जिन्हें चक्कली कहा जाता है।
1: कैलपौद उत्सव के दिन पारंपरिक व्यंजनों की भी भरमार रहती है। चावल की बनी कंडबट्टू विशेष लोकप्रिय है। इस दिन लोग एक दूसरे को फूलों की भेंट देकर सम्मानित करते हैं।
0: श्रोताओं, कैलपौद उत्सव कोड़ावा जनजाति की योद्धा संस्कृति, कृषि जीवन और गौरवशाली परंपराओं की याद दिलाता है।
1: ये भारत के दुर्लभ उत्सवों में से एक है, जहां हथियारों की पूजा हिंसा के लिए नहीं बल्कि सामाजिक कर्तव्य, सुरक्षा और आत्मसम्मान के प्रतीक के रूप में की जाती है।
0: तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की जानकारी। अब सुनिए आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है, कैलपौद उत्सव कहाँ और किनके द्वारा मनाया जाता है और कैलपौद शब्द का क्या अर्थ है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: कैलपौद उत्सव कहाँ और किनके द्वारा मनाया जाता है और कैलपौद शब्द का क्या अर्थ है?
0: 8800440559 है हमारा IVRS नंबर और audio@cit.nic.in है हमारे ईमेल का पता। आप इन पतों पर हमसे संपर्क कर सकते हैं और अपने उत्तर व संदेश भेज सकते हैं।
1: फेसबुक, इंस्टा, लिंक्डइन और एक्स पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
0: तो अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा पहला कार्यक्रम है दो मेंढकों की यात्रा।
1: ये कार्यक्रम कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक में मुद्रित एक जापानी मनोरंजक हास्य लोक कथा पर आधारित है, जिसमें दो मेंढकों की मजेदार यात्रा का वर्णन किया गया है।
0: दो मेंढकों की यात्रा।
2: नमस्कार साथियों, आज हम आपसे साझा करने जा रहे हैं एक मजेदार जापानी लोक कथा। कुछ समय पहले की बात है, जापान में दो मेंढक रहते थे। एक मेंढक ओसाका नगर के पास एक छोटे से खड्ड में रहता था और एक क्योटो नगर के बाहर एक छोटे से तालाब में निवास करता था। एक दिन ओसाका नगर के मेंढक के मन में एक विचार आया।
3: क्या वही शहर, वही गलियां, वही लोग, इस जगह पर रहते रहते अब बहुत दिन हो गए हैं। मुझे जरा बाहर निकलकर दुनिया देखनी चाहिए।
2: ये संयोग ही था कि उसी समय क्योटो में रहने वाले मेंढक के मन में भी यही विचार आया कि उसे भी बाहर निकलकर कुछ भ्रमण करना चाहिए। अगले ही दिन दोनों मेंढकों ने अपनी अपनी यात्रा शुरू कर दी। दोनों नगरों को जोड़ने वाला एक ही मार्ग था। रास्ते में दोनों की मुलाकात हो गई। ओसाका के मेंढक ने क्योटो के मेंढक से पूछा,
3: तुम कहाँ जा रहे हो मित्र?
4: मित्र, मैं ओसाका जा रहा हूँ।
3: और तुम? मैं क्योटो जा रहा हूँ।
2: दोनों मेंढकों ने लंबा रास्ता तय किया था। वे बहुत थक भी गए थे। उन्होंने सोचा, क्यों ना थोड़ा आराम भी कर लिया जाए। वे पास स्थित एक बड़ी सी चट्टान की छाया में जा बैठे और बातचीत करने लगे।
3: यहाँ थोड़ा आराम है, थोड़ा सुस्ता लिया जाए है? तो जरा मुझे भी बताओ कि यहाँ तक की यात्रा कैसी रही?
4: भाई, मेरे पास तो शब्द ही नहीं है। रास्ता बहुत सुंदर है। तुम तो जानते ही हो कि ये चेरी ब्लॉसम का समय है। चारों ओर चेरी के फूलों की भरमार है। और हाँ, जब मैं एक पहाड़ी के पास से गुजर रहा था ना, तो ट्रेन भी देखी। वहाँ रहने वाले एक मेंढक भाई से पूछा तो उसने बताया कि इसे बुलेट ट्रेन कहते हैं। क्या तेज गति थी। जब तक मैं ठीक से देख पाता तो वो गायब हो गई। कहते हैं कि इस ट्रेन से सिर्फ 15 से 20 मिनट में ओसाका से क्योटो पहुंचा जा सकता है।
3: भाई वाह।
4: अब तुम अपनी यात्रा के बारे में भी तो बताओ।
3: मेरी यात्रा भी बड़ी अच्छी गुजरी।
4: अच्छा,
3: पूरे रास्ते में हरी भरी प्रकृति और साफ सुथरे शहर। और हाँ, मैंने भी रास्ते में चेरी ब्लॉसम के फूल देखे।
4: वाह,
3: हल्के गुलाबी और सफेद रंग के ये फूल बहुत सुंदर हैं। सुना है इन फूलों को हमारे देश की पहचान माना जाता है। बहुत अच्छा हुआ जो मैंने यात्रा करने का निर्णय लिया, वरना मैं तो वहीं खड्ड में पड़ा रह जाता।
4: हाँ, ये तो है।
2: दोनों मेंढक एक दूसरे को अपनी यात्रा का हाल सुना रहे थे। अचानक ओसाका के मेंढक के मन में एक विचार आया। वो बोला,
3: मित्र, कितना अच्छा होता यदि हमारा आकार थोड़ा और बड़ा होता।
4: क्यों, आकार बड़ा होने से क्या होने वाला है?
3: आकार बड़ा होने से हमें इतनी यात्रा तो नहीं करनी होती।
4: हैं? वो कैसे?
3: अरे भाई, मैं समझाता। आकार बड़ा होता तो हम किसी भी पहाड़ पर चढ़कर देख लेते कि जहां हम जा रहे हैं वे शहर देखने लायक भी हैं या नहीं।
4: हाँ, कहते तो तुम ठीक हो, पर इसमें कौन सी बड़ी बात है? ये काम तो हम अभी भी कर सकते हैं।
3: वो कैसे?
4: अरे वो ऐसे कि हम पास के पहाड़ पर चढ़कर एक दूसरे का सहारा लेते हुए अपने पिछले पांवों के सहारे खड़े हो जाएं। हाँ, इससे हमारा आकार भी बड़ा हो जाएगा और फिर हम आसानी से उन शहरों को देख सकेंगे जहाँ हम जाना चाहते हैं।
3: भाई वाह।
2: दोनों मेंढक इतने उत्साहित हुए कि वे उछलते हुए पास के एक पहाड़ पर चढ़ने लगे। दोनों बड़ी मेहनत के बाद एक पहाड़ के शिखर पर जा पहुंचे। लंबी और ऊंची चढ़ाई के कारण दोनों काफी थका हुआ महसूस कर रहे थे।
3: बड़ा ऊंचा पहाड़ है। पसीने आ गए, चारों टांगे दुख रही हैं।
4: ये तो है। अरे चढ़ते रहो, चढ़ते रहो।
3: बड़ी मुश्किल चढ़ाई थी। चलो पहुंचे तो सही।
4: वो तो है, लेकिन मित्र मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। हाँ, क्योंकि अब हम शिखर से उन शहरों को देख सकेंगे।
3: मैं क्योटो देखूंगा
4: और मैं ओसाका।
3: क्यों नहीं, चलो
4: चलो।
2: तो साथियों, हुआ ऐसा कि ओसाका के मेंढक ने उछलकर अपने अगले पैरों को क्योटो के मेंढक के कंधों पर रख दिया और क्योटो के मेंढक ने भी ऐसा ही किया। अब दोनों मेंढक अपने पिछले पैरों पर खड़े थे। उनके अगले पैर एक दूसरे के कंधों पर थे। दोनों ने गिरने के डर से एक दूसरे को कस कर पकड़ रखा था।
3: अरे अरे अरे अरे, ध्यान से।
4: चलो
3: संभल कर, संभल कर।
4: कहीं गिरना पड़े मित्र, ये ठीक है।
3: बचे।
2: यहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन दोनों ने एक बात की ओर ध्यान नहीं दिया था कि उन्होंने अपनी पीठ उन्हीं शहरों की ओर कर रखी थी जिन्हें वे देखना चाहते थे। इस प्रकार ओसाका से आया हुआ मेंढक ओसाका को ही देख रहा था और क्योटो से आया हुआ मेंढक क्योटो को।
3: ये क्या, क्योटो तो बिल्कुल ओसाका की तरह दिखाई पड़ता है। अब तुम्हें क्या दिखता है मित्र?
4: क्या बताओ मित्र, मुझे भी ओसाका क्योटो की तरह ही दिखाई दे रहा है।
3: ये तो सचमुच बड़ा धोखा हुआ। मुझे लगता है यहाँ तक आकर मेरा समय ही नष्ट हुआ। मैं तो उसी खड्ड में ही ठीक था
4: और मैं उसी छोटे से तालाब में ही ठीक था। क्या लाभ हुआ इतनी यात्रा करने से, इतना कष्ट सहने से। चलो चलो यहाँ से।
3: हाँ हाँ चलो।

0: फिर क्या था, दोनों मेंढक अपने अपने घर वापस लौट गए। तो साथियों, अभी आपने सुनी ये जापानी लोक कथा, आशा है आपको पसंद आई होगी। अब आपके लिए कुछ सोचने और करने को। जरा सोचिए, इन दो मेंढकों की यात्रा क्यों व्यर्थ हुई? किसी यात्रा से पहले हमें किन बातों पर विशेष ध्यान देना चाहिए, इसकी एक सूची बनाइए। क्या आपके क्षेत्र में कोई ऐसी हास्य प्रधान लोक कथा है जिससे ये संदेश मिलता हो कि यदि कोई कार्य सोच समझकर नहीं किया जाए तो उसके क्या क्या परिणाम हो सकते हैं? जापान के क्योटो और ओसाका शहरों के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त कीजिए और पता लगाइए कि वे क्यों प्रसिद्ध हैं।
1: अभी आपने सुना कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक वीणा के एक पाठ पर आधारित कार्यक्रम दो मेंढकों की यात्रा। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर भारती कौशिक, ध्वन्यांकन मोहम्मद फैजान खान, कलाकार मुइनुल हसन नियाजी, वैभव श्रीवास्तव और ममता मलकानी, शोध एवं आलेख अजीत होरो, निर्देशन विमलेश चौधरी तथा ध्वनि संपादन एवं निर्माण सौम्या मलिक। ये कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। आशा है श्रोताओं, आपको हमारा ये कार्यक्रम जरूर पसंद आया होगा।

0: क्यों ना अपनाएं खुशियां, अपना कर मनोदर्पण। कॉल करें 844-844-0632 पर और पाएं NCERT द्वारा अपनी शैक्षिक व भावनात्मक समस्याओं का समाधान।
1: आइए अब चलते हैं एक और यात्रा में, कार्यक्रम नमक के साथ।
2: इस कार्यक्रम में भारत पाक विभाजन के पश्चात एक स्त्री की यात्रा के बारे में बताया गया है। जब वो पाकिस्तान से भारत आती है, उसने महसूस किया कि बेशक दोनों देशों के बीच सीमाएं खींच दी गई हैं, लेकिन लोगों के हृदयों में आज भी कोई सीमा रेखा नहीं है।
3: खुदा खैर करे राहिल, क्या नाजुक वक्त है।
4: जी,
3: हिंदुस्तान पाकिस्तान ने नेकी, मोहब्बत और रहम दिली सब पर पहरा खड़ा कर दिया। अब देखना, कल मेरी दिल्ली की रवानगी है और दिल है कि कांपे जा रहा है।
4: अरे सफिया बाजी, दिल्ली लाहौर की दूरी ही कितनी है, यहाँ से 10 फलांग। आप तो बेवजह परेशान हो रही हैं।
3: अरे राहिल, इस 10 फलांग ने तो 2 मुल्कों की शक्ल इख्तियार कर ली है। दिल्ली और लाहौर तो उन लोगों से पूछो जिनकी आंखों के पानी में शहर झांकता नजर आता है।
4: बाजी, आप तो अदीब ठहरी, आपसे भला कौन बहस कर सकता है। अरे बाजी, इस पुड़िया में क्या है।
3: नमक, लाहौरी नमक।
4: लाहौरी नमक, आप इसका क्या करेंगे।
3: देख राहिल, अपना पुलिसिया तेवर अपने पास ही रख। और इसमें इतनी हैरानी क्यों है, नमक ही तो ले जा रही हूँ। क्यों भाई, नमक नहीं ले जा सकते क्या।
4: नहीं ले जा सकते बाजी, गैर कानूनी है ये
3: है?
4: और वैसे भी नमक का आप करेंगे क्या, आप लोगों के हिस्से में तो हमसे बहुत ज्यादा नमक आया है।
3: मैं हिस्से बिखरे की बात नहीं कर रही हूँ, आया होगा। मुझे तो लाहौर का नमक चाहिए, मेरी माँ ने यही मंगवाया है।
4: मेरी माँ? बाजी, हमारी माँ बंटवारे से पहले ही अल्लाह को प्यारी हो गई है। और कौन सी माँ है जो हमारी है।
3: हमारी नहीं राहिल, मेरी माँ। दिल्ली में मुझे एक सिख बीबी मिली, वही छोटी छोटी चमकदार आंखें जिनमें नेकी, मोहब्बत और रहम दिली की रोशनी जगमगाया करती है, बिल्कुल हमारी अम्मी की तरह। हमारी अम्मी जैसा कद, अम्मी जैसा भारी भरकम जिस्म, सफेद मलमल का दुपट्टा ओढ़ा करती हैं वो, बिल्कुल हमारी अम्मी की तरह।
4: देखिए बाजी, बंटवारा हुए काफी अरसा बीत गया, अब तक तो वो वहां ठीक से रच बस गई होंगी।
3: लेकिन लाहौर नहीं भूला उनसे राहिल, साटा लाहौर। जब मैं लाहौर तेरे यहां आ रही थी तो मैंने उनसे पूछा, आप लाहौर से कोई सौगात मंगाना चाहें तो मुझे हुक्म दीजिए। तो मेरी माँ हिचकिचाकर मुझसे बहुत ही आहिस्ता से बोली, अगर ला सको तो थोड़ा सा लाहौरी नमक लाना।
4: देखिए बाजी, मोहब्बत, जज्बात, आत्मीयत, ये सारी बातें अपनी जगह हैं, लेकिन नमक, अरे बाजी आपको कस्टम से गुजरना है, और अगर एक भी चीज ऐसी वैसी निकल आई ना तो आपके सामान की चिंदी चिंदी बिखेर देंगे कस्टम वाले, आप कानून तो जानती नहीं।
3: अरे निकल आने का क्या मतलब, मैं क्या चोरी से ले जाऊंगी, छिपा के लेकर जाऊंगी क्या, मैं तो दिखा के जता के लेकर जाऊंगी।
4: ओहो बाजी, आप समझ नहीं रही हैं, कानून भी तो कोई चीज है।
3: फिर वही कानून कानून कहे जाते हो, क्या सब कानून हुकूमत के ही होते हैं, कुछ मोहब्बत मुरव्वत इंसानियत के नहीं होते। आखिर कस्टम वाले भी इंसान होते हैं, क्या एक तोहफा भी नहीं ले जाने देंगे मुझे।
4: ओफो, अब आपसे कौन बहस करे। वैसे मैं आपको बता देता हूँ बाजी, आप ले जा नहीं पाएंगी ये नमक, और बदनामी मुफ्त में हम सब की भी होगी। आखिर आप कस्टम वालों को जानती कितना है?
3: देख राहिल, कस्टम वालों को जानूं या ना जानूं, पर इंसानों को थोड़ा बहुत जरूर जानती हूं। बुढ़िया को कहाँ रखूं? ऐसा करती हूँ, कीनू की टोकरी में नीचे दबा देती हूँ, कोई पहचान भी नहीं पाएगा, कस्टम वाले तो खोज भी नहीं पाएंगे। नमक की पुड़िया मैंने छुपा तो दी, अगर कस्टम वालों ने खोज ली तो? नहीं नहीं, ऐसा करती हूँ, मैं ये पुड़िया हाथ में ले लेती हूँ, मैं खुद ही बता देती हूँ उन्हें। ये ठीक रहेगा।
4: अच्छा बाजी, अब लाहौर कब आएंगे आप?
3: मालूम नहीं राहिल, शायद अगले साल, शायद कभी नहीं।
4: अरे कहाँ जा रही हैं बाजी आप?
3: नमक का मोल पूछने।
5: आइए जनाब, आपसे कह रहा हूँ, आप इधर आइए। हाँ, ठीक है।
3: लगता है यही कस्टम ऑफिसर है, इन्हीं से बात करती हूँ। सुनिए
5: जी, फरमाइए।
3: आप कहाँ के रहने वाले हैं?
5: मेरा वतन दिल्ली है, आप भी तो हमारी तरफ की मालूम होती, अपने अजीजों से मिलने आई होंगी।
3: जी हाँ, मैं लखनऊ की हूँ, अपने भाइयों से मिलने आई थी, वो लोग इधर ही आ गए हैं। आप?
5: जी, जब पाकिस्तान बना था तभी आए थे, मगर हमारा वतन तो दिल्ली ही है।
3: जी ये थोड़ा सा लाहौरी नमक।
5: नमक? देखिए, मोहब्बत तो कस्टम से इस तरह गुजर जाती है कि कानून हैरान रह जाता है। हाँ, जामा मस्जिद की सीढ़ियों को मेरा सलाम कहिएगा, और जिन खातून के लिए आप ये नमक लेकर जा रही हैं, उन्हें मेरी तरफ से कहिएगा कि लाहौर अभी तक उनका वतन है और दिल्ली मेरा, तो बाकी सब रफ्ता रफ्ता ठीक हो जाएगा।
3: जी शुक्रिया।

0: चलो, खैरियत से दिल्ली तो पहुंच गई।
1: आप इधर आइए, इधर आइए।
2: मैं जनाब,
1: आप
2: लीजिए जनाब,
1: अपना सामान चेक कराइए।
2: लो जनाब, देख लो जनाब, हो गया जनाब, जाएं।
1: ठीक है,
2: ठीक है जी, खुदा।
1: अभी इधर आइए, आइए सामान।
0: साहब, मैं एक गैर कानूनी चीज, ये देखिए मेरे पास नमक है थोड़ा सा।
3: आप इधर आइए।
0: हाँ जी,
3: हमको पूरा बात समझ में आ गया। चाय खाबो?
0: हाँ?
3: माफ कीजिए, चाय पियेंगी क्या आप?
0: नहीं,
3: मैं आपको कमाल का चीज दिखाता हूँ।
0: जी?
3: मेरे पास नजरुल इस्लाम और रविंद्रनाथ टैगोर की ये किताबें। जी हाँ, ये मेरे मित्र सुनील दास गुप्ता ने 1946 में तोहफे के तौर पर दिया था।
0: तो साहब, क्या आप ईस्ट बंगाल के हैं?
3: हाँ, मेरा वतन ढाका है। जब डिवीजन हुआ तभी आए। मैं कोई 12-13 साल का था। ढाका में दोस्तों के साथ नजरुल इस्लाम को खूब मन से पढ़ता था। मेरा वतन ढाका है। और नमक, इसका वतन कौन सा? आपको राज का बात बताऊं? हम डाब आज भी अपने वतन ढाका का ही पीता है, किसी से कहना मत। वतन तो कस्टम वालों का होता है, इंसानों का वतन यहाँ दिल में है, दिल में।
0: सही कहा साहब, इंसानों का वतन यहाँ दिल में है। मोहब्बत नमकीन भी तो होती है ना साहब। इन आंसुओं की तरह
3: नक्शे पर लकीर खींच देने से जमीन और लोग बट नहीं जाते।
0: ठीक कहते हो साहब।

0: श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम नमक, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अजीत को
1: और उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी
0: कुसुमलता,
1: जगबंधु,
0: चेतना
1: और मंजू जी के साथ विमलेश को अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार, नमस्कार।
2: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
3: प्रायोजित कार्यक्रम उमंग अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज पर और एंड्रॉइड पर न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी। सुनते रहिए मालवा किसान आकाशवाणी।

हम आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, आइए सुनते हैं सुगम संगीत। आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं गोविंद प्रसाद जयपुर वाले और उनकी स्वर में ये कुछ गजलें। आइए सुनें।

दिलबाग सिंह सोहल के लिखे अल्फाज और गोविंद प्रसाद जयपुर वाले की आवाज़ में सुनिए ये अगली गज़ल।

0: मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, आइए सुनते हैं लोक संगीत। लोक संगीत में आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं प्रहलाद सिंह टिपाणिया और साथियों के स्वर में मालवी लोकगीत। आइए सुने।
1: ए जी पांच तत्व

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालत बनाने और कड़ी सजा के लिए एक मसौदा विधेयक को आज मंजूरी दी। संसद भवन परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में इसे मंजूरी दी गई। इस विधेयक के अगले सप्ताह संसद में पेश किए जाने की संभावना है। श्री मोदी ने कल एक वीडियो संदेश में पेपर लीक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के प्रावधानों वाला विधेयक संसद में पेश करने की घोषणा की थी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार विद्यार्थियों के भविष्य के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है।
1: सोमवार को बिल तो हम लोग तो तैयारी कर रहे हैं। हम तो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि छात्रों को लेकर के जो हम बिल ला रहे हैं तो उसमें कोई विलंब नहीं होना चाहिए, और जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है इस पे कोई रुकावट पैदा करने के लिए कोई हठगंडे अपनाना ठीक नहीं होगा। अब इसको राजनीतिकरण करके फायदा नहीं है, हम लोग को ठोस कदम कैसे उठाना चाहिए छात्रों का भविष्य के लिए, इस पे ध्यान देना चाहिए।
0: केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा और जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की। श्री नड्डा ने बताया कि बैठक में परीक्षा प्रणाली में सुधार संबंधी मांगों को ध्यानपूर्वक सुना गया।
2: लगभग दो घंटे चली सरकार की ओर से मैं और मेरे साथ सरकार के मंत्री जितेंद्र सिंह की बातचीत में शामिल हुए। उनकी बातें हमने सुनी, बातें सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई और कई दृष्टि से उन सारी बातों पर हर तरीके से चर्चा हुई।
0: प्रतिनिधि मंडल के प्रवक्ता आशुतोष रांका ने दावा किया कि सरकार ने सैद्धांतिक रूप से उनकी दो मांगों पर सहमति दे दी है।
3: डिमांड है तीन, उनमें से दो डिमांड कॉम्पेंसेशन और एफआईआर का विड्रॉल और सॉवरेन गारंटी, उनसे सरकार पॉजिटिव है।
0: संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज लगातार पांचवें दिन भी नीट परीक्षा पेपर लीक और विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन पर हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा की कार्यवाही दूसरे स्थगन के बाद फिर शुरू होने पर गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। विधेयक पेश होने के बाद विपक्षी दलों ने नीट मुद्दे पर फिर से नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामा जारी रहने पर उपसभापति हरवंश ने सदन की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी। लोकसभा में भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिली। पहले स्थगन के बाद सदन की कार्यवाही फिर शुरू होने पर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार पहले दिन से ही नीट पेपर लीक मामले पर चर्चा के लिए तैयार है। मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में बल्लारी गुंटकल रेल खंड की तीसरी और चौथी लाइन को मंजूरी दे दी है। इस पर 1,264 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इससे भारतीय रेलवे का मौजूदा नेटवर्क लगभग 46 किलोमीटर बढ़ जाएगा। नई दिल्ली में आज सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इससे आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के बीच संपर्क बेहतर होगा।
4: आंध्रा और कर्नाटक को जोड़ने वाले बहुत एक इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक कॉरिडोर में रेलवे की थर्ड और फोर्थ लाइन, और दूसरा है केमिकल सेक्टर को एक टोटली नए तरीके से भारत में डेवलप करने के लिए एक नई स्कीम अप्रूव हुई है। और केमिकल भी सेमीकंडक्टर की तरह एक फाउंडेशनल इंडस्ट्री है, इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट था इस इंडस्ट्री के लिए एक नए तरीके से सोचना।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत और रोमानिया के बीच आर्थिक और निवेश संबंधों को विस्तार देने का आह्वान किया है। बुखारेस्ट में आज भारत रोमानिया व्यापार मंच को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि दोनों देशों में वाणिज्यिक सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। भारत ने कहा है कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद नहीं करता तब तक सिंधु जल संधि स्थगित रहेगी। नई दिल्ली में आज विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने भारत की जानबूझकर पाकिस्तान में बाढ़ लाने की मीडिया रिपोर्ट को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि हाल ही में चिनाब नदी में पानी का बहाव इस सप्ताह जम्मू और उसके आसपास के इलाकों में मूसलाधार वर्षा के कारण बढ़ा है। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों के आज दूसरे दिन पुरुषों की 50 मीटर बैकस्ट्रोक तैराकी में भारत के श्री

0: हरी नटराज ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। सेमीफाइनल आज देर रात होगा। इससे पहले रवि वीरा वेंकट बुद्धिगीना और अली इमाम ने पैरा तैराकी के S13 वर्ग के 100 मीटर फ्री स्टाइल तैराकी के फाइनल में अपना अपना स्थान पक्का किया। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का यह इंदौर केंद्र है। श्रोताओं लीजिए सुनिए हमारे आज और कल की सभाओं में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी।

आज शाम 7:20 पर सुनिए कार्यक्रम खेती गृहस्थी। चित्रगीत। इस कार्यक्रम का प्रसारण समय रहेगा 9:15। पत्रों पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आप सुन सकते हैं मन भावन 9:30 से 10:30 तक। 10:30 पर आपको सुनवाएंगे शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत पंडित राम नारायण का सारंगी पर बजाया राग केदार और धुन।

इसी तरह कल की सभाओं में सुबह की शुरुआत होगी भक्ति संगीत के प्रातःकालीन आयोजन वंदना से। सुबह 6:05 पर 6:30 पर सुनेंगे आप चिंतन। विषय रहेगा समय का सही उपयोग। आलेख ऐश्वर्या भोसले और वाचक स्वर मुकाम सिंह चौहान का होगा। खेती की बातें होगी संध्या कोठारी से। विषय होगा सोयाबीन फसल का रखरखाव कैसे करें। प्रसारण समय सुबह 6:35। श्री रामचरित मानस गान के प्रसंग आप सुन सकते हैं सुबह 6:40 पर।

लोक संगीत के अंतर्गत आप कल सुनेंगे मनसा नाम कुनबी और साथियों के स्वर में कुछ लोकगीत। प्रसारण समय सुबह 9 बजे रहेगा। शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत कल हम आपको सुनवाएंगे राधिका उमड़ेकर का विचित्र वीणा वादन, राग बिलास खानी तोड़ी, सुबह 9:30 पर। फोन इन कार्यक्रम MH हॉटलाइन का प्रसारण समय सुबह 10:05 रहेगा।

शाम की सभाओं में युववाणी कार्यक्रम लेकर हाजिर होंगे शाम 5 बजे। शाम 6 बजे आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम, विशेष कार्यक्रम विकसित होता भारत। 6:30 पर सुगम संगीत में आप सुन सकते हैं उमेश भट्ट को और 6:45 पर लोक संगीत के अंतर्गत मनसा राव कुनबी और साथियों को।

श्रोताओं, ये थी हमारे आज और कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त जानकारियां। आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है, मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज पर, और आप आकाशवाणी इंदौर को सुन सकते हैं एंड्रॉयड एप्लीकेशन न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी। और अब से कुछ ही पलों में समाचार होंगे, प्रादेशिक समाचारों का अनुप्रसारण हम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से करेंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पेपर लीक मामले में फास्ट ट्रैक न्यायालय बनाने वाले विधेयक को दी मंजूरी। अगले सप्ताह संसद में हो सकता है पेश। छात्र आंदोलन पर केंद्र सरकार और प्रदर्शनकारियों के बीच दूसरे दौर की बातचीत। सरकार ने मानी दो अहम शर्तें। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव बोले, युवाओं के भविष्य की सुरक्षा को लेकर केंद्र सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध। और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने पन्ना में करीब 185 करोड़ रुपए के विकास कार्यों को किया भूमि पूजन और लोकार्पण। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों के लिए फास्ट ट्रैक न्यायालय बनाने वाले मसौदा विधेयक को मंजूरी दे दी है। ये मंजूरी संसद भवन परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में दी गई। इस विधेयक को अगले सप्ताह संसद में पेश किए जाने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री मोदी ने कल एक वीडियो संदेश में इस विधेयक की घोषणा की थी और पेपर लीक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिलाया था। छात्र आंदोलन को लेकर केंद्र सरकार और प्रदर्शनकारी छात्रों के बीच आज दूसरे दौर की बातचीत शुरू हुई। नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने छात्र संगठन सीजेपी के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। सरकार ने शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर कानूनी कार्रवाई न करने और प्रभावित छात्रों के परिजनों को मुआवजा देने की शर्तें मान ली हैं। श्री नड्डा ने बताया कि छात्रों ने तीन प्रमुख मांगे और परीक्षा सुधार के पांच सुझाव रखे हैं। इन पर कल दोपहर में फिर बैठक होगी।
1: लगभग दो घंटे बातचीत चली। सरकार की ओर से मैं और मेरे साथ सरकार के मंत्री जितेंद्र सिंह की बातचीत में शामिल हुए। उनकी बातें हमने सुनी, बातें सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई और कई दृष्टि से उन सारी बातों पर हर तरीके से चर्चा हुई।
0: सोनम वांगशुक ने अपना अनशन समाप्त कर दिया है। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में वांगशुक से मुलाकात की थी। इसके बाद श्री वांगशुक ने छात्रों की चिंताओं पर सरकार के भरोसे के बाद अनशन खत्म करने का फैसला लिया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं के हित में शिक्षा और रोजगार से जुड़े मामलों के त्वरित निपटारे के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की घोषणा की है। उन्होंने बताया कि प्रदेश के चारों महानगरों भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर में ऐसे फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगले वर्ष पन्ना मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण किया जाएगा। इससे नीट के अभ्यर्थियों को डॉक्टर बनने का अवसर मिलेगा। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आज ग्वालियर और दतिया जिले के दौरे पर रहे। उन्होंने सुबह मां पीतांबरा पीठ पहुंचकर मां बगुलामुखी के दर्शन किए। इसके बाद वे दतिया उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी आशुतोष तिवारी के समर्थन में जनसभा को संबोधित करने पहुंचे। ग्वालियर में श्री सिंधिया ने नीट पेपर लीक मामले पर प्रतिक्रिया भी दी। उन्होंने कहा कि पेपर लीक के दोषियों पर कठोरतम कार्रवाई की जा रही है। श्री सिंधिया ने कहा,
2: विद्यार्थी ही देश का भविष्य होता है। जो अनियमितियां हुई हैं, दंडात्मक प्रक्रिया, उस अनियमितियों के विरुद्ध स्वयं प्रधानमंत्री जी के हस्तक्षेप के आधार पर जल्द से जल्द दी गई दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई हुई है। आज स्वयं प्रधानमंत्री जी एक विधेयक को कैबिनेट में पेश किया जा रहा है।

0: है जिसके आधार पर फास्ट ट्रैक कोर्ट्स की घोषणा होगी, जल्द से जल्द दंड दिया जाएगा।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज बुखारेस्ट में भारत रोमानिया व्यापार मंच को संबोधित किया। इस दौरान रोमानिया के राष्ट्रपति निकोसो डैन सहित दोनों देशों के व्यापारिक प्रतिनिधि मौजूद थे। राष्ट्रपति ने कहा कि रोमानिया अपनी रणनीतिक स्थिति और कुशल मानव संसाधन के कारण भारत का महत्वपूर्ण साझेदार है। उन्होंने ऊर्जा सुरक्षा, डिजिटल तकनीक और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में दोनों देशों के बीच सहयोग की संभावनाओं पर भी बात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात का 136वां एपिसोड 26 जुलाई को प्रसारित होगा। ये कार्यक्रम हमेशा की तरह सुबह 11 बजे आकाशवाणी, दूरदर्शन और अन्य डिजिटल नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री आमतौर पर राष्ट्र निर्माण, युवा शक्ति, नवाचार, खेल और पर्यावरण जैसे विषयों पर बात करते हैं। विदेश के कोने कोने में समाज सेवा कर रहे गुमनाम नायकों के प्रेरणादायक विचारों को भी देश के सामने रखते हैं। समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
1: ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने पन्ना जिले के होमगार्ड ग्राउंड में आयोजित कार्यक्रम में 184 करोड़ 83 लाख रुपए की लागत के विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत प्रदेश के 35 लाख से अधिक पेंशन हितग्राहियों के खातों में सिंगल क्लिक के माध्यम से 210 करोड़ रुपए से अधिक की राशि भी अंतरित की। पन्ना में मंच से लोगों को संबोधित करते हुए डॉ. यादव ने कहा कि बुंदेलखंड के किसानों के बेहतर भविष्य के लिए लगभग 1 लाख करोड़ रुपए की लागत से किन बेतवा लिंक परियोजना को साकार किया जा रहा है। उन्होंने कहा,
3: किसानों के लिए भी हमारी तरफ से कोई कसर को बाकी नहीं रहेगी। किसी का भी मकान, दुकान, खेत खलियान अगर लेंगे तो उसको भी योग्य मुआवजा देंगे। यह हमारी सरकार की योजना, जोरदार अभिनंदन करें। किसानों के लिए भी कभी कष्ट नहीं आएगा। अब केन बेतवा नदी जोड़ों के बाद पूरा क्षेत्र बदलने वाला है। यहाँ की खेती, एक फसल, दो फसल, तीन फसल, अब तो पंजाब हरियाणा को पीछे छोड़ेगी।
1: प्रसिद्ध हरियाणवी सिंगर रेणुका पवार इंदौर पुलिस के नशे से दूरी है जरूरी 2.2 अभियान से जुड़ी हैं। उन्होंने युवाओं से नशे से दूर रहने की अपील की है। उन्होंने कहा कि स्वस्थ शरीर और सकारात्मक सोच ही सबसे बड़ी ताकत है।
4: राम राम जी, नमस्कार। मैं रेणुका पवार और आज आप सभी से बहुत जरूरी बात शेयर करने के लिए आई हूँ। नशे से दूरी है जरूरी 2.0 अभियान इंदौर पुलिस द्वारा संचालित किया जा रहा है। स्वस्थ शरीर सबसे बड़ी ताकत है। युवाओं में नशे और ड्रग्स की लत को इस देश से उखाड़ फेंकना है। आपसे निवेदन है, आप इस अभियान से जुड़े और नशे से देश के युवाओं को बचाने में अपना योगदान दें।
1: प्रदेश में कैच द रेन और जल संचय जन भागीदारी अभियान के तहत बड़े पैमाने पर काम चल रहा है। राज्य सरकार इसे जल गंगा संवर्धन अभियान के रूप में आगे बढ़ा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर 21 जुलाई से 4 अगस्त तक पेयजल का सम्मान और संरक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इसके तहत ग्राम पंचायतों में जल अर्पण दिवस और लोक जल उत्सव मनाए जा रहे हैं। भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, इंदौर सहित प्रमुख जिलों के सरकारी भवनों में रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम भी लगाए जा रहे हैं। और अब बात मौसम की। प्रदेश में मॉनसून ने फिर रफ्तार पकड़ ली है। मौसम विभाग ने श्योपुर, मंदसौर, रतलाम, अलीराजपुर, पन्ना जिले के लिए भारी बारिश की चेतावनी दी है। मौसम विभाग का कहना है कि जुलाई के अंतिम सप्ताह में भी बारिश की गतिविधियां तेज बनी रहेंगी। अब कुछ समाचार संक्षेप में। कटनी जिले की प्राथमिक शालाओं में निपुण भारत मिशन के द्वितीय चरण की शुरुआत कर दी गई है। नर्मदापुरम के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में विधिक साक्षरता शिविर आयोजित किया गया। शिवपुरी जिले में मध्य प्रदेश पर्यटन क्विज 2026 में सभी स्कूलों के छात्र छात्राएं भाग लेने हेतु 25 जुलाई तक अपना पंजीयन करा सकेंगे। खंडवा में 2 से 4 अगस्त तक आयोजित होने वाले गौरव दिवस समारोह की तैयारियां तेज हो गई हैं। कलेक्टर ने इस बारे में समीक्षा बैठक में बात की। कृषि विज्ञान केंद्र बैतूल के द्वारा जिले के 10 विकास खंडों में पदस्थ कृषि विकास अधिकारियों को 21 से 24 जुलाई तक संस्थागत प्रशिक्षण दिया गया। सागर जिले में सड़क दुर्घटनाओं से होने वाली जनहानि को रोकने के लिए जिला कलेक्टर कार्यालय सभागार में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विभाग के मंत्री तथा राजगढ़ जिले के प्रभारी मंत्री चैतन्य कुमार कश्यप ने नर्सिंग

नारायणगढ़ में लगभग 42 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित सांदीपनि विद्यालय का लोकार्पण किया। झाबुआ में गंभीर कुपोषित बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण स्तर में सुधार के लिए मोटी आई 2.0 अभियान अगस्त के प्रथम सप्ताह से शुरू किया जाएगा और मंदसौर में मिशन वात्सल्य के अंतर्गत उन्मुखीकरण और समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन कल सुबह 7:10 पर। नमस्कार।

मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से प्रस्तुत है कार्यक्रम खेती गृहस्थी।

0: खेती गृहस्थी कार्यक्रम सुनने वाला सभी किसान भाई बहनों का बिंदु की राम राम। किसान भाई बहन आपको घणो घणो स्वागत है इना कार्यक्रम में। किसान भाई बहन वरसात का दिन चली रहा है, आपने वावणी करी दी होएगा और कहीं छे तो देर से भी वावणी होए तो वो भी करी रहा होएगा, पर आमा तो बहुत बखत हुई गई कि आमा वावणी करी देनू चाहिए क्योंकि वरसात अच्छी हुई रही अपन देख ही रहा है और अपना जो कुआ तलाव है वो छे तो खूब भराई गया है। आना इन्हीं वक्त है जो ये जो वक्त है इन्हीं वक्त में अपना का छे तो पानी ख रोके न उको संचय कर लेनु चाहिए, उख संभाली कर रखनु चाहिए क्योंकि अभी अगर अपन पानी का संभाली लेवांगा तो ये ज पानी अपना का छे तो उनाड़ा की वक्त में ठंडी की वक्त में काम देगा जब वरसात को मौसम निकल जाएगा। तो भाई हमका ऐसी भी सोई कर लेनू चाहिए और एका पहले देखो हमारा किसान भाई बहन ने ना उनाड़ा के वक्त में अपना जो कुआ तड़ाव था उनका अच्छा साफ सुथरा कर लिया, घेरा कर लिया इना एकासी कि ओमा पानी अच्छो इकट्ठो हो जाए। तो ये तो बहुत आपने समझदारी को काम करियो और साथ ज आपने छे तो वावणी जो करी दीज। अब आप ये छे कि भाई कम छे तो उमा पौधा निकला कमा डिसूर फूटा पौधा उगाना और वो सुरक्षित रहे, कोई को ऊपर कीड़ा किटकिलो नहीं लगा, कोई रोग बीमारी नहीं लगा और बहुत आगे वो अच्छी बढ़वार करा। असर छे तो अपना बहुत सारा किसान भाई बहन छे जो कि छे तो कई तरह की बात न का याद रखा, कई योजना न का याद रखा, उनको बखत बखसी फायदो लेता जाए। भाई देखो असज एक योजना छे अटल पेंशन योजना, ये जो पेंशन योजना छे नी ये एकाज उद्देश्य से शुरू करी गई कि भाई अपना जो भी भाई ऐसा छे जो कि असंगठित छे या श्रमिक छे उनका आगे जाएगा ना किस तरह से जब उनकी 60 साल की उम्र हुई जाएगा तो काई करेगा, वो मेहनत तो कर ही नहीं पाओगा तो उनका किसी भी तरह से पेंशन मिलती रहे एका लेना छे। तो ये योजना चलाई गई एम छे तो अंशदान छे तो 42 रुपया से लेकर 1454 रुपया भी हुई जाए। एका लेना छे तो आपका बैंक को खातो होनु जरूरी छे है नी, और एम 18 से 40 साल तक अपना का छे तो ये अंशदान करनू पड़े ना, उसका बाद में छे तो अपना का ये पेंशन मिलती रहे। तो इस तरह से जो अपना असंगठित क्षेत्र छे उना जगह पर छे तो ये अपना का ये जो योजना छे उसको फायदो मिली सके है ना छे। तो 1000 से लेकर 5000 तक हर महीना अपना का पेंशन मिलती रहे। तो भाई इस तरह से आप अगर इन्हीं योजना में अपनों भागीदारी करोगा तो आप भी जब छे तो 60 साल की उम्र हुई जाएगा तब आपका इन्हीं योजना को फायदो मिलतो रहेगा। तो एक लेना आपका एक जो आधिकारिक वेबसाइट है वहाँ जाकर ना आवेदन कर सको। तो इन्हीं बात की जानकारी रखो ना इन्हीं जो योजना ना जो भी चले जाए अपना किसान भाई बहन के लेना वो छे तो ओको फायदो उठाता रहा ताकि अपन कभी भी रुका नहीं और अपना पास छे तो पैसों आतो रहे। भाई हर काम में अपना जीवन का लेना छे अपना दवाई पानी छे खाणु पीणु छे सबई में पैसा की घनी जरूरत पड़ती रहे। तो असी जो छोटी छोटी चीज ना छे योजना ना छे को फायदो लेके ना अपन अपना जीवन को सुरक्षित रखी सकें। तो हमारे किसान भाई बहन इन्हीं बात को ध्यान रखा और आगे बात हम आरू भी करेंगे पर सुना संदेश।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है, ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
0: किसान भाइयों आपने छे तो अभी खरीफ की जो फसल के वावणी करी थी यानी अब अपना का बखत बखत से कई कई काम करनू चाहिए कहाँ किने बात की अपना कहे राखनू ये सब जाननू भी जरूरी छे। भाई खरीफ की फसल में कटाई से लेकर ना ओके बुआई से लेकर कटाई तक जो अपन बात ने ध्यान अपना का रखनू वो कहाँ कहाँ की छे ये सब बात ने अपना का बतेरा अपना उन्नत कृषक जीवन से परमार और इनका से अपना ब्रजेश भाई ने बातचीत करी कि भाई किस तरह से अपन अपनी फसल का आगे बढ़ावा और उनको जीवन अच्छो रहे, फसल अच्छी मिले, उत्पादन अच्छो मिले और सुरक्षित मिले। तो ये सब बात इन करी तो अपन सुना इनका सी।
3: किसान भाइयों, बात प्रत्यक्ष रूप से किसान से करना मैं जित तो आनंदों का अनुभव होनी। क्यों? क्योंकि उसका स्वयं का अनुभव राज, वो मालिक भी छे मजदूर भी छे और खेती जो छे वह घर धरनी की। आज हम न हमारी चौपाल पर उन्नत कृषक जीवन सिंह परमार ग्राम भोंडवास जिला इंदौर से बातचीत करी कि फसल कई की भी होए, वात अभी अपन खरीफ फसल के करांगा, पण वावणी सी लगई न फसल कटाई तक किन किन बात को ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले चौपाल पर उनको स्वागत कर ले। राम राम जीवन सिंह भाई।
4: राम राम।
3: जसो की प्रारंभ से हम बात करूं कि वावणी अपन कराएं फसल की है नी न, फिर काटावान।
4: हाँ।
3: तो इना पूरा का पूरा बीच में एक समय रह
4: जी।
3: सारा समय में किन किन बात ने को अपन का ध्यान रखना पड़े यह बात बताओ आप।
4: जैसे खरीफ में, जैसे रबी की मौसम में अपन गेहूं की कटाई के बाद में खरीफ की सोयाबीन की तैयारी में लग जाते हैं, तो उस टाइम में सबसे पहले तो अपने को अपनी गेहूं कटाई के बाद में गर्मी में मिट्टी का परीक्षण करवाना चाहिए। मिट्टी के परीक्षण से अपने को ये मालूम हो जाएगा कि अपनी फसल में मतलब किन चीजों की अधिकता है और किस चीज की कमी है अपने इसमें,
3: और अपनी जो भूमि छे वह किनी फसल का लायक छे,
4: वह किनी फसल का लायक है। तो अपन मिट्टी परीक्षण वगैरह कराई ला व्यवस्थित, उसकी रिपोर्ट वगैरह आई जाए, उका बाद में अपन देखी ला अपने खाद को प्रबंधन कैसे करना, अपन मिट्टी परीक्षण का आधार पर अपना खेत में खाद को प्रबंधन कर ला। उका बाद में अपने पानी बारिश आने का पहला अपने बीज की व्यवस्था करनी पड़े, तो बीज अपने कोई प्रमाणित संस्था से लेना चाहिए और उका बाद में उसको बिल भी लेना चाहिए। थोड़ा बहुत लालच का चक्कर में आई वहीं से कोई से गलत बीज नहीं ले लेना चाहिए, बीज के अंकुरित करने भी देख लेना चाहिए, घर को भी बीज है तो के व्यवस्थित बोरा में भरीन रखना चाहिए और बोने का पहला उके भी अंकुरित कर लेना चाहिए और अंकुरण परसेंट अपने देखने व्यवस्थित फिर बोनी करनी चाहिए। अब उका बाद में जैसे अपने खेत अच्छे से तैयार कर लें, दो तीन बार गहरी जुताई कर लें, बारिश आने के पहला पाटो फेर दें अपना खेत में, उका बाद में फिर बारिश अच्छी हुई जाए, 3-4 इंच अच्छी बारिश हुई जाए, उका बाद अपन आराम से अपना खेत में बोनी कर सकता है। हाँ, बोनी का पहला एक काम यो भी है कि अपने फसल के बीज उपचार भी करना चाहिए और बीज उपचार अपने फंगीसाइड, इंसेक्टिसाइड और कल्चर तीनी से करना चाहिए। अपन बहुत सारा किसान कहीं है कि खाली फंगीसाइड से उपचारित कर ले, फंगीसाइड से तो उपचारित करेगा फंगस को ही जाएगा रोकथाम, बाकी जो कीटनाशक से नहीं करेगा। तो आजकल एक स्टेम फ्लाई करीने एक मक्खी आई है जो आपके मालूम नहीं पड़ेगी, वो 15-20 दिन में लगेगी और आपके बहुत सारा नुकसान कर देगी और आपके लास्ट में मालूम पड़ेगा। तो अपन FIR जो पद्धति है, जो फंगीसाइड, इंसेक्टिसाइड और कल्चर, इन तीनों से उपचारित कराएंगा तो 15-20 दिन तक अपनी फसल बिल्कुल सुरक्षित रहेगी, कोई बीमारी कीट वगैरह भी नहीं लगेगा और उका बाद में

0: फिर अपन समय और मौसम के देखने फिर अगलो स्प्रे अपन करांगा सही। अगलो स्प्रे अपन 25-30 दिन में मतलब फूल का समय में अपन स्प्रे करांगा। उना समय में अपन परिस्थिति देखने क्लोरोपाइरीफास है, प्रोफेनोफास है, ये भी दे सकता है। और अगर अपने लगी रही हो कि कीट प्रकोप ज्यादा है, इल्ली बड़ी है, तो एक में अपन लेमड़ा थायोमेथाग्जाम दे सकता है। और जो सेम वाली जो अपने दवाई आई है, सेम वाली जो अपनी जो दवाई आई है, वह भी अपन दे सकता है। तो उससे अपने कीट प्रकोप को सब समाधान हो जाए।
1: मतलब ये हो कि भाई अपन का बखत भरनुज, बखत पर जो सामना आई रही समस्या, समय में अपन का
0: जिना समय में जो समस्या आ रही परिस्थिति देखी ना अपने काम करनो है। और उका बाद में अपने जैसे खरपतवार को भी रहे, तो खरपतवार की दवाई अपन टाइम पे दी दो 15-20 दिन में। और अगर हुई सके तो अगर अपने गेप मिली जाए और सूखो रहे तो उन्हें टाइम अपन डौरा भी चले सकता है। और उका बाद में अगर कुछ मात्रा में अगर रही जाए तो अपन हाथ से भी निंदे गुड़े करवाई अपन खरपतवार निकाल दा। तो मेन कहीं है अपने कीटनाशक से सुरक्षा कर ला, खरपतवार अच्छे से निकालना। खरपतवार नहीं रहेंगा तो अपना उत्पादन 30-40% अपना यूं भी बढ़ी जाएगा। खरपतवार खेत में रहेगो तो खरपतवार और सोयाबीन दो आपस में कंपटीशन करेगा और सोयाबीन के अपनी फसल के नुकसान होएगो। तो अपने खरपतवार भी निकाल देना चाहिए और टाइम पे दवाई भी उड़ाई देनी चाहिए। इका बाद में फिर अपनी फसल अगली स्टेज पे जाएगी, जब अपने फूल से कर्रा बनेगा, पापड़ा बनेगा, दाना भरने की स्थिति में उस समय भी बहुत कीमती रहे। उना समय में सतत अपने खेत की निगरानी करनी है। खेत की मेड़ पे ऐसो नहीं के देखी नहीं है, अपने खेत का अंदर भी घुसी ने देखना है। पेड़ हिलाने के कई स्थिति है, इल्ली है, कहीं और कहीं कीट प्रकोप है या कोई दूसरी बीमारी, फंगस जनित रोग वगैरह कहीं है, उका लक्षण देखी ने अपने फिर अगलो स्प्रे की तैयारी करनी है।
1: अब जाए ना देखांगा तो कहीं रह गए ओका से जल्दी नियंत्रण में आ जाएगा,
0: जल्दी नियंत्रण में
1: फैला के नहीं।
0: हाँ, और पापड़ा की समस्या, पापड़ा जब आई है अपने सोयाबीन उस समय में ऐसा समय रहे बिल्कुल क्रांतिक अवस्था रहे, उनमें अगर अपन ने 2-3 दिन की भूल कर दी या दवाई वगैरह नहीं उड़े टाइम पे तो उनमें अपना बहुत नुकसान हो जाएगा। तो उना समय पे अपने सब देखी ने, और जैसे अपने फंगिसाइड की समस्या लगी रही है तो उनमें अपने फंगस की कोई सी भी अच्छी दवाई और उसका साथ में कीटनाशक की अच्छी दवाई दो साथ में लीने और अपने स्प्रे कर देना चाहिए। और पापड़ा और दाना भराने का समय में अपन सल्फर को भी स्प्रे कर सकता है।
1: अच्छा, इना बीच में जो जो यंत्र लगे उनको हाँ। भी तो रख रखाव करना चाहिए।
0: हाँ, इका बीच में जैसे बोने का पहला अपने सोयाबीन की सीडिल वगैरह भी अपन कंप्लीट कर लेनी चाहिए और खाद बीज वगैरह की पहला से तैयारी कर लेनी चाहिए, ताकि अपने वही बोने का टाइम में समय कम मिले और ज्यादा परेशान नहीं होना पड़े और आई वही नहीं भटकना पड़े।
1: जीवन सिंह भाई, एक बात हूँ तुमको बताऊंगा कि वो काम कही है कि जैसा हमारा किसान भाई ट्रैक्टर ले जाए
0: हाँ।
1: तो ट्रैक्टर में कई बार कहीं गारो चिपकी जाए न, बारिश का दिन में वो बाहर ले जाए एकदम
0: हाँ।
1: तो चिकनी मट्टी रहे
0: हाँ।
1: तो ओका कही जो साफ करता नहीं
0: हाँ।
1: निकली जाए तो रोड पर वह फैल है
0: हाँ।
1: तो अपन ने कोई दूसरा भाई बहन पड़ा ओका पर से
0: हाँ हाँ,
1: तो ओका लैंड भी कहीं करना चाहिए किसान भाई बहन ने को साफ सफाई रख रखाव अच्छो करना चाहिए
0: हाँ। उको रख रखाव अच्छो करना चाहिए। और अपने जैसे घर से खेत से अगर अपन बोई ना एरिया और खेत पे घर एरिया है तो के अपने जो अपना पिराना वगैरह जो साफ सफाई करने वाला रहे उनसे अपने की पंजी और सीडिल और दाता की अच्छे से ये अपने मिट्टी निकाल देनी चाहिए और उसके बाद आगे ले जानी चाहिए। और घर से भी अपन ले जावा तो कि बिल्कुल आयल वगैरह उसमें दीने चलाई ने देखीने और व्यवस्थित करीने अपने खेत पे बोई के लिए ले जानी चाहिए। ये सब चीज ना को ध्यान रखना चाहिए। जैसे अपन खेत पे ले गया उसमें मिट्टी चिपकी है, गीली मिट्टी है और अपन ने बोनी चालू कर दी और उसमें पीछे ध्यान नहीं रखी तो बहुत बार कहीं मिट्टी उनमें लगी जाए, दाता में बीच में फंसी आए तो अपने उनमें एक चांस बंदी आए, तो उसको भी ध्यान रखना है अपने। तो मिट्टी निकालता रहना चाहिए, एक आदमी के पीछे ध्यान रखनी चाहिए भाई सीडिल में अपनी सोयाबीन है कि नहीं, कम ज्यादा है या पीछे कोई बंदी नहीं रही, पीछे जो अपना पहियों घूमी रही हो लगातार सही साठ घूमी रही हो अपनी घूमी रही हो, नहीं तो अपना बीज दर बीज अपना ठीक से नहीं गिरेगा उनमें, कम ज्यादा गिरेगा। और एक बात अपने बीज दर की विशेष ध्यान रखनी चाहिए, सोयाबीन की मतलब पाटला से पाटला की दूरी भी ज्यादा नहीं तो 16 या 18 इंच तो होनी चाहिए। और एक बात में बीज दर भी अपन किसान ना कहीं बहुत सारा मतलब ज्यादा बीज दर डाली रहा है, उससे कीट प्रकोप और इल्ली की समस्या और ज्यादा होती जा रही और उत्पादन भी सही नहीं मिली रही अपने।
1: जीवन सिंह भाई, तुमने बहुत अच्छी बात बताई कि पंक्ति से पंक्ति की दूरी, कतार जैसा कतार से दूरी, पौधा से पौधा की दूरी, मतलब समय और अंतराल दुनों को ध्यान रखना
0: पड़ेगा।
1: निश्चित रूप से आपकी जो जानकारी आपने दी ओका से हमारा किसान भाई बहन लाभान्वित होगा। इतनी अच्छी जानकारी के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बढ़ा सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: तो किसान भाइयों, अभी अपन ना खरीफ फसल की बुआई से लेकर ना कटाई तक किन किन बात को ध्यान रखनू, एमा अपना उन्नत कृषक जो अपना भाई था जीवन सिंह परमार से ब्रजेश भाई की बातचीत सुनी। और भाई देखो, आप भी ये सब करता होएगा और नहीं करता है तो जरूर से करो, क्योंकि अपना अच्छी फसल का अच्छी रखनू न उत्पादन भी अच्छो लेनू न। किसान भाइयों, आमा मन करी रोज की एक लोकगीत सुने जाए, तो सुना शीतल भटोरी को गाए यो लोकगीत।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: किसान भाइयों, अभी अपन ये शीतल भटोरे को गायल निमाड़ी लोग की सुनियो और आनंद भी आयो। वरसात को मौसम तो और वरसात को अपनों पानी पड़ा वरसात में योज गीत। और अब हमारे हाथ में आज मंडी का भाव, ये इंदौर मंडी का छे, तो ये भी हम आपको सुनाई देवा। सोयाबीन को भाव रहे हो 4,500 से लेकर 7,305 रुपया प्रति क्विंटल। गेहूँ को भाव रहे हो 2,100 से लेकर 4,175 रुपया प्रति क्विंटल। चना को भाव रहे हो 4,500 से लेकर 7,896 रुपया प्रति क्विंटल। डॉलर किस्म को चनो रहे हो 5,600 से लेकर 9,725 रुपया प्रति क्विंटल। मूंग को भाव रहे हो 3,335 से लेकर 7,505 रुपया। राजमा को भाव रहे हो 6,360 से लेकर 9,600 रुपया प्रति क्विंटल। मटर को भाव रहे हो 3,600 से लेकर 4,000 रुपया। तिल्ली को भाव रहे हो एकज भाव छो ये 11,311 रुपया। और सरसों को भाव रहे हो 3,605 से लेकर 7,810 रुपया प्रति क्विंटल। तो ये तो आज मंडी का भाव था। और बरसात को मौसम छे तो मौसम बारिश को रहेगा सही, ये भी आपको मालूम छे। और अब देखो अपना बहुत सा किसान भाई बहन छे तो सोयाबीन तो बोझ पर बहुत सा कपास की खेती भी करें, तो जैविक कपास को उत्पादन कसो काई लेनू चाहिए, किस तरह से करना चाहिए, ये अपना आंख बताई रहा है डॉक्टर वी के सिंह ने। इनका सी अपनी मनीषा बहन ने बातचीत करी तो सुना इनकी बातचीत ने लेवान ज्ञान के किस तरह से खेती करनी चाहिए कपास की।
3: कपास जो है वह मध्य प्रदेश में नगदी फसल का रूप में जानी जावे, आने की अपन सफेद सोनो कहवा है। अने सोनो क्यों कहवा, क्योंकि अच्छी आय अपने इससे मिले। वही इन्हें कपास की फसल की अपन कैसे उगावा, कैसे देखभाल करा, अने कैसे पालन पोषण करके ना अच्छो उत्पादन पावा, इन्हें बारे में आज अपन बातचीत करेंगे डॉक्टर वी के सिंह, जो कि मृदा वैज्ञानिक है कृषि विज्ञान केंद्र झाबुआ से ही पधारिया है। तो सबसे पहला तो डॉक्टर साहब आपको हमारा स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है, राम राम।
4: नमस्कार नमस्कार
3: डॉक्टर साहब, आप हमारा किसान भाई उनके सबसे पहला यो बताओ कि कपास के लिए किस प्रकार की जलवायु और किस प्रकार की मिट्टी की जरूरत पड़े।
4: चूंकि किसान भाई हमारे चूंकि पूरे भारत में कपास की खेती कर रहे हैं, लेकिन हमारे मध्य प्रदेश में बहुत एरिया में कपास की खेती किसान भाई करने लगे हैं। और किसान हमारी जो नगदी फसल के रूप में इसको उगा रहे हैं। और मिट्टी की जहां तक बात है तो पीएच हमारी मिट्टी का 8.5 तक पीएच है, मतलब 5.5 से 8.5 तक पीएच है, उसमें अच्छी उत्पादन अच्छा कर सकते हैं कपास का किसान भाई। हमारी मिट्टी काली हो उसमें और ज्यादा उत्पादन अच्छा होता है, कुछ बलुई दोमट मिट्टी है उसमें भी उत्पादन अच्छा हो रहा है। तो इस तरह की मिट्टी हमारे पास रहे, पानी रोकने की क्षमता वाली, तो कपास का उत्पादन अच्छा हो रहा है।
3: कहने की जैसो बोगा वैसो पाओगा, तो अपने किस प्रकार को बीज बोना चाहिए या कौन कौन सी उन्नत किस्म उनको चयन हमारा किसान भाइयों करे जिससे की अच्छा उत्पादन।
4: जनरली डीसीएच 32 की बात है, केएच है, 1 है, 2 है, खंडवा 2 है, कुछ वैरायटी है जो पॉपुलर है यहाँ पे हमारे किसानों के बीच में, अच्छा उत्पादन दे रही है। हाँ, वैसे भी काफी वैरायटी हमारी नागपुर आईसीआर अनुसंधान केंद्र से भी निकली हैं, कुछ डीसीएच 32 भी हैं, डीसीएच चूंकि 32 है और एचडीपीएस हाई डेंसिटी पे भी लगाई जा रही हैं। तो आजकल किसान हमारे हाई डेंसिटी पे मतलब एक खेत में ज्यादा से ज्यादा पौधा कैसे लग सकते हैं एचडीपीएस उसी को कहते हैं, तो उस प्रकार से भी खेती कर रहे हैं एचडीपीएस मेथड से, तो ज्यादा से ज्यादा उसमें उत्पादन हो रहा है।
3: ज्यादा उत्पादन के लिए कहीं ज्यादा पौधा अपने लगाना पड़े, तो पौधा लगाने की सही विधि कहीं है जिसका से कि जो अपना किसान भाई हो अच्छा उत्पादन पाए।
4: हाँ, उसमें से पौधे से चूंकि लाइन से लाइन की दूरी और पौधे से पौधे की दूरी को हम कम कर देते हैं, जो अन्य प्रकार की खेती हमारे किसान भाई कर रहे हैं थोड़ी दूरी बढ़ा के करते हैं, लेकिन इसमें हम दूरी को कम कर देते हैं 60-90 का रेशियो करते हैं खेती, जिससे कि जिसे और हम खेती कपास की खेती करते थे तो पौधे से पौधे की दूरी ज्यादा रहती थी, पौधे कम होते थे एक बीघा में या एक एकड़ में या एक हेक्टेयर में, ऐसे पौधों की संख्या ज्यादा हो जा रही है तो उत्पादन वैसे हमारा बढ़ जा रहा है।
3: कपास के बोने के लिए भी आजकल जो अपना किसान भाइयों ने जैविक खाद और जैविक उर्वरक को उपयोग कर दिया है, तो जैविक खाद और जैविक उर्वरक की आवश्यकता क्यों है कपास में?
4: अब जनरली किसान भाई रासायनिक खाद का उपयोग लंबे समय तक करते आ रहे हैं अपने खेती में या कपास की खेती उगाने में, तो अब देखा गया कि हमारी मिट्टी का स्ट्रक्चर थोड़ा सा खराब हो रहा है, पानी रोकने की क्षमता खराब हो रही है, कम हो रही है, उसमें हमारे माइक्रोब्स हैं बहुत सारे जो लाभदायक हैं, हमारे फसलों को लाभ पहुंचाते हैं, उनकी संख्या भी कम होती जा रही है। तो इस तरह से देखा गया तो सलाह दी गई वैज्ञानिकों द्वारा कि अब जैविक खेती क्यों न किया जाए, क्योंकि जैविक खेती करने से हमारे पानी रोकने की क्षमता मिट्टी में भुरभुरापन है, लंबे समय तक पानी रहेगा हमारे मिट्टियों में, या माइक्रोब की संख्या बढ़ेगी, इसलिए जैविक खेती करने की सलाह दी गई है। जैविक खेती में हम गोबर की खाद है जैसे 25 से 30 टन पर हेक्टेयर के हिसाब से हम अपने खेती में दें तो हमारे उर्वरक की पूर्ति हो जाएगी।
3: वैसे जैविक खेती की आवश्यकता तो कपास के साथ साथ अन्य फसल के भी है, क्योंकि आजकल जो मिट्टी की जो दशा हो रही है उसे देखते हुए जैविक खेती की ओर जानो किसान भाई, उनके लिए ज्यादा फायदेमंद रहेगा।
4: बिल्कुल बिल्कुल, हम किसान भाइयों को यही सलाह देंगे कि जैविक खेती की तरफ जाएं तो ज्यादा से ज्यादा फायदा होगा और लंबे समय तक फायदा इसका होगा हमको, क्योंकि शुरू में जैविक खेती करने से थोड़ा सा उत्पादन कम होगा एक दो साल, लेकिन दूसरे तीसरे साल उत्पादन हमारा ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा और मैक्सिमम स्टेज पे उत्पादन होगा। तो इसलिए हर फसल के लिए सलाह दी जा रही है किसान भाई हमारे जैविक खेती अपनाएं और जैविक खाद का उपयोग जैसे है वर्मी कंपोस्ट का उपयोग करें, 25 से 30 टन पर हेक्टेयर की बात जैसे हो रही है उसका उपयोग अपने खेतों में करें, ऐसे ही जैविक की बात है, फफूंदनाशक की बात है, टाइकोडर्मा का यूज कर सकते हैं किसान भाई, जैसे 4-5 किलो टाइकोडर्मा है 200-300 केजी बर्मी कंपोस्ट में मिला करके मॉइस्चर करके रख दें ढक के, उसको फिर उसमें डेवलप 8-10 दिन में हमारे माइक्रोब्स टाइकोडर्मा काफी हो जाएंगे, जो फफूंदनाशक होते हैं उनका उपयोग अपने खेतों में कर लें तो फफूंदनाशी की समस्या हमारे खेत में खत्म हो जाएगी।
3: जैविक खेती का और जानने से पहला सबसे पहले अपने जरूरत पड़े जैविक बीजोपचार की, तो जैविक बीजोपचार हमारे किसान भाई करेगा उनका लिए आप कहीं सलाह देना चाहोगा?
4: हम यही चाहेंगे किसान भाई को कहेंगे कि चूंकि टाइकोडर्मा का यूज जैविक बीजोपचार के लिए करें, क्योंकि 5 से 10 ग्राम टाइकोडर्मा प्रति केजी बीज के हिसाब से यदि किसान भाई बीज के साथ उपचार करके बुआई करें तो उनके फफूंदनाशक की समस्या समाप्त हो जाती है बिल्कुल। इससे जैविक बीज उपचार काफी प्रभावी है, जो कि हमारे मध्य प्रदेश में या अन्य अपने पूरे भारत में काफी पॉपुलर भी है टाइकोडर्मा का उपयोग। तो इस तरह से बीज उपचार हमारे किसान भाई करें तो इसका फायदा उनको बिल्कुल मिलेगा।
3: देखो कहीं होगा कोई भी फसल अपन बोआ तो कीड़ा और व्याधि से बचाना बहुत जरूरी है, तो अपना जो कपास की फसल है इका में जो कीट प्रबंधन का बारे में आप हमारा किसान भाई उनके कई सलाह देना चाहोगा?
4: अब कीट प्रबंधन के लिए जैसे जैविक के हमारे यहाँ चल रहा है आजकल काफी नेचुरल फार्मिंग का, तो नेचुरल प्रोडक्ट भी बनाया जा रहा है, जैसे बीजामृत है, जीवामृत है, घनामृत है, तो ऐसे ही जीवामृत का यूज हम कर सकते हैं, जीवामृत का है, ऐसे ही 10 पराडी अर्क का है, तो इस तरह से बहुत सारे प्रोडक्ट हमारे जैविक बनाए जा रहे हैं, उसका उपयोग हमारे किसान भाई जैविक रूप से बना करके फसलों में छिड़काव करें तो काफी फायदा होगा। वैसे ही चूंकि हमारी फसलों की पैदावार के लिए टानी का उपयोग हमारे किसान भाई बाहर से ले खरीद के करते थे, काफी महंगा पड़ता था, तो इस तरह से जीवामृत बना करके और उसका घोल बना करके उपयोग करें और अपनी फसलों में तो हमारी पैदावार भी अच्छी होगी, जैविक का उपयोग ही साथ साथ होगा और अपने पैसे की बचत भी होगी, तो किसान की आमदनी इससे बढ़ेगी।
3: आपने जीवामृत बनाने की बात कही तो बनाने को तरीकों भी यदि हमारे किसान भाई उनके आप बता दोगा तो उनका लिए ज्यादा सुविधा हो जाएगी।
4: अब जीवामृत बनाने के लिए चूंकि हमारे पास जैसे गाय का मूत्र है, बेसन है, गुड़ है, नीम का निबोली है, इन सब का यूज कर लें, गुड़ का उपयोग कुछ कर लें और सारे एक साथ कुछ गोबर की मात्रा ले लें मिला करके और हम थोड़े दिन के लिए रख देते हैं उसको 8-10 दिन के लिए और एक हिलाते रहते हैं घड़ी के घूमने की सुई की दिशा में डंडे से हिलाते रहते हैं तो 8-10 दिन में माइक्रोब्स काफी डेवलप हो जाते हैं और हमारा जीवामृत बन के तैयार हो जाता है। तो उसका उपयोग छान करके किसान भाई स्प्रे कर सकते हैं अपने खेतों में तो काफी बढ़वार अच्छी होगी हमारी फसल की और फसल में कीड़े मकोड़ों को कम लगने की संभावना होगी और अच्छी क्वालिटी की फसल होगी जिससे कि उसकी उसकी आमदनी और दाम भी काफी मिलेगा हमको जिससे किसान की आमदनी

0: बढ़ेगी।
1: सिंचाई की व्यवस्था किसान भाई किस तरह से करें कि कम जल में अच्छे उत्पादन में मिली जाए और पानी की बूंद बूंद को उपयोग फसल में हुई भी जाए।
0: अब जनरली किसान भाई हमारे लंबे स्तर पे खेती करते आ रहे हैं, तो फ्लड इरिगेशन करते आ रहे हैं, लेकिन अब हम सलाह देंगे कि ड्रिप इरिगेशन विधि एक है जो कि आप बता रही हैं कि मोर ड्राप की विधि ड्रिप मेथड से करें किसान भाई, तो काफी फायदा होगा। कम पानी में ज्यादा से ज्यादा उत्पादन ले सकते हैं किसान भाई, जिससे कि पानी का नुकसान भी नहीं होगा, पानी की बचत होगी और हमारा उत्पादन भी बढ़ेगा, क्योंकि उस पौधे के पास ही पानी गिरेगा, मुअसर होगा और उनकी बढ़वार के लिए जितनी आवश्यकता है उतना पौधा ले लेगा, और अगल बगल खरपतवार उगने की समस्या भी कम होगी और बहुत सारी समस्याएं ऐसी कम हो जाएंगी ड्रिप मेथड से। तो हम किसान भाई को सलाह देंगे कि ड्रिप मेथड से अपने कपास में खेती करें तो ज्यादा से ज्यादा फायदा होगा और पानी की बचत होगी।
1: डॉक्टर साहब, आपने नाम लिया अभी खरपतवार को, तो खरपतवार देखो कितनी भी बचत करा फसल में, कहीं से थोड़ी बहुत तो आई जाए, तो ये खरपतवार नियंत्रण के लिए हमारा किसान भाइयों कई करें।
0: अब जैविक विधि के लिए तो कहेंगे हम किसान भाइयों को कि एक क्रॉप रोटेशन फसल चक्रण का जरूर उपयोग करें। जैसे किसान भाई हमारे कपास इस फसल इस साल लगाए खेत में, तो दूसरी साल दूसरी फसल कोई लगाए उस खेत में, तो फसल चक्र का उपयोग अवश्य करें, या डोरा कुल्फा चला करके या उसकी निदाई इस तरह से कर लें जिससे कि खरपतवार हमारे साफ हो जाए। और सबसे अच्छा उपाय फसल चक्र का है, फसल चक्र अपनाए किसान भाई तो जैविक विधि से वो कंट्रोल हो जाएगा और धीरे धीरे कम हो जाए खरपतवार हमारी मिट्टी में और हमारी फसलों के लिए लाभदायक होगा।
1: आपका द्वारा दी हुई सलाह और हमारा कार्यक्रम का माध्यम से समय समय पर दी जा रही हुई सलाह को उपयोग करिए, हमारा किसान भाइयों अच्छी तरह से कपास की फसल तो उगा ही लेगा, पर अब उन फसल के जो चुनने को समय है, उगत चुनते समय कौन सी बात को हमारा किसान भाई ध्यान रखे जिससे कि अच्छी तरह से वे कपास को उत्पादन लेके बाजार तक पहुंचा सके।
0: हाँ, चुनाई के समय का ध्यान देना बहुत ही जरूरी है। जैसे मॉइस्चर का उपयोग वहां न करें चुनाई के समय, कभी भी किसान भाई ध्यान रखें कि जिस कपड़े में या जिस बैग में ले रहे हैं नमी कम से कम हो वहां उसको रखें, और चुनाई में भी ध्यान रखें कि 5-7 दिन का अंतर हो, 5 दिन का 6 दिन का एक चुनाई के बाद दूसरी चुनाई का, और मौसम के अनुसार अगर गीला मौसम है तो उसमें चुनाई न करें, मतलब धूप हो तभी चुनाई करें। इस तरह से करेंगे तो काफी क्वालिटी भी अच्छी रहेगी और जैसे कि चूंकि उसमें ज्यादा से ज्यादा उनको भाव मिलेगा।
1: डॉक्टर वी के सिंह, मृदा वैज्ञानिक कृषि विज्ञान केंद्र झाबुआ से आप हमारा बीच में पधारिया, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू मैडम।
2: तो किसान भाइयों, अभी अपन जैविक कपास उत्पादन कसो कई लेनो एक बारा में अपना का जानकारी दे रहा था डॉक्टर वी के सिंह, और इनका से बातचीत करी रही थी अपनी मनीषा बेट, और बहुत उपयोगी जानकारी थी कि भाई देखो अगर इना तरीका से अपन कपास की खेती कराएं तो ज़्यादा से ज़्यादा इना सफ़ेद सोना को उत्पादन ले सकें। तो हमारा किसान भाई बहन इन्हीं बात को ध्यान रखेगा, और देखो किसान भाई बहन अभी छे तो अपना जो कार्यक्रम चला जो अपन सोयाबीन की फसल लगाई रहे, तो सोयाबीन की बात करा तो काल सौंदारा से जो खेती की बात होएगा नहीं वो सोयाबीन की फसल को रख रखाव कसो कई कर लूँ एक ही जानकारी देगा अपनी संध्या बहन, और संध्या का खेती गृहस्थी कार्यक्रम होएगा जैसे तो बांस को उत्पादन एको कसो कई कर लूँ बांस का उत्पादन से कई फायदो छे एम छे तो हमने बात करी शरद भंडावत जैसे, और एक हम आपका वार्ता सुनावांगा कि बरसात का मौसम चल रहा है तो बरसात का इना मौसम अपना जो पशु छे उनका छे तो सांप न चूहा न का काटना से कसा बचावा एम अपना का जानकारी देगा डॉक्टर रवि सिकरोडिया। और किसान भाइयों अब मन करी रोज की करूँ लोकगीत सुने जाए तो सुना यो लोकगीत अपना राम अवतार अखंड न साथी न को गायल।

राम अवतार अखंड ना साथी का गायल एना लोकगीत का साथ कार्यक्रम की बखत भी पूरी हुई रही। काल पछा मिलंगा इनिज बखत पर, तब तक का लेना बिंदु की सबका राम राम।

रखें यूनिवार्ता के वरिष्ठ पत्रकार मोहम्मद आजाद। लोकसभा में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफे की मांग को लेकर विपक्षी सदस्यों ने आज हंगामा किया, जिसके कारण सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा की कार्यवाही पहले स्थगन के बाद 12 बजे दोबारा जैसे ही शुरू हुई तो विपक्षी सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया। हंगामे के बीच संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी आज सदन में मौजूद हैं। मैं उनसे आग्रह करना चाहता हूं कि प्रमुख विपक्षी दल का नेता होने के नाते और प्रधानमंत्री के पेपर लीक पर सख्त कदम उठाने की घोषणा के बाद विपक्ष को संसद में इस पर चर्चा कराने में सहयोग करना चाहिए। उन्होंने कहा कि जब सरकार कठोर कानून बनाने जा रही है, पेपर लीक को रोकने के लिए कड़े कदम उठा रही है और सरकार की मंशा मजबूत कानून लाने की है, तो फिर विपक्ष को चर्चा में सहयोग करना चाहिए। प्रमुख विपक्षी दल के नेता होने के नाते श्री गांधी को इस दिशा में पहल करना चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि चर्चा नहीं होती है तो इसका संदेश गलत जाएगा। श्री रिजिजू के आग्रह के बाद भी विपक्षी दलों ने हंगामा जारी रखा। पीठासीन अधिकारी जगदम्बिका पाल ने भी कहा कि सरकार चर्चा के लिए तैयार है, तो विपक्षी दलों को चर्चा के लिए तैयार हो जाना चाहिए और उन्हें अपनी सीट पर जाना चाहिए। उनका कहना था कि आज महत्वपूर्ण विधेयक है, इसीलिए सदस्यों को अपनी सीट पर जाकर सदन को चलाना चाहिए। हंगामा जारी रहा तो पीठासीन अधिकारी ने सदन की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। इससे पहले सुबह 11 बजे अध्यक्ष ओम बिड़ला ने जैसे ही प्रश्नकाल शुरू करने की घोषणा की, विपक्षी सदस्य अपनी सीटों पर खड़े होकर हंगामा करने लगे। श्री बिड़ला ने सदस्यों से शोर शराबा नहीं करने का आग्रह किया, लेकिन उनकी बात पर ध्यान दिए बिना सदस्य नारे लगाते रहे। इस पर श्री बिड़ला ने कहा कि प्रश्नकाल सबसे महत्वपूर्ण होता है, सदस्य सवाल पूछते हैं और सरकार की जवाबदेही तय करते हैं। अध्यक्ष के बार बार आग्रह के बाद भी हंगामा नहीं थमा, तब कार्यवाही 12 बजे तक स्थगित कर दी गई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने कार्यवाही शुरू होते ही सदन को कारगिल दिवस के बारे में सूचित करते हुए कहा कि कारगिल विजय दिवस हम 26 जुलाई को मनाते हैं, लेकिन उस दिन अवकाश होने की वजह से इस संबंध में सदन को आज ही अवगत करा रहे हैं। उन्होंने कहा कि 26 जुलाई 2026 को कारगिल दिवस की 27वीं वर्षगांठ है। ये दिन हमारे भारतीय सशस्त्र बलों के अदम्य साहस, अप्रतिम शौर्य और सर्वोच्च बलिदान का प्रतीक है। ये सभा भारतीय सशस्त्र बलों के वीर जवानों को श्रद्धापूर्वक नमन करती है, जिन्होंने अत्यधिक दुर्गम पर्वतीय क्षेत्रों, विषम परिस्थितियों और प्रतिकूल मौसम की परवाह न करते हुए अद्वितीय योगदान दिया और अपना सर्वोच्च बलिदान देकर देश की अखंडता और संप्रभुता की रक्षा की। उन्होंने कहा कि संपूर्ण राष्ट्र मातृभूमि की रक्षा में अपना सर्वोच्च न्यौछावर करने वाले अमर शहीदों का सदैव ऋणी रहेगा। ये सदन उन वीर शहीदों के परिजनों के प्रति अपनी गहरी संवेदना, सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त करता है। सरकार ने लोकसभा में स्पष्ट किया कि देश में किसानों को उर्वरकों की समय पर और पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक फसल मौसम से पहले राज्यों की आवश्यकता का आकलन किया जाता है और उसी के आधार पर मासिक आपूर्ति योजना बनाकर उर्वरकों का आवंटन किया जाता है। सरकार ने कहा कि खरीफ 2026 के दौरान यूरिया, डीएपी, एमओपी और एनपीकेएस सहित सभी प्रमुख उर्वरकों की राज्यों में पर्याप्त उपलब्धता बनी रही तथा उनकी आपूर्ति की लगातार निगरानी की जा रही है। रसायन और उर्वरक मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने बताया कि उर्वरकों की आवाजाही पर एकीकृत उर्वरक निगरानी प्रणाली के माध्यम से नजर रखी जाती है। जिला और ब्लॉक स्तर पर उर्वरकों का वितरण संबंधित राज्य सरकारें करती हैं। उन्होंने कहा कि फॉस्फेट और पोटाश उर्वरकों के लिए वर्ष 2010 से पोषक तत्व आधारित सब्सिडी नीति लागू है। इसके तहत कंपनियां अधिकतम खुदरा मूल्य तय करने के लिए स्वतंत्र हैं, जबकि सब्सिडी पोषक तत्वों की मात्रा के आधार पर दी जाती है। किसानों को डीएपी 50 किलोग्राम की बोरी 1,350 रुपए के वहनीय मूल्य पर उपलब्ध कराने के लिए खरीफ और रबी 2025-26 तथा खरीफ 2026 के लिए एनबीए सब्सिडी के अतिरिक्त
3,500 रुपए प्रति मीट्रिक टन का विशेष प्रावधान भी किया गया है ताकि उर्वरकों की कीमतें

स्थिर बनी रही। उन्होंने कहा कि वर्ष 2014-15 से अब तक देश भर में 26 करोड़ से अधिक मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जा चुके हैं। विभिन्न अध्ययनों में पाया गया है कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड की सिफारिशों के अनुसार उर्वरकों के उपयोग से रासायनिक उर्वरकों की खपत में 8 से 10% तक कमी आई है, जबकि फसलों की उत्पादकता में 5 से 6% तक वृद्धि दर्ज की गई है। नीति आयोग ने भी NBS योजना को संतुलित उर्वरक उपयोग के लिए उपयोगी बताते हुए इसे और प्रभावी बनाने की आवश्यकता पर बल दिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने एक लिखित उत्तर में कहा कि FSSAI ने खाद्य सुरक्षा और मानक खाद्य उत्पाद मानक तथा खाद्य योजक विनियम 2011 अधिसूचित किए हैं, जिनमें बिस्किट, खाद्य तेल तथा अन्य पैकेज्ड खाद्य पदार्थों सहित विभिन्न खाद्य उत्पादों के मानक निर्धारित किए गए हैं। इन विनियमों के अनुसार पाम ऑयल एक मानकीकृत खाद्य तेल है। चूंकि पाम ऑयल एक मानकीकृत खाद्य तेल है, इसका उपयोग स्नैक्स, बिस्किट, नमकीन और अन्य पैकेज्ड खाद्य पदार्थों में खाद्य तेल के घटक के रूप में करने की अनुमति है। उन्होंने कहा कि खाद्य सुरक्षा और मानक लेबलिंग और प्रदर्शन विनियमन 2020 के अनुसार खाद्य उत्पादों की सामग्री सूची में प्रयुक्त खाद्य तेल का विशिष्ट नाम देना अनिवार्य है। केवल खाद्य वनस्पति तेल जैसा सामान्य नाम लिखना पर्याप्त नहीं है, इससे उपभोक्ताओं को सही जानकारी मिलती है और वे सूचित विकल्प चुन सकते हैं। सभी खाद्य व्यवसाय संचालकों के लिए निर्धारित मानकों का पालन करना अनिवार्य है। FSSAI के मानक स्वतंत्र वैज्ञानिक जोखिम आकलन, वैज्ञानिक पैनलों और समितियों की राय पर आधारित होते हैं तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त कोडेक्स मानकों के अनुरूप बनाए जाते हैं। केंद्रीय महिला और बाल विकास राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर ने एक लिखित उत्तर में कहा कि किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 के अंतर्गत उन्होंने महिला और बाल विकास मंत्रालय केंद्र प्रायोजित योजना मिशन वात्सल्य के माध्यम से राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों में मदद करता है। मिशन वात्सल्य योजना अन्य बातों के साथ साथ किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 तथा मिशन वात्सल्य दिशा निर्देशों के प्रावधानों के अनुसार 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुके और बाल देखरेख संस्थानों को छोड़ रहे पात्र युवा वयस्कों के लिए उत्तरोत्तर देखभाल सहायता प्रदान करती है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने एक लिखित उत्तर में बताया कि जन स्वास्थ्य और अस्पताल राज्य के विषय हैं, अतः जन स्वास्थ्य सुविधाओं में मानव संसाधन की पर्याप्तता और सेवा उपलब्धता सहित स्वास्थ्य परिचर्चा प्रणाली को सुदृढ़ करने की जिम्मेदारी संबंधित राज्य या संघ राज्य क्षेत्र सरकारों की है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार स्वशासी राजकीय मेडिकल कॉलेज लखीमपुर खीरी, जिसकी वार्षिक प्रवेश क्षमता 100 MBBS विद्यार्थियों की है, को स्नातक चिकित्सा शिक्षा प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग NMC द्वारा निर्धारित मानदंडों और मानकों के अनुसार स्थापित किया गया है। वर्तमान में कॉलेज MBBS शिक्षा के लिए NMC विनियमों के तहत अनिवार्य विभागों, अवसंरचना और सुविधाओं से सुसज्जित है। वर्तमान में कॉलेज में कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी आदि जैसे सुपर स्पेशलिटी विभाग स्थापित नहीं किए गए हैं। कार्डियोलॉजी और न्यूरोलॉजी आदि जैसे रोगों से संबंधित गंभीर रोगियों का उपचार सामान्य चिकित्सा विभाग के संकाय द्वारा किया जा रहा है और जिन रोगियों को सुपर स्पेशलिस्ट परिचर्या की आवश्यकता होती है उन्हें KGMU लखनऊ, SGPGI रेफर किया जा रहा है। अब सुनिए राज्यसभा में हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखक हैं PTI भाषा के माधव चतुर्वेदी। राज्यसभा में आज भी नीट प्रश्न पत्र लीक मामले को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण गतिरोध बना रहा और सदन की बैठक 2 बार के स्थगन के बाद पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। हंगामे के बीच ही राष्ट्रगीत वंदे मातरम के अपमान को दंडनीय बनाने के प्रावधान वाला एक विधेयक सदन में पेश किया गया। हंगामे की वजह से आज भी उच्च सदन में शून्यकाल और प्रश्नकाल नहीं हो पाया। सुबह 11 बजे उच्च सदन की बैठक शुरू होने पर सभापति CP राधाकृष्णन ने 26 जुलाई को मनाए जाने वाले करगिल विजय दिवस का उल्लेख किया।

0: सभापति ने कहा कि 26 जुलाई को देश करगिल विजय दिवस मनाएगा। ये दिन 1999 के करगिल युद्ध में भारत की जीत की याद में और हमारे सशस्त्र सेनाओं के उन बहादुर अधिकारियों तथा सैनिकों के सम्मान में मनाया जाता है जिन्होंने अद्भुत साहस, वीरता और कर्तव्य के प्रति अटूट निष्ठा के साथ देश की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा की। उन्होंने कहा कि इस अवसर पर ये सदन उन वीर शहीदों को सादर श्रद्धांजलि अर्पित करता है जिन्होंने देश की सेवा में सर्वोच्च बलिदान दिया। हम सशस्त्र सेनाओं के उन सभी सदस्यों के प्रति भी गहरा आभार व्यक्त करते हैं जिनका दम्य साहस, दृढ़ संकल्प और असाधारण चुनौतियों के बीच निस्वार्थ समर्पण देश को प्रेरित करता रहता है और देश की एकता, संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखने के हमारे सामूहिक संकल्प को और मजबूत करता है। सभापति ने कहा कि मुझे विश्वास है कि इस सदन के सदस्य बहादुर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने में मेरे साथ शामिल होंगे। इसके बाद सदस्यों ने देश के लिए अपने प्राणों का बलिदान देने वाले शूरवीर सैनिकों के सम्मान में कुछ पलों का मौन रखा। करगिल विजय दिवस हर वर्ष 26 जुलाई को मनाया जाता है लेकिन इस बार 26 जुलाई को रविवार होने के कारण अवकाश होगा और संसद की बैठक नहीं होगी, इसलिए आज शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। शहीदों को श्रद्धांजलि देने के बाद सभापति ने आवश्यक दस्तावेज सदन के पटल पर रखवाए और प्रश्नकाल शुरू करना चाहा। इसी बीच विपक्षी सदस्यों ने नीट प्रश्न पत्र लीक मामले को लेकर सोमवार को राजधानी में प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों पर पुलिस की कार्रवाई के विरोध में तथा शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करते हुए सरकार के खिलाफ नारेबाजी और हंगामा शुरू कर दिया। हंगामे के बीच सभापति ने सदन में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को बोलने की अनुमति दी। श्री खड़गे ने प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों पर पुलिस की कार्रवाई का जिक्र किया। उनकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि सत्ता पक्ष के सदस्य विरोध करने लगे। सभापति ने हंगामे के कारण बैठक दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी और उच्च सदन में आज भी शून्यकाल नहीं हो पाया। एक बार के स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे बैठक शुरू होने पर सभापति राधाकृष्णन ने फिर से सदन में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को बोलने के लिए आमंत्रित किया। श्री खड़गे ने कहा कि शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए और प्रधानमंत्री को स्थिति स्पष्ट करते हुए बयान देना चाहिए। श्री खड़गे अपनी बात पूरी नहीं कर पाए थे कि सत्ता पक्ष के सदस्यों ने विरोध करना शुरू कर दिया। इस बीच विपक्ष के सदस्यों ने भी हंगामा और नारेबाजी शुरू कर दी। सदन में अव्यवस्था देख राधाकृष्णन ने बैठक दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी। दो बार के स्थगन के बाद दोपहर 2 बजे बैठक शुरू होते ही विपक्षी सदस्यों ने शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के बाद ही नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर चर्चा करने की मांग करते हुए हंगामा शुरू कर दिया। उपसभापति हरिवंश ने विपक्षी सदस्यों को शांत कराने का प्रयास करते हुए कहा कि राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन अधिनियम विधेयक 2026 को पेश किया जाना है जो आज के कामकाज की सूची में सूचीबद्ध है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने आसन की अनुमति से राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। इस विधेयक के तहत 1971 के मूल अधिनियम में संशोधन का प्रावधान किया गया है। संशोधन विधेयक के विरोध में प्रस्ताव रखते हुए मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के जॉन ब्रिटस ने कहा कि संविधान में जो बात तय हो चुकी है संसद उसे सामान्य अधिनियम के जरिए संशोधित नहीं कर सकती है। उन्होंने कहा कि ये संशोधन विधेयक पूर्णतः देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉ राजेंद्र प्रसाद की मंशा पर आधारित है किंतु ये संविधान के उन संदर्भों की अनदेखी करता है जिनके आधार पर मूल कानून बनाया गया था। श्री ब्रिटस ने कहा कि संविधान सभा ने लगातार 3 वर्ष तक गहन विचार विमर्श करने के बाद राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को एक समान दर्जा नहीं दिया था। उन्होंने कहा कि किसी कानून के जरिए देशभक्ति और राष्ट्रवाद पैदा नहीं किए जा सकते। विधेयक की मंशा समाज का ध्रुवीकरण करना है। विधेयक को पेश करने के विरोध में प्रस्ताव पेश करते हुए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के संतोष कुमार पी ने कहा कि वंदे मातरम का उद्देश्य समाज को एकजुट करना है, बांटना नहीं है। अभी आप संसद में हुई आज की कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, लीजिए सुनिए कार्यक्रम सुर्खियों में।
2: सुर्खियों में
3: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णयों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार केजी सुरेश और पत्रकार टीना झा।
4: नमस्कार, सुर्खियों में कार्यक्रम के आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं टीना झा। आज हम बात करेंगे केंद्रीय मंत्रिमंडल की दो अहम मंजूरियों की, जिन्हें आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में स्वीकृति दी गई। पहला फैसला है भारत औद्योगिक विकास योजना रसायन यानी भव्य रसायन को मंजूरी देने का, जिसके तहत देश में 3 समर्पित केमिकल पार्क स्थापित किए जाएंगे। इस योजना की घोषणा वित्त वर्ष 2026-27 के बजट में की गई थी। लगभग 3030 करोड़ रुपए के परिव्यय वाली यह योजना अगले 5 वर्षों में लागू की जाएगी। दूसरा महत्वपूर्ण फैसला है कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के बेल्लारी गुंतकल रेलखंड पर तीसरी और चौथी रेल लाइन बिछाने की परियोजना को मंजूरी। लगभग 1264 करोड़ रुपए की लागत वाली ये परियोजना वर्ष 2028-29 तक पूरी किए जाने का लक्ष्य है। इसके तहत करीब 46 किलोमीटर रेलवे नेटवर्क का विस्तार होगा और लगभग 99 गांवों के करीब 7 लाख लोगों को बेहतर रेल संपर्क का लाभ भी मिलेगा। इन दोनों फैसलों के दूरगामी प्रभाव औद्योगिक विकास, निवेश, रोजगार, कनेक्टिविटी और साथ ही आर्थिक वृद्धि पर आज विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़े हैं वरिष्ठ पत्रकार श्री केजी सुरेश। आपका बहुत स्वागत है सर आकाशवाणी में।
5: जी नमस्कार।
4: कैबिनेट ने देश में 3 समर्पित केमिकल पार्क, ये पहला फैसला है जिसको स्थापित करने के लिए भव्य रसायन योजना की मंजूरी दी है। अनाउंसमेंट थोड़ी देर पहले ही हमने सुना कि केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया, तो आप इस फैसले को भारत के रसायन और पेट्रोकेमिकल क्षेत्र के लिए कितना अहम मान रहे हैं अभी?
5: बिल्कुल, ये जो आज का जो फैसला है मैं समझता हूं कि ऐतिहासिक है। रसायन उद्योग के लिए तो निश्चित ही मील का पत्थर है, क्योंकि इसके तहत पहली बार एक समग्र विकास की एक कल्पना की गई है कि किस तरीके से रसायन उद्योग को हम एक समग्र विकास, समुचित विकास कर सकते हैं। और इसमें जो भी ये 3 पार्क्स की बात की गई है, इसमें पूरे सिर्फ यूनिट्स ही नहीं स्थापित होंगे बल्कि पूरे वैल्यू चेन इसका जो है, चाहे वो अपस्ट्रीम हो, डाउनस्ट्रीम हो, एंसिलरी इंडस्ट्री हो, ये सारे के सारे, ताकि जो संसाधनों का सबसे बेहतरीन किस तरीके से उपयोग हो सकता है और किस तरीके से कॉस्ट कटिंग हो सकता है। लॉजिस्टिक्स में जो खर्चा आज के तारीख में हो रहा है, केमिकल्स को आवाजाही में जो खर्चा हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन में जो खर्चा हो रहा है, तो ये लॉजिस्टिक्स का खर्चे को बहुत बड़े पैमाने पर कम करेंगे। यही नहीं, इसमें जब कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर होगा फैसिलिटीज का और बेसिक यूटिलिटीज होगा, तो फिर आप देखेंगे कि जो रसायन उद्योग है उसके लिए एक बहुत बड़ा बूस्ट है ये, क्योंकि इसमें कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस भी आएगा और भारतीय रसायन जो उद्योग है उसको वैश्विक स्तर पर जो है कॉम्पिटिटिव बनाना, ये मैं समझता हूं कि बहुत ही महत्वपूर्ण है।
4: जी, अगर इसको थोड़ा और डिटेल में समझने की कोशिश करें तो मौजूदा जो औद्योगिक क्षेत्र हैं देश भर में या इंडस्ट्रियल पार्क्स जिनको सरकार कहती है, ये जो केमिकल पार्क अब अनाउंस किए गए हैं, ये इन सब मौजूदा औद्योगिक क्षेत्रों या इंडस्ट्रियल पार्क से किस तरह से अलग होंगे?
5: ये एक्सक्लूसिव होगा केमिकल इंडस्ट्री के लिए। जैसे अब अभी आप देखते हैं आईटी पार्क्स देखते हैं, सॉफ्टवेयर पार्क्स देखते हैं, जहां सॉफ्टवेयर से जुड़े हुए सारे एंसिलरी इंडस्ट्री, सारे उसकी जो लॉजिस्टिक्स की व्यवस्थाएं एक जगह करने का एक प्रयास होता है। अगर आप एक बड़े इंडस्ट्रियल औद्योगिक क्षेत्र में आपने रसायन का उद्योग लगा दिया तो वो स्टैंडअलोन होगा। यहां सबके सब एक क्लस्टर बना दिया जाएगा जिसके तहत जो है सभी इंडस्ट्रीज एक साथ जो है एक जगह से, तो इससे ट्रांसपोर्टेशन में जो होगा, रेल हेड्स अगर वहां शुरू करने हैं, गुड्स के माध्यम से अगर करना है, तो ये सारा कुछ जो लॉजिस्टिक जो है वो तभी संभव हो पाएगा जब सब एक ही जगह में केंद्रित है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए केमिकल ट्रांसपोर्टेशन थोड़ा हजार्डस भी होता है
0: जी।
5: इस दृष्टि से भी अगर आप देखेंगे, सेफ्टी के दृष्टि से भी देखेंगे, तो एक क्षेत्र में आप स्पेसिफिक, जैसे स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स होते थे, वैसे ही एक डेडिकेटेड जोन होगा। अब ये देखने वाली बात है कि किधर किधर इसको स्थापित किया जाएगा, लेकिन इसका उद्देश्य है कि पूरे देश में जो है हम रसायन उद्योग को कैसे बढ़ाएं, क्योंकि आज बहुत बड़े पैमाने में हम लोग रसायन को जो है आयात करते हैं। इसको हम अगर कॉम्पिटिटिव बन गए, एक जब आप कई चीजों को

0: इंफ्रास्ट्रक्चरल कॉस्ट को शेयर करते हो, एक जगह में आपका जब सारा सेटअप होता है तो आप कॉम्पिटिटिव हो जाते हो, आपका इंडिविजुअल जो खर्चा होता है यूनिट्स का उसमें कमी आती है और निश्चित ही एक्सपोर्ट्स में हमें उसका फायदा मिलेगा, हम बेहतर चीजों को कॉम्पिटिटिव रेट्स में हम इसको बेच पाएंगे। तो न सिर्फ आयात को कम करना है अपितु भारतीय रसायन उद्योग को जो है निर्यात के जो मौके हैं उसको भी कैसे बढ़ावा देना है और इसको किस तरीके से हम एक सस्टेनेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए जो है, क्योंकि पर्यावरण एक बड़ा चिंता का विषय हमेशा रहता है, तो हम ऐसे सेंट्रलाइज फैसिलिटीज होंगे जहां अभी हम एक चिंता रहती है कि भाई केमिकल्स जो है कभी नदी में बहाया जाता है, कभी नदी नालों में चला जाता है, कभी अंडरग्राउंड चला जाता है, तो इसके लिए एनवायरमेंटल फ्रेंडली हो इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट की भी बात की गई है, ट्रीटमेंट की बात की गई है, स्टोरेज और डिस्पोजल बहुत बड़ा विषय होता है केमिकल्स को डिस्पोज ऑफ करना, क्योंकि उसमें बहुत जो है खतरे भी होते हैं, आग लगने के खतरे होते हैं, केमिकल्स के फैलने से जो है कई घटनाएं आपने देखा है लीकेज को लेकर जो है कई घटनाएं रिपोर्ट की गई है देश में। तो जब एक जगह इन सब चीजों को किया जाएगा, हजार्ड वेस्ट जो होता है इसका वेस्ट मैनेजमेंट बड़ा ही कठिन होता है, अगर इसको एक जगह में अगर केंद्रित करके एक पार्क में अगर हम इसको करेंगे तो हम देखेंगे कि इसका बेहतर कंप्लायंस होगा और जो पर्यावरण के रेगुलेशंस हैं, नियमन हैं, उसके अनुसार हमारी ये इंडस्ट्री जो है बेहतर तरीके से चल पाएगी।
1: बिल्कुल, आपने पर्यावरण संबंधी चिंताएं इसमें बखूबी समझाई हैं। इसी व्यापक सोच को आगे बढ़ाती हुई एक दूसरी जो मंजूरी दी गई है, जो दूसरा कैबिनेट का फैसला है, वो है बल्लारी गुंतकल रेलखंड पर तीसरी और चौथी रेल लाइन बिछाने को मंजूरी देने का। तो रेलवे के आधुनिकीकरण और क्षमता विस्तार के लिहाज से तो ये काफी महत्वपूर्ण है ही, लेकिन ये परियोजना पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के तहत भी इससे हुई है, इसके अंतर्गत ही इसको मंजूरी दी गई है। इस सोच को किस तरह से आगे बढ़ाती है ये परियोजना आज जिसको मंजूरी मिली है सुरेश जी, और खास करके जब हम विकसित भारत का सपना देखते हैं और हम कहते हैं कि जो भी देश में हो रहा है, जो भी ग्रोथ है, जो भी बेनिफिट्स है, वो हर उस नागरिक के पास पहुंचे, हम अंत्योदय की बात करते हैं, तो उस अगर परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो ये योजना कितनी महत्वपूर्ण आपकी नजर में?
0: देखिए, मैं समझता हूं कि रेल एक क्षेत्र है जहां हमने अप्रत्याशित विकास किया है, खासकर पिछले 10-11 वर्षों में, और अभी कुछ ही दिन पहले हमने देखा, जींद में देखा हमने देश का पहला हाइड्रोजन ट्रेन देखा, जो शायद विश्व में उस स्तर का हाइड्रोजन का उपयोग होता है, जितने सारे डब्बे हमारे यात्रियों के लिए उसमें लगे हैं, इस तरह की व्यवस्था दूसरे किसी देश में नहीं है। तो जो भी हम काम करते हैं उसको बहुत ही सोच समझ कर आगे बढ़ते हैं। एक चीज जरूर आपको यहां बताना चाहूंगा जो बहुत महत्वपूर्ण है, देखिये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म जो है उसी के तहत काम हो रहा है, चाहे कितने भी राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन जब आवंटन की बात आती है, संसाधनों की बात आती है, तो केंद्र सरकार इस मामले में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करती है। ये दोनों जगहों में जो है अगर आप देखेंगे जो लाभ इसको मिल रहा है, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के तीन जिलों को, अब दोनों जगह जो है केंद्र में जो सत्ताधारी दल है उसका कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन इसके बावजूद जो है उस प्रदेश के पूरे देश को सबका साथ सबके विकास के अंतर्गत मैं समझता हूं कि ये परियोजना तैयार की गई है। और निश्चित ही जो है आज हम मेट्रो का जो एक्सपेंशन पूरे देश में हुआ है, आज हम अल्टरनेटिव जितने मोनोरेल्स की बात कर रहे हैं, बुलेट ट्रेन्स की बात कर रहे हैं, तो उसी दिशा में मैं समझता हूं कि ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के तीन जिलों को जो इस वक्त नेटवर्क है उसको लगभग 46 किलोमीटर सिर्फ रेल नेटवर्क होगा, नया रेल ट्रैक्स जो है वो बिछाए जाएंगे। सरकार का हमेशा जो फोकस है वो ग्रामीण क्षेत्रों में रहा है, तो उसको देखते हुए जो है लगभग 99 गांव जिसमें 7 लाख के करीब लोग हैं उनको इस परियोजना से लाभ मिलेगा, यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों से चाहे वो सामग्री गुड्स को ले जाने के मामला हो या पैसेंजर्स का हो, उनको जो है किस तरीके से हम एक अफोर्डेबल यात्रा की व्यवस्था कर सकते हैं। याद रखें कि जो ये रूट की बात की गई है इसमें बहुत प्रमुख पर्यटन के भी केंद्र है और साथ ही साथ धार्मिक केंद्र भी है, एक तरफ बेल्लारी फोर्ट जैसे इलाके हैं तो दूसरी तरफ श्री कुमार स्वामी मंदिर जैसे बहुत पवित्र स्थान भी जो है इसमें है। तो इस तरीके से हम टूरिज्म को भी बढ़ावा दे रहे हैं। तो कोई भी योजना जब हम लागू करते हैं तो ये प्रयास रहता है कि उसका जो मल्टी प्रॉन्ग्ड उसके जो लाभ हो वो बहुआयामी हो, सिर्फ एक दिशा में नहीं कि चलो रेल की पटरी खुल गई, पर्यटन को भी लाभ होगा, वहां के ग्रामीण क्षेत्रों को भी लाभ होगा, वहां के कृषि क्षेत्र को भी लाभ होगा, वहां के गुड्स को दूर दराज के क्षेत्रों तक पहुंचाने में, कनेक्टिविटी बनाने में लाभ होगा। तो मैं समझता हूं इस सभी दृष्टि से ये प्रोजेक्ट जो है बहुत महत्वपूर्ण है।
1: बिल्कुल, सिर्फ कनेक्टिविटी नहीं बल्कि आधुनिकीकरण, और जिस तरह से आपने बताया कि स्थानीय स्तर पर जब निर्माण कार्य होगा तो रोजगार भी बढ़ेगा, आर्थिक गतिविधि में भी कई तरह के अवसर पैदा होंगे और टूरिज्म की भी आपने बात कही। अंत में यदि हम आपसे जानना चाहें कि अगर हम देखें कि रेलवे का ये सिर्फ एक और प्रोजेक्ट नहीं है, इट्स वन अमंग मेनी प्रोजेक्ट्स, कई विभिन्न परियोजनाओं को साथ अगर हम रखकर देखें, तो क्या आकलन है आपका कि भारतीय रेलवे में किस तरह का व्यापक बदलाव पिछले कुछ सालों में हुआ है और देश भर में इसका लाभ अगर आम नागरिकों को और देश की अर्थव्यवस्था को किस तरह से न सिर्फ अभी मिल रहा है बल्कि आगे आने वाले 20-30 सालों के बाद उनकी जीवन में किस तरह का बदलाव आएगा। और ये मैं आपसे इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि ये परियोजनाएं जब आज अनाउंस भी कर रहे थे केंद्रीय मंत्री, तो उन्होंने आगे का एक रोड मैप बताया और उन्होंने बताया कि ये परियोजनाएं हर उस विजन से जुड़ी हुई है जो हमें 2047 विकसित भारत विजन की ओर ले जाएंगे।
0: आधुनिकीकरण जब भी होता है, आज हम देखेंगे जो सड़कों का जाल फैलाया गया है, चाहे वो ईस्टर्न क्वाड्रिलेटरल हो, चाहे वो आगरा एक्सप्रेसवे हो, देखिए जहां हवाई जहाज तक उतर सकते हैं, फाइटर प्लेन्स उतर सकते हैं, इस स्तर का जो है बनाया गया है। रेलवे, हम कभी कश्मीर में ट्रेन का जाने का हम सोच नहीं सकते थे, अभी मैं उत्तराखंड से आ रहा था तो उत्तराखंड में रेल का काम चल रहा है, पहाड़ों को काट के जो है रेलवे को वहां तक पहुंचाने का काम चल रहा है। तो आम जनता को किस तरीके से जोड़ा जा सकता है, उनके यहां रोजगार निवेश कैसे बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि जब ट्रांसपोर्टेशन या इंफ्रास्ट्रक्चर जब मजबूत होता है तो औद्योगीकरण होता है, औद्योगीकरण होता है तो रोजगार निर्माण होता है, रोजगार निर्माण होता है तो जीडीपी बढ़ती है, उसमें जो है लोग जो है खर्चा कर पाते हैं अपने जेब से और उससे जो है हमारे अर्थव्यवस्था है उसको स्फूर्ति मिलती है, उसको गति मिलती है। ये जो एनर्जी एफिशिएंसी पर जोर दिया गया है और इससे जो है एक तो हमारे नेट जीरो का हमने जो एक कमिटमेंट दिया है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एमिशंस को लेकर, उसमें क्लाइमेट चेंज में यानी कि जो मौसम में बदलाव आ रहा है वो सब विषयों को लेकर हमारा एक बहुत बड़ा योगदान होगा कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए, क्योंकि जब लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होगा और इसके साथ साथ हमारा जब तेल का हम जो आयात करते हैं वो बहुत बड़े तादाद में कम होगा, जब हम रेल के माध्यम से, हम जब हाइड्रोजन ट्रेन जैसे इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से जब हम चलाते हैं तो उसका फर्क होता है। और निश्चित ही जो है हम समझते हैं कि उससे न सिर्फ हमारा अपना जो प्रदूषण और अन्य चीजों से हम बचते हैं, पर्यावरण बेहतर होता है, अपितु जो वैश्विक स्तर पर भी हमारा उसमें योगदान रहता है। तो मैं समझता हूं कि एक विकसित भारत 2047 की जब कल्पना करते हैं तो वो समावेशी है, उसमें हम पर्यावरण को साथ में लेते हुए जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट मॉडल है जिसमें हम तरक्की भी करें लेकिन एक संतुलित तरक्की हो जिससे जो है हमारे पर्यावरण को भी चोट न पहुंचे, हमारे लोगों को भी लाभ पहुंचे और औद्योगीकरण जो है वो एक ह्यूमन फेस के साथ हो, एक मानवीय चेहरे के साथ हो।
1: बिल्कुल, संतुलित लेकिन समावेशी ग्रोथ, यही हमारा मंत्र है और इसी मंत्र के साथ हम 2047 विकसित भारत के सपने की ओर बढ़ रहे हैं। समय इतने की ही इजाजत देता है। सुरेश जी, धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए,
0: बहुत बहुत धन्यवाद,
1: और अपने विचार हमारे साथ साझा करने के लिए।
0: नमस्कार।
1: तो श्रोताओं, सुर्खियों में आज इतना ही, नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णयों पर चर्चा, इसमें भाग ले रहे थे वरिष्ठ पत्रकार केजी सुरेश और पत्रकार टीना झा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
3: सुर्खियों में
4: मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का यह इंदौर केंद्र है।

कुछ कुछ होता है। इस फिल्म के लिए सुनिए अलका याग्निक और कुमार सानू को, समीर के बोल, जतिन ललित का संगीत।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बढ़ा सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: ओम शांति ओम फिल्म का गीत है, के की आवाज़।

फिल्म संगीत श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज़ पर।

श्रोताओं, हम आपको याद दिला दें, आज रात 9:30 से प्रसारित किया जाएगा फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आप ही के पत्रों पर आधारित। श्रोताओं, मन भावन सुनना ना भूलिए। हम आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से बोल रहे हैं। अब से कुछ ही पलों में समाचार होंगे जिन्हें हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालत बनाने और कड़ी सजा सुनिश्चित करने वाले मसौदा विधेयक को मंजूरी दी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी में सुधार को लेकर सरकार सख्त, पेपर लीक मामले में 47 अधिकारी बर्खास्त। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में सीजेपी के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात को सकारात्मक बताया। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज पेपर लीक सहित अन्य मुद्दों को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण लगातार पांचवें दिन भी बाधित हुई। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में बल्लारी गुंटकल खंड की तीसरी और चौथी लाइन को मंजूरी दी। गुजरात के कई हिस्सों में मूसलाधार वर्षा से जनजीवन प्रभावित। चीन में आईएसएसएफ निशानेबाजी विश्व कप में भारत की संयम ने महिलाओं के 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में रजत पदक जीता। और राष्ट्रमंडल खेलों में पुरुषों की 50 मीटर बैकस्ट्रोक तैराकी में भारत के श्रीहरि नटराज ने सेमीफाइनल में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालत बनाने और कड़ी सजा के लिए एक मसौदा विधेयक को आज मंजूरी दे दी। संसद भवन परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में इसे मंजूरी दी गई। इस विधेयक को अगले सप्ताह संसद में पेश किए जाने की संभावना है। श्री मोदी ने कल एक वीडियो संदेश में पेपर लीक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के प्रावधानों वाला विधेयक संसद में पेश करने की घोषणा की थी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार विद्यार्थियों के भविष्य के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है।
1: सोमवार को बिल तो हम लोग तो तैयारी कर रहे हैं। हम तो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि छात्रों को लेकर के जो हम बिल ला रहे हैं तो उसमें कोई विलंब नहीं होना चाहिए, और जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है इस पे कोई रुकावट पैदा करने के लिए कोई हठगंडे अपनाना ठीक नहीं होगा। अब इसको राजनीतिकरण करके फायदा नहीं है, हम लोग को ठोस कदम कैसे उठाना चाहिए छात्रों का भविष्य के लिए, इस पे ध्यान देना चाहिए।
0: इस बीच सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के 47 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक इनमें से कुछ अधिकारियों के खिलाफ कानूनी और आपराधिक कार्रवाई भी की जाएगी। ये परीक्षा व्यवस्था में बड़े सुधार लाने की दिशा में एक अहम कदम है। साथ ही पेपर लीक के मामलों को लेकर विवादों में रही एजेंसी में किए जा रहे व्यापक बदलावों का हिस्सा भी है। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में कांग्रेस जनता पार्टी के प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की। श्री नड्डा ने बताया कि मुलाकात सकारात्मक रही। उन्होंने कहा कि बैठक में परीक्षा प्रणाली में सुधार संबंधी मांगों को ध्यानपूर्वक सुना गया।
2: लगभग दो घंटे चली सरकार की ओर से मैं और मेरे साथ मंत्री जितेंद्र सिंह की बातचीत में शामिल हुए। उनकी बातें हमने सुनी, बातें सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई और कई दृष्टि से उन सारी बातों पर हर तरीके से चर्चा हुई।
0: श्री नड्डा ने बताया कि कांग्रेस जनता पार्टी ने तीन मुख्य मांगे रखी और परीक्षाओं के पेपर लीक पर रोक लगाने के लिए कुछ सुधारों का सुझाव भी दिया। श्री नड्डा ने कहा कि सरकार कल प्रतिनिधिमंडल के साथ एक और दौर की चर्चा करेगी। इस बीच प्रतिनिधिमंडल में शामिल कांग्रेस जनता पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष रांका ने दावा किया कि सरकार ने सैद्धांतिक रूप से उनकी दो मांगों पर सहमति दे दी है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज लगातार पांचवें दिन भी नीट परीक्षा पेपर लीक और विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन पर हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। ब्योरा हमारे संवाददाता से।
3: मॉनसून सत्र के पहले सप्ताह में कोई भी महत्वपूर्ण विधायी कार्य नहीं हो सका। सरकार की ओर से बार बार यह आश्वासन दिए जाने के बावजूद कि वह नीट पेपर लीक मामले पर चर्चा के लिए तैयार है, विपक्ष ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखा। हंगामे के बीच गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने आज राज्यसभा में राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। इससे पहले लोकसभा और राज्यसभा ने कारगिल विजय दिवस के अवसर पर कारगिल युद्ध के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार पहले दिन से ही नीट पेपर लीक मामले पर चर्चा के लिए तैयार थी, लेकिन कांग्रेस द्वारा रखी गई कुछ शर्तों के कारण इस मुद्दे पर चर्चा शुरू नहीं हो सकी। पीठासीन अधिकारियों और सरकार की ओर से व्यवस्था बनाए रखने की बार बार अपील के बावजूद विपक्षी सदस्य दोनों सदनों में विरोध प्रदर्शन करते रहे। लगातार हंगामे के कारण लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। अनुपम मिश्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं के हित में शिक्षा और रोजगार से जुड़े मामलों के त्वरित निपटारे के लिए फास्ट ट्रैक अदालत बनाने की घोषणा की है। उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश के चारों महानगरों भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर में ऐसे फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित किए जाएंगे। इस बीच दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने सूचित किया है कि मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशनों के प्रवेश द्वार अब खोल दिए गए हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में बल्लारी गुंडकल खंड की तीसरी और चौथी रेल लाइन को 1,264 करोड़ रुपए की कुल लागत से मंजूरी दे दी है। इससे भारतीय रेलवे का मौजूदा नेटवर्क लगभग 46 किलोमीटर बढ़ जाएगा। नई दिल्ली में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इससे आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के बीच संपर्क बेहतर होगा।
4: आंध्रा और कर्नाटक को जोड़ने वाले बहुत एक इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक कॉरिडोर में रेलवे की थर्ड और फोर्थ लाइन, और दूसरा है केमिकल सेक्टर को एक टोटली नए तरीके से भारत में डेवलप करने के लिए एक नई स्कीम अप्रूव हुई है, और केमिकल भी सेमीकंडक्टर की तरह एक फाउंडेशनल इंडस्ट्री है, इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट था इस इंडस्ट्री के लिए एक नए तरीके से सोचना।
0: ये परियोजना प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के तहत बनाई गई है, जिसका मुख्य उद्देश्य एकीकृत योजना और संबंधित पक्षों के परामर्श के माध्यम से बहुमार्गीय संपर्क और लॉजिस्टिक दक्षता को बढ़ाना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने केंद्रीय मंत्री परिषद से रवनीत सिंह का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। श्री रवनीत रेल और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज बुखारेस्ट में रोमानिया के प्रधानमंत्री इलिये बोलोयान से मुलाकात कर भारत रोमानिया साझेदारी को आगे बढ़ाने पर सार्थक चर्चा की। इस दौरान दोनों देशों ने द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की और व्यापार, निवेश, स्वच्छ ऊर्जा, संचार तथा उभरती प्रौद्योगिकियों में सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने आपसी हित के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विचार विमर्श किया और रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। भारत ने कहा है कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद नहीं करता, तब तक सिंधु जल संधि स्थगित रहेगी। नई दिल्ली में आज विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने भारत की जानबूझकर पाकिस्तान में बाढ़ लाने की मीडिया रिपोर्ट को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि हाल ही में चिनाब नदी में पानी का बहाव इस सप्ताह जम्मू और उसके आसपास के इलाकों में मूसलाधार वर्षा के कारण बढ़ा है। विदेश मामलों के राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने कहा है कि सरकार अपने निकटवर्ती क्षेत्रों में हो रहे सभी घटनाक्रमों पर कड़ी नजर रख रही है, जिनका उनके राष्ट्रीय हितों पर असर पड़ सकता है, और राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा और उसे मजबूत करने के लिए सभी आवश्यक उपाय किए जा रहे हैं। आज लोकसभा में लिखित उत्तर में श्री सिंह ने कहा कि सरकार ने द्विपक्षीय और बहुपक्षीय मंचों पर सीमा पार आतंकवाद सहित आतंकवाद के खतरे से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर विशेष बल दिया है। उन्होंने कहा कि भारत सभी प्रासंगिक मंचों पर सीमा पार आतंकवाद के प्रभाव के बारे में लगातार बात करता रहा है, विशेष रूप से जम्मू कश्मीर के बारे में। विदेश मामलों के राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने कहा है कि भारत आपसी हितों को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से बांग्लादेश के साथ निरंतर संपर्क में है। आज लोकसभा में लिखित उत्तर में श्री सिंह ने कहा कि भारत ने तीस्ता नदी व्यापक प्रबंधन और पुनर्स्थापन परियोजना के संदर्भों तथा प्रस्तावित चीन म्यांमार बांग्लादेश आर्थिक गलियारे की रिपोर्टों पर ध्यान दिया है। भारत ने आज नई दिल्ली में आपदा जोखिम शमन पर तीसरी ब्रिक्स मंत्री स्तरीय बैठक की मेजबानी की। बैठक का समापन आपदा जोखिम शमन पर ब्रिक्स संयुक्त वक्तव्य को सर्वसम्मति से अपनाने के साथ हुआ। सदस्य देशों ने 2025-28 तक ब्रिक्स आपदा जोखिम शमन कार्य योजना के

0: कार्यान्वयन में तेजी लाने और मजबूत समाज के निर्माण के लिए सहयोग को गहरा करने की सामूहिक प्रतिबद्धता की पुष्टि की। बैठक की अध्यक्षता गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने की। उन्होंने बेहतर सहयोग, नवाचार और सतत विकास के माध्यम से आपदा से निपटने की कार्यप्रणाली को मजबूत करने की अपनी साझा प्रतिबद्धता की पुष्टि की। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सदस्य डॉ कृष्णा वत्सा ने कहा कि ब्रिक्स सदस्य देशों ने एक साथ संयुक्त वक्तव्य, शहरी बुनियादी ढांचे के लिए स्वैच्छिक सिद्धांत और प्रारंभिक चेतावनी डेटा एकीकरण के लिए दिशा निर्देशों को अपनाया है।
1: ब्रिक्स महत्वपूर्ण देशों का समूह है। हम मिलकर एक डिसाइड करते हैं कि किन सारे एरियाज को हम और उस पर ध्यान केंद्रित करें, कहां पर हम ज्यादा एक दूसरे से सहयोग कर सकते हैं। तो एक वर्क प्लान बनाने की बात थी और जो औपचारिक डॉक्यूमेंट्स हैं उनको भी हमने अडॉप्ट किया।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। गुजरात के कई इलाकों में मूसलाधार वर्षा के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य जारी हैं।
2: सभी बाढ़ प्रभावित जिलों में युद्ध स्तर पर राहत और बचाव कार्य जारी है। नवसारी में आज NDRF, SDRF और भारतीय सेना की संयुक्त टीमों ने 14,000 से अधिक नागरिकों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। उधर अहमदाबाद में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने आमली और घुमा जैसे जलभराव वाले क्षेत्रों का दौरा किया और स्वास्थ्य मंत्री ऋषिकेश पटेल के साथ समीक्षा बैठक की। इस बीच भारी जलभराव के कारण आज भी रेल यातायात प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने कल वर्षा की चेतावनी दी है और राज्य के 7 जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: मौसम विभाग ने गुजरात, कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और राजस्थान के कुछ हिस्सों में कल बहुत तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वोत्तर भारत, तटीय कर्नाटक, पश्चिम बंगाल के गंगाई क्षेत्र, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में भी कल मध्यम से तेज वर्षा की संभावना है। हिमाचल प्रदेश के जनजातीय जिले लाहौल स्पीति में आज भीषण सड़क दुर्घटना में 13 लोगों की मौत हो गई। ये दुर्घटना उदयपुर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत सीमा सड़क संगठन मार्ग पर कदुनाला राहुली के पास हुई, जब पहाड़ी से अचानक एक विशाल चट्टान लुढ़क कर वाहन पर गिर गई। घटना के बाद पुलिस, जिला प्रशासन के अधिकारियों और स्थानीय निवासियों ने बचाव और राहत कार्य शुरू किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने दुर्घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। हमारी विशेष श्रृंखला पीपल्स पद्मा आकाशवाणी के साथ के अंतर्गत आज हम हॉकी खिलाड़ी सविता पुनिया से बात करेंगे, जिन्हें इस वर्ष प्रतिष्ठित पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चीन के हांगचाओ में ISSF विश्व कप निशानेबाजी प्रतियोगिता में भारत की संयम ने आज महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में रजत पदक जीता। संयम ने क्वालिफिकेशन राउंड में 579 के स्कोर के साथ फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों के आज दूसरे दिन पुरुषों की 50 मीटर बैकस्ट्रोक तैराकी में भारत के श्रीहरि नटराज ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। सेमीफाइनल आज देर रात होगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालत बनाने और कड़ी सजा सुनिश्चित करने वाले मसौदा विधेयक को मंजूरी दी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी में सुधार को लेकर सरकार सख्त, पेपर लीक मामले में 47 अधिकारी बर्खास्त। केंद्रीय मंत्री JP नड्डा और जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में CJP के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात को सकारात्मक बताया। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज पेपर लीक सहित अन्य मुद्दों को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण लगातार 5वें दिन भी बाधित हुई। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में बल्लारी गुंटकल खंड की तीसरी और चौथी लाइन को मंजूरी दी। और निशानेबाजी विश्व कप में भारत की संयम ने महिलाओं के 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में रजत पदक जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: Good evening. This is Akashwani. I'm Anuja Kumar with the news at 9.

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: हावड़ा ब्रिज, इस फिल्म के लिए सुनिए आशा भोसले की आवाज़ में ये गीत। ओपी नैयर का संगीत है, कंवर जलाल आबादी और हसरत जयपुरी के बोल।

मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से प्रस्तुत है कार्यक्रम मन भावन।

मन भवन कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को मनीष कुमार सोनी का प्यार भरा नमस्कार। लेकर हाजिर हैं हम आपके फरमाइशी पत्रों पर आधारित फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मन भवन। बहुत से चिट्ठियों के साथ आज हम यहाँ उपस्थित हैं और आपकी बहुत सारी फरमाइशें भी आई हैं। सबसे पहले देखते हैं कि ये फरमाइश कहाँ से आई है, और ये पत्र आया है राजपुर से। लिखने वाले हैं घेसु दिलवारे, लक्ष्मी, माधुरी, सोनाली, भगवान, पुष्पा, नेहा, एकता, अस्मिता, सौरभ और कुणाल दिलवारे, हावर स्ट्रीट, न्यूटन, छिंदवाड़ा से। लिखने वाले हैं निस्तार खान, उमेश गुप्ता, शैलेंद्र राय, सुरेश हरड़े और उनके सभी साथी। छिंदवाड़ा से चिट्ठी आई है सादिया, जारा, आलिया, अलीशा, ज्योति, चांदनी और उनकी सखियों की। एक और पत्र मिला है जिस गीत की फरमाइश अभी अभी आई है, और वो है नागचुन रोड, संजय कॉलोनी, खंडवा, मध्य प्रदेश से। लिखने वाले हैं आप सभी अब्दुल गफार डाबर, खुशनसीब, अब्दुल हक, जियाउल हक डाबर, इंदिरा बिहार, रायगढ़ से। हमें लिखा है अकरम नूर जहां, डब्लू नूर जहां, सईद वसीम, वलीउल्लाह ने। जेल रोड रायगढ़ से लिखने वाली हैं रेशमा तिवारी, सोनम तिवारी और आदिबा तिवारी। गांधी चौक रोपड़ से पत्र आया है हरदेव मिका, बलविंदर बिरक, जयतेंद्र बिरक और मिका बिरक का। रिंगनी छत्तीसगढ़ से चिट्ठी आई है दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा की। और लावरिया भैरू इंदौर से इस गीत के ख्वाहिशमंद हैं अनिल बामनिया, प्रमीला बामनिया, नंदनी, मुस्कान, नीलम, सावन, कृष्ण कुमार, ऋतिक, कृणाल, केतन और उनके परिवार के सभी सदस्य। तो लीजिए आप सभी की फरमाइश पर हाजिर है ये गीत।

जुबिन नौटियाल और असीज खान को भी आपने सुना फिल्म शेर शाह के लिए। और अब लेते हैं वो गीत जो ख्वाहिश बनकर आया है हमारे पास पत्रों के माध्यम से, और लिखने वाले हैं आप सभी मालेगांव से दत्ता घायाल, सुनीता भाई, सानिका और गजानन घायाल ने हमें लिखा है। चिट्ठी आई है अब्दुल सत्तार, शकील टेलर, अमन लईक, रुस्तम, गफूर, स्नेही, छोटू और राजू मेव की, तराना जिला उज्जैन से। एक पत्र लिखा है हमें रिधोरा से बाबूलाल बुराखड़े गोकुला और मंगेश बुराखड़े ने। नांदखेड़ जिला वाशिम से लिखा है हमें अशोक चुमड़े, दिनेश, रुपेश, लीलाबाई, चैताली और प्रीति चांदने ने। लाल माता सुधामा नगर रटलाई जिला झालावाड़ राजस्थान से पत्र आया है हर्षिता, रामेश्वर, कान्हा, सफलता, कपिल, मीनाक्षी, सत्यनारायण, मनोहर भाई और प्रभुलाल पागरी का। जामरून से चिट्ठी आई दुर्गादास जोशी, गंगाधर, गजानन, संजय, आशीष, पृथ्वीराज, साध्वी और गणेश हरमक्कर की। इस गीत के लिए एक और चिट्ठी आई है गोवर्धन जिला वाशिम से ही, लिखने वाले हैं रविंद्र पवार, मीना पवार, श्रीकांत, एकनाथ काले और उनके परिवार के सभी सदस्य। बुड़गहन छत्तीसगढ़ से पत्र आया है रामदुलारी प्रजापति, रामचरण प्रजापति, चंद्रेश कुमार प्रजापति, चंद्रकला और शशिकांता का। और एक और चिट्ठी जो इसी गीत के लिए है वो हमें मिली है मोहल्ला फतेहगढ़ लुधियाना पंजाब से, लिखने वाले हैं विनोदपुरी, वीपी रंजू, अशोकपुरी, सुशीलपुरी, नीलम, बीके, कैलाश, रामा और आरएसपुरी। आइए सुनवाते हैं आपको आप ही की पसंद का ये गीत

अगला गीत जो चुना है श्रोताओं ने, वो चुना है फिल्म वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई से। राहत फतेह अली खान और तुलसी कुमार की आवाज़ें हैं, इरशाद कामिल के बोल हैं, प्रीतम का संगीत है। और ख्वाहिशमंद है आप सभी, करनाल से चिट्ठी आई है सुधीर नूतन और संदीप की। नारायणपुर से लिखने वाले हैं ओम प्रकाश राय, उषा, अमित और हैप्पी राय। नेवादा गाजीपुर से लिखने वाले हैं प्रतीक, रोशनी और प्रांजल राय। गांव भणभूंजी जिला आगर मध्य प्रदेश से लिखने वाले हैं रघुनाथ मालवीय, भंवर भाई, सुषमा, पुष्पा, ममता, मंजू, बबीता, राधा, सरिता, दुर्गा, श्याम बाबू, भावना, मधुबाला, मिलन, उमंग, आयुष और ओम प्रकाश। महादेव घाट अमलेश्वर से लिखने वाले हैं डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश, तारणी, सूरज, सुजला, ज्योति और रेयांश ठाकुर। ग्राम धुर्रा बांधा यानी भाटापारा से चिट्ठी आई है प्रमोद साहू, देव कुमार साहू, नेत्राम और भूपेंद्र साहू की। एक चिट्ठी आई है बड़ी सुंदर सी सजी हुई है, ये लिखने वाले हैं आप सभी। मलकापुर

महाराष्ट्र से शत्रुघ्न धांडे, वाल्मीकि धांडे, नेनाजी धांडे, स्वप्निल और अजय खिरोड़कर, आप सबने इस गीत की फरमाइश की है। कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलियाल से लिखने वाले हैं ओम प्रकाश और उनके परिवार के सभी सदस्य। अहमदाबाद से भी चिट्ठी आई है भालचंद्र वड़के, जतिन मेहता, विकास वड़के, फुलवा मेहता, नीलेश वड़के की। मलोट कैंप पंजाब से पत्र आया है सतीश मिगलानी, सीमा, शाइना, विशाल, सुप्रिया, अनमोल, धर्मपाल, लखविंद्र और रमेश मिगलानी की। बागपत उत्तर प्रदेश से पत्र आया है मास्टर मुनीर खान, संजय ढींगिया और अब्दुल सत्तार अब्बासी का। और आप सबकी फरमाइश पर लीजिए सुनिए आपकी पसंद का ये गीत।

टाइगर, टाइगर जिंदा है। इस फिल्म के लिए सुनवाते हैं आपको आतिफ असलम की आवाज़ों में इरशाद कामिल के लिखे बोल और संगीत विशाल शेखर का है। पसंद करने वाले हैं आप सभी। टेमला मार्ग राजपुर जिला बड़वानी से संतोष, शिवराम, दुर्गा, निखिल, अंकित, नंदनी, नीलेश, किरण, सलोनी और कमलेश यादव और उनके परिवार के सभी सदस्य। खंडवा ग्राम लोहारी से लिखने वाले हैं राजेश कुमार धनजे, राहुल कुमार धनजे, विशाल कुमार धनजे, शीला धनजे और गायत्री धनजे। खुर्दी रोड मानपुर से चिट्ठी आई है विजय वैद, रानी वेद, महिमा और नीतू वेद की। जरूर वरुण महाराष्ट्र से सुनना चाहते हैं बाबा साहेब बाड़ोदे, मीनाक्षी चरपे, रजनी कानीरे, कार्तिक और युवराज। खरगोन मध्य प्रदेश से चिट्ठी आई है ध्रुवांश, सुनीता, खुशी, प्रियांश, आशीष, पूनम, कृष्णा और शुभम सोनवणे की। एक और चिट्ठी है जो बड़ी ही सुंदर सी भेजी हमारे श्रोताओं ने। लिखने वाले हैं आप सब पहरा दुर्ग छत्तीसगढ़ से पोषण बंछौर, चंद्र किरण, प्रीति और छाया बंछौर। दरबार कॉलोनी सनावद मध्य प्रदेश से लिखने वाले हैं किशोर कुमार सांवले, रेखा, हिमांशु, अनुराग और सुलोचना। सांवले के साथ साथ बिटिया चारू की ने भी हमें लिखा है। गुलबालोद तहसील आलोड से लिखा है विक्रम मालवीय, अशोक कुमार, शेरू, अमीशा, वनदेवी, रचना भाई, कमला भाई, मांगी लाल जी, सोमदेव और महेश ने। इंदौर से हमें लिखा है प्रकाश सेन, सुनीता, रवि, कृष्णा सेन ने। आपने लिखा है पंचशील कॉलोनी इंदौर से। इंदौर से एक और चिट्ठी आई है संस्कृति नगर से सोमाती बाई, केशरी, हर्ष, छाया, बबलू, मिताशी, केदारी और उनके सभी संगी साथियों की। पालदा से एक चिट्ठी मिली है हमें ऐश्वर्या और नम्रता की। आप सभी के परिवार के जो सदस्य वो भी ख्वाहिशमंद हैं इसी गीत के लिए। साथ ही साथ लिखा है रामकृष्ण बाग इंदौर से हमें मंशुराम जयराम पाटिल, मंजू बलिराम पाटिल, सारिका, नानी, संध्या, गोलू, तनु, रवि, देवांश और उनके परिवार के सभी सदस्यों ने। और एक चिट्ठी आई है महाराष्ट्र हिंगोली से। लिखने वाले हैं आप सभी शाहजी बोड़के, नंदा बोड़के, हनुमान, सारिका, सुरेखा, आरवी, तन्वी और उनके परिवार के सदस्य। कल्लम पुआ मनूरी महाराष्ट्र से लिखने वाले हैं उत्तम जमधाड़े, स्वरा जमधाड़े, आत्माराम आसोले, ललिता आसोले और उनके सभी मित्रगण। आप सभी की फरमाइश पर पहुँचा रहे हैं आपके लिए टाइगर जिंदा है फिल्म के लिए ये गीत आतिफ असलम की आवाज़ में।

0: फरमाइशी पत्रों का कार्यक्रम मन भावन सुन रहे हैं आप श्रोताओं आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज़ पर। कार्यक्रम के बाकी नगमे लेकर बस अभी हाजिर होते हैं।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मनापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बढ़ा सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मनापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
3: सुनते रहिए मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मनापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बढ़ा सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मनापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।

कार्यक्रम मनभावन सुन रहे हैं आप आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज़ पर। साथ ही साथ सुन रहे हैं आप एंड्रॉयड मोबाइल्स पर न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी। कार्यक्रम के बाकी

ठेकेदार नसीम, आयशा, हदिया, अस्मा, मुस्तबा, राउफ और शाहिद की। गांधीबाग अकोला से लिखने वाले हैं रमेश कटनकर और वैशाली कटनकर। ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही और मेहरा जहां ने हमें लिखा है लक्सर हरिद्वार से। बी आर राजश्री, रौनक, दिव्यांशी, रोशनी, धीरज, स्वाति, टोनी, निधि और उनके परिवार के सदस्यों ने हमें लिखा है सोमानी नगर इंदौर से। नेपाल पहले सागर से चिट्ठी आई है तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका, नुपुर, ऋषिका और रॉबिन की। उमरखेड़ महाराष्ट्र से भी एक पत्र आया है। अभिजीत गवाणकर राही, सरिता गवाणकर, सिद्धांत गवाणकर और प्रिंस ने हमें लिखा है। नागपुर से भी एक और पत्र मिला है शैलेश वैशाली और ध्वनि गवाणकर का। भागचंद साहू, महेश साहू, प्रेमबाई, राज, करिश्मा और अजय ने हमें लिखा है गंज वासुदा विदिशा मध्य प्रदेश से। और उज्जैन से पत्र आया है विनोद मूणत, नेहा जैन, दीपक, मयंक मूणत, चेतन नाटा, दिलीप सिंह पवार, दीक्षा और कुश मूणत का। आप सभी की फरमाइश पर लीजिए सुनिए ये गीत फिल्म कटी पतंग से किशोर कुमार की आवाज़ में।

एक फिल्म है तीसरी मंजिल, गीत रचना लिखी मजरू सुल्तानपुरी ने, तर्ज तैयार की आरडी बर्मन ने, आवाजें दी आशा भोसले और मोहम्मद रफी ने, और पसंद किया आप सभी ने। भील बड़ोली गौतमपुरा इंदौर से चिट्ठी आई। राजेंद्र शर्मा, भावना, दिनेश, ज्योति शर्मा, जसदीप, अर्पिता, हिमांशु, औशिन शर्मा के साथ साथ लिखा है हेमंत, अद्विका, निशिता और उनके परिवार के सभी सदस्यों ने। जिला उज्जैन से हमें लिखने वाले हैं कन्हैया लाल, कैलाश और कुंदन। उत्तराखंड से चिट्ठी आई है रियासत हुसैन, नाजमा, रियाज, शमरीन, रिहान और माहिरा नूर की। कृष्णबाग कॉलोनी इंदौर से भी ख्वाहिशमंद हैं नियाज मोहम्मद मंसूरी, सरताज बानो, उबैद, रजिया, जुनेद, अलीना, नसरीन जहां, आयत, मुआज मंसूरी और उनके सभी संगी साथी। खुपटी से लिखा है हमें बंडू लोहार ने, साथ साथ लिखा है माया, शिवांश, चंद्रकला और देवीदास ने। इन्हीं के साथ ख्वाहिशमंद हैं हरिभाऊ बिड़वे, श्रावण और अनिता बिड़वे। बेरड़ी से ख्वाहिशमंद हैं इसी गीत के लिए हुकुम करमरकर, सुनीता, हार्दिक और प्राची के साथ साथ तनु भी इस गीत को सुनना चाहती हैं। एक और चिट्ठी आई है कंवर कॉलोनी बढ़वा से प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली, आदित्य, अदिति, शिवानी और मीनूराज श्रीमाली की। आप सभी की फरमाइश पर लीजिए, सुनिए तीसरी मंजिल फिल्म का ये गीत।

कालिया फिल्म का गीत है, किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज़ें हैं, आरडी बर्मन का संगीत है और अल्फाज लिखे हैं मजरू सुल्तानपुरी ने। ख्वाहिशमंद है आप सभी। सपना संगीतारूढ़ इंदौर से इस गीत को पसंद किया है लाल फतेह चंदानी, लीला फतेह चंदानी, संगीता, सुनीता, पिंकेश, साक्षी, मनन और तानिया ने। बक्सर बिहार से ख्वाहिशमंद है शरफुद्दीन अंसारी और उनके मित्रगण। पुराना तालाब डुमराव से लिखा है वलीउल्लाह अंसारी ने। बक्सर से चिट्ठी आई है राज एस डी अंसारी की। इंदिरा विहार दिल्ली से लिखना ख्वाहिशमंद है डब्लू। जेल रोड बक्सर से चिट्ठी आई है नरेंद्र कुमार यादव की। पोखरा डुमराव से ख्वाहिशमंद है सुनील कुमार वर्मा। मुस्तफाबाद दिल्ली से चिट्ठी आई है लाल बाबू दीवाना की। रतनपुर से सुनना चाहते हैं भागीरथ, जितेंद्र, सुभाष, रविंद्र, शिवानी, अश्विनी, अरविंद, आदित्य, गुनगुन और उनके परिवार के सदस्य। इंदौर से ख्वाहिशमंद हैं रवि, पुष्पा, आदित्य, कीर्तिमान और रोशनी। गरीब नवाज कॉलोनी वंदना नगर इंदौर से ही एक और पत्र आया है, रेखा, संतोष, रघुवंशी, शोभा, भूपेंद्र, बबीता, सुरेंद्र, पूजा, विकी, स्वाति, प्रयाग चौधरी, मालती चौधरी, गणेश कार्तिक खर्चे, संजना परी खर्चे और ललिता नारायण खर्चे की। पलसीकर कॉलोनी इंदौर से भी चिट्ठी मिली है इसी गीत के लिए, धनेश मटाई, राकेश, उमेश सहजवानी, हनी जिम्मी, दियाना और जियांश मटाई की। लीजिए सुनिए आप सभी की फरमाइश का, पसंद का ये गीत।

और अब लेते हैं वो पत्र जो हमारे हाथों में है, छबड़ा कोली मोहल्ला से। लिखने वाले हैं नूर बानो, सलमा बानो और सिमरन। बेरडी से राजेश, कंचन, गायत्री, वैष्णवी, चंचल, अर्जुन और धीरज सब्बा सेरे ने हमें लिखा है। इसके अलावा एक खत आया है सादुल शहर से, ओम प्रकाश चौहान, मन्नू प्रकाश, शिव प्रकाश और वेद प्रकाश चौहान का। श्री कृष्ण बाठे, संदीप, अमूल और वैशाली ने हमें लिखा है महाराष्ट्र से ही। और इसके अलावा इंदौर से एक चिट्ठी आई है सुनील, साक्षी और उनके परिवार के सभी सदस्यों की। आप सभी की फरमाइश पर लीजिए सुनिए फिल्म आराधना का ये गीत। किशोर कुमार की आवाज़ें हैं, आनंद बख्शी के बोल हैं और एस डी बर्मन का संगीत है।

और आज की शाम का ये आखिरी गीत, आखिरी नगमा कार्यक्रम मन भावन का पसंद करने वाले हैं आप सभी जगदीश धाकड़ नायमा, राजू भाई धाकड़, युवराज धाकड़, शिवांगी धाकड़। इन सभी ने लिखा है हमें हिंगड़ी से। रोकड़ेश्वर नगर से चिट्ठी आई है पागरा शिंदे, बस सुनीता जबड़े, टेलर आर डिंगोले और उनके सभी संगी साथियों की। हिंगोली से एक और चिट्ठी आई है पार्वती, सखाराम, दीपालू, ये राजू, रोहित, सोनू और मोनू की। एयरपोर्ट कॉलोनी इंदौर से ख्वाहिशमंद है कमल दामोदरे, अनिता दामोदरे, रूपेश, बंटी, रानू और निधि। प्रबोध चंद्र, अंजलि और रेणु ने लिखा है हमें सुदाम नगर इंदौर से ही। दिल्ली शहर मेरी गेट से लिखने वाले हैं कन्हैया लाल, रीता देवी, शिल्पा रानी, आकाश कुमार। ग्राम बगबुड़वा पथरिया से लिखने वाले हैं नरेंद्र नेताम और कुसुम नेताम। छत्रपति संभाजी नगर से लिखने वाले हैं राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश और शीतल राजेश। गौरी नगर इंदौर से चिट्ठी आई है आनंद कुमार कामले, रेखा कामले, राखी, पारस, तपस्या और करिश्मा कामले की। लीजिए सुनिए आप सबकी ख्वाहिश का ये गीत।

तो श्रोताओं, ये था आज का फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम, आपके पत्रों पर आधारित कार्यक्रम मन भावन। हमें रहेगा आपकी चिट्ठियों का इंतजार। पता नोट कीजिए, मन भावन कार्यक्रम द्वारा केंद्र निदेशक, मालवा हाउस, आकाशवाणी, इंदौर। इंदौर का पिन कोड नोट कीजिए 452001 यानी 452001। हमें रहेगा आपके खतों का इंतजार। दीजिए इजाजत मनीष कुमार सोनी को। नमस्कार।

मन भावन, ये कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज पर। और आइए अब सुनते हैं शास्त्रीय संगीत। शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं पंडित राम नारायण का सारंगी पर बजाया राग, रागेश्री।

शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे पंडित राम नारायण का सितार पर बजाया राग रागेश्री। शास्त्रीय संगीत का प्रसारण आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से किया गया। और अब से कुछ पलों में समाचारों का अनुप्रसारण हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालत बनाने और कड़ी सजा के लिए एक मसौदा विधेयक को आज मंजूरी दे दी। संसद भवन परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में इसे मंजूरी दी गई। इस विधेयक को अगले सप्ताह संसद में पेश किए जाने की संभावना है। श्री मोदी ने कल एक वीडियो संदेश में पेपर लीक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के प्रावधानों वाला विधेयक संसद में पेश करने की घोषणा की थी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार विद्यार्थियों के भविष्य के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है।
1: सोमवार को बिल तो हम लोग तो तैयारी कर रहे हैं। हम तो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि छात्रों को लेकर के जो हम बिल ला रहे हैं तो उसमें कोई विलंब नहीं होना चाहिए, और जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है इसमें कोई रुकावट पैदा करने के लिए कोई हठगंडे अपनाना ठीक नहीं होगा। अब इसको राजनीतिकरण करके फायदा नहीं, हम लोगों को ठोस कदम कैसे उठाना चाहिए छात्रों का भविष्य के लिए, इस पे

0: प्रतिनिधिमंडल में शामिल सीजेपी के प्रवक्ता आशुतोष राका ने दावा किया कि सरकार ने सैद्धांतिक रूप से उनकी दो मांगों पर सहमति दे दी है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज लगातार पांचवें दिन भी नीट परीक्षा पेपर लीक और विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन पर हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा की कार्यवाही दूसरे स्थगन के बाद फिर शुरू होने पर गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। विधेयक पेश होने के बाद विपक्षी दलों ने नीट मुद्दे पर फिर से नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामा जारी रहने पर उपसभा पति हरिवंश ने सदन की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी। दिल्ली यातायात पुलिस ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता धारा 163 के अंतर्गत लागू निषेधाज्ञा के मद्देनजर नागरिकों को अधिसूचित क्षेत्र में अनावश्यक आवाजाही से बचने और वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने की सलाह दी है। इसके साथ ही यातायात पुलिस ने बताया है कि आपातकालीन सेवाएं जिनमें एम्बुलेंस अग्निशमन सेवाएं अधिकृत सरकारी वाहन शामिल हैं निर्धारित अनुमति के अनुसार संचालित होती रहेंगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के महाप्रबंधक स्तर पर वरिष्ठ पेशेवर पदों की नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किए गए हैं। साथ ही संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के प्रतिभा सेतु पोर्टल के माध्यम से 16 युवा पेशेवरों की भर्ती प्रक्रिया भी शुरू की गई है। एनटीए ने एक बयान में कहा कि यह उपाय एजेंसी के संस्थागत पुनर्निर्माण की दिशा में पहला ठोस कदम है, जिसे प्रोफेसर के राधाकृष्णन की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के अनुरूप लागू किया जा रहा है। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में बल्लारी गुंतकल खंड की तीसरी और चौथी रेल लाइन को 1264 करोड़ रुपए की कुल लागत से मंजूरी दे दी है। इससे भारतीय रेलवे का मौजूदा नेटवर्क लगभग 46 किलोमीटर बढ़ जाएगा। नई दिल्ली में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इससे आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के बीच संपर्क बेहतर होगा। चीन के हांगझोउ में आईएसएसएफ विश्व कप निशानेबाजी प्रतियोगिता में भारत की संयम ने आज महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में रजत पदक जीता। संयम ने क्वालिफिकेशन राउंड में 579 के स्कोर के साथ फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। उन्होंने कुल 243.4 का स्कोर बनाकर दूसरा स्थान हासिल किया और स्वर्ण पदक जीतने से सिर्फ 0.2 प्वाइंट से चूक गई। चीन की याओ क्यांग सुन 243.6 प्वाइंट्स के साथ पहले स्थान पर रही। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय साइरा मुज्तबा। The Union Cabinet today approved a draft bill to set up fast-track courts and to ensure stricter punishment in cases of paper leaks and exam malpractices. The Cabinet meeting chaired by Prime Minister Narendra Modi at the Parliament House complex approved the draft bill. Sources told Akashvani News that the proposed legislation is expected to be introduced in the Parliament next week. In a video message yesterday, Prime Minister Modi had announced about bringing a bill with provisions of strong action in cases of paper leaks. Meanwhile, in a major bid to bring out serious examination reforms, the National Testing Agency has terminated 47 officials from service. According to sources, legal and criminal action will also be taken against some of these officials. This is part of a complete overhaul of NTA that has been in controversy over paper leaks. The National Testing Agency NTA has issued advertisements for a set of senior professional appointments at the level of general manager. It has also opened the engagement of 16 young professionals through the Pratibha Setu portal of the UPSC. NTA in a statement said that these measures represent the first concrete step in the institutional rebuild of the agency that is being implemented in line with the recommendations of the High-Level Committee of Experts chaired by Professor K. Radhakrishnan. Union Ministers J.P. Nadda and Dr. Jitendra Singh today met the CJP delegation in New Delhi. Talking to media after the meeting, Mr. Nadda said they gave a patient hearing to the demands of the CJP regarding reforms in the examination system. Mr. Nadda said that the CJP had put